0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद सबका फिर से स्वागत है अमृत धारा में, और हम बात कर रहे हैं शबरी की। ज्ञानेश्वर जी, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है कि वो आदिवासी थी। मतलब क्या कि भगवान जात पात पंथ यह भेद नहीं देखते।
2: बहुत सही कहा आपने कि ये जात पात धर्म भेद ये सब इंसान ने खड़े किए हैं। भगवान जो है वो इंसानियत देखता है, भगवान जो है आपका मन देखता है, भगवान जो है वो आपका दिल देखता है
1: जी।
2: और इसलिए शबरी जो है, वो शबरी की जो मिसाल है, वो देखिए, शबरी कभी इम्पेशेंट नहीं हुई, शबरी कभी दुखी नहीं हो गई कि मैं कहाँ जंगल में पड़ी हूँ, ये भगवान कब आएगा, मुझे मिलेगा, ये कुछ उसने उसके मन में संकल्प भी नहीं था। उसके मन में था कि मेरा राम आने वाला है, मुझे मिलने वाला है, और मैं उसकी मुलाकात जो है, उसके साथ जो परमात्मा मिलन का आनंद जो है, मैं ले लूंगी। ना उसने कोई संकल्प किया कि मैं उससे कुछ मांगू, कुछ ये करूं। उसके मन में यही संकल्प था कि मेरा राम कब आएगा और मैं उसे क्या दे दूंगी। उसमें मुझे और एक कहानी याद आती है कि ये पेशेंस जो है, या विश्वास जो है भगवान के प्रति कि भगवान मेरा आएगा जरूर और मेरी मदद करेगा, उसके ऊपर एक मुझे कहानी याद आई। कहानी ऐसी है कि एक युगल जो है, पति पत्नी जा रहे हैं समुन्द्र में सफर करने के लिए। काफी पैसा है, धनवान है, और परमात्मा के ऊपर उनका प्यार भी बहुत है, और वो सफर करते हुए जा रहे थे और उनका जो जहाज है वो कहीं ना कहीं बिखर गया। और फिर वो तैरते तैरते एक आइलैंड में जाके आ गए। आइलैंड में गए, वहां सुनसान जगह थी, कोई आदमी नहीं था, कुछ नहीं था। अभी वो अपने को कोसते रहे कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिंदगी में, भगवान ये क्या हो गया, और फिर भी हम यहाँ आके पड़े हैं, ना वहाँ कुछ खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना कोई आदमी है, कुछ नहीं है। फिर भी अभी उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने बताया तो हम आ गए, हमारे नसीब में शायद वही होगा, उसमें भी कुछ भलाई होगी। इतना निश्चय हो गया था, और फिर वो आइलैंड में आ गए, और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ ही कुछ लकड़ियाँ वगैरह थी, उससे अपना झोपड़ा बनाया। फिर वहाँ के कुछ फल सब्जियाँ जो कुछ मिलता था वो खा के वो दिन गुजारते थे। ऐसे महीनों बीत गए, काफ़ी उनके घर वाले जो है वो उनको तलाश उन्होंने शुरू की। उन्हें चिंता थी कि उन कहाँ चले गए, और वहाँ कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, तो वो बैठे हैं और घर वाले चिंता कर रहे हैं। तो घर वालों ने बहुत खोज की, विमान भेजे, ये भेजा, और कोशिश की उनको ढूंढने की। ऐसे महीने बीत गए, और एक दिन क्या हो गया, वो तो अपने दिल में सोचते थे कि हमने क्या गलती की, हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया, ऐसी कौन सी सजा हमें मिल रही है, इसके बारे में सोचते थे। और एक दिन क्या हो गया, उनका जो झोपड़ा उन्होंने बांधा था वो भी जल गया। अभी झोपड़ा जलने के बाद वो जो संयम था, उनका पेशेंस था, वो टूट गया। उन्होंने कहा, भगवान हमने कुछ नहीं कहा, जब हम जहाज से जा रहे थे हमारे पास इतना धन था, दौलत थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, हम ये आइलैंड पे आ गए, खाने को नहीं था, कोई इंसान नहीं था, फिर भी हम दोनों ने कुछ कोशिश की, जो फल मिले उससे गुजारा करना चालू किया, एक झोपड़ी बनाई और अपनी ये झोपड़ी भी तोड़ दी, झोपड़ी जला दी। ऐसा क्या गुनाह हमने किया कि हम आप हमें उसकी सजा दे रहे हो। और तब तक क्या हो गया, ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर आ गया और फिर उन्होंने देखा कि कोई ना कोई हमें बचाने के लिए हमें छुड़ाने के लिए आ गया है।
1: शायद ऐसा है कि वो झोपड़ी जो जल गई, कुटिया जो जल गई, उसका धुआं और उस वो अग्नि की ज्वालाएं देखकर कोई उनको बचाने के लिए आ गया।
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि यही था कि जब वो तलाशते थे, तलाश कर रहे थे और उस समय वो तलाश करते समय रात के अंधेरे में उनको ये उजाला नजर आया, ये आग नजर आई और फिर उनको लगा कि वहां कोई ना कोई रहता है और फिर उस तरफ जैसे चले गए और सुबह उठने के बाद जब उन्होंने देखा हेलीकॉप्टर ऊपर आ रहा है तो उन्होंने इशारा किया और हेलीकॉप्टर नीचे आया। फिर उन्होंने भगवान को कहा, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने अगर झोपड़ी नहीं जलाते थे तो हम यहां से मुक्त नहीं होते थे। तो हर कोई चीज जिंदगी में, हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ चीज होती है, हमें बुरी लगती है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई रहती है।
1: बिल्कुल,
2: मुझे ये लगता है कि शबरी का भाव भी ऐसा था इसलिए वो निश्चिंत थी।
1: बिल्कुल,
2: भले जंगलों में रहती थी, भले उसके पास कुछ पैसा नहीं था लेकिन वो निश्चिंत थी और एक विश्वास अपने भगवान के ऊपर था, अपने देवता के ऊपर था और उनको ये विश्वास था कि प्रभु रामचंद्र जी आएंगे और मुझे मिलेंगे
1: और मैं उन्हें जूठे बेर खिलाऊंगी।
2: यस, और मुझे कुछ खिलाना है, पहले क्या है भावना, मुझे कुछ उनको देना है, मुझे कुछ उनको खिलाना है। और ये कहानी में इतनी दिलचस्प कहानी है कि वो जो बेर थे उसने क्या किया, टेस्ट किया, दांतों के नीचे दबाया और टेस्ट किया कि कहीं मेरे राम को बेर खट्टे ना दूं,
1: जी
2: मीठे बेर देने हैं। और जब वो बेर लेके चली आई, रामचंद्र जी के पास चली आई, तब वो कहते हैं कि सीता मैया ने देखा, सीता मैया ने देखा और पूछा कि शबरी ये बेर लाई है, ये दांतों के निशान कैसे हैं? तो शबरी ने कहा, मैया मेरा राम जो है उसको मैं बेर खिलाना चाहती थी और कहीं गलती से खट्टे बेर ना जाए, इसलिए मैंने खुद को उसको टेस्ट किया है। तो सीता मैया को बड़ा आश्चर्य लगा कि आप झूठे बेर दे रही हो भगवान को। प्रभु रामचंद्र जी हंसे और उन्होंने सीता मैया को कहा, सीता ये जो भक्त है उनकी भाव देखो, ये जो बूढ़ी औरत है लेकिन उसका दिल कितना बड़ा है देखो, और वो रामचंद्र जी को कभी गलती से भी खट्टा बेर ना जाए इसलिए खुद ने टेस्ट किया और ये कहानी बन गई। तो मुझे ये लगता है शबरी कैरेक्टर जो है बहुत छोटा कैरेक्टर है लेकिन ये कहानी जगमान्य है और जब रामायण हम पढ़ते हैं शबरी के बिना रामायण पूरा नहीं होता।
1: बिल्कुल,
2: तो आप भक्त जो है वो छोटे हो या बड़े हो, आप कौन से जात के हो, कौन से धर्म के हो, कहाँ रहते हो, गरीब हो अमीर हो, कोई मायना नहीं रखता, भक्त भक्त रहता है।
1: बिल्कुल, और आप क्या दे रहे हो, किस प्रकार से दे रहे हो, यह मायना नहीं रखता लेकिन आपकी भावना कितनी सच्ची है, आपकी भावना में भाव कितना भरा हुआ है, सेवा भाव कितना है वो देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा का महत्व नहीं है किन से भाव का महत्व है। और शबरी या कई ऐसे भक्त है जिनके अंदर वो सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं रेडियो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, भावना का भाड़ा जो है वो भगवान जरूर देता है, और इसी प्रकार से अमृत धारा प्रोग्राम के द्वारा हमारे अंदर की सच्ची भावना जागृत हो रही है, और इसी जागृति से हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ जरूर आने लगी है, जो अच्छाइयाँ सबको पसंद है, न केवल परमात्मा को, लेकिन जो भी हमारे मित्र संबंधी रिश्तेदार है उन्हें भी वो अच्छाइयाँ ही खींच लेती है। ज्ञानेश्वर जी, आपने शबरी का मिसाल बताया, और उस शबरी के मिसाल से आपने ये भी कहा कि रामायण जो है वो बिना शबरी पूरा ही नहीं हो सकता। ऐसी और कौन सी कैरेक्टर्स है जिन्हें हम फोकस कर सकते हैं, जो हमें संदेश देती है, जिनके संदेश से हमारे जिंदगी का तालमेल हो सकता है और हम कुछ न कुछ सीख लेकर अपनी जिंदगी को उसी प्रकार से बना सकते हैं। भले मिसाल बहुत छोटे है, लेकिन वो मिसाल जिंदगी बड़ी बनाने में, महान बनाने में बहुत बहुत मायने रखते हैं।
3: बहुत अच्छा पूछा आपने कि देखिए, जब मैं ये रामायण की कथा सुनता हूँ, दो औरतें अहिल्या और शबरी हमने देखी, वो जो बड़े भक्त थे, इंतजार कर रहे थे और प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर नोचावर जाते थे। अभी तीसरा कैरेक्टर जब मैं देखता हूँ, वो भी स्त्री है, वो भी स्त्री है, और जब प्रभु रामचंद्र जी वनवाह में कुटिया में रहते थे, तब वो स्त्री जो रावण की बहन है और जिसका नाम है शूर्पणखा, तो देखिए कहानी ऐसी है कि शूर्पणखा जो है वो लक्ष्मण जी के ऊपर मोहित हो गई। कई लोग कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर मोहित हो गई, कई लोग कहते हैं लक्ष्मण जी के ऊपर मोहित हो गई, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो हमें देखना है। किसके ऊपर मोहित हो गई ये ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उसका पीछे का भाव क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे लक्ष्मण जी के पास चली गई और उन्होंने रिश्ता लेके चली गई शादी का, अभी जैसे लक्ष्मण जी के पास चली गई तो लक्ष्मण ने उन्हें देखा और वो समझ गए कि वो कौन सी भावना से आ रही है, और उनको बहुत गुस्सा आ गया। शादी का प्रपोजल लेके गई थी तो उन्होंने क्या किया, शूर्पणखा का नाक और कान काट दिए,
2: और इसीलिए वो जो जगह है उसका नाम नासिक ये हो गया।
3: बिल्कुल, वो नासिक मीन्स नासिका, जहां शूर्पणखा की कटी है वो नासिक हो गया।
2: आज भी जब नासिक के लिए हम जाते हैं, नासिक देखने के लिए जब हम जाते हैं, तब वहां दिखाया जाता है कि पंचवटी जो है, नासिक जो है, जहां जैसे अभी आप कह रहे हो कि वहां शूर्पणखा के नाक को काटा गया, वो स्थान आज भी दिखाते हैं, उसका एक महत्व है।
3: क्यों, देखिए जो हर स्थान, जैसे अयोध्या है, अयोध्या में भी पवित्र स्थान माना जाता है, जहां जहां देवता, वो कथा में देवताओं का निवास है या कुछ ऐसे घटना घटी है तो वो पवित्र और प्रसिद्ध हो जाती है। तो जैसे सीता मैया की गुफा भी दिखाते हैं, और नासिक में जैसे महाराष्ट्र में वो जैसे शूर्पणखा का नाक कटा है, वो भी स्थान महत्वपूर्ण दिखाते हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनके मन में आशंका हो जाती है कि वो शादी का रिश्ता लेके चली गई, भले वो नाक उसका रिश्ता लेके राम जी के पास गई हो या लक्ष्मण के पास गई हो, गए वो या लक्ष्मण के पास गई हो, लेकिन शादी का रिश्ता किसी के पास तो लेके गई, और दोनों देवता स्वरूप है, राम जी भी जो है और लक्ष्मण जी भी है। और सिर्फ कोई अगर औरत शादी का रिश्ता लेके किसी के पास जाती है तो उनका कोई नाक और कान काटता है। और फिर जो ऐसे संशय जिनके मन में पैदा होता है, तो उनके मन में जब संशय पैदा होता है तो वो भ्रमित हो जाते हैं। आप कभी कभी सुनते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं या ईमेल पे देखते हैं या कभी कभी अखबारों में चर्चा होती रहती है कि ये अन्याय हो गया, शूर्पणखा के प्रति अन्याय हो गया। और फिर हम भ्रमित होते हैं कि ये वाल्मीकि जी को क्या कहना है। देखिए, ये वाल्मीकि जी ने जो कैरेक्टर खड़े किए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ भाव जरूर है।
2: बिल्कुल।
3: और अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमारा जो श्रद्धा का भाव है वो कमजोर हो जाता है और संशय जो है वो मन में उठ जाता है रामचंद्र जी के बारे में और लक्ष्मण जी के बारे में। क्योंकि शूर्पणखा जो है वो स्त्री है, अबला है, और उसके ऊपर अन्याय हो गया, ऐसे कुछ मन में आ गया तो उल्टे सुलटे विचार मन में आ जाते हैं। और इसलिए हमने आज चर्चा के लिए शूर्पणखा का जो कैरेक्टर लिया है वो इसलिए लिया है कैरेक्टर बहुत छोटा, लेकिन पूरी रामायण की कथा जो है इसके ऊपर निर्भर है। रावण को प्रेरित जो किया है सीता मैया को उठाने के लिए, वो ये घटना उसके लिए निमित्त है। और इसलिए शूर्पणखा का कैरेक्टर भले वो छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसे उन्होंने नाक और कान काट दिए, वो रोते रोते चली गई रावण जी के पास,
2: भाई के पास,
3: भाई के पास, रावण के पास चली गई। और वो महाबली, उन्होंने कहा आप महाबली कहलाते हो और आपकी बहन को इतने बुरी तरह घायल कर दिया ये राम और लक्ष्मण जी ने। और वो राम और लक्ष्मण महाराष्ट्र में नासिक में बैठा है। बाद में कैसी घटना हो गई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर ये प्रसंग हमने देखा, जब तक अभी हम चर्चा कर रहे थे हमारे श्रोतागण के मन में भी ये संशय आ सकता है कि ये बात सही है, स्त्री के ऊपर अत्याचार हो गया, स्त्री के ऊपर अन्याय हो गया सिर्फ एक प्रपोजल लेके आई शादी का। तो अभी हम अगर अलग तरीके से उसको देखेंगे, अलग पहलू देखेंगे, तो शायद मुझे विश्वास है कि उसके पीछे का भाव जब जानेंगे तब पता चलेगा कि वाल्मीकि जी को क्या कहना है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम जब ऊपर ऊपर कोई भी कहानी का ऊपरी भाग देखते हैं या उसका भाव देखना चाहते हैं तो हो सकता है उसकी गहराई तक न पहुंचने के कारण हमें उसका यथार्थ भाव मालूम न हुआ हो। और आपने कहा वो बिल्कुल सही है, और मैं समझती हूँ कि हमारे श्रोताओं के भी मन में जो कुछ संदेह निर्माण हुआ होगा उस संदेह का निवारण करने के लिए हम इस कथा को, उस भाव को और महर्षि वाल्मीकि का जो लिखने का प्रयास है उसको जरूर देखेंगे। लेकिन अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस कहानी का जो आगे का भाग है वो देखेंगे। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ब्रेक के बाद आप सब दोस्तों का फिर से स्वागत है रेडियो मधुबन में। दोस्तों, आपके मन में जो भी संदेह निर्माण हुआ होगा, उस संदेह का निवारण करने के लिए हम इस कथा को आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ ज्ञानेश्वर जी?
2: देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे कि शायद किसी के मन में ऐसे संकल्प आए कि ये शूर्पणखा के ऊपर, स्त्री के ऊपर अत्याचार तो नहीं हुआ, अन्याय तो नहीं हुआ, और अगर अन्याय हो गया है तो ये देवता जैसे जिनका गायन है प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी, वो कैसे कर सकते हैं, और अगर उन्होंने किया तो वो देवता कैसे हो सकते हैं। ऐसे कुछ कॉन्ट्रावर्शियल क्वेश्चंस, ऐसे कुछ संभ्रमित करने वाले प्रश्न मन में उठते हैं, और मैंने सुना है उसके ऊपर कई चर्चा भी होती है। तो इसलिए जब हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे, उसका दूसरा पहलू देखने की कोशिश करेंगे, तब शायद हमारी बुद्धि खुल जाएगी। क्योंकि जैसे हमने आज तक चर्चा की कि ये कवि जो होते हैं वो अपनी कविता में कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ भाव छिपा हुआ रहता है। जैसे कोडेड लैंग्वेज है, उसको हम डिकोड करते हैं, वैसे ये कोडेड लैंग्वेज है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि शूर्पणखा का कैरेक्टर बनाते समय और उसका वर्णन करते समय उनको ये देखना है, जैसे हमने अहिल्या और शबरी का मिसाल देखी, वो भी स्त्री थी, लेकिन उनके मन में जो भाव था वो शुद्ध था, प्रेम था वो शुद्ध था, और इसलिए भगवान ने उसे स्वीकार कर दिया। तो भक्तों के बारे में अगर, वो तो स्त्री और पुरुष, स्त्री प्रकृति है और पुरुष आत्मा है, ऐसे समझते हैं। वैसे परमात्मा के बारे में जब हम देखते हैं तो भक्त जो हो, भले आत्मा है, वो स्त्री रूप में देखा जाता है। तो दोनों स्त्रियां हैं, स्त्री का भाव अच्छा था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अहिल्या का भाव अच्छा था, अहिल्या के भक्ति को स्वीकार कर दिया। शबरी का भाव अच्छा था, शबरी के भाव को स्वीकार कर दिया। भले उनकी परिस्थिति अलग थी, उनकी कैरेक्टर्स अलग थी, उनका इतिहास अलग था, उनकी बैकग्राउंड अलग थी, लेकिन शूर्पणखा के नाक काटे क्योंकि वो असुर योनि की थी। अभी वो मन में प्रश्न आएगा कि जन्म से थी या नहीं थी, लेकिन मुझे ये कहना है उसका जन्म कहाँ हो गया, वो कौन सी योनि की थी, वो महत्वपूर्ण नहीं था, उसका उद्देश्य जो है वो गलत था।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अशुद्ध भाव जो है वो भी परमात्मा तक पहुंचता है।
2: बिल्कुल सही,
1: भाव ही परमात्मा तक पहुंचता है, न कि कोई चीज पहुंचती है।
2: बिल्कुल।
1: और अभी हम मन और बुद्धि की जब बात लेते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि मनोवृत्ति या वाइब्रेशंस, तो परमात्मा को या किसी भी व्यक्ति को, न केवल उस परम शक्ति को, लेकिन कोई व्यक्ति को भी, हमारे मन में अगर कुछ कालापन है, अगर कुछ छिपा हुआ है, जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है, तो छिपा हुआ है तो ज़रूर वो किसी को भी नजर आता है या महसूस होता है। और ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि दोस्तों देखो, अगर मन में हमने कुछ भाव अलग रखा और जता रहे हैं अलग, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, तो इस प्रकार से अगर हमारा बिहेवियर है, हमारा बर्ताव है, तो उसकी सजा हमें ही मिलती है। क्योंकि जैसे हमारे कर्म है, जैसा हमारा भाव है, जैसी हमारी भावना है, उसी प्रकार से हम उसका फल पाते हैं।
2: बिल्कुल। और जब हम चर्चा कर रहे थे रामायण के ऊपर और लक्ष्मण के कैरेक्टर के ऊपर, तब हमने ये भी देखा कि लक्ष्मण बुद्धि का प्रतीक है, लक्ष्मण बुद्धि का प्रतीक है, और इसलिए चर्चा करते समय हमने कहा, हमने देखा है कि वो इंद्रजीत का जब उनको शस्त्र लग जाता है वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये बुद्धि का अगर प्रतीक है तो कोई भी बुरा संकल्प, शूर्पणखा का कैरेक्टर जब मैं देखता हूं तब मुझे ये लगता है कि बुरा संकल्प है, बुरा विचार है, बुरी वृत्ति है, अगर ये कभी मेरे मन में प्रवेश करने की कोशिश करती है अलग रूप लेके,
1: और वही असुरत्व है
2: वही असुरत्व है और लुभावना रूप लेके उस समय ऊपर ऊपर से देखते हैं तो लगता है वो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन उसका परिणाम जब देखते हैं तो वो परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है और बुद्धि उसे जज कर लेती है बुद्धि उसे तय कर लेती है और परीक्षा कर लेती है कि ये क्या है अच्छा है दिखने में अच्छा है लेकिन उसका परिणाम बुरा है और इसलिए उसके एक नाक कान जो है कथा में जो लिखा है लक्ष्मण ने जो काटे है
1: जी
2: तो उसमें ये है कि अगर मेरे मन में कोई संशय आता है अगर मेरे मन में कोई बुरा संकल्प आता

0: कुछ आकर्षण आ जाते हैं जिसका परिणाम भयंकर हो सकता है, जिसका परिणाम मेरे लिए नुकसानकारक हो सकता है, तो वो संकल्प को मैं अगर वहां ही तोड़ दूं, वहां ही काट दूं, तो मेरे लिए भलाई है।
1: बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बुराई जो है वो भी हम जितना उसकी भी आदत डालेंगे तो वो एक बीज अगर हो गया तो उसका वृक्ष होने में समय नहीं लगता, और उस बुराई को समझकर, महसूस कर उसी समय अगर समाप्त किया जाता है तो फिर उसके गलत परिणामों को, नतीजों को भुगतना नहीं पड़ता।
0: बिल्कुल, देखिए अपना रेडियो मधुबन का जो कार्यक्रम है, अमृत धारा कार्यक्रम जो है, वो सुनने वाले श्रोता जो है वो अलग अलग जगह रहने वाले हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले हैं। वहाँ हमारे जो कई बांधव जो है वो रिमोट एरिया में बहुत दूर दूर तक रहने वाले हैं, जहाँ कोई ज्यादा आदमी रहते नहीं है, और परिस्थिति जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, शायद वो गरीब हो सकते हैं, लेकिन व्यसनों के पीछे व्यसनों ने उनको पकड़ लिया होता। कभी कभी क्या होता है, या व्यसनों के बारे में अगर ये शूर्पणखा और व्यसन उसका मैं कंपेयर करूं तो मुझे ये लगता है कि शूर्पणखा का रूप है वो व्यसनों के आकर्षण है। कोई बच्चा है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, और उसका कोई दोस्त है, वो उसको अगर कोई व्यसन, जो तंबाकू कहो, बीड़ी कहो, शराब कहो, कुछ भी लेके आता है, और अगर उसके ऊपर दया मन में उत्पन्न हो गई और उसने उसको सहारा दे दिया तो क्या होगा, नुकसान उसका ही होगा। और वो उस समय लक्ष्मण बन के अगर उसको काट देता है, वहां का वहां काट देता है, तो उसका फायदा होगा। तो ये कथा जो है, मेरा नम्र निवेदन है, अलग तरीके से देखिए, हमारे बंधुओं, हम मेरे जो भाई बहने हैं उनको मैं निवेदन करता हूं कि व्यसनों के लिए ये कथा देखिए, और कोई भी ऐसा बुरा संकल्प आ गया तो वहां ही पूरा उसको खत्म कर दीजिए।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही, और इसीलिए दोस्तों बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है, और इस अच्छाई को अपनाएंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा और ही अच्छा बन जाएगा। अब समय है वाणी को विराम देने का, इसीलिए आपको अच्छा अच्छा कहते हुए ही वाणी को विराम दे रहे हैं, ताकि जिंदगी हमारी और सबकी अच्छी ही अच्छी हो। फिर से मिलते हैं अमृत धारा प्रोग्राम के द्वारा। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार जहां वो रहता है वहां सुख, शांति, आनंद और प्रेम की कामना करता है। यदि परिवार में ये सारी चीजें मौजूद हैं तो परिवार वास्तव में स्वर्ग बन जाता है, और यदि इनका अभाव है, कलह है, क्लेश है, अशांति है, तो वो परिवार जैसे नरक तुल्य हो जाता है, वहां कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि परिवार के सभी सदस्य आपसी समझ बूझ से एक प्रेमपूर्ण वातावरण, एक सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण करें, ताकि परिवार में एक ऐसा माहौल बना रहे जहां सभी लोग बहुत ही आनंद का अनुभव करें और अपना संपूर्ण विकास भी कर सकें। इसी की चर्चा हम पिछली कड़ी में भी कर रहे थे, आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आदरणीय ब्राता जी के साथ। ब्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक्स
0: ब्राता जी। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि संबंधों में कटुता तब आने लगती है जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो हमारे अंदर उपजती है, उसका जवाब हम खुद ब खुद देने लगते हैं। तो जहां संवाद का अभाव हो जाता है, जहां कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वहां कटुता भी बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं दूरी भी बढ़ती चली जाती है।
1: बिल्कुल, अपनी बात क्लियर करना, कुछ बातों को शेयर करना, ये बहुत आवश्यक होती है। कम्युनिकेशन का जहां अभाव रहता है वहां कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और जहां अपनी बात कर ली जाती है, दूसरे की सुन ली जाती है, वहां बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। तो बात हम परिवारों के परिवेश की कर रहे थे, तो ये सच है कि जिस परिवार में बहुत खुशी हो, शांति हो, प्रेम हो, हल्कापन हो, चार चीजें, वो परिवार तो सचमुच स्वर्ग है। और जिन परिवारों में महाभारत ही चलता हो सदा, एक दुर्योधन हो और एक कोई और करण जैसा हो,
0: या सबके चेहरे अलग अलग दिशाओं में हो, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, तो कोई पूर्व, कोई पश्चिम,
1: तो उस परिवार का क्या हाल होगा, तो विनाशक स्थिति है ही। इसलिए इससे तो बचना चाहिए, और मनुष्य जो कि एक बुद्धिमान प्राणी है उसे जरूर सोचना चाहिए कि जीवन की यात्रा को प्रेम पूर्वक व्यतीत किया जाए, अपने स्वार्थों को छोड़कर, अपनी संकीर्ण भावनाओं को छोड़कर, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर इस यात्रा पर चलेंगे। अकेला तो कोई चलेगा नहीं, साथ लेकर सबको चलना ही है, तो कितना सुखद होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आपसी समझ इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है भ्राता जी। कई बार ये होता है कि व्यक्ति अपने अहम के कारण, मैं सही हूं तो मैं क्यों झुकूं, तो ये अहम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूरी पैदा कर देता है।
1: बिल्कुल, ये अहम और इसका भी एक ये स्वरूप, मैं राइट हूं। देखिए, जो बुद्धिमान है वो भी यही सोचेगा, मैं राइट हूँ, और जो कम बुद्धिमान है वो उससे भी ज्यादा सोचेगा, मैं राइट हूँ। पढ़ा लिखा सोचेगा, ये बिना पढ़ा लिखा आदमी ये क्या जाने, और वो सोचेगा इसको बड़ा अहंकार है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसने बहुत डिग्री ले ली इसलिए हमसे अच्छी बात नहीं करता है। तो दोनों में ये मन मुटाव बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें। आज जो परिवारों में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो जो बिल्कुल पास रहते हैं वहां सम्मान का अभाव बहुत हो जाता है
0: जी।
1: कभी कभी प्यार में भी सम्मान का अभाव हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे अपने परिवार में भी, चाहे भाई भाई हो, भाई बहने हो, आपस में भी एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखना, इससे अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और कोई रूठता भी है तो मना ले ब्राता जी। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं कि कोई रूठे अगर तो उसे तुरंत मना लो, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो ये जुदाई हो जाती है और हम हमेशा इसी भावना में रहते हैं कि पता नहीं फिर से कब मिलाप होगा, और वो मिलाप कभी हो नहीं पाता।
1: एक को तो झुकना पड़ेगा
0: जी।
1: देखिए, जैसे बच्चे रूठ जाते हैं, हालांकि माँ बड़ी होती है, लेकिन फिर भी माँ ही मनाती है ना बच्चों को भी, हाल तो बड़ों को झुकना ही पड़ता है। तो आजकल के परिवेश में ये आवश्यक हो गया कि बड़े छोटों को सम्मान दें, बड़े छोटों को अंडरस्टैंड करें, छोटों से ये कामना ना करें कि वो हमें सम्मान देंगे या हमें ठीक से समझेंगे। तो बड़े पहले झुकें, बड़े आगे आए तो छोटे भी कुछ ना कुछ।
0: वैसे भी कहा है किसी कवि ने कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। यदि छोटन उत्पात कर रहे हैं तो बड़े बड़े बन के, यदि थोड़ा सा क्षमा भावना अपनाए तो परिवार की खुशहाली
1: और हर एक को ये समझ ही लेना चाहिए, विशेष मातृ शक्ति को, कि हमें अपने परिवार को मंदिर जैसा बनाना है जिसमें शांति हो, जिसमें प्रेम हो, खुशहाली हो, जहाँ सब ऐसे रहें जिनके विचार बहुत सुंदर हों, और परिवार में जितने सबके विचार सुंदर होंगे वहाँ का वातावरण एनर्जेटिक होगा, चार्ज्ड वातावरण होगा, और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, न वहाँ समस्याएं आएंगी न वहाँ बीमारियां आएंगी, और अगर बीमारियां आ भी गई तो बहुत जल्दी समाधान मिलेगा।
0: तो परिवार के बहुत सारे मेल हमारे पास आए हैं, इनमें एक मुंबई की हमारी बहन लिखती हैं कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी शादी को 7 साल हो गए, पति ने धोखा दिया और वो छोड़कर चला गया, कोर्ट में केस चल रहा है जिससे मैं बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ, बच्चे पर भी गुस्से में हाथ उठा देती हूँ, मुझे बहुत रोना भी आता है, 2 बार मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, 2 साल से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में हूँ जिससे मुझे थोड़ा संबल मिला है, मैं पूरी तरह अपने पास्ट को भूलना चाहती हूँ और अपनी इन कमजोरियों से मुक्त होना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ?
1: देखिए बात तो बहुत बुरी हुई कि पति और पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो गया
0: जी,
1: संबंधों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही या दोनों का ईगो टकराया होगा, मैं दोनों डॉक्टर होंगे, ये स्किन स्पेशलिस्ट है वो भी कुछ होगा, तो दोनों का ईगो भी टकराया होगा, और संभव है कुछ और भी कारण रहे हों, पति का कहीं और लगाव हो उसके कारण भी डाइवोर्स हो गया हो
0: जी।
1: तो कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन इनको अब अपनी मनोस्थिति नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मनोस्थिति बिगड़ेगी तो परिस्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। अब चलो डाइवोर्स का केस चल रहा है और ये जो चाहेंगी वो भी हो सकता है, ये डाइवोर्स चाहेंगी, साथ रहने में तो इनको मजा आएगा भी नहीं कि न जाने क्या कारण है, वो तो इन्होंने बताया नहीं, लेकिन अगर ये साथ रहना चाहती हैं तो उसका भी हल हो जाएगा, अगर ये सेपरेट होना चाहती हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि ये अपनी मनोस्थिति को बिगाड़े नहीं। जीवन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सुसाइड कर लेना ये कोई समस्याओं का हल नहीं है,
0: दो बार ये कोशिश कर चुके हैं,
1: ये मनुष्य सोचता है कि मर जाएं तो शायद उसे भी अकल आ जाएगी, कई लोग सुसाइड इसलिए कर लेते हैं दूसरों
0: अकल भी आ जाएगा, दूसरा हम अपनी इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, ये सोचते हैं,
1: लेकिन ये सबको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस तरह मरने के बाद समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, अनेक केसेस में तो आत्मा भटक ही जाती है और जब उसे पुनर्जन्म मिलेगा तो अब से 10 गुनी समस्याएं उसके सामने होंगी, बचपन से ही होंगी, इसलिए ये मार्ग तो बिल्कुल गलत मार्ग है, नरक में ले जाने वाला मार्ग है, यात्रा को जटिल करने वाला मार्ग है, इसका संकल्प तो इन्हें अभी त्याग कर देना चाहिए, और जब ये 2 वर्ष से राजयोग के कॉन्टेक्ट में आई है तो इन्हें थोड़ा सा समय निकाल कर फिर से राजयोग का अच्छा अभ्यास करना चाहिए, और ये जो इनकी मनोस्थिति है, जो इनमें अवगुण आ गए, बहुत क्रोध आता है, नेचुरली इसके क्रोध बिना कारण नहीं है, ऐसे में मनुष्य को क्रोध आएगा ही क्योंकि वो अपसेट रहता है, जब ये प्रैक्टिस में जाएगी तो ये पेशेंट को भी क्या देखेगी क्योंकि खुद टेंशन में है, अपसेट रहती है, तो इसकी बुद्धि ठीक से डिसाइड नहीं करेगी कि दवाई क्या दी जाए, इसका डायग्नोसिस बहुत प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए इसको अपने चित्त को शांत करना चाहिए और अब राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करके अपने क्रोध को भी जीतना चाहिए, और देखिए इस समस्या से भी ये निजात पा सकती है, उसका स्पिरिचुअल तरीका अगर ये अपनाए, थोड़ा अच्छा सा राजयोग सीखे जाकर ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करे, 1 घंटा रोज ये दे उसके लिए, बस ज्यादा समय नहीं, तो इसके अपने मन में शांति आएगी, प्रेम प्रकट होगा, इसकी अपनी प्योरिटी बढ़ेगी, इसके अपने एटीट्यूड्स बदलेंगे, और देखिए ऐसे में क्या होता है, ये जरूर अपने पति को दोषी मान रही होगी, उसने मेरे से ऐसा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य के अपने एटीट्यूड्स, उसका ईगो, उसके अपने कर्म, उसका व्यवहार भी इसके जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की उंगली दूसरों की ओर होती है ना, अपने को प्रोटेक्ट करता है मनुष्य, दूसरे की ओर उंगली करता है, और जिस क्षण ये उंगली अपनी ओर हो जाती है उस क्षण से मनुष्य का कल्याण होना शुरू हो जाता है।
0: वैसे भी हम कहते हैं कि जब एक उंगली दूसरे की ओर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर होती हैं,
1: तो हम अपनी कमियों को देखेंगे, देखिए बड़ी सुंदर साइकोलॉजी है, ये अपनी कमियों को महसूस करे तो इसका पति अपनी कमियों को महसूस कर लेगा और इनमें कहीं ना कहीं समझौता हो सकता है, ये झुकने लगे उसमें भी झुकने के संकल्प आएंगे, तो परिवर्तन होगा ईश्वरीय ज्ञान से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं इनको बताना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा योग सिखाई है, सवेरे जब ये उठे तो थोड़ा अच्छा मेडिटेशन इनको करना, आधा पौना घंटा जरूर, ये समझे कि मुझे अपने को चार्ज करना है रोज सवेरे, और इस समस्या को भी समाधान करना है। दो तरह से इसका समाधान संभव है, या तो दोनों आपस में बहुत प्यार से रहने लगे, डाइवोर्स आदि का केस वापस हो जाए, और अलग रहे तो ये अपना सुखी जीवन व्यतीत करे। इसको बच्चा है और इसकी अपनी अच्छी प्रैक्टिस है, ये अपना पवित्र जीवन व्यतीत करे, ये भगवान के काम आए, भगवान को अपना साथी बना ले। राजयोग में यही सबसे बड़ा फायदा है कि परमात्मा हमारा साथी बन जाता है, ये हमें महसूस होने लगता है। तो जिसका साथी भगवान हो जाए उसे फिर ये अकेलापन महसूस नहीं होता, नहीं तो किसी पत्नी को पति के बिना, सदा ही पत्नी के पति के बिना रहना है तो मन उदास भी होगा, निराश भी होगा, अकेला
0: और जीवन इतनी लंबी है तो भारीपन आ जाए।
1: लेकिन राजयोग में ये फायदा है कि भगवान के साथ का अनुभव होने लगता है, और उसके साथ का अनुभव माना चित्त आनंद से भरपूर होने लगता है, एक अलौकिक खुशी जीवन में आने लगती है, अतीन्द्रिय सुख से आत्मा भरपूर होने लगती है, तो अनेक अभाव समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को अपना जीवन खुद ही अच्छा लगने लगता है। इसलिए राजयोग की यात्रा पर तो इन्हें बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ना ही है
0: जी।
1: लेकिन सवेरे उठकर अपने पति को गुड वाइब्रेशंस इन्हें देने हैं और अपने स्वमान को जगाना है। स्वमान से एक बड़ा फायदा ये होता है कि मनुष्य का अभिमान नष्ट होता है। तो जैसे ये स्वमान का अभ्यास करेगी, मैं भगवान की संतान, मैं बहुत महान हूं, मैं प्यार की सागर भगवान की संतान, मुझे तो सबको प्यार देना है, अपने पति के लिए भी प्यार की फीलिंग्स ले आए, क्या कि वो मेरा पति, आखिर हम दोनों की मैरिज हुई है, प्यार की फीलिंग, हम दोनों में बहुत प्यार है, मैं शांति के सागर भगवान की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मेरी शांति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ। इस स्वमान का अभ्यास करने से इनका ईगो नष्ट होता रहेगा, स्वमान से अभिमान नष्ट होता है, और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं, इनका ईगो नष्ट होगा तो दूसरे का भी ईगो नष्ट होगा, और आपस में समीपता आएगी, संबंधों में मधुरता आएगी। एक तो काम ये करना है
0: जी।
1: दूसरा, जैसे मैंने कहा, अपने पति को गुड वाइब्रेशंस देने, आधा घंटा मेडिटेशन करें और फिर अभ्यास करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जैसे उसकी किरणें मुझे आ रही हैं थोड़ी देर, और फिर मुझ आत्मा से उस आत्मा को।
0: लेकिन भ्राता जी, जैसे एक बात इन्होंने कही है कि मैं अपने पास्ट को पूरी तरह भूलना चाहती हूँ, तो कहीं वो अपने पति को इमर्ज करती हैं, सामने देखती हैं, तो कहीं वही फिर पास्ट की बातें यदि आने लगे और ये डिस्टर्ब हो, कहीं ऐसा तो नहीं?
1: हाँ नहीं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और स्वमान की प्रैक्टिस ऐसी है कि इसे वो चीजें भूलने लगेगी, क्योंकि सद्भावनाएं हो गई, आत्मिक दृष्टि हो गई। तो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिटी में सिद्धांत है कि जब मनुष्य श्रेष्ठ स्मृतियों में रहता है तो पास्ट की बुरी स्मृतियां लोप होने लगती हैं। तो जितना जितना नए विचार इनके अंदर आएंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होंगे, तो पुरानी बातें, उसने कभी कड़वा बोला हो, उसने कभी इनको दुख दिया हो, सताया हो, इनकी भावनाओं को हर्ट किया हो, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो, वो इनको हल्की लगने लगेगी। ये तो कुछ भी नहीं थी, मैं केवल ज्यादा सोच रही हूँ इसलिए हर बात मुझे बड़ी लग रही है, इट वाज नथिंग, ऐसा इनको लगने लगेगा और ये भूलने लगे।
0: क्योंकि प्रताप जी, जब तक, जैसे आपने कहा कि कुछ अच्छे अभ्यास नहीं करते, कुछ अच्छी स्मृतियां में नहीं होती हमारे पास, तो जो पास्ट में घटित हुई हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसने हमारे पूरे जीवन को बदल दिया है, वो चीजें बार बार आती रहती हैं और वो चीजें परेशान भी करती हैं, और साथ ही साथ हम उन्हें क्षमा भी नहीं कर पाते जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है।
1: बिल्कुल यही बात के देखिए, सूक्ष्म साइकोलॉजी पे ध्यान दें, पास्ट की जिन बातों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं वो तो हमें कभी नहीं भूलेंगी, और जिन बातों को हम हल्का कर दें, लाइटली ले लेंगे, कुछ नहीं, ये तो होता रहता है जीवन में, वो तेजी से भूलती जाएंगी। तो हम महत्व न दें उन बातों को, जो कुछ हो गया है बस हो गया, जीवन सुंदर चीज है, आगे बढ़ो।
0: फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कई बार, ये संकल्प भी कि सबका जीवन कितना अच्छा हो सकता है, कि इनकी सहेलियां हो जिनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन जब वो देखती हो कि मेरी ऐसी स्थिति हो गई है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और कई बार भगवान के लिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों,
1: बिल्कुल सारा गुस्सा फिर भगवान पे उतरता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे सुख दिया, उसे सुख दिया, उनका फैमिली लाइफ कितना सुंदर है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारे क्या नुकसान किया था। तो भगवान को गाली देने लगते हैं लोग, लेकिन इसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं है। हर मनुष्य ने जो कुछ किया है उसका फल ही उसके सामने आ रहा है। अब अच्छे कर्म करेंगी, पुण्य कर्म करेंगी, तो इस दुविधा से ये पार हो जाएंगी। बस यही जरूरी है कि अपने पति को भी ये क्षमादान कर दें, लेकिन ये भी तब होगा जब इनका स्वमान बहुत ऊपर उठेगा, नहीं तो ये सोचती होंगी वो मेरे से क्षमा मांगे, ये उल्टी बात हो जाती है। लेकिन ये उन्हें क्षमा कर देंगी तो वो भी इनके पास क्षमा मांगने आ जाएंगे। ये सूक्ष्म साइकोलॉजी इस तरह काम करेगी और तभी इनका जो आगे का जीवन है वो सुंदर हो सकता है।
0: बिल्कुल, चलिए हम दुआ करेंगे। भ्राता जी मुंबई से, हमारी बहन ने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी है ये पुनः सुसाइड अटेम्प्ट ना करें, दो बार तो कर चुकी हैं, लेकिन अब चूंकि इन्हें परमात्मा ज्ञान मिला है तो अच्छे से अपने आप को, जैसे आपने कहा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें तो सहज हो जाएगा इनका जीवन, सरल हो जाएगा और आनंदित हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। ये भी हमारे पास मुंबई से आया है और ये कहती हैं, आई एम अ हाउसवाइफ एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड। माई हस्बैंड कॉन्स्टेंटली फाइट्स विद मी एंड थ्रेटन्स मी टू लीव द हाउस एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली शाउट्स एट माई चिल्ड्रेन। As a result of all, I and my children have started feeling depressed all the time. Also, we have started having hatred towards him, due to which we want him to always stay away from the house. This is having huge negative impact on me and my children, due to which they are not able to study and have no friends. I have also been cut off from everyone. Please guide us to improve our situation and please give a solution to our problem. ये भी मुंबई से हमारे पास आया है।
1: ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक बड़ी समस्या इस तरह पैदा हो गई है
0: जी,
1: कि एक व्यक्ति का व्यवहार पूरे परिवार को अशांति में डाल रहा है, टेंशन में रख रहा है, और इससे इनकी जो योग्यताएं हैं वो भी दबती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही
0: है। बच्चे भी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये भी कट ऑफ हो गई है।
1: घर में प्रेम का और खुशी का माहौल जब नहीं होता, एक प्रेशर का माहौल जिस परिवार में होता है, तो बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। निश्चित रूप से ये बीमार रहती होगी और इसकी बीमारियां बढ़ेंगी ही, क्योंकि जब मानसिक अशांति मनुष्य को बहुत होती है और ऐसा व्यवहार भी पति की तरफ से हो जो सबसे समीप का नाता है, तो बीमारियां बहुत बढ़ती हैं और मनुष्य को खुशी भी नहीं रहती और कई तरह के नेगेटिव विचार उसके अंदर आते हैं। और सबसे बुरी चीज ये है, माँ ये देख देख कर बहुत दुखी होती है कि उसके बच्चों का क्या होगा,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे, बाप तो उनकी केयर करता नहीं, फिर प्रेशर माँ पर,
0: फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट है तो ये और कुछ
1: कर भी नहीं सकती, कर नहीं सकती है कुछ, क्योंकि कुछ बोलेंगी तो वो सब कुछ बंद कर देगा। इसमें भी इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी। इनका समाधान यही है कि ये ईश्वरीय ज्ञान लें, ये अपने विचारों को चेंज करें, ये अपने वाइब्रेशंस को चेंज करें और ऐसा पावरफुल राजयोग का अभ्यास करें कि इनके पास्ट के जो विकर्म हैं वो नष्ट हो जाएं, और उस आत्मा से जो कटुता का संबंध इनका है किसी भी कारण से, पूर्व जन्मों के कारण, वो ठीक हो जाए। तो एक सिद्धांत इसमें याद रखना होगा इनको कि जब मनुष्य की मनोस्थिति श्रेष्ठ हो जाती है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। इनकी जो मनोस्थिति श्रेष्ठ होगी, इनसे जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे वो जाएंगे इनके पति को
0: जी।
1: अब ये अपने पति के बारे में निरंतर निगेटिव सोच रही हैं तो इनसे निगेटिव वाइब्रेशंस पति को जा रहे हैं, तो दूरी बढ़ती जा रही है, पति में क्रोध बढ़ता होगा, ईगो बढ़ता जा रहा होगा, इनको कष्ट देने की इच्छा बढ़ती जा रही है। ये मनुष्य के साथ होता है और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो लगे हुए जरूर होंगे आजकल, जो ये संबंधों में एक बहुत दूषित पन आ गया है, तो मनुष्य कहीं और जुड़ा रहता है, उसका प्यार कहीं और रहता है, तो अपनी पत्नी और बच्चों पर वो ध्यान नहीं देता, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब इनको ये ध्यान देना है कि मुझसे निगेटिव एनर्जी पति को न जाए, नहीं तो उसमें गिरावट आएगी, भावनाओं में गिरावट आएगी, एटीट्यूड्स में गिरावट आएगी और ये दूरी बढ़ती जाएंगी। अब इसका समाधान यही है कि इनसे पॉजिटिव प्योर एनर्जी, लवफुल एनर्जी पति की ओर जाए
0: जी।
1: और इसके लिए इन्हें थोड़ा राजयोग का अभ्यास करना ही होगा, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना होगा और इस सिचुएशन को स्वीकार कर लें। ये देखिए, इन्हें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में मैंने भी, हो सकता है मैं पति रहा हूं और ये पत्नी रही हो मेरी, और मैंने भी इनसे यही व्यवहार किया हो, और अब उनका टर्न है, वो मेरे से व्यवहार कर रहे हैं। तो इस कर्मों के बुरे खाते को नष्ट करने के लिए योग की अग्नि इन्हें प्रज्वलित करनी ही पड़ेगी।
0: जी जी जी, तो योग करके विशेष करके ये ठीक कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। प्रता जी, कई बार ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि लगातार सामने वाले व्यक्ति की तरफ से दुर्भावना, बुरा व्यवहार, जैसे इन्होंने कहा कि एक लड़ाई भी होती रहती है, वो हमें डराते धमकाते रहते हैं, तो ऐसे में एक अच्छी फीलिंग लाना, जैसे आपने कहा कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती लगती है।
1: बिल्कुल, चुनौती बड़ी नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। जहां निरंतर कोई मनुष्य आउटिंग कर रहा हो, बुरे वचन बोल रहा हो, बिल्कुल भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए गुड वाइब्रेशंस देना, शुभ भावनाएं देना, बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है कि यह असंभव है, लेकिन जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा केंद्र पर जाएगी, वहाँ बहुत सारे लोग इसको मिलेंगे, तो इसके एटीट्यूड्स थोड़े ऊपर उठ जाएंगे और इसका जो लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल, वो भी ऊंचा चला जाएगा। तो ये अपने पति के उस व्यवहार को लाइटली लेने लगेगी। ये संसार एक सुंदर ड्रामा है, इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, इसे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसलिए वो पति अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन मुझे अपना पार्ट बजाना है। वो निगेटिविटी दे रहा है, मुझे पॉजिटिविटी देनी है। तो डेली वहां ईश्वरीय ज्ञान सुनते सुनते इनके विचारों में महानता आएगी और तब ये उन्हें गुड विशेष ब्लेसिंग दे सकेंगे।
0: मतलब एक प्रकार का सिद्धांत मतलब ये हो गया कि मैं स्व परिवर्तन से जैसे सामने वाले व्यक्ति का परिवर्तन करूं, जितने अच्छे वाइब्रेशन मेरे होंगे सामने वाले व्यक्ति में उतना ही जल्दी परिवर्तन
1: होगा। इनको अपने चारों ओर एक पावरफुल ओरा क्रिएट करना ही पड़ेगा
0: जी,
1: ताकि इनके वाइब्रेशंस उनको जाएं, उनके इनको ना आए, इनके ओरा से वो वाइब्रेशंस टकरा के समाप्त हो जाएं, ऐसा पावरफुल एक प्रभा मंडल इन्हें अपने चारों ओर बनाना ही पड़ेगा। बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां निरंतर कटु वचनों की बौछार होती हो, वहां मनुष्य सब कुछ नहीं कर पा, वहां तो सोचता है अलग हो जाऊं या इसको मार डालूं, उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने को शांत रखना, अनइफेक्टेड रखना उन बातों से, ये संभव है। और तब हम देने वाले बन सकते हैं, हमारा फ्लो दूसरों को जाएगा। ऐसे कई केस देखे गए हैं, तो जो व्यक्ति हमेशा दबाव में है, जब उसने अपने को ऊंचा उठा लिया तो उसके वाइब्रेशंस दूसरे को जाने लगे और आखिरकार दूसरे व्यक्ति ने महसूस किया कि मैं गलत हूँ।
0: बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं भ्राता जी कि ये भी जो हमारी बहन है मुंबई से, ये भी इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करके अपने आप को ऐसी स्थिति तक लाएं ताकि समाधान हो सके और जल्दी से जल्दी घर की परिस्थितियां बदल सकें। भ्राता जी, बच्चों की बात जो इन्होंने लिखी है, विशेष जानना चाहूंगा, बच्चों के लिए इनका भी क्या दायित्व बनता है? ठीक है, ये एक चिंता तो करती ही है, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से, तो माँ किस प्रकार हैंडल करे बच्चों को ताकि बच्चों पे कम से कम प्रभाव हो और वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पाए?
1: देखिए, इन्हें पहले यही करना होगा कि पति का जो व्यवहार है
0: जी,
1: उसका जो प्रभाव इनके ऊपर निरंतर छाया रहता है, इससे इनको बाहर रहना पड़ेगा
0: जी।
1: ये निश्चित रूप से बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं और उसके हर बोल इनके अंदर चला जाता है, उसका प्रभाव सीधा बच्चों पे आता है। अगर ये बच्चों का कल्याण करना चाहती हैं तो पति की बात को इन्हें लाइटली लेना होगा, मुस्कुरा के पूरा कर देना होगा, और बच्चों के लिए जो इनका कर्तव्य है, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना, उन्हें होमवर्क कराना, उन्हें एनकरेज करना, उन्हें अच्छा भोजन खिलाना, ये कर्तव्य इन्हें अवश्य करना होगा, नहीं तो दोनों की लड़ाई का प्रभाव भुगतना पड़ेगा बच्चों को।
0: बिल्कुल प्रता जी, एक फोन कॉल भी हमारे पास था, इसमें भी लगभग इनकी ऐसी समस्या है कि मैं गृहिणी हूँ, जूनागढ़ से हमारे पास फोन कॉल था, 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को, मेरी एक बेटी भी है, पति बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहते हैं, साल में 1 मास के लिए ही आते हैं, वो मेरा और बेटी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, रिस्पेक्ट नहीं देते। हम किस हालत में हैं इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं रहती। उन पर अपने परिवार का ज्यादा प्रभाव है, वो उन्हीं की मानते हैं। वो हमारा ध्यान नहीं रखते, हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, इसलिए उनका परिवार भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देता, हमारा ध्यान नहीं रखता। अपने पति के इस व्यवहार को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए?
1: ये भी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि उस व्यक्ति का ध्यान पूरा अपने दूसरे परिवार की ओर है। उसे समझना ही चाहिए कि मेरा पहला परिवार तो ये है, पत्नी और बच्चे,
0: मतलब ये अपनी माता पिता भैया भाभी आदि पे ध्यान दे रहे हैं,
1: इन पे ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, है तो ये भी कर्मों का ही खेल, परंतु इसे बदला जा सकता है। एक सिचुएशन है कि पति की मेंटेलिटी को बदल देंगे, दूसरी सिचुएशन है मान लो वो नहीं बदलता, उसका ध्यान उधर ही ज्यादा रहता है, तो ये अपनी स्थिति को बदल दें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि वो ध्यान तो नहीं दे रहा पर कम से कम इन्हें पे आर्थिक मदद तो करता ही रहता है। तो इसमें भी इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करेगी, इन्हें सीख लेना चाहिए। अब ये यहाँ हैं, पति वहाँ रहता है, तो इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज अवश्य इकट्ठी कर लेनी चाहिए। डेली 1 घंटा सेवा केंद्र पर जाकर संपूर्ण ज्ञान ले लेना चाहिए, तब ये अपने पार्ट को एंजॉय कर सकेंगी, अपने बच्चे के लिए भी जो इसके कर्तव्य है उनको भी ये पूर्ण कर सकेंगी। लेकिन इन्हें भी रोज सवेरे एक टाइम फिक्स करके अपने पति को कुछ अच्छे वाइब्रेशंस और कुछ अच्छे थॉट्स देने चाहिए
0: जी।
1: ये एक बहुत सुंदर सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस है कि 5 बजे या ऐसा टाइम ये निश्चित करें जब वो व्यक्ति सोया हो, क्योंकि वहां के टाइम में और यहाँ के टाइम में अंतर होगा। जब वहां 5 बजे हो, जब वो सोया हो, यहाँ दिन का कुछ भी वजह हो, तब ये 10-15 मिनट तो उन्हें गुड वाइब्रेशंस दे राजयोग के द्वारा, और फिर माइंड टू माइंड उनसे बात करें, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, हम भी तो तुम्हारे साथी हैं, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे लिए भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें भी हमें बहुत प्यार करना चाहिए, ऐसे ऐसे गुड थॉट्स दें। ये तुम्हारा बच्चा भी तो है, इसके लिए भी तुम्हारे बहुत अच्छे कर्तव्य हैं, वो भी तुम्हें पूर्ण करने हैं। तो ये थॉट्स जब रोज उन्हें देंगे सेम टाइम, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करता जाएगा, और जब वो उठेंगे तो उनमें जागृति आएगी, और निश्चित रूप से 7 दिन अगर लगातार किया जाए बहुत पावरफुल रूप से, तो उनके विचारों में चेंज आएगी। जो विचार इधर से भेजे जा रहे हैं वही विचार वो करेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है जी। आज आपने बहुत सुंदर, कुछ पारिवारिक समस्याएं थी हमारी बहनों की, उनका बहुत सुंदर समाधान दिया है। आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि इनकी ये समस्या जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में परिवार तो खुशहाली के लिए ही बसाया जाता है, लेकिन यदि दुर्भाग्य से वहां किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी हो जाती है, किसी प्रकार की अशांति आ जाती है, समस्या आ जाती है, घबराए नहीं, उससे उसे दूर किया जा सकता है। जैसे भ्राता जी ने आज बहुत सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास बताए हैं, और मैंने उनसे एक बात पूछी भी अवश्य कि कितने दिन में ये दूर हो सकता है। यदि हम राजयोग का बहुत गहन अभ्यास करें तो निश्चित रूप से जल्दी हम अपने इन तमाम समस्याओं से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि निराश ना हो, अपने संबंधों में वैसी ही खुशहाली लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखें, अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को न बिगड़ने दें, तो परिवार का माहौल जैसे पहले था वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपका सबके साथ हैं कि आपके परिवार में ऐसी ही खुशहाली हमेशा बनी रहे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

सावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्।

0: वर्षन्तु काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथिवी शशशालिनी देशोभ्यं क्षुभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
1: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर। मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं। माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम। एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कभी आप ये मत सोचिए, कभी आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हैं। रेडियो 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। सुबह हो चुकी है, बहुत ही सुनहरी सी, बहुत ही अलबेली सी, और प्रकृति की छटा के बीच हम सभी आज आबू को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आबू निवासियों को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, पूरे दुनिया को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, दुनिया में समय तो अलग अलग होता है, टाइम जोन्स अलग अलग ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। कौन सी होती है, क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो हमें ज़रूर कॉल करके बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में कॉमन होती हैं। टाइम जोन तो अलग अलग है, आपका उठने का समय, सोने का समय, काम करने का सलीका, कपड़े पहनने का सलीका, फेस्टिवल्स, सब कुछ अलग अलग है, तो कॉमन क्या होता है? अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइए हमारे नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। वैसे जब मैंने मैसेज पढ़ा, जब मैंने ये कोटेशन पढ़ी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सच में कई बार एक छोटा सा पर्सपेक्टिव बदल जाए, देखने का तरीका बदल जाए, तो सब कुछ बदल जाता है, लिटरली सब कुछ बदल जाता है। एक बहुत सुंदर सी पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी कि एक ऊपर वही बच्चा और नीचे भी वही बच्चा ऐसा बना हुआ था, कार्टून जैसा उन्होंने क्रिएट किया हुआ था एक कैरेक्टर, और सेम सेंटेंस में वो अलग अलग फील कर रहा था। मतलब एक सेंटेंस था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें दिखा रहे थे कि वो परेशान है एकदम, उसका सर नीचे है, हाथ सर के ऊपर है, बहुत दुखी है, और नीचे वही बच्चा और सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो दोनों हाथ खोले खुश था और पेड़ों पौधों को निहार रहा था कि कुछ नहीं कर सकता, मतलब कुछ नहीं कर रहा, तो मतलब वो फ्रीडम फील हो रही है और कहीं कहीं वही दुख फील हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखने का तरीका बदल जाए तो मैजिक हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी हमें वही चीज जो एक चैलेंज लगती है, वही एक अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, वही एक ब्लेसिंग लगने लगती है। कई बार हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर ये भी मैं सोचूं कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, मतलब उनको सोचने दीजिए, जो सोच रहे हैं वो, क्या फर्क पड़ता है आपको। अगर ये सोच लिया जाए तो और तरीका और जिंदगी का जीने का सलीका भी बदल जाता है। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सोसाइटी की केयर नहीं करना, समाज को समझना नहीं, क्योंकि हम एक इंसान है, इंसान सामाजिक प्राणी है। लेकिन हाँ, कोई अगर आपके बारे में नकारात्मक बोलता है, कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो सच में अगर वो कुछ आपके बारे में गलत बोल भी रहे हैं, कुछ उनके शब्द आपके लिए अच्छे हैं भी नहीं, तो भी क्या जीवन में हम सबको खुश कर सकते हैं, हर एक इंसान को खुश कर सकते हैं, संभव है क्या? सोचिएगा, तब तक हम सुनाते हैं आपको अगला गीत। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, तारीख है आज 23 मई 2026। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे, लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है, बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट। नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माई गॉड इट वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा, एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, अब बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी, एंड इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी से आप नीचे उतरते हो, तब आप जर्क फील करते हो। तो वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय दिस स्पिरिचुअल जर्नी, and that is what is very, very important.

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। और दोस्तों वक्त हो गया है मौसम की जानकारी का। वैसे तो हम सभी जानते हैं भाई गर्मी से परेशान है, कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है कई सालों की अपेक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी रहती है कि शायद एक ठंडा हवा का झोंका आए और गर्मी से थोड़ी सी राहत दिला दे। तो चलिए जानते हैं कि आज कुछ राहत मिलने वाली है या नहीं। सबसे पहले बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। अधिकांश दिन में धूप खिली रहेगी, रात को आकाश साफ नजर आएगा। झीलों की नगरी उदयपुर में आज अधिकतम तापमान रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। दिन बहुत ही गर्म होने वाला है, रात को आकाश साफ रहेगा। बात करें आबू रोड की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और आज भरपूर धूप खिली रहेगी। माउंट आबू में आज अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस, भरपूर धूप मिलेगी माउंट आबू निवासियों को भी। पाली की बात करें तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, तेज हवा चलने की संभावना है आज पाली में। जोधपुर में आज अधिकतम तापमान रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, तेज हवा चलने की संभावना यहां भी बनी हुई है। बात करें मेहसाना की, तो आज अधिकतम तापमान रहेगा 46 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्म दिन होने की आशंका है आज। अहमदाबाद में आज अधिकतम तापमान रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस, धुंधला सूरज नजर आएगा। तो ये थे मौसम के हाल, कहीं कहीं थोड़ी सी राहत मिली है, 2-4 डिग्री का अंतर भी पड़ा है, लेकिन कहीं कहीं गर्मी और बढ़ गई है। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें, जैसे जैसे मौसम थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम की ओर जाता है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ वहाँ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।

और कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ घरेलू चीज़ें हैं, तो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो भाई आप पहले से जिनका ध्यान रखें तो बाद में नहीं रखना पड़ता। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी पहले से अगर हम सावधानी रखते हैं तो बाद में इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, इलाज से बेहतर सावधानी होती है। तो आशा करते हैं इस गर्मी में आप स्वस्थ रहेंगे, भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें, लिक्विड पीते रहें, अपने कहते हैं ना बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं हमारे मन से जुड़ी होती हैं कई, और कई हमारे पेट से भी जुड़ी होती हैं, तो अगर पेट का ख्याल रखेंगे तो पूरे स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, लौट कर आएंगे। रेडियो मधुबन पर जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं। अहम कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। और दोस्तों आज है विश्व कछुआ दिवस। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में कछुओं की घटती संख्या को देखते हुए लोगों में इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाने लगा है। 23 मई को पूरा विश्व मिलकर इस दिन को मनाता है। कछुआ एक ऐसा जानवर है जिसे कई सारे लोग शुभ मानते हैं और उनकी कई प्रजातियों को घर पर भी रखा जा सकता है। सन 2000 में विश्व कछुआ दिवस का आयोजन होने लगा था। कछुओं की विभिन्न प्रजातियों को बचाने के लिए अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन ने इसकी स्थापना की थी। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में कछुओं का संरक्षण था। पिछले कुछ सालों में कछुए दिखना ही बंद हो गए थे। कछुओं की समुद्री प्रजाति लॉकडाउन में आराम से समुद्र किनारे रह पा रही थी। गर्मियों में समुद्री तटों पर इतनी भीड़भाड़ होती थी कि कछुए डर के कारण बाहर नहीं आ पाते थे। कहा जाता है कि कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक है। कछुआ पृथ्वी पर सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। तो दोस्तों आज है विश्व कछुआ दिवस। वैसे बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सबको सुनाई जाती है और कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी कि खरगोश और कछुए की रेस लगी तो सबको लगा मतलब जीत तो बिल्कुल होनी ही खरगोश की है। कछुआ तो इतना धीरे धीरे धीरे धीरे चलता है और इतना फास्ट है। यहाँ पे बनी जो है हमारा वो तो बहुत फास्ट है, खरगोश से तो तेज कौन कछुआ दौड़ सकता है। लेकिन हुआ कि जैसा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके खरगोश थोड़ा सा आराम करने बैठ गया। उसको लगा अरे मैं तो जीती जाऊंगा, ये कछुआ तो रेंगते रेंगते धीरे धीरे कहाँ ही पहुंच पाएगा मुझसे आगे। लेकिन वो इसी अपने खुमार में डूबा रहा कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस उसे हो गया और कछुआ चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और चलते चलते रेस जीत गया। तो ये कहानी आपने भी सुनी होगी दोस्तों, पर ये कहानी हमें सच में ये रिमाइंड कराती है, ये सिखाती भी है कि हो सकता है आज आपको कुछ लोग दिख रहे हों जो जिंदगी में आपसे बेहतर कर रहे हैं या आगे बढ़ गए हैं। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि जिंदगी कोई कंपटीशन या रेस नहीं है जिसमें एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। अगर हम इसे रेस समझते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि हमें जीतने के लिए किसी को हराना पड़ेगा, किसी को नीचे गिराना पड़ेगा, किसी को पीछे करना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी में हर किसी की अपनी जगह है, हर किसी का अपना समय है। कोई आज तो कोई कल अपनी जिंदगी में जीत ही जाता है। इसके लिए किसी को हराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिशन्स या स्पर्धा तभी ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और ये सही भी बात है कि भाई सिलेक्शन होते हैं, वहाँ आपको टॉप में आना होता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मुझे जीतना है और अगर हम ये सोचें कि मुझे बाकियों को हराना है, तो दोनों ही सोच में, दोनों ही इंटेंशन में, दोनों ही कर्म में फर्क पड़ जाता है। एंड स्लो एंड स्टडी मतलब एक एक कदम बढ़ते रहिए, थोड़ा सा और आज आगे खुद को पुश करिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को और हल्का सा तोड़िए, आप आगे बढ़ते जाइए। जीना इसी का नाम है। कभी कभी हम सोचते हैं कुछ बहुत बड़ा करने की और जब हमें ये एहसास होता है कि वो बड़ा हम नहीं कर पाए तो बड़ा दुख होता है, हताशा होती है। लेकिन दोस्तों सच में ये कहानियाँ हमें आज भी एक रियलिटी चेक देती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, जीत आपकी निश्चित है।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले अंतराल की ओर. लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू. रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

रेडियो 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग आबू। और दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद कर रहे हैं जिनकी आज जयंती है। आज यानी 23 मई को पहला नाम है जिसे हम याद कर रहे हैं, वो है अन्नाराम सुदामा जी। अन्नाराम सुदामा जी जो कि राजस्थानी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका जन्म 23 मई 1923 को हुआ था। वे राजस्थानी एवं हिंदी में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य, अन्य विद्याओं में 25 पुस्तकें लिख चुके। इनका साहित्य अन्नाराम सुदामा संग्रह के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित किया गया। अकादमियों और संस्थाओं की ओर से इन्हें 11 पुरस्कार भी मिले। उनकी साहित्य रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गईं। इनकी सबसे प्रमुख रचना रही मेवेरा रुख है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। और दोस्तों, हम आज याद कर रहे हैं महारानी गायत्री देवी जी को भी, जिनका जन्म 23 मई 1919 को हुआ था। वे जयपुर राजघराने की राजमाता थीं। ये दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती। इन्होंने पहली बार वो पहली बार जयपुर की महारानी बनी। इनके पिता महाराजा जितेंद्र नारायण थे, जो कूच बिहार के राजा थे। इनकी माता का नाम इंदिरा राजे था, जो कि वडोदरा की राजकुमारी थी। इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन में लंदन और स्विट्जरलैंड में प्राप्त की थी। उनका रसोई से भी बहुत प्रेम था। वे काफी जिंदा दिल थी और खेलों में भी रुचि रखती थी। दोस्तों, हम आज याद कर रहे हैं प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य जी को भी, जिनका जन्म 23 मई 1918 को हुआ था। ये भारत के उन गिने चुने गणितज्ञों में से एक रहे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व दूरगामी योगदान दिया। वो न सिर्फ एक मशहूर गणितज्ञ थे बल्कि एक शिक्षाविद भी थे। वे चाहते थे और प्रयास करते थे कि गणित बच्चों के लिए रुचिकर और बन जाए। वे मानते थे कि गणित सिखाना शायद कठिन है, मगर गणित सीखना कठिन नहीं, क्योंकि गणित तो हमारी संस्कृति का अंग है। उस दौर में विष्णु वासुदेव नालिकर के साथ कार्य करने वाले शोधार्थियों के समूह की पहचान सापेक्षा केंद्र के रूप में विख्यात हो चुकी। वे भी उनके दिशा निर्देश में इस क्षेत्र में शोध कार्य करना चाहते थे, इसलिए वो BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने विष्णु वासुदेव नालिकर के दिशा निर्देश में सापेक्षता सिद्धांत पर शोध कार्य यानी रिसर्च शुरू किया और वैद्य सॉल्यूशन प्रस्तुत किए। वे एक समर्पित शिक्षक थे और कई उच्च पदों पर भी रहे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को भी हम आज रेडियो मधुबन के मंच पर नमन करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज तो उनको मिलती ही है,
बहुत मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ समाज को कभी नहीं भूलते। खुद आगे बढ़ते हैं लेकिन अकेले नहीं, साथ में समाज को, अपने देश को, अपने गांव को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं कि जो हमने पाया है वो औरों को भी मिले, जो हमें मिला है उससे कोई और भी वंचित ना रहे। चाहे वो गणित सिखाना हो, आर्ट सिखाना हो या कुछ और हो, लेकिन जो महान व्यक्तित्व हुए उन्होंने हमेशा अपने समाज और देश का भी जरूर सोचा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लौट कर आएंगे और आप ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सुन पाएंगे आज के समाचार भी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
2: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
3: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
4: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांची पर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो डोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसके सकल

0: 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर

0: प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी बजे हैं सुबह के 9। 1 मिनट का समय स्वयं को दे।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। भगवान गरीब निवाज है, सच्ची दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उसे पद्मा पदम गुणा रिटर्न मिलता है। कैसे तो विचार जरूर करेंगे और देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे, परंतु कौन से वाले वो तो हम बाद में बताएंगे, आप आशाना सुनिए जान जाएंगे। और जी हाँ, जिस तरह पांच उंगुलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान का नेचर भी अलग अलग होता है, उसे समझने की जरूरत होती है। और आज बनाएंगे आशियाना में गुजराती डिश सुवारी, और तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये भी सस्पेंस रहेगा और पूछने वाली हूँ बहुत ही सुंदर प्रश्न, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई एक पैसा भी सेवा में लगाता है तो उससे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में जरूर मिलता है। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण द्वारिका के राजकुमार। विद्याभ्यास पूरा होने पर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर के राज्य का कारोबार संभाला तो सुदामा की शादी गांव की एक गरीब कन्या से हो गई। सुदामा को अनेक संतानें हुई, एक तो गरीबी और दूसरा बड़ा हुआ परिवार। इससे सुदामा के हालात और भी खराब होते गए। बच्चों और गरीबी की परेशानी से तंग आकर के एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे गुस्से में कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण की महिमा का वर्णन करते थकते नहीं हो। इतना धनवान, इतने बड़े राज्य का मालिक आपका मित्र है तो क्या वह आपको मदद नहीं कर सकता? क्यों नहीं आप उनसे भेंट करते ताकि हमारे हालात कुछ तो सुधरे? पत्नी के जोर देने पर सुदामा कृष्ण से मिलने चल पड़े। लेकिन मित्र को भेंट क्या दे, घर में तो कुछ था ही नहीं। थे तो केवल मुट्ठी भर चावल। उन्हीं को एक पोटली में बांध करके बगल में दबा करके सुदामा द्वारिका पहुंचे। सुदामा के आने की खबर सुन करके श्री कृष्ण आनंद विभोर होकर के उसके स्वागत में प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्हें प्यार से गले लगाया, बड़ी आत्मीयता से अपने दरबार में अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। उनका ये प्यार और सत्कार पाकर के सुदामा तो जैसे गदगद हो गए। लेकिन दरबारी भी कृष्ण को इस रूप में देख करके आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सके। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। संकोच के मारे सुदामा ने जो चावल की पोटली छुपा रखी थी वे कृष्ण ने ले ली। कृष्ण ने बड़ी खुशी से चावल का एक एक दाना खाया। कृष्ण के निरहंकारिता और प्यार देख करके सुदामा तृप्त हो गया और अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया। कृष्ण के पूछने पर भी मुख से अपनी सहायता के बारे में कुछ नहीं कह सका। श्री कृष्ण का अपार प्यार और सत्कार स्वीकार करके सुदामा अपने गांव वापस लौट आया। लेकिन यह क्या, उसका घाव तो पूरी तरह से बदल गया था। वह स्वयं भी धोखे में आ गया कि मैं सही जगह पर तो आया हूं ना। इतने में गांव वालों को और अपने परिवारजनों को रेशमी वस्त्रों में आता देख करके सुदामा मन ही मन समझ गया कि कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दी है। उसका घर महल बन गया था जिसमें पशुधन सहित सर्व सुविधाएं थी। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि भगवान गरीब निवाज है। सच्ची दिल और भावना से कोई थोड़ा भी सेवा अर्थ लगाता है तो उसे पद्मा पद्म गुणा रिटर्न में मिल जाता है। भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। तेज सिर दर्द से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो एप्पल, जिसको सेब कहते हैं, उसको छील करके बारीक काटे, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके सुबह ही सुबह खाली पेट खाइए। अगर सिर दर्द बहुत ही तेज है और अब क्या करें भाई, सिर दर्द के लिए अब इतनी सी तकलीफ के लिए हॉस्पिटल कोई जाते ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेब को धुलाई करिए, छीलिए और बारीक बारीक काटिए, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट खाइए। सिर दर्द आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला नुस्खा हमारी बहनों के लिए। मासिक धर्म में दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ठंडे पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। ऐसे समय में बहुत ही तकलीफ होती है और सबसे ज़्यादा तो पेट दर्द बहुत रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में नींबू साधारण आप नॉर्मल पानी लीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और नॉर्मल पानी में 2-3 नींबू निचोड़ करके पीजिए तो ये पेट दर्द से छुटकारा मिलेगा। अगर अगला नुस्खा आपको सुना रही हूँ कि अगर आप कहीं पर जल गए हैं या फिर तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर जुर्या हो या त्वचा रोग हो, तो कच्चे आलू का रस निकाल करके लगाइए, फायदा ही फायदा मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये नुस्खा है कि भाई कहीं पर जल गए हो, कभी कभी क्या है तेज धूप में जाते तो भी स्किन जलने लगती है, फिर मान लीजिए समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो इन सारी तकलीफों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आलू, कच्चा आलू, उसका रस निकालिए और लगा दीजिए, टोटली आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। ठीक है, आलू तो हमारे घरों में होते ही है, क्योंकि भाई कोई सब्जी मिले ना मिले फटाक से आलू की सब्जी बना देते हैं और बच्चे तो बड़े पसंद करते हैं आलू की सब्जी, तो बस आलू अपने घर में ही होते हैं और नहीं है तो भाई इकट्ठा तो लाते ही है, किल्ला दो किल्ला तो ला करके रख ही देते हैं, तो बस आलू ले आइए, कच्चे आलू का रस निकालिए और अपने जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी झुर्रियाँ है या झुलस गए हैं, आराम से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट नुस्खा है कि अगर आप अपने काले होंठ को गुलाबी करना चाहते हैं तो मक्खन में थोड़ा सा केसर मिला करके रोज लगाइए। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोज लगाने से काले होंठ भी गुलाबी हो जाते हैं, धीरे धीरे होने लगते हैं, थोड़ा सा लंबे समय तक आपको करना है, लेकिन 2-3 महीना करने से ही आप अपने होंठों का चेंज महसूस करेंगे, लगेगा कि अरे कहाँ काले दिखते थे और अब थोड़े से गुलाबी दिखने लगे हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के नुस्खे आपको दिए हैं और चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न ध्यान से सुनना, एक शायरी की तरह बनाया है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है, घर को सजा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो पल आने वाला है, मिठाई मिलके खाएंगे परिवार के।

मनाएंगे। तो कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है? तो ये आज का प्रश्न है। उस त्योहार का नाम आपको बताना है। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अभी तो बढ़ते हैं गीत की ओर, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो हेलो,
3: हाँ आवाज आ रही है?
2: हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है विक्रम जी बहुत बहुत रेडियो मधुबन में। कैसे हो आप?
3: बढ़िया है दीदी, अभी खेती की तैयारी कर रहे हैं गेहूँ बोने की।
2: जी जी जी, क्या बात है। आप पहले भी आपसे बात हुई क्या?
3: हाँ दीदी, पहले भी 3-4 बार बात हुई ना।
2: अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को लग रहा है। चले बहुत अच्छा है, फिर भी बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से बात हो रही है।
3: हाँ
2: तो, और कैसे हो आप, पूरा परिवार ठीक है?
3: हाँ दीदी, वो थोड़ा अपने दो बेटे हैं, मतलब कि एक बड़े वाला बेटे का भी वो डेंगू मलेरिया चल रहा है ना।
2: जी,
3: तो वो डेंगू हो गया, उसको अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका।
2: अच्छा अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, अभी तो मच्छरों के बहुत ही समस्या है और डेंगू चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत ध्यान रखना है। स्वच्छ पानी में भी मच्छर होते हैं, इसलिए पानी को भी ढक के रखना है।
3: हाँ पानी को तो ढका हुआ है, बाकी हमारा कच्चा मकान है थोड़ा।
2: अच्छा,
3: तो उसमें मच्छर ज्यादा आते हैं।
2: जी जी जी जी, तो आप ऐसा करिए ना कि नीम, जो नीम के पत्ते होते ना, उनको थोड़ा सूखा करके जलाइए घर में, उसकी धुनी देंगे ना, तो भी मच्छर भाग जाएंगे, मर जाएंगे और भाग जाएंगे।
3: वो धुआं रहता जब तक दीदी, वो चले जाते फिर वापस आ जाते।
2: वो तो सही है, वो फिर रोज करना पड़ता है। तो नीम का थोड़े से पत्ते तोड़ करके रख दीजिए, सूखते जाए और थोड़े जलाते जाइए। घर में नहीं हो तब आप दरवाजा बंद करके जला दो।
3: हाँ दरवाजा बंद करके,
2: हाँ, ताकि वो मच्छर खत्म हो जाए, उसके बाद आप जाओ अंदर, है ना।
3: हाँ, कहीं मच्छर की अगरबत्ती आती है वो थोड़ा जला देते हैं।
2: हाँ वो कुछ भी ऑल आउट कुछ भी करना ही पड़ेगा। जी जी,
3: हाँ वो तो करना पड़ता है दीदी।
2: जी जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: हाँ दीदी, वो सुदामा के बारे में वो शायद सुना था मैंने।
2: वो आपने विचार सुना था?
3: हाँ, बाबा मतलब गरीब निवास है, तो गरीब बच्चों के लिए आए हैं।
2: जी,
3: तो हम तो है ही गरीब।
2: कोई तो बात नहीं, आप में ज्ञान है, तो जो ज्ञानी आत्मा होते हैं ना, वो गरीब कभी नहीं होते, वो ज्ञान के खजाने से भरपूर रहते हैं।
3: हाँ दीदी, वो तो ज्ञान तो है ही, और दूसरों को भी ज्ञान हम सुनाते हैं, बाकी जो सुनते हैं
2: जी। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि आप गरीब हो? हमको ऐसे संकल्प ही नहीं चलाने हैं, वो क्या है, जो सोचते हैं वही होता है ना। आप पॉजिटिव रहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत धनवान हूँ।
3: हाँ
2: जी, तो देखिए आपको कोई कमी नहीं रहेगी। हमको क्या चाहिए खाने को, वो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, है कि नहीं?
3: हाँ दीदी, तो है ही।
2: जी, बाकी तो बहुत करोड़पति बन जाएंगे ना, तो भी तकलीफ बहुत, वो कहते हैं दुश्मनी पैदा हो जाती है, इसलिए भगवान बस सब्जी रोटी दाल रोटी देता रहे, यही।
3: हाँ, हम तो खुश है और परिवार भी खुश है सभी, ऐसा कोई सोचता नहीं, मैं भी नहीं सोचता कि अमीर हो जाऊं, ये कर लूं कहीं।
2: जी जी, इसलिए हमेशा यही सोचिए कि मैं बहुत अमीर हूँ। भाई जिसके पास ज्ञान का खजाना हो वो तो अमीर ही है, ठीक है। और आज का प्रश्न आप सुनिएगा, आप विक्रम भाई आप सुनिएगा, मैं सुना रही हूँ आज का प्रश्न, और हमारे जो श्रोता बंधु सुन रहे हैं वो भी जरूर सुने और जवाब जरूर देवे। सफाई

0: हैं, वो पल आने वाला है, मिठाई मिल के खाएंगे, परिवार के साथ मिल कर के वो त्योहार मनाएंगे।
1: दीपावली का त्योहार आ रहा है ना
0: देखते हैं भाई, अभी तो बहुत सारे त्योहार है, तो आपने सही जवाब दिया है गलत वो आप आशाना सुनते रहिए, हम जरूर देंगे, ठीक है। और आज का विषय है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह इंसान का नेचर भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, क्या कहेंगे आप?
1: बदल कर इंसान का नेचर भी देखो, कभी ज्यादा पैसे आते हैं तो लालच नहीं करना चाहिए, एक समान रहना चाहिए इंसान ने, मतलब पैसे तो आते हैं और चले जाते हैं, और हमें खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर खुशी चले जाती है
0: जी।
1: तो ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि पैसे हमको हाथ से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, सभी समान रहना चाहिए।
0: यहाँ पर समानता की बात नहीं है, नेचर की बात है, स्वभाव संस्कार की बात है, कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं है, उसी तरह देखे परिवार में भी सदस्य होते हैं तो भी सभी का स्वभाव संस्कार थोड़ा अलग अलग होता है, और जो हमारे समान संपर्क में आते हैं उनके भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, तो कैसे हम उनके साथ एडजस्ट होंगे, यह आज का विषय है।
1: देखो सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सभी के अलग अलग होते हैं
0: जी।
1: तो जैसे हम ज्ञानी बच्चों में तो बाबा की शक्ति एनर्जी है ही, और जो बाबा से नहीं संपर्क नहीं रहता उनको तो मतलब कोई ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, और पता है भी मतलब अनसुने हो जाते।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, देखिए सभी कोई भक्ति में भरपूर होते हैं, कोई किस सत्संग में जाते हैं, ज्ञान तो होता है।
1: हाँ ज्ञान तो होता है दीदी, पर वो क्या है कि जैसे कोई गुरु गुरु के बारे में सोचेंगे हमारा गुरु ऐसा करता है, या उनको गुरु की बातें अच्छी लगेगी, हमको बाबा की जैसी बातें अच्छी लगती
0: है। वो अपने अपने ऊपर आधार है। तो चलिए विक्रम भाई बहुत अच्छा, अच्छा आप थोड़ा सा अगर स्पष्ट करना चाहें तो कर दीजिए, क्योंकि दूसरे श्रोता बंधु भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
1: देखो अभी तो एकदम फोन लग गया, मैं अभी बेल रुके हुए और मतलब ये क्यारियां डाल रहा हूँ।
0: अच्छा क्या बात है, काम करते जा रहे हैं आप, खेत में है?
1: हाँ खेत में हूँ, प्याज का रोपा डालते हैं ना अपन।
0: जी जी जी,
1: इधर तो वो डाल रहा था एकदम, मतलब ये सुन रहा था मैं
0: जी
1: रहा हूँ, तो मेरे मन में कुछ ऐसा विचार नहीं आ कि मैं सवाल का जवाब दूँ।
0: जी जी नहीं नहीं, पर आप रेडियो से जुड़े अच्छा लगा हमें भी, आप जुड़िएगा ठीक है, हम रोज प्रश्न भी पूछते हैं, खुशनुमा जीवन की बातें भी आप सभी के साथ ही करते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा और शनिवार को अंताक्षरी में जरूर जुड़िएगा, ठीक है?
1: जी
0: बहुत बहुत आभार विक्रम भाई आपका। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह इंसानों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग होते हैं, क्या कहेंगे आप? दूर तक नहीं जाना है, हमें अपने परिवार में ही रह करके देखना है कि किस तरह सभी का नेचर अलग अलग है, फिर भी उनके बीच में हमको एडजस्ट होकर के चलना है, उनको भी चलाना है। हेलो,
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: सभी सुनने चाहने वाले मेरे अजीत मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
2: आपको भी
0: आभार।
2: और क्या टॉपिक किया आज का?
0: टॉपिक यह है कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती है, हमारी उंगलियां बरोबर होती है, एक छोटी एक बड़ी, ऐसे है ना, ऐसे ही मनुष्यों के स्वभाव संस्कार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनके साथ कैसे हम एडजस्ट होकर के चलेंगे?
2: एक्चुअली आपने बहुत सुंदर टॉपिक भी रखा है, देखिए हाथों की अंगुलियां तो समान नहीं होती है, वैसे स्वभाव संस्कार स्वभाव भी एक समान

0: वो सफलता जरूर मिलती है
1: जी। मान लीजिए सामने वाला क्रोधी है तो क्या करेंगे?
0: देखिए अपन सामने वाला क्रोधित है तो अपन शांत कुछ समय के लिए अपन शांत हो जाएंगे ना, तो उसका क्रोध शांत हो सकता है। और उस मतलब वो शांत होने के बाद में अगर वो उसको भी मन में लगेगा कि मैंने बहुत कुछ बोला है
1: जी,
0: तो मतलब वो ब्लैक बॉल फेंक रहा है, परंतु अपन मतलब ईंट का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो वहाँ मामला बिगड़ेगा ना
1: जी।
0: अगर आगे वाला अपना क्रोधित है और वो कुछ अब्द शब्द भी बोल रहा है मगर अपन शांति और धैर्यता रखेंगे
1: जी,
0: तो मतलब वो मामला आगे बढ़ने की जगह फैल जाएगा, नहीं तो वहाँ मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है।
0: कहते किसी ने कहा, सही कहा है ना कि देखिए अपन हाथों की 5 उंगुलियां है, अगर अपन 1 अंगुली उनकी तरफ करेंगे तो 4 उंगुलियां तो अपनी तरफ ही होंगी ना
1: जी,
0: ये गलत है?
1: सही है।
0: अब अगर उस समय अपन गुस्सा करेंगे तो वो और भी गुस्सा होगा
1: जी जी,
0: तो वहाँ तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी ना
1: जी जी। तो सुरेश भाई बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण देने की कोशिश की कि भाई मान लीजिए सामने वाला ब्लैक बॉल दे रहा है लेकिन हमें व्हाइट बॉल ही भेजना है, हमें उस समय शांति बनाए रखनी है। सामने वाला क्रोध करता है तो हमें मौन में रहना है, शांत हो जाना है या फिर उस स्थान से हट जाना है, तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी, नहीं तो फिर आप समझ सकते हो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका, कैसे हो आप?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं
1: जी जी जी,
2: सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छी बातें भी हो रही है
1: जी।
2: सुबह से बस हम तो अभी तो 7-8 बजे आ जाते हैं, 7 बजे दुकान पे, तो दिवाली के सीजन ज्यादा है।
1: अच्छा, फिर पूरे दिन रहते हैं दुकान पर?
2: हाँ, सुबह से 7 बजे से रात को 9 बजे कर जाता हूँ, और दोपहर को बस आधा घंटे रोटी खा रहे ही जाता हूँ, क्योंकि घर मेरे पास 1 मिनट की दूरी पर है दुकान से
1: जी,
2: तो बस रोटी खा के तुरंत आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अभी आराम करने की जरूरत है नहीं है क्योंकि काम इतना ज्यादा है, इसलिए
1: जी जी जी। क्या बात है,
2: 9 बजे घर पे जाके 10 बजे आके विकेश हो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ
1: जी,
2: 6 बजे उठ के मेरा रूटीन बताऊँ, 6 बजे उठ के मैं तुरंत हमारे गांव की जो 10 परब है पानी की पर्दे बाजार में
1: जी,
2: तो पूरी भर देता हूँ उठ के जाके, पहला काम मैं ही करता हूँ सब।
1: अरे वाह, क्या बात है,
2: 3 साल से लगातार एक दिन में इसमें कहते हैं छुट्टी नहीं दी है।
1: नहीं तो जैसे आप ये पानी की पर्व भरते हैं तो दूसरों को ऐसे प्रेरणा नहीं मिलती है कि अरे रोज ये कर रहे हैं तो कभी हम भी करें?
2: नहीं, कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं सुबह में वही करता हूँ। मैं बताऊँ तो मेरे पास मॉल के पास परब है, वो भी कोई नहीं भरता है, मैं ही भरता हूँ, दुकान की तो दुकान वाला है, वो कुछ नहीं भरता।
1: अच्छा,
2: कोई बात नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ आराम से, मुझे अच्छा।
1: नहीं नहीं, तो बहुत दुआएं मिल रही है ना, दुआओं वाला काम कर रहे हैं, पंछी पक्षियों को जानवरों को भी तो पानी की आवश्यकता रहती है ना।
2: जरूर, मैं सुबह में कई बार मुझे 6 बजे जाना होता है कोई जगह पे, तो मैं 4 बजे उठ के कर जाता हूँ काम सुबह में, लेकिन करता जरूर
1: जी।
2: बहुत अच्छा टॉपिक भी दिया, दीदी की 5 उंगली एक साथ समान नहीं होती, वो भी हमारे कहवत है कि भाई 5 उंगली एक समान नहीं है, तो आप ऐसे मत सोचो कि सभी लोग एक समान है
1: जी।
2: तो कई कई बार यदि घर में भी बताओ तो हमारे बीवी है, बच्चे है, बेटे है
1: जी।
2: तो वो भी इसका भी थोड़ा सा चेंज होता है, अलग अलग दबाव के सब होते हैं, लेकिन इस दबाव से हमसे सेटिंग करना है
1: जी,
2: क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा कुछ बात होता है जल्दी बोल जाता है, तो शांत कर देते, कोई बात नहीं, शांत के हम जो करेंगे तू बोलेंगे हम करेंगे
1: जी, सही है बिल्कुल।
2: लेकिन इसमें क्या है, हम इस वक्त हमको बिल्कुल ठंडा बनाना पड़ता है, इसको सुनना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है, कई की बार जो पत्नी भी बोल देती है कि कोई बात होती है तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाता है सभी घर में, बेटी और बच्चे को सब थोड़ा सा, तो ये वो भी एक हल कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसे जाने दो
1: जी जी।
2: जो ऐसे आप एक सामने दूसरे सामने ऐसा बोलेंगे तो मामला ज्यादा बढ़ने लगे, लेकिन इसको शांत कर देना और एक को ठंडा हो जाना है और वो आराम से सब कुछ से निपटा देगा बात
1: जी।
2: इसी स्वभाव से सबके स्वभाव समझना जरूरी है, स्वभाव से

0: और हमको भी कुछ थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना है। कहते हैं कि जैसा सामने व्यक्ति होता है ऐसे हमको करना पड़ता है। कोई ज्यादा एकदम बोल देता है तो कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं, तो सही है, चलो भाई आपकी बात सही है, लेकिन सही नहीं हो तो फिर एक उस वक्त सही कर देंगे तो वो मामला आगे नहीं जाएगा
1: जी।
0: चलो हमारे सुनना तो सुने, नहीं सुने तो कोई बात, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा है, ऐसे करके हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं तो यही मानता हूँ।
1: जी जी, बहुत सुंदर।
0: इसलिए एक दूसरे को सपाट जानना जरूरी, तो
1: जी बिल्कुल
0: कोई बात आगे नहीं जाएगी।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बिल्कुल जी। तो बहुत ही सुंदर बातें स्पष्ट हो रही हैं कि किस तरह पांच उंगलियों जिस तरह बरोबर नहीं होती, उसी तरह परिवार में भी सदस्यों के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, समाज में भी हर इंसान का नेचर अलग होता है। तो इस विषय पर और भी अधिक स्पष्ट करेंगे, परंतु अभी ले रहे हैं एक अल्पविराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: हेलो।
1: हाँ दीदी, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्कार, हनुमान भाई बोल रहे ना?
1: नहीं दीदी, मैं विक्रम कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, हाँ जी विक्रम जी, बोलिए बोलिए।
1: हाँ वो तो क्या था प्रश्न, मतलब पांचों उंगलियाँ
0: प्रश्न? ये विषय है आज का कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह हर एक का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन हम उनके साथ कैसे रहेंगे, कैसे एडजस्ट होकर के चलेंगे।
1: अच्छा अच्छा, हाँ तो थोड़ा मेरे को दिमाग में आया था कि मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूं।
0: जी जी जी, बिल्कुल करिएगा।
1: हाँ तो दीदी, जैसे पांचों उंगलियां समान नहीं रहती, ऐसे हमारे नेचर भी मतलब एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी पलट जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी हम बच्चों को भी गुस्सा करते हैं
0: जी,
1: कभी हम अच्छे भी रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, ऐसा रहता है
0: जी। तो कैसे सेट होंगे ऐसे? तो फिर गृहस्थी बिगड़ जाएगी ना। हम अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चे सहमे सहमे रहेंगे, हम गुस्सा करेंगे तो बच्चे हमसे दूर रहेंगे।
1: वो बच्चों की बात नहीं है, जैसे हम तो किसान है, जैसे हम मजदूर लेने जाते हैं, मजदूर एकदम परेशान कर देते हैं हमको।
0: जी जी जी,
1: तो हम मजदूरों को समझाते हैं, बाकी नहीं समझते, थोड़ा गुस्सा तो उनसे करना पड़ता
0: जी,
1: है।
0: वो कहते हैं कि लव एंड लो दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है।
1: दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है। तो हम मतलब हमारे जो विचार है एक जैसे नहीं रहते हैं
0: जी,
1: कभी अच्छे रहते हैं, कभी थोड़ा चेंज आ जाता है।
0: तो चेंज आ गया, उसको वापस कैसे अच्छा बनाएंगे? चेंज किस तरह का आता है?
1: चेंज मतलब दीदी कि जैसे तो अभी तो अच्छे हैं, कभी कोई हमको गलत बातें मतलब आ जाती है, सुन लेते हैं, कभी कहीं गलत अपनों ने कुछ देख लिया तो उसको मतलब हमारे विचार भी फिर वैसा ही बन जाते हैं ना दीदी।
0: जी जी, चलिए विक्रम भाई, बहुत बहुत आभार। तो बात चल रही थी कि पांचों उंगलियां जिस तरह बरोबर नहीं होती, वैसे हर एक इंसान का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है, लेकिन बना करके रखना पड़ता है, अपने स्वभाव संस्कार को मोल्ड करना पड़ता है, तभी हम सभी के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे। सामने वाला गुस्सा कर रहा है और हम डबल गुस्सा करें तो क्या होगा? तू में बढ़ेगी, लोग इकट्ठे होंगे और फायदा कुछ भी नहीं निकलेगा, उसका कोई भी रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें एकदम शांत होकर के सुनना है, क्योंकि उस समय अगर हम कुछ भी एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आवेग में है, क्रोध में है, और क्रोध में है तो वो हमारी बात को नहीं सुनेगा, और बात नहीं सुनेगा तो फिर कहने से कोई फायदा भी नहीं। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं करियाग्रास बोल रहा हूँ।
0: कौन बोल रहा है?
2: कमलेश भाई बोल रहा हूँ, करियाग्रास।
0: अच्छा कमलेश भाई, कहाँ से? माउंट आबू से?
2: नहीं, करियाग्रास, करियाग्रास इडर के पास है, गांव है।
0: अच्छा इडर के पास, बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भाई, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे हैं दीदी
0: जी।
2: अभी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ प्रसारण कम्प्लीट नहीं आता है।
0: अच्छा आप इंटरनेट से सुन रहे?
2: नहीं, रेडियो में।
0: अच्छा अगर इस तरह स्पष्ट नहीं आता है तो आप इंटरनेट के द्वारा सुन सकते हैं।
2: इंटरनेट द्वारा इससे बहुत अच्छा आता है।
0: जी जी
2: जी, सुनाई देता
0: है। जी जी, हम समझ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता बंधु जो सुनते हैं वो सुनते रहे, जुड़े रहे। तो अच्छा ये समस्या भी देखिए जल्दी ठीक हो जाएगी, इसका भी समाधान हो जाएगा। आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप कमलेश भाई? अच्छा तो मैं प्रश्न अभी बोल देती हूँ, आप सुना दीजिए, जवाब दे दीजिए।
2: क्या प्रश्न क्या है दीदी?
0: प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एक कविता की तरह मैं गुनगुना रही हूँ, आप सुनेंगे। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

0: मनाएंगे, क्या कहेंगे आप जवाब में?
1: ये तो दीपावली की बात है ना।
0: अच्छा, तो आप आशियाना सुनिए, हम जरूर आपके प्रश्न का जवाब देंगे, सही है या गलत है। ठीक है जी, बहुत बहुत बहुत आभार कमलेश भाई। तो देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ से सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया कि बहन जी, हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, हम फ़ोन कॉल्स नहीं कर पाते लेकिन कार्यक्रम हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह मैसेज आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स आते हैं तो पता चलता है कि रेडियो मधुबन के लिसनर कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो कोशिश करते हैं। कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो कोई विदेश से। जैसे कि आपने शनिवार को बेल्जियम से सुना, दीपक भाई का फ़ोन आया था। हेलो, तो दूर दूर से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में, आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस तरह इशारा कर रही हूँ कि देखो दूर बैठे हुए श्रोता बंधु फ़ोन कर रहे हैं और हमारे आबू के अंचल में जो ये रेडियो मधुबन चल रहा है, तो हमारे श्रोता बंधु फ़ोन कॉल्स थोड़ा कम करते, सुनते तो नो डाउट सुनते हैं लेकिन फ़ोन कॉल्स नहीं करते। कभी फ़ोन कॉल्स करके बता दिया करो कि आप भी रेडियो मधुबन सुनते हैं, ठीक है, हमें भी खुशी होगी। और बात चल रही थी कि भाई जिस तरह पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, उसी तरह हरेक का स्वभाव संस्कार अलग होता है, लेकिन बस हमें उनको नहीं स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलेंगे तो वो कहते हैं ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हम ही अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला नफरत कर रहा है तो हम भी नफरत कर रहे हैं, सामने वाला उदासीन है तो हम भी उदासीन है, तो फिर तो हमारे अंदर और उनमें क्या फर्क है, कोई चेंज नहीं है ना। इसलिए हमें अपने स्वभाव संस्कार को सुधारना है कि सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें शांत रहना है, सामने वाला नफरत कर रहा है लेकिन हमें प्यार ही करना है, शुभ भावना ही रखनी है उसके प्रति, अपनी भावनाओं को चेंज नहीं करना है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, वो ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि जो क्रोध रूपी भूत आ जाते हैं तो पूरे दिन के लिए टिका नहीं रहता, वो वापस चला भी जाता है, इसलिए हमें शुभ भावना ही रखनी है। हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो?
2: बस बहन जी ठीक है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं,
2: जुड़े हैं। तो रेडियो तो नहीं सुनाई देता, इंटरनेट से भी यहाँ तो कट कट के आवाज आती है
0: जी,
2: और अभी पहले भी लगाया था लेकिन बात नहीं हुई, तो अभी दूसरी बार ट्राई किया तो लग गया।
0: चलिए अच्छी बात है, फोन लग गया वो अच्छा है। अच्छा, आप आज के प्रश्न का जवाब देंगे?
2: हाँ, जवाब तो ये है, दीपावली सबने किया है ना, आपने गाना गा के जो बताया, मैंने सुना था, तुरंत तो पता चल गया था लेकिन थोड़ी देरी हुई कॉल करने में।
0: अच्छा, और आज का विषय है पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती, इसी तरह हर इंसान का नेचर अलग अलग है, हम कैसे उनके साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, क्या कहेंगे आप?
2: हाँ, वो तो है जी, समाज में, समाज की बात है या घर परिवार की?
0: जी, समाज की, परिवार की, स्वयं की, कैसे का भी एग्जांपल दे सकते हैं जी?
2: समाज में तो क्या है बहन जी, भाई कोई चार गांव का हमारा गोल है, ठीक है, तो कौन का स्वभाव कैसा है वो तो हमें देरी से पता चलता है, एकदम तो पता नहीं चल जाता
0: जी।
2: तो ये थोड़ी देरी होती है इसमें, लेकिन घर परिवार की जो बात करें तो घर परिवार में तो हम पहचान जाते हैं भाई इसका स्वभाव कैसा है, ऐसा है
0: जी।
2: तो कोई बात हम घर पे करते हैं तो हम इशारे से बंद कर देते हैं, कोई ऐसा हमारा बेटा है, बेटी है, ऐसा घर बाहर होती है तो आ जाती है, तो क्या हम इशारे से सबको बोलते हैं कि चुप चुप कर दो, ये सब बातें बंद कर दो, क्योंकि इसमें स्वभाव एक तरीका नहीं होता और वो बीच में ये बोल देती है कि बोल देता है कि भाई मेरे को सुना रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है
0: जी। जी, चलिए बहुत बहुत आभार जी।
2: हाँ जी, नेचर ऐसा है, एक तरीके उंगली
0: जी जी
2: नहीं
0: जी।
2: होते, कोई किसी का उग्र स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है।
0: जी चलिए कंचन भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है इसके लिए। और बस इस विषय को यही समाप्त करेंगे, क्योंकि भाई अगले भी आपको आशाना के किचन में भी तो आना है ना। तो बस कहने का भाव यही है कि स्वयं को बदलना है, न कि दूसरों को। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के पहले खुद को देखना है कि मैं अमल कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो स्वयं को बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, इसलिए हमें स्वयं को बदलना है। हम बदलेंगे अपने स्वभाव संस्कार को, अच्छा बनाएंगे तो हर एक के साथ हम अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चलेंगे, चाहे सामने वाला क्रोधी है, चाहे सामने वाला उदासीन है, या फिर किसी भी प्रकार का है, लेकिन हम उसके साथ अच्छी तरह एडजस्ट होकर के चल सकेंगे। और आइए बढ़ते हैं फिर से एक गीत की ओर, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम जरूर आपको आज गुजराती डिश सिखाएंगे, राजस्थानी भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि राजस्थान में नहीं चलता है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। गुजरात में कहते हैं सुवारी और राजस्थान में उसको खाजिया कहते हैं। अब देखिए राजस्थान में भी बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग जिलों में इसको अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन इसका प्रॉपर गुजराती में नाम है सुवारी और राजस्थानी में है खाजा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगी क्योंकि ये दीपावली पर बहुत ही बनाए जाते हैं। सुवारी, मठिया, चोराफली, घूगरा, इस तरह के आइटम गुजरात में बहुत बनती है। उसके बाद और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये तो आपको हर घर में मिल ही जाएंगे दीपावली के दिनों में। जिसके भी घर पर आप मिलने जाएंगे ना, तो ये चार चीज़ें तो आपको नाश्ते में मिलेगी ही मिलेगी। उसके अलावा फिर तो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें भी बहुत सारी बनाते हैं जो आए दिन हम आपको सिखाते रहते हैं। तो चलिए सुवारी बनाने से पहले आज का प्रश्न एक कविता की तरह मैंने बनाया है। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है, ज़रूर आप जवाब देंगे और रेडियो मधुबन से जुड़ करके जवाब देंगे। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। सफाई हो रही चारों ओर, खुशियाँ छा रही है,

परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे, परिवार के साथ मिल करके वो त्योहार मनाएंगे। तो ऐसा कौन सा त्योहार आने वाला है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उस त्यौहार पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो भले किसी भी राज्य में रहता हो, किसी भी शहर में रहता हो, लेकिन तो वो लौट आता है। कब लौट आता है अपने घर और कैसे परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। और चलिए सुवारी बनाना सिखा देती हूँ। आप 1 किलो लीजिएगा मैदा, ठीक है, फिर आप लीजिए 250 ग्राम मोवन के तौर पर तेल, और 250 ग्राम ही आपको लेनी है शक्कर, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार तलने के लिए फिर से तेल। बस इतनी सी ही सामग्री है जिसको फिर से दोहरा रही हूं कि 1 किलो लेंगे मैदा, 250 ग्राम लेंगे इसके अंदर मौन डालने के लिए तेल या फिर घी, ठीक है। राजस्थान में घी यूज करते हैं, गुजरात में तेल यूज करते हैं मोवन डालने के लिए। अब आपको जो इच्छा हो वो लीजिएगा। अगर घी ले रहे हो तो 200 ग्राम लेना, तेल ले रहे हो तो 250 ग्राम लेना, ठीक है, और 250 ग्राम ही लेनी है आपको शक्कर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 250 ग्राम लीजिएगा शक्कर, और अगर स्लाइट मीठा खाना चाहते हैं तो 200 ग्राम शक्कर लीजिएगा, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार आप तेल लीजिए तलने के लिए। अब मैं बनाने का तरीका भी साथ साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, मैदे को पहले छलनी से छानिए, ठीक है, छानने के बाद मैदे की छलनी से छानना हो, ऐसे नहीं आटे की छलनी से छान रहे हो, मैदे की बारीक काने वाली होती है, ऐसी छलनी से छानिएगा ताकि कचरा ऊपर आ जाए, आटे की छलनी से छानेंगे तो सारा ही अंदर चला जाएगा। फिर आप चीनी को थोड़ा पानी में घोल करके एक रस कर दीजिए, ठीक है, और इस पानी से आपको इस लोट को बांधना है, लेकिन पहले आप मोवन डालिए, तेल या घी जो भी, फिर अच्छी तरह उसको मिक्स करिए मैदे को और मोवन को, फिर आप ये चीनी वाले पानी से अच्छी तरह आटे को बांध दीजिए। पानी ज़्यादा नहीं लेना है, अबे ज़्यादा भर के तपेली कर दी है और उसमें चीनी इतनी ही डाली है, फिर पता चला कि सुवारी बनाने के बाद बहुत ही फीकी लग रही है तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही पानी लेना है। पानी तो हम सादा पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन चीनी वाला पानी हमको ज़्यादा नहीं बनाना है, आवश्यकता के अनुसार जितना उस आटे को बांध सके, ठीक है। फिर उससे आप इस लोट को अच्छी तरह बांध दीजिए। फिर आवश्यकता पड़े कि भाई थोड़ा सा पानी की कमी है तो ऊपर से आप सादा पानी भी ले सकते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह इसको फिट बांध दिए, ठीक है, बांध करके आप गीले कपड़े से ढक करके 1 घंटे तक रख दीजिए, दूसरा काम करने लग जाइए। दूसरा काम हो गया आपका, फिर उसके वो अच्छी तरह गल के तैयार हो गया। अब उसके लुए बना करके फिर आप जो भी साइज पसंद करते हो उस साइज में आप बेलिए, बेल करके आप स्वच्छ कपड़े पर डालते जाइए, ठीक है। और जब आपके सारे ही डल जाए, या फिर आप 2 जने हो, 2 मिल करके कर रहे हो, तो फिर 1 जने क्या करेंगे, तेल गरम करिए कढ़ाई में और तलते जाइए। और भाई अकेले हो तो फिर आप सारे बना दीजिए, लेकिन क्या करना है, जो पहले हम सुवारी डालते हैं ना उसको आप इकट्ठा करते जाइए, ज़्यादा नहीं सूखने देना है, भाई ज़्यादा सूखेंगे ना तो फिर तलते समय वो टूटेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं सुखाना है, जो पहले सुखाया है उनके आप झेट बनाइए, एक दूसरे के ऊपर रखिए, ठीक है, ताकि वो क्या है कि एक दूसरे के ऊपर रखने से दबे रहेंगे। फिर ऊपर से कुछ ढक दीजिए, कोई बड़ी सी पतीली है ढक दीजिए ताकि हवा नहीं लगे, पहले हवा लगानी है बाद में नहीं लगानी है, थोड़ी सी ही लगानी है, ठीक है। फिर आपके सारे जब सुवारी तैयार हो जाए बेल लो, उसके बाद आप कढ़ाई रखिए गैस पर, तेल रखिए, गैस चालू करिए, तेल को गर्म कर दीजिए और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक ये सारी सुवारी तल दीजिए। चिमटे से निकालना है इसको, ठीक है, जाली वाली नहीं लेनी है, चिमटे की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए चिमटे से ही आपको निकालना है। और फिर ठीक है, चिमटा नहीं है तो जाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक क्या है कि चिमटे से आप लेते हो ना तो वो जो अतिरिक्त तेल कढ़ाई में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा प्लेन पेपर में रखिए, सफ़ेद पेपर आता है ना उसमें रखिए, उसको आप थाली या ऐसे तगारी की तरह होता है ना, जिसको हम तासला भी कहते हैं, तासले की तरह होता है, उसमें आप रखिए, पेपर बिछा दीजिए और ये निकाल के रखिए ताकि और भी थोड़ा बहुत तेल हो तो वो पेपर आपका चूस ले, ताकि तेल ज़्यादा हमारे नहीं जाए,
तो इस तरह सुनहरी सुनहरी सारी सुवारी तल दीजिए। अब देखिए, पहले बहुत सिंपल बनाए जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा क्रेज चला है कि आटा बांधते समय कोई इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, कोई तिल भी डालते हैं, सफ़ेद तिल, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपल बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेस्टी ही लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है बनाने का कि मैदा छानना है, छानने के बाद मैदे में मौन डाल देना है, तेल या घी, अगर घी डाल रहे तो उसको पिघला करके डालिए, ठीक है, और तेल डाल रहे तो ठीक है, और अच्छी तरह मिक्स करिए दोनों हाथों से। फिर एक तरफ आप चीनी वाले पानी को अच्छी तरह घोल दीजिए, थोड़ा सा आप गैस पर भी गर्म कर सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, और बाकी ज़्यादा कर रहे हो तो उसको ठंडा होने दीजिए, नव सेका हो तो चलेगा लेकिन गर्म होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बांधते समय हाथ जलेंगे, इसलिए अच्छी तरह चीनी को पानी में एक रस करके फिर उस पानी से इस आटे को अच्छी तरह बांध दीजिए। अगर आप ऐड करना चाहते तो थोड़े सफ़ेद तिल बांधते समय डाल दीजिए, इलायची कूट करके इसको भी डाल दीजिए, फिर आप चीनी वाला पानी डाल करके अच्छी तरह आपको बांधना है, इसको गूंदना है, गूंद करके भले आधा घंटा भले एक घंटा आप गीले कपड़े से ढक करके इस आटे को रख दीजिए और आप दूसरा कार्य निपटा दीजिए। दूसरा काम आपका हो जाए, भले आधा घंटा भी भीगेगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। वो काम होने के बाद बस लुए बनाइए, लुए बना करके फिर आप बेलिए, जो भी साइज पसंद करते हो, पूड़ी की साइज पसंद करते हो या रोटी की साइज, वो आपके ऊपर छोड़ा है, और बेल करके आप डालते जाइए। एक स्वच्छ कपड़े पर साड़ी बिछा सकते हैं और उस पर डालिए, फिर पहले वाले जो सुवारी है उसके थप्पी लगा दीजिए, एक के ऊपर रख दीजिए ताकि उसको ज़्यादा हवा नहीं लगे, तलते समय वो टूटे नहीं, और एक भगोना उसके ऊपर ढक दीजिए, और इस तरह सारे सुवारी बेल करके तैयार कर दीजिए। फिर आप रखिए कढ़ाई में तेल गरम, तेल गरम हो जाए तो मध्यम आंच पर सुनहरी सुनहरी होने तक दोनों तरफ से आपको मठिये तलने हैं, मठिये नहीं सुवारी तलने हैं। चिमटे से आपको थाल भी फेरनी है और अच्छी तरह तल करके चिमटे से आपको निकालना है, तुरंत नहीं निकालना है, थोड़ा सा क्या करेंगे आप, तो चिमटे से जो आपने सुवारी पकड़ रखी ना, हल्के से आप कढ़ाई के किनोर से थपकारिए ताकि और भी जो तेल है वो अंदर ही टपक जाए, फिर आप पेपर में रख दीजिए। इस तरह सारी सुवारी आपको निकाल देनी है, इस तरह बनाना है, ठीक है। तो चलिए सुवारी तैयार है, अब हम आपको और भी कुछ सिखाएंगे, लेकिन कल भाई, आज तो समय आप देख रहे हो कि होने को आया है, इसलिए हम तो रोज ही सिखाते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: बहू, मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ, अब तो बस करो।
0: बहू, क्या सोच रही हो? घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो,
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहा और मुस्कुराता।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार था, तो बहुत ही सुंदर नुस्खे भी आपको दिए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है कि पांचों उंगलियां बरोबर नहीं होती। इसी तरह परिवार के सदस्यों के भी स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन तालमेल बिठा करके अच्छी तरह हिलमिल करके चलना है और उसके लिए हमें स्वयं को बदलना है, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत अच्छा था, देखते हैं आप भी सोच रहे होंगे कितना सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी सरल प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो जवाब तो आप सभी को पता ही है, सभी ने सही दिया है। जुड़े हैं सुरेश भाई झोटाना से, सबसे पहले इन्होंने जवाब दिया है, फिर सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, विक्रम भाई कुशवाहा बड़वानी मध्य प्रदेश से, हनुमान जी यूपी से, उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, कमलेश भाई इडर गुजरात से जुड़े हैं आप, कंचन भाई मंडाली से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी कोजरा से। आप सभी ने सही जवाब दिया है, दीपावली। तो बिल्कुल सही है, दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली के त्यौहार पर ही पूरा परिवार इकट्ठा होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, लेकिन दीपावली के एक दो दिन पहले ही अपने घर लौट आते हैं। तो सभी के लिए ढेर सारी तालियां। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी राम जी पर, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे आशियाना कार्यक्रम लाइव में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

रूखड़ा राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जी है आगे मारे, राम जी है पाछे रे। शरणागत की सारी चिंता राम जी ने लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे। राम जी री घर की कंची राम जी लगवाणिया। राम जी रो लेनो देनो राम जी चुकावणिया। राम जी

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दुनिया बन गई, अजब इत्तफाक है। मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो प्लेयर कपिल। और दोस्तों, वाकई दुनिया कितनी नजदीकियों में बदल गई है ना। इंटरनेट, ईमेल, चैटिंग, मोबाइल फोन, टीवी, इन सब ने हमारे बीच की दूरी को कितना कम कर दिया है। ये भी तो एक इत्तफाक ही है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप मुझे वहाँ सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पे। दोस्तों, एक समय वो भी था जब हमें लंबी लंबी दूरियों को तय करने में काफी समय लग जाता था, लेकिन ये भी एक इत्तफाकी की बात है आज कि मीलों की दूरी हम चंद समय में तय कर लेते हैं। आज कहीं भी आने जाने के लिए बस या टैक्सी तुरंत मिल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये बस और टैक्सी चलती किससे हैं? अब आप कहेंगे कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल या डीजल से। बिल्कुल सही सोचा आपने, और इसी पर बेस्ड है आज की हमारी थीम। यानी आज की हमारी थीम है द कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल का संरक्षण। वाकई में दूरी चाहे मंजिल की हो, राहों की हो, या फिर वो दिलों की, जितनी जल्दी कम हो उतना ही अच्छा लगता है। जिसमें कि आज मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई। दोस्तों, वो कहते हैं ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब एक छोटे से चेंज की कल्पना करें और सोचें कि सारी सड़कों पर बसों और कारों की जगह साइकिल, टांगे, बैलगाड़ियां चल रही हों, लोग तपती धूप में पैडल मार के साइकिल पे सवारी कर रहे हों, न कोई म्यूजिक, न कोई एसी और न ही ऊपर से कोई छत। कुछ अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये कल्पना वास्तविक रूप लेकर हमारे सामने होगी। क्योंकि जिस तरह से आज हम लोग पेट्रोल और डीजल की खपत कर रहे हैं, उस हिसाब से तो आने वाले कुछ ही समय में ये कल्पना वास्तविक रूप लेकर हमारे सामने होगी। और इन भाई साहब को तो देखिए, इन्होंने तो अभी से तैयारी कर ली है।
1: अरे ओ सांभा, कितने घोड़े हैं रे तबेले में?
0: 3 सरदार।
1: क्या, सिर्फ 3 घोड़े? तबेले 10 और घोड़े 3? मुझे कल सबके सब तबेले भरे हुए चाहिए, समझे तुम?
0: ठीक है सरदार, रामगढ़ से ले आऊंगा। लेकिन अचानक सरदार, ये घोड़ों की बात तो कुछ समझ में नहीं आई।
1: जिस तरह से लोग आज पेट्रोल की खपत कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब लोग घोड़ों पे सवारी करेंगे, और उस दिन मेरे घोड़ों का व्यापार खूब तरक्की करेगा, समझे तुम?
0: मैं बात कर रहा हूँ आज डीजल और पेट्रोल के संरक्षण से जुड़ी हुई। आपने किशोरदा का वो गाना तो सुना ही होगा, मुन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। अब जरा सोचें, जिस दिन पेट्रोल समाप्त हो जाएगा उस दिन ये गाना शायद कुछ इस तरह से होगा, मुन्नू भाई बैल गाड़ी चली छक छक छक, है ना? अरे अरे, आप लोग तो सोच में पड़ गए। ये समय सोच में पड़ने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। अरे भाई, पेट्रोल और डीजल का संरक्षण और क्या। क्या आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग अपने अपने स्तर पे पेट्रोल और डीजल की खपत को कम कर सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। भाई, आप लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब बात हो पेट्रोल और डीजल के संरक्षण से जुड़ी हुई तो सोचना तो लाजमी है। वेल, आपको करना ये है कि अपने दिल पे थोड़ा सा काबू रखना है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, दिल तो दिल है और दिल है कि मानता नहीं। और इस दिल्लगी के चक्कर में आजकल के हमारे युवा बाइक घुमाना शुरू, यानी टोटली पेट्रोल का वेस्ट। अगर हम इस तरह से पेट्रोल की खपत को कम करें और सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाइक का यूज करें, तो हम कितने सारे पेट्रोल को बचा सकते हैं। और वैसे भी जब बात हो पेट्रोल से जुड़ी तो दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। ऑल इज वेल, वैसे काफी सटीक नुक्कड़ बताया हमारे आमिर साहब ने टेंशन में राहत पाने का, और दिल पे हाथ रखो और कहो ऑल इज वेल। लेकिन कुछ लोग इस नुक्के का भी मिसयूज करते हैं। अब कल ही की बात देख लीजिए। कल जब मैं रेड सिग्नल पे था और अचानक एक बंदा तेज रफ्तार में पीछे से बाइक चलाते हुए आया और ऑल इज वेल कहके सिग्नल तोड़ के निकल गया। अब इस तरह जान जोखिम में डाल के ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के ऑल इज वेल कहोगे तो क्या खाक वेल होगा? अक्सर हम रेड सिग्नल पे तो गाड़ी रोक लेते हैं बट इंजन स्टार्ट ही छोड़ देते हैं, या फिर गाड़ी चलाते समय कोई रिलेटिव या दोस्त दिख गया तो धफाक से गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं, इंजन स्टार्ट ही छोड़ देते हैं। अगर हम इस तरह की छोटी छोटी लापरवाही को नजरअंदाज न करें और रेड सिग्नल पे या फिर किसी से बात करते हुए इंजन को बंद करते हैं तो पूरा 20% फ्यूल बचता है। यानी कि हमारी थोड़ी सी समझदारी और पूरा 20% फ्यूल वेस्ट होने से बच सकता है, और फिर हम रिलैक्स होके कह सकते हैं भैया ऑल इज वेल।
1: बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। जब भी रेड सिग्नल पे रुके तो अपने 2.5 किलो का हाथ स्टेयरिंग से हटा के चाबी पे ले जाएं और अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, इससे पूरा 20% फ्यूल बचेगा। आई बात समझ में?
0: वाकई में सल्लू मियां ने तो जिसको भी दिल दिया बदले में उन्हें दर्द ही मिला। खैर, ये तो सल्लू मियां के दिल की बातें हैं। सुना है सल्लू मियां जब भी शूटिंग पे जाते हैं तो साइकिल पे ही सवारी करते हैं, शायद यही है उनकी फिटनेस का राज। दोस्तों, अगर आप भी छोटी छोटी दूरियों को जैसे सब्जी लेने जाना हो या पास में किसी दोस्त के घर जाना हो तो पैदल चलें। और पैदल चलने से हमें कितने सारे फायदे होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, डाइजेशन ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और भी बहुत कुछ। और वैसे भी डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि यदि हम 2 किलोमीटर प्रतिदिन यानी हमेशा पैदल चलते हैं तो हमारी बीमार होने की जो संभावनाएं होती हैं वो 95% कम हो जाती हैं। यानी पेट्रोल को तो हम बचाते ही हैं, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य भी पाते हैं। इसी को तो कहते हैं आम के आम और गुटलियों के दाम।
2: ये जमाइला राजू गाड़ी निकाल।
1: क्या बाबू भैया, जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो, गाड़ी निकाल, अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते।
2: ये बाबू, ये राजू, अगर हम एक गाड़ी में चलेंगे तो कितना सारा पेट्रोल बचा सकते हैं रे, और वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है ना, तो इसलिए साथ बैठ के चलेंगे।
0: दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस प्यारे से वादे के साथ हम सब मिलकर लेते हैं ये संकल्प, खाली न होने देंगे पेट्रोल और डीजल का विकल्प। हम सबकी है ये जिम्मेदारी, पेट्रोल और डीजल के संरक्षण में है समझदारी। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का संरक्षण कीजिए। फिलहाल पेश है आपके लिए प्यारा सा सॉन्ग, इसी के साथ गुड बाय, अलविदा, और फिर मिलूंगा आपको इसी चैनल पे 90.4 पे। तब तक के लिए अलविदा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Water is necessary in every field. No one cares about it now, but they will realize the mistake when there will be no water left even for drinking. Socho dil se. Think deeply ki tumhe pani kab kaise use karna hai. And you are listening to 90.

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: इस सूटकेस यहाँ रख देता हूँ।
1: अरे अरे हम लोग पहुँच गए हैं भाई। दिव्या, मनोज, नीचे उतरो बस से।
2: चले मैं उतरूंगा।
3: अरे अरे अरे अरे आराम से बेटा, आराम से, चोट ना लगे। सुनिए जी, बारिश रुकने तक यही कहीं पास में रुक जाए तो अच्छा रहेगा।
1: वो सामने मुझे एक चाय की दुकान नजर आ रही है, वहीं रुकते हैं, बच्चे कुछ खा भी लेंगे।
3: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: माँ देखो ना, दिव्या ने मुझे पहले उतरने नहीं दिया।
3: अरे अरे बेटा, बहन से झगड़ा नहीं करते। देख, चलो चलो आओ आओ।
1: अरे चलो, मत झगड़ा करो, चलो चलो चलो चलो चलो
4: आओ। चलो ना बेटा,
5: आइए आइए आइए, गजबी काका की चाय की दुकान पर आपका स्वागत है। बैठो बच्चों, बैठो बैठो
1: बैठो बैठो बैठो।
5: शाबाश।
2: क्यों दिव्या, हाँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उतरने दिया?
6: देखो भैया, तुमने फिर झगड़ा शुरू किया। झगड़ा करना बुरी बात है।
2: तुमने फिर भाषण शुरू कर दिया।
6: अरे मैं तो शांति की बात कर रही थी। माँ,
1: तुम लोग फिर शुरू हो गए, झगड़ा मत करो।
5: बच्चे हैं बच्चे। बच्चों ये लो तुम्हारे लिए बढ़िया बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट, और तुम्हारे माँ पिताजी के लिए चाय बनाता हूँ, ठीक है?
2: ये बिस्कुट खाकर ना फिर शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देगी।
6: क्यों नहीं, मैं तो बड़ी होकर भी पूरी दुनिया को शांति का संदेश दूंगी। हाँ।
2: एक लड़की की बात सुनेगा कौन?
5: ऐसे मत कहो बेटे, देखो हमारे देश की महिलाओं ने बड़े बड़े काम किए हैं।
6: हाँ, सुना?
5: देश को स्वतंत्र कराने जैसे बड़े काम में भी उन्होंने बराबर की भागीदारी की है, और पूरे विश्व के सामने भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी भी निभाई है।
3: लगता है काका आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं।
7: अरे भाई, गजबिया काका से ही नई पीढ़ी के लोगों को देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारियों के बारे में पता चलता है।
3: फिर तो हमें भी किसी क्रांतिकारी के बारे में बताइए ना।
8: हाँ काका, बताइए ना, ताकि हमारे बच्चों को भी स्वाधीनता संग्राम के बलिदानियों को जानने का अवसर मिले।
5: अच्छा भाई, बताता हूँ। इस बिटिया की बात सुनकर मुझे सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित का ध्यान आ रहा है। एक ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद तक पहुंची। हाँ, उस समय हमारा भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रत्येक देशभक्त अपने अपने तरीके से देश को स्वतंत्र कराने के संग्राम में जुटा हुआ था। हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो अत्याचार जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था।

0: बंदे मातरम,
1: तुम देश के साथ गद्दारी किया है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी।
0: ये देश हमारा है, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। व्यापारी और मेहमान बनकर आए और हमारे हमारे देश पर कब्जा कर लिया। वंदे,
1: तुम वंदे, अभी नौजवान हो, हम तुम्हें माफ कर सकता है। तुम अपने साथियों का पता बता दो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगा।
0: जीवन भारत माता की पूजा वेदी पर अर्पण करने के लिए होता है, देश के दुश्मनों के पास गिरवी रखने के लिए नहीं।
1: इस क्रांतिकारी की आवाज को हमेशा के लिए दबा दो।
0: वंदे मातरम।

जब देश में ऐसा वातावरण था तभी उस कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वरूप कुमारी। दिन था 18 अगस्त सन 1900।

0: जवाहर, लगता है बहन के जन्म से सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हुई है।
1: खुशी क्यों नहीं होगी, मुझे भैया कहने वाली एक प्यारी सी बहन जो आ गई है। ये देखो, इधर देख।
2: ये वही जवाहर थे जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वो 11 वर्ष के थे जब उन्हें छोटी प्यारी बहन स्वरूप कुमारी का उपहार मिला। माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी और पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, जो एक नामी वकील थे। वो अपनी माता की ही तरह सुंदर थी। जन्म पर उन्हें नाम दिया था ट्रम्पेट, याने तुरही भोपू। शिक्षा योग्य होने पर स्वरूप कुमारी के लिए घर पर ही शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनके लिए योग्य शिक्षक भिजवाया।
1: गुरु जी, रामायण को पढ़कर हम क्या जानेंगे?
3: बिटिया स्वरूप, रामायण हमारी सच्ची भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है।
1: हमारी संस्कृति?
3: हाँ बिटिया, हमारी संस्कृति जो बहुत ही समृद्ध है। बेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि समाज कैसे चलना चाहिए। एक व्यक्ति का अपने परिवार, समाज और देश के प्रति क्या कर्तव्य है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश में सदा से ही प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि रखा गया है। यही तो प्रजातंत्र है।
1: गुरु जी, प्रजातंत्र क्या होता है?
3: देखो बिटिया, जहां देश की सरकार देश की प्रजा की भलाई के लिए काम करती है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करती है, वही प्रजातंत्र होता है।
1: गुरु जी, मैंने उस दिन सुना बाबा कह रहे थे कि अंग्रेज सरकार हम भारतवासियों पर बहुत अत्याचार कर रही है, क्रांतिकारियों को पकड़कर कठोर यातनाएं दे रही है।
3: हाँ बिटिया, वो बाहर से आए हैं और हमारे देश को अधीन कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सभी सच्चे देशभक्त हर तरह की यातनाएं सहकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर रहे हैं। देश में फिर से राम राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं बिटिया।
1: मैं भी राम राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करूंगी गुरुजी।
3: हाँ, अवश्य करना बिटिया, अवश्य करना। राम राज्य में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया जाता है।
1: जी गुरुजी।

0: रामायण के प्रशिक्षण के साथ ही घर के देश प्रेमी वातावरण ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वो स्वयं में एक मेधावी छात्रा थी। सन 1916 में उन्हें एक निबंध लिखने पर पुरस्कार मिला।
1: अच्छा।
0: और उसी वर्ष उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना हुई।
1: वो क्या?
0: उन्हें लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जाने का अवसर मिला।
2: महात्मा

0: बापू।
1: हाँ स्वरूप बिटिया,
0: आपसे एक बात पूछूं बापू?
1: अवश्य पूछो बिटिया।
0: इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने सिर झुकाते हैं, आप हर तरह की सुविधा ले सकते हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं लेते बापू, इस तरह नंगे शरीर क्यों रहते हैं?
1: इसका भी एक कारण है बिटिया। जब मैं भारत आया तो मेरे गुरुजी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने मुझे भारत भ्रमण करने के लिए कहा, जिससे मैं भारत की जनता की दुर्दशा को सही तरह जान सकूं। और जब मैंने भारत की निर्धन और लगभग निर्वस्त्र जनता को देखा तो अपने कपड़े बोझ और शर्म से भरपूर लगने लगे, और बस तभी से मैंने खादी के एक टुकड़े से अपने शरीर को ढांप लिया।
0: क्या हमारे देश की जनता की हालत बहुत खराब है बापू?
1: हाँ बिटिया, उनकी दशा को जानने के लिए तुम्हें उनके निकट जाना होगा।
0: मैं अवश्य जाऊंगी बापू, मैं भी देश के लिए काम करूंगी।
1: अवश्य करो बिटिया, अवश्य करो, देश के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। पहले देश को स्वतंत्र कराना, फिर राम राज्य की स्थापना करना।
0: मैं राम राज्य के बारे में जानती हूँ बापू।
1: अच्छा मोतीलाल जी, आपकी बिटिया बहुत होनहार है, इसे साबरमती आश्रम भेज दीजिए, वहाँ ये भी देश सेवा में अपना योगदान देगी।
2: तो इस तरह स्वरूप कुमारी को साबरमती आश्रम भेज दिया गया और वहीं उनकी देश सेवा की यात्रा आरंभ हुई।
3: बहनों, बाबूजी ने आह्वान किया है कि विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अंग्रेज हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर अपनी वस्तुएं हमारे देश में डाल रहे हैं। हम उनकी वस्तुएं खरीद कर अपने देश का धन बाहर नहीं जाने देंगे। हम विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे,
4: जलाएंगे, होली जलाएंगे।
3: विदेशी माल और शराब के अड्डों पर धरना देंगे,
4: बिल्कुल देंगे।
3: हम उन अत्याचारियों की योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे,
4: कभी सफल नहीं होने देंगे।
3: चलो, देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का समय आ गया है।
4: हम अपने देश का

0: इस तरह केवल 16 वर्ष की उम्र में ही स्वरूप कुमारी ने देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान आरंभ कर दिया। हाँ, इन्हीं आंदोलनों के दिनों में उनकी भेंट रणजीत पंडित नामक एक गुजराती युवक से हुई। वो कोलकाता में वकालत करते थे और उन्होंने कश्मीर के अमर कवि कलहण की राज तरंगिनी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। स्वरूप और रणजीत ने विवाह सूत्र में बंधने का निर्णय ले लिया। 1921 में महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से ये काम संपन्न हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार विवाह के बाद स्वरूप कुमारी का नाम बदलकर विजय लक्ष्मी पंडित रख दिया गया।
1: अच्छा।
0: परंतु उनकी राह नहीं बदली। स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान पहले की भांति बना रहा।
2: देशवासियों, ब्रिटिश साम्राज्य ने राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत की यात्रा पर भेजा है। वो हमारी किसी भी मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम भारतीयों को अपने देश का शासन सौंपने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनकी मंशा गलत है। बापूजी के आदेश पर पूरे देश में उनकी यात्रा का विरोध किया जाएगा। हमें यहाँ राजकोट में ये विरोध करने का आदेश मिला है। हम काले झंडों के साथ यहाँ एक जुलूस निकालेंगे और यदि अंग्रेज सरकार ने चाहा तो गिरफ्तारियाँ भी देंगे।
0: स्वरूप कुमारी एक संपूर्ण महिला थी। सक्रिय देश सेवा के साथ ही उनका पारिवारिक जीवन भी चलता रहा। सन 1923 में उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, परंतु कुछ ही महीनों बाद वो चल बसी। आगे चलकर उन्हें दो और पुत्रियों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1926 में वो अपने पति के साथ यूरोप की यात्रा पर गईं। वहां से लौटने के बाद उनके पति श्री रणजीत ने अपनी वकालत इलाहाबाद में ही आरंभ कर दी। सन 1929 में लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इसके साथ ही स्वरूप कुमारी ने, जो अब विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जानी जाती थी, स्वाधीनता संग्राम में और अधिक समय देना आरंभ कर दिया।
3: अंग्रेजों के अत्याचार तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
4: हाँ भाई, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले किसी नेता को नहीं छोड़ा, सभी को जेलों में ठूंस दिया है।
3: विजय लक्ष्मी जी के पति रंजीत जी को भी तो नैनी जेल में रखा गया है।
4: उससे भी बुरी बात ये है कि ये अंग्रेज महिलाओं के प्रति संवेदना की भावना नहीं रखते। विजय लक्ष्मी जी को नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पूरे एक साल के कठोर कारावास की सजा दी है।
3: अरे भैया, जब किसी चीज की अति होती है तो उसे समाप्त होना ही होता है। तुम देखना, देशभक्त अब अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर ही मानेंगे।
4: हाँ।
0: जेल से बाहर आने के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने पति के साथ नगर पालिका बोर्ड के चुनाव में विजय प्राप्त की। फिर स्वायत्तता विधेयक पास हुआ, जिसमें भारतीयों को शासन में भागीदारी देने की बात कही गई।
1: अच्छा?
0: बेटा, जो आज उत्तर प्रदेश है ना,
1: हाँ?
0: तब ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा?
0: हाँ, वहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने और सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित को स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। और वो आधुनिक भारत की पहली महिला मंत्री बनी।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसी समय उन्होंने पंचायत राज विधेयक का मार्गदर्शन किया और संविधि पुस्तिका पर यह विधेयक रखा गया। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन युद्ध में घिर गया था। उसने भारत की जनता और भारत के नेताओं से सलाह किए बिना ही भारत को युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया। इसके विरोध में सभी भारतीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिए। नाराज अंग्रेज सरकार ने सभी को बंदी बना लिया। विजय लक्ष्मी पंडित भी उनमें शामिल थी।

0: इसी बीच सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। एक बार फिर गिरफ्तारियां हुई। विजय लक्ष्मी पंडित को भी जेल में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य खराब होने पर सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके पति श्री रणजीत पंडित भी एक अलग जेल में बंद थे। हृदय रोग के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। परंतु बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद सन 1944 में उनका निधन हो गया। विजय लक्ष्मी जी अकेली पड़ गईं। उस समय के संयुक्त परिवार के नियमों के अनुसार उन्हें पुत्र न होने के कारण पारिवारिक संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिला। महिलाओं के इस दर्द को उन्होंने समझा और इसके लिए लंबा संघर्ष भी किया, पर उस कठिनाई में भी उन्होंने देश सेवा का काम नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने वहां जाकर सेवा कार्य आरंभ किया। अनाथ बच्चों के लिए बाल कोष की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इस निधि के लिए धन जुटाया। उनके इस काम से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए।
1: स्वरूप,
2: बापू,
1: आज भारत को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखे। ब्रिटिश सरकार के गलत प्रचार के कारण भारत की सही तस्वीर उन तक पहुंच नहीं पाती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम संभालो।
2: जी बापू।
0: और उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने का काम संभाला। आगे चलकर यही उनका मुख्य काम और उनकी पहचान बन गया।
2: अच्छा।
0: द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पर ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना आरंभ कर दिया, जो अपने तरीके से देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान कर रहे थे। बस भारत की जनता भड़क गई।
3: आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मुक्त करो।
0: देश की ओर से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली जैसे नामी वकीलों ने पक्ष संभाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय लक्ष्मी जी ने भारत का पक्ष रखा। आखिर ब्रिटिश सरकार को आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ना ही पड़ा। फिर 1946 में एक बार फिर विजय लक्ष्मी जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और फिर से अपना पुराना मंत्रालय संभालने लगी। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। इसके साथ ही उनकी देश सेवा और भी बढ़ गई, पर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकता थी। गांधी जी की सलाह पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता बनाकर न्यूयॉर्क भेजा गया। उसके बाद उन्हें रूस और फिर अमेरिका और इंग्लैंड का राजदूत बनाया गया।
2: अच्छा।
0: वो विश्व की पहली महिला राजदूत बनी। जब वो अपना कार्यकाल समाप्त कर भारत लौटी तो 1952 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने की उनकी जिम्मेदारी बनी रही। और फिर 1953 का वो दिन आया जो भारत के लिए गौरव से भरा था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया।
4: मैं भारत के लिए किसी भी पक्षपात की अपेक्षा नहीं करती और न ही दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय प्रवासियों के लिए कोई उपकार। मैं चार्टर के प्रमाणित उल्लंघन पर इस महासभा के पंच निर्णय की मांग करती हूँ।
0: वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए पहली महिला और एकमात्र भारतीय सदस्य थी। उन्होंने भारतीय महिला की शक्ति को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद वो इंग्लैंड और स्पेन की राजदूत भी बनी।
5: अच्छा?
0: हाँ। और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला। फिर देश को भारी क्षति हुई।
5: क्या?
0: जवाहरलाल जी का निधन हो गया। विजयलक्ष्मी जी उनकी सीट के लिए हुए उपचुनाव में विजयी होकर लोकसभा पहुंची। इस तरह वे स्वतंत्रता के बाद भी देश सेवा में लगी रहीं। पर व्यक्तिगत थकान के कारण उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र दे दिया और देहरादून में रहने लगी। वहीं 1 दिसंबर 1990 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हर वर्ग, हर उम्र और हर प्रांत की महिलाओं की बराबर भागीदारी थी। स्वतंत्र भारत सदैव उन महिला क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित एक ऐसी क्रांतिकारी थी।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, निर्माण और

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: तो वीर बाबजी महाराज
1: अरे थे तो बाबजी पुटरा घना।
2: अभी बजे हैं दोपहर के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कंचन पंखा में बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में भी आपा बैठा और मटकी को पानी भी पी दो, तृप्ति मिलगी नी।
2: हाँ, प्यास बार बार लागे क्योंकि अतरी गर्मी पड़े रही है नी, तो अतरी गर्मी में पानी पन भी ज्यादा भावे।
1: और वैसे यानी पानी ज्यादा पीनो छावे।
2: हाँ, गर्मी तो पीनो ही सही जे।
1: हाँ, तो चलो ठंडे ठंडे पानी पी दो तो और भी मन खूब तृप्त हो गयो। और आपा आमथला में हाँ बात कर रहे हैं, तो चलो आप भी सब ठंडो पानी पी ली दो तो भी पाछा
2: चलो। हाँ, गाँव रे अंदर आलो।
1: हाँ, गाँव रे अंदर हाला।
2: थोड़ा बहुत अपन ने बताया है, और तो पन भी कहती थी पानी रिन बिजली री घनी समस्या है।
1: अरे पानी और बिजली की तो नहीं कह रहा, कैसी तो गर्मी पड़ रही है और ऐसी गर्मी में लाइटा पर ही जावे तो पंखा वगैरह रेणी आवे नहीं। और वे कहे न तो कमरा में ठेर सका, बाने जावा तो बाने तो तावड़ो।
2: लेकिन शुक्र है कि आपोरे तो अटे जी त्री कटौती नहीं वे। अरवन साइड में देखो, बाड़मेर जैसलमेर साइड पानी री अति दिक्कत आवे के लोग दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर जाए ना पानी भरवान लेन आवे।
1: हाँ, फिर भी हटे तो एक दिन छोड़न एक दिन पानी तो आवे।
2: हाँ, बटे तो पीवारो पानी पन भी हाथे नहीं आवे, लेकिन लोगों ने परेशानी तो है ही।
1: वही तो कंचन है, आपा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा ना तो यह मुश्किल नहीं आवे। आपा कतरी बार देखे के गांव में आपा जावा यदि रोड की लाइटा चालू की चालू रहे सुबह।
2: हाँ,
1: जबकि सुबह रोड की लाइटा का जरूरत ही नहीं पड़े।
2: वो तो हर एक ने सावधानी रखनी पड़े, जो लाइन मैन है, लाइट जलावा वाला बाऊजी है, वना ने या गांव वाला ने सतर्क रहना पड़े। क्योंकि कई चीजों छोटी छोटी बचत थी आप सहयोग कर सको आप सरकार ने आप गांव ने।
1: हाँ, तो आप ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देवा तो भी थोड़ी कटौती में फर्क पड़ जावे।
2: लेकिन अभी बरसात वेवन ने पहले ही से एक सुविधा पन भी करनी सी जे, छोटा छोटा एक गड्ढा खोदे ने तालाब रो रूप देना सी जे, ताकि बरसात रो पानी वे ने वन में भरे ने काम आवेला।
1: सही है, क्योंकि पानी तो जल है तो जीवन है।
2: हाँ, पशु पक्षियों वास्ते तो कतरो काम में आवेला, धराव कटे पिए पानी।
1: इंसान तो मुंडो मांगनी पीले पर बेचारा ये प्राणी कटे जावे।
2: हाँ बेचारा, आजकल तो हमें वो अवारा पन भी हुकोड़ा पड़िया, तालाब पन भी हुकोड़ा पड़िया,
1: सब तरफ हुका है। वाणी वास्ते में प्याऊ ने देखे हुए माता जी पानी पारिया सबने, तो यू लागो कि राम इंसान तो चलो आन अटे तृप्त भी वे जावे, पानी भी पी ले, पर ये जीव जनावर बैठा यहाँ के लिए कोई व्यवस्था नहीं।
2: नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन कटे कटे करे पन भी है,
1: कटे कटे कुंडिया भी है।
2: आप और जटे जंगलों में अभी देखो तो कटे कटे पानी टैंकर ती डला, धूप में पानी कटुती आता जाता पीता रहे, होद वे होद में डाले पानी,
1: होद है कुंडिया है।
2: हाँ,
1: लंबी लंबी वे बना रखी वे टंकिया टाइप।
2: हाँ, पशु पक्षी अब तपन भी तो करे रिया है।
1: हाँ, करे
2: छोटा छोटा वे काई बोले
1: कुंडा टांग दे वे काना वे जैसे मोटो दीवाने टाइप हो वे। हाँ, माटी को बुनियो। हाँ, सको आने तीन काना वे वाके तीन ही डोरिया बांध घर का तार पे किपे भी लटका दे।
2: हाँ, सब रे एक एक रे घरे में पन भी टांग दो नी तो बहुत बड़ी सेवा वे जाए।
1: हाँ,
2: कई पक्षी उड़े नावे ने बिचारा पानी पियन जाए, दाना चुगेन जाए, कतरो धर्म रो काम पन भी वे।
1: सही है, और जैसे तू कह रहे ना गाय भैंसा के लिए भी पानी की व्यवस्था वे, पर आपा देखो वोटे दिखियो नहीं है, बहुत कम वे तो खरी पर कम वे।
2: हाँ,
1: अब यानी कम में बेचारा याने कटे प्राणी ने याने कटे खबर पड़े कटे हैं कटे नहीं है।
2: हाँ, तो घर घर ये में समस्या वेगी, लेकिन आपने सबने ध्यान रखो कि आवा वाला समय कह रहा हूँ पहला तीस आपो घर में सब व्यवस्थित जल्दी पानी आवे तो सब छोटा मोटा बर्तन भरेन रखे।
1: हाँ,
2: है नहीं?
1: ताकि और, प्राणी ने भी आपा पा सका।
2: हाँ, और दूसरा जो कपड़ा निचोवारे बाद में जो पानी वे नी वनती आंगनरी सफाई करो, पेड़ पौधा में डाल दो,
1: साबुन को पानी बचे। अब वही साबुन का पानी हो आपा चो कनिये धो सका, सिंक वगैरह धो सका, और साबुन का पानी घर को पोतो लगा सका।
2: हाँ,
1: और जैसे अब बर्तन अब तो आजकल तो लिक्विड साबुन माजवा लग गया, पहली तो बानी माजता राखू बर्तन, तो वो पानी पेड़ पौधा ने पाओ वो काम को।
2: हाँ, डाल सको तो छोटे छोटे आपको चीज रो ध्यान रखे ने पर भी पानी रो अच्छी तरह से यूज कर सको।
1: हाँ,
2: पानी भरे राखो कोई वेस्ट नहीं जावे। पण भी आपो देखो गावरी दास्तान घर घर की कहानी देखो कि देखो वे एक औरत जो अपनी कहानी बताई।
1: हाँ,
2: कितनी दुखियारी
1: थी, कितने दुखियारी वाके मुंडा देख मन ऐसो लाग्यो के रहा हूं कतरो दुख है इंसान बहाने सबने कतरो सुखी नजर आवे,
2: सच
1: पर
2: में
1: अंदर झांकन देखा तो कतरो दर्द छिपे सको।
2: सच में राजस्थान रो जो अपो रीति रिवाज है, जत्रो पारंपरिक रीति रिवाज है, वत्री और बंदिश पण भी है औरतों में।
1: हाँ,
2: आज पण भी देखो तो हाँ आपो कौरियो शिक्षा वधी है सब कुछ, आज एक औरत घर थी बांधने जावा लागे, लेकिन कटे कटे नजारो कुछ एरो है कि सच में आपर आंखों में आंसू आ जावे।
1: हाँ बाकी बात हो तो आपने यही हाल हुए,
2: लेकिन देखो सच में कहते हो औरत रा जो सब कुछ है तो एक पियर नहीं सब कुछ माने जब तक वह बचपन थी बड़ी वे जाए, बड़ी हाँ। वे तो सब कुछ बनने वास्ते तो माँ बाप ही सब कुछ है, और जब ससुराल में जाए तो ससुराल रे वो यार ही रहे, लेकिन कुछ दुख दर्द आवे तो बनने वास्ते तो अगर वो ससुराल भी ससुराल नहीं है, और जब पियर रो आश्रय मांगे तो पियर में अगर वरना खुदरा अपना कोई नहीं है तो कट जाए वा।
1: शादी बाद कटे कटे कोड़ता की ऐसी हालत केवा धोबी को कुत्तों ने घर को ने घाट को ससुराल में दुख मिले पियर में आश्रय नहीं मिले तो वहाँ की हालत कतरी खराब है वे।
2: लेकिन मन्नी कहानी कह रही है देखो मर्द जात कुछ भी कर सके लेकिन औरत नहीं कर सके।
1: हाँ।
2: आज पति पत्नी जो भी है साथ फेरा ले साथ जन्म रो साथ निभावा रो कसम डाले। दूसरा है कि अर्धांगिनी माना आज वह हकदार है आपरे हर चीज में आधा भागीदार है।
1: हाँ।
2: लेकिन वरने आजकल मूडो देखना पड़े एक पियर रो आश्रय अगर वरने पियर में पण भी कोई भाई और भाभी अगर साथ नहीं दे तो कटे जावेला
1: कटे जावे।
2: वरने दास्तान को ये देखो
1: पिताजी की तो डेथ वेगी।
2: हाँ पिताजी री तो डेथ वेगी।
1: हाँ।
2: है माँ है घर में तीन चार बहनों है हाथ पीला करना है घर में पण भी छोटा छोटा बाल बच्चा
1: हाँ।
2: है
1: और भी भाई बहन है।
2: हाँ और वह आपने पियर आसरो ले या भाई रे मदद मांगे कन थी लेकिन भाई पण भी आजकल कौन भाई रिया है।
1: हाँ।
2: पहला तो भाई अपने बहन रे एक कसम निभावता कि जब तक वह जिंदा है तब तक वन्ने एक छतर छाया रहता।
1: हाँ।
2: कि भाई माना फर्ज निभावा
1: कंचन पहला तो भाई बाप को फर्ज निभावतो
2: अरे रक्षा रो पूरो बंधन रो तोड़ निभावतो।
1: हाँ। और अबे तो अठे तो आपा बेन आपने सुना रहे हाँ कि भाई तो साफ नटियो तू तार जा थाने अठे रोटी नहीं मिले
2: रोटी
1: नहीं मिले असान केता भी वहने शर्म नहीं आई।
2: सही बात है लेकिन नहीं यारो नहीं मैंने सर मैं तो सबने अगर ये करो कि आप रे घर में पण भी बहन बेटी अगर कोई बहू पण भी आवे तो वापन भी तो गन्ने घर ही बहू बेटी है नी। जब वापन भी घर ही बेटी है तो जन्ने घर में वहां ननंद है तो वापन भी तो नहीं बेटी है दुख दर्द वही तो मारे पास नहीं आए तो कन्ने पास आईला है नहीं। तो औरत ने समझनो सीजे एक दूसरा रो दुख दर्द समझनो सीजे परिवार परिवार ही स्वे आज काले उठे ने कुछ भी अगर कोई समस्या आवे कुछ अगर एरो परिस्थिति आवे कौन कामे आवे
1: घर का ही आवे
2: है बहन बेटियों ही आयला एक बहन बेटी हक पुसवा वास्ते आयला कुछ भी वही ला घर में दुख दर्द पड़ी तो दौड़े ना अपने ससुराल ती आयला।
1: हाँ जी बात
2: तो वो चीज वेणो सीजे सब में हरेक रो दुख अपनो दुख समझनो सीजे है नहीं।
1: बिल्कुल कंचन तो चलो आपा गाम में तो घूमिया घामरी बात ही की दी पर अबे ध्यान रख समय को मारे तो घरे जानो पड़ी मने तो याद आ गयो कल तक टाबरा ने स्कूल भेजनो है।
2: अरे मैं भी चालू फिर तो काल आप दूसरा कटे गांव में जाए ना ओला।
1: हाँ आल तक तो आप
2: गावारी बात
1: गांव में घूमनो बाकी है।
2: हाँ गावारी बात करो एक और गावरी शहर कुछ दृश्य देखो ला।
1: हाँ बिल्कुल
2: सबने बताओ ला कि आपारा गाँव रे आपो इस बातों बताओ तो ठा पड़ी ला
1: के गांव में कई कई होवे।
2: हाँ अच्छी पण भी बातो है तो कुछ कमी कमजोरी और पण भी बातो है।
1: हाँ।
2: सबरो एक आईनो वे वो सबने दिखावनो जरूरी है
1: तो चल मिला और फिर
2: ठीक है राम राम
1: राम राम, राम।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता और कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इंडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। और आज मेरे साथ बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रोग्राम है बच्चों की दुनिया, जहां हम बात करते हैं बच्चों से उनकी दुनिया के बारे में, उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनकी अपनी अलग सोच के बारे में। तो मिलते हैं सभी बच्चों से। सबसे पहले हमारे साथ है शिवम। शिवम, आप अपने बारे में बताओ।
1: मेरा नाम शिवम गुप्ता है, मैं MP बजोड़ से आया हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
1: 5th।
0: और उसके बाद युग। युग, आप बताओ।
2: मैं सूरत वराचा से आया हूँ, मैं 4th क्लास में पढ़ता
0: हूँ। और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत वराचा से आया हूँ।
0: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9th में पढ़ता हूँ।
0: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
0: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
5: 2nd।
6: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं MP से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
9: हाँ दीदी। हाँ।
0: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
9: रात को
0: देखते हो। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा, जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो, जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
10: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
0: अच्छा, मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना, तो आप संगीत सीखने लगे?
10: हाँ दीदी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखिए, नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
10: मैंने देखी थी एक बार।
0: देखी थी? तो कोई सपना आया आपको?
10: हाँ।
0: उसको देखने के बाद
10: जग गए?
0: नींद से ही जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा, ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे, वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा, तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनोगे बड़े होके?
11: मैं डॉक्टर बनूंगी।
0: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
11: दीदी, मरीजों का इलाज
0: करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान, आप बड़े होके क्या बनोगे?
7: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
0: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
9: हाँ।
0: और कशिश, आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
12: टीचर।
0: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
12: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम, आप बताओ, आप क्या सपना देखते हो, बड़े होके क्या बनोगे?
13: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
0: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का, किसी को देख के? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो शिवम बड़ा होके डिसाइड करेगा। पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है?
10: संगीत कलाकार।
0: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
10: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
0: अच्छा, मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे, पहले ये बताओ क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
10: आधा गिटार है, थोड़ा सा, 2 कड़ी।
0: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष, आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
14: बड़ा होकर CID बनना चाहते
0: हो? CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है, मैं बताओ तो?
14: वह देश की रक्षा के लिए कानून होता है।
0: अच्छा, तो आप क्या करोगे CID बनके?
14: हम सभी देख रहे हैं कि अभी अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है, और उसको मैं मिटाऊंगा।
0: देश में जुर्म बढ़ रहा है, उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी ना किसी की सेवा होती है। और ईश्वरी, आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
0: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
0: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा। और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं। ईश्वरी? आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं? अच्छा अच्छा ये बताओ, आप लोगों के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं? कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं? अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल में, ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी? क्या सोचते हो बता?
5: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
15: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
16: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
7: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
16: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
14: मैं हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
10: किसी को लगता है पर हम में से नहीं।
0: आप में से किसी को भी नहीं लगता? क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है?
14: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
14: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
16: दी हमको भी यही लगता
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना? बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
16: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे? और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
15: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करती है ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे? तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें ध्यान रखना है ना, अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग?
10: बड़ा सा घर बनाऊंगा उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी? अरे वाह। और हर्ष?
14: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े बड़े बड़े लड़के कैसे अपनी मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना? तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान? और
7: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे?
16: दीदी हम
0: आप भी सेवा करोगे? और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
16: मम्मी पापा दादी दादाजी चाची चाची।
0: अरे वाह आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है, तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
16: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा? मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए?
16: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना? और आप बताओ ये?
10: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं
0: इसलिए वो
10: कैसी हो मांगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
10: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा तो उनसे
10: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं
0: दादी दादा। अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
16: मम्मी पापा दादा दादी।
0: और सबसे अच्छा
6: दीदी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा?
6: मम्मी।
0: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
15: दीदी अग्रजा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
15: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
15: तो मुझे मैं कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
0: अच्छा और मुस्कान?
7: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
7: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
7: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तब भी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
2: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ और आप बताओ?
15: दीदी हमको भी
2: वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी दौड़ दे।
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
14: कभी होती है।
0: होते हो?
15: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो?
2: एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
0: अच्छा जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं। क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा क्यों मारती है? मुस्कान क्या करते हो आप, ऐसे शरारत करते हो? बताओ ऐसे ही मारती है? क्या शरारत करते हैं मुस्कान बताओ?
7: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवम? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? हाँ युग बोला।
2: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
2: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो?
2: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा टीवी के लिए लड़ाई होती है?
2: हमारे घर में तो है ही नहीं और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
2: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वर आप कभी गुस्सा होते?
15: नहीं।
0: दे? लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
15: हाँ।
14: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा होता
14: पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
14: टीवी के लिए मेरी दो बहन है वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो? हाँ। और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
14: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
0: अच्छा और आप लोग बताओ कशिश कभी झगड़ते हो?
15: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
15: दीदी मेरी छोटी बहन है वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती है तो हम झगड़ते, तो दीदी फिर कुछ नहीं करते चुपचाप बैठ जाते।
0: फिर उनको टीवी देखने देते हो?
14: हाँ।
0: अरे वाह ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, झगड़ते नहीं और देखने देते हैं।
2: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है फिर ऐसे करके फिर का जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
2: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
2: कोई बना रहा होगा पर मैं तो कह रहा हूँ उसे।
0: अच्छा और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
2: और कोई टीवी देख रहा हो पानी पीने के लिए जा रहा हो तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है, तो टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हम
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड्स मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी धक्का देती हूं, फिर हम फ्रेंड्स बन जाते हैं।
0: अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ?
1: कभी झगड़ा हो जाता है।
0: क्यों?
1: बातचीत
0: करते हुए झगड़ा हो जाता है।
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड्स से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बताने का। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तब
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: उसकी भी जगह बता देते हो?
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी हमारे साथ
0: क्या होता है?
4: दीदी कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है उसके बाद क्या करते हो?
4: कुछ भी करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। और यू?
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मैं ही ताकतवर हूँ, सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरती है ना
0: लहरे,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर क्या चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी झूठ नहीं बोलते, ले जाते हैं।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया। अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता है उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: क्या करते हो?
1: पीछे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग करना।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं मुझे।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
7: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता
0: है। डांस में बहुत मजा आता है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
7: दीदी सारे गाने पे करते हैं, बहुत सारे गाने आते।
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कॉम्पिटिशन होता है आप पार्ट लेते हो?
7: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता?
8: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशन किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हमें प्राइज मिलता है तो मजा आता ही है?
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना, हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, अब ये बताओ आप लोगों को मजा आता है कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं?
2: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
9: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
9: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए
0: करेला। अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
9: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते
9: हैं। रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
2: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
8: दीदी लगता।
0: और आपको?
8: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे काका मजा आ गया, क्या बात है। लोकल ट्रेन, अरे काका कितनी ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, बाप रे बाप।
1: हाँ बेटा, मैं इस मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 साल पुरानी मुंबई की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसी बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन इस मुंबई में एक रईस मुसलमान परिवार रहा करता था। अच्छा? और उसमें एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
0: अरे काका बदरुद्दीन तैयब जी तो नाम सुना है मैंने।
1: हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि पढ़ाई लिखाई करके वो 16 साल का हुआ और सन 1860 में वो बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड गया।
0: अच्छा, मुंबई से इंग्लैंड।
1: 150 साल पुराना इंग्लैंड।
2: डियर बदरुद्दीन, लगता है हम इंग्लैंड में नहीं यार, हिमालय की वादियों में आ गए। हिमालय की वादियों में।
3: बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने।
2: ये यार, कहां हमारे बंबई का प्यारा मौसम और कहां ये इंग्लैंड की जानलेवा ठंड।
3: अरे जनाब, आईने में जाकर अपनी नाक देखिए, ठंड के मारे कैसी टमाटर जैसी लाल हो रही है।
2: अरे हाँ, नाक का जिक्र किया तुमने तो मुझे याद आया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन डियर।
3: अरे किस बात के लिए भला?
2: अरे मुल्क की और अपने वालदेन की नाक ऊंची करने के लिए।
3: अच्छा अच्छा, समझा। छोड़ो भी अब उस किस्से को।
2: अरे वाह, छोड़ो कैसे, लेक्चर कंपटीशन में अव्वल आए हो अव्वल।
3: अरे वो तो बस यूं ही।
2: जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी, उन अंग्रेजों को अंग्रेजी जबान में ही पटकनी दे दी और कहते हैं बस यूं ही। क्या आदा है मियां।
3: अरे भाई, इंग्लैंड में रहते हमें 150 साल भी तो हो गया है।
2: तुम कुछ भी कहो बदर, लेकिन कमाल तुमने किया है, केवल 150 साल। अरे सिर्फ 150 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, बाप रे बाप, तीन तीन जबानों पर कमाल की पकड़ की है तुमने।
3: भाई वल्लाह। नहीं, कमाल कुछ नहीं यार, बस मन किया सीखने का, मेहनत की और सीख ली।
2: हम तो ना सीख पाए।
0: डेढ़ साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, तीनों भाषाओं पे कमांड।
1: अरे सल्लू, हमने पहले ही कहा था कि मियां बदरुद्दीन कमाल के होनहार थे। अब दिमाग तो अल्लाह के फजल से तेज पाया ही था और दिमाग तेज बना भी रहा, पर नजरें कमजोर हो गई उनकी। सो मियां बदरुद्दीन को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मादरे वतन यानी हिंदुस्तान लौटना पड़ा।
3: अच्छा।
1: लेकिन सेहत ठीक होने पर बदरुद्दीन पढ़ाई जारी रखने के खातिर फिर लौट गए इंग्लैंड।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात।

0: कहिए जनाब, सेहत कैसी है?
1: थैंक्स थैंक्स,
2: सेहत तो बिल्कुल उम्दा है।
3: तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है यहाँ का?
0: यहाँ भी सब उम्दा ही है। कल ही फिरोज शाह मेहता जी से एक मीटिंग में हिंदुस्तान की मौजूदा हालात पर तकरीर सुनी है।
3: उमेश चंद्र बैनर्जी और वाडिया भी रहे होंगे मीटिंग में, क्यों ठीक है ना?
0: अरे भाई बदरुद्दीन, कल पहली बार मैंने दादा भाई नौरोजी को देखा। हाँ, हाँ। भाई देखकर मैं तो हैरान ही रह गया।
3: मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक यही हुआ था।
0: अच्छा?
3: अरे कहने को तो उम्र में 20 साल बड़े हैं मुझसे।
0: अच्छा?
3: पर मिलते हैं तो हम उम्र दोस्त हो जैसे।
0: अरे अच्छा ये और सुना, मुल्क के हालचाल सुनाओ। तुम तो
3: एक गुलाम मुल्क के जैसे होते हैं वैसे हैं। 1858 के महारानी विक्टोरिया के ऐलान के बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत गोरों की हो गई।
0: ठीक कहा भाई, उस दिन फिरोज शाह मेहता जी ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि महारानी विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की भी महारानी हो गई है।
3: कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए।
0: पर यार हम लोग कर भी क्या सकते हैं यहाँ?
3: जो कुछ होना है और जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। रियासतें और रियासतदार तो महारानी के इस ऐलान से कि अब उनकी रियासतों को अंग्रेज नहीं हड़पेंगे खुश है, उनसे उम्मीदें लगाना फिजूल है।
0: अरे भाई जनता गदर के बाद पहले से ही सहमी हुई है, और फिर कौन करेगा?
3: मैंने अभी तो कहा ना तुमसे कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा।
0: यहाँ गोरों के मुल्क में रहते हुए
3: क्या दिक्कत है इसमें? गोरे हजारों मील दूर रहकर हमारे मुल्क में घुसकर हम पर हुकूमत करने की हिमाकत कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के मुल्क में घुसकर इस हिमाकत पर उनको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते?
0: वाह भाई वाह। भाई देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में आजादी का दिया टिमटिमाने लगा है।
3: नौरोजी, बैनर्जी और मेहता जी की जलाई मशाल को दिया तो ना कहो मेरे दोस्त।
0: मुल्क के हालातों से मन में बेचैनी होने लगी है, लेकिन इसका असर हमारी तालीम पर ना हो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए।
3: बजा फरमाते हैं जिल्ले इलाही, बाखुदा तालीम बेहतर ढंग से ही ली जाएगी, कोई बेनियाजी ना बरती जाएगी।
4: आमीन
0: सुम्मा आमीन।
4: दरबार की आज की कार्रवाई बर्खास्त। शब बखैर।
5: अरे काका फिर क्या हुआ?
6: तालीम बेहतर ढंग से हासिल की बदरुद्दीन ने, और कानून की पढ़ाई पूरी करके बंबई लौट आए।
5: फिर से बंबई लौट आए?
6: हाँ भाई, और फिर बकाला शुरू कर दी।
5: अच्छा अच्छा।
7: क्या मैं भीतर आ सकती हूँ?
3: कौन? बेगम लाहौल विलाकुवत, हमारे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत की दरकार होने लगी?
7: दूसरे कमरों की बात और है, दफ्तर दफ्तर होता है आखिर। किसी मुवक्किल से बात चल रही हो और हम यूं ही दफ्तर में घुसे चले आए, क्या ये ठीक होगा?
3: मुवक्किल? कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे हालात से नावाकिफ हो। क्या समझे हम इसे कि आप भी हमारा मजाक?
7: तौबा तौबा, हम आपका मजाक उड़ाएंगे भला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
3: अरे आप तो नाहक ही नाराज होने लगी।
7: हमारी नाराजगी बेवजह नहीं थी। खैर छोड़िए।
3: छोड़ दिया। हाँ अब बताइए मसला क्या है जो आपने दफ्तर की ओर रुख किया?
7: कुछ खास नहीं, बस यूं ही आजकल आप काफी उलझे नजर आते हैं, खासकर तब जब आप अदालत से लौट कर आते हैं। क्या वहाँ कोई परेशानी है?
3: हाँ परेशानी है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी वकीलों की है।
7: भला ऐसी कौन सी परेशानी है?
3: हाई कोर्ट में सभी जज विलायती हैं, और वे हिंदुस्तानी वकीलों के मुकाबले विलायती वकीलों को ज्यादा तरजीह देते हैं।
7: ये तो सरासर नाइंसाफी है।
3: हालात तो यहाँ तक खराब है कि तमाम काबिलियत के बावजूद ये म्यूनिसिपैलिटी, रेलवे, डाक्टर और तमाम कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी वकीलों को विलायती वकीलों के मुकाबले कमतर समझते हैं, क्योंकि वो सारी विलायती कंपनियां हैं ना।
7: ओहो, ये तो परेशानी की बात है।
3: परेशानी सहने की भी एक हद होती है। फिरोज शाह मेहता को ही देख लीजिए, आजकल हिम्मत हार कर घर पर बैठे हुए हैं। वाडिया तो उकता कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले ही काठियावाड़ चले गए थे।
7: क्या वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है?
1: ठीक चल रहा है कि क्या बात है, वहाँ तो वो नाम और पैसा दोनों ही कमा रहे हैं।
7: आपने क्या सोचा है?
1: छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला आदमी नहीं है बदरुद्दीन। मैं यहीं डटा रहूंगा और हालात का मुकाबला करूंगा। आई एम सन ऑफ इंडिया, भारत पुत्र हूँ मैं।
7: आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर।
1: थैंक यू।
8: अल्लाहू अकबर।
6: हाँ तो सल्लू, ऐसा था बदरुद्दीन का जज्बा मुल्क के लिए और मुल्क वालों के लिए।
9: वाह।
6: अपनी लगन, मेहनत, विषय की पकड़, सूझबूझ और सॉलिसिटर भाई कमरुद्दीन की मदद से बदरुद्दीन ने धीरे धीरे पैर जमा लिए।
9: वाह काका।
7: तो एडवोकेट बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने आखिरकार तमाम मुश्किलातों पर फतह पा ही ली।
1: इस फतह में आप बराबरी से शरीक हैं बेगम, मुबारकबाद कबूल करें।
7: या अल्लाह, हम किस तरह शरीक हैं भला? बिना वकालत किए आपकी बीवी होने के नाते वकीलन भी कहलाती हैं जरूर, पर वो अलग बात है।
1: अरे आप साथ रहकर हौसला अफजाई ना करती तो मुमकिन है कि हम भी हालात का सामना ना कर पाते भाई।
7: इतने मक्खन के बाद तो आपकी पेश की हुई मुबारकबाद दोनों हाथों से थामना पड़ेगी, वरना चिकनाई पर खड़ी फिसल कर गिर जाएगी।
1: इस वक्त कौन आ गया दाल भात में? मूसल चंद।
10: अरे भाई बद्रू।
7: बग्घी से तो मूसल चंद नहीं, आपके मित्र गोपी चंद उतर रहे हैं।
1: नाम भले ही गोपी चंद हो, काम तो मूसल चंद का ही किया है।
11: आया भाई।
12: अस्सलाम वालेकुम मियां।
1: वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए।
12: ये मूलचंद कौन है मियां? क्या कोई नया मुवक्किल है?
1: उसे छोड़ो मियां, आप तो ये बताइए आना कैसे हुआ?
12: बस तुम्हारी याद खींच लाई यार दोस्त।
1: बैठो बैठो बैठो, रहे नसीब। हुजूर ने याद तो फरमाया।
12: अरे सोचा मुलाकात के साथ दो दो बातें भी हो जाएंगी। अरे हाँ, ये बताओ कि क्या तुम्हें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंप बेल के नए फितूर के बारे में पता है कि नहीं है?
1: अब घोरों की तो आदत हो गई है, कोई ना कोई नया गुल खिलाते रहते हैं। अरे अब कौन सा नया गुल खिलाया है इस कैंप बेल ने?
12: अरे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे।
1: अच्छा सुना लीजिए अब आप बस।
12: हुजूर, कैंप बेल साहब ने प्रस्ताव रखा है कि वकालत और वकीलों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए।
1: वल्लाह क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, काबिले तारीफ सच में।
12: अरे आपका दिमाग चल गया है हुजूर मेरे ख्याल से तो। अरे वो आपके पेट में लात मारने का प्रस्ताव लेकर आया है और आप हैं तो उसके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं, भाई हद है।
1: पहली बात तो ये है कि कोई किसी के पेट पर लात मारने की कुव्वत नहीं रखता।
12: अच्छा।
1: अरे सब अल्लाह मियां का दिया हुआ खाते हैं यार। रही दूसरी बात, तो मियां बिलाशक दिमाग तो कमाल का पाया है उसने, आप कुछ भी कह लीजिए।
12: अरे मैं कुछ समझा।

0: नहीं, मैं समझाता हूं। देखिए, अंग्रेजों को शुभा है कि हिंदुस्तानी वकील, खासकर इंग्लैंड में पढ़े लिखे बैरिस्टर, उनकी हुकूमत के दुश्मन साबित हो सकते हैं।
1: इससे ज्यादा अहमकाना ख्याल दूसरा हो ही नहीं सकता।
0: ना ना ना ना, ना इसे अहमकाना ख्याल समझना आपकी भूल है हुजूर। कैंपबेल बहुत तेज दिमाग शख्स है, इसीलिए आने वाले समय के खतरों को वो पहले ही पहचान चुका है।
1: मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया हूँ यार।
0: देखिए, वकील जनता के हिमायती बनकर जनता को उनके हकों के बारे में जगा सकते हैं।
1: अच्छा, ठीक है।
0: बहस मुबाहिसे और तकरीरों में हम वकील ही तो माहिर होते हैं मियाँ।
1: वाकई कमाल का दिमाग पाया पट्टे ने।
0: नमूने के लिए देख लीजिए, बंगाल में जो उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लालचंद घोष कर रहे हैं, तीनों वकील,
1: और यहाँ मुंबई में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और खुद आप जनता को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तीनों वकील।
0: अब मेरी छोड़िए, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ।
1: अरे खास ही कर रहे हैं आप जनाब, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के हर आंदोलन के पीछे आप वकीलों का ही तो हाथ है, और किसका है।
0: लगता है मियाँ अंदर करवा गई, मानोगे।
1: अच्छा चलते हैं, खुदा हाफिज।
0: अरे जा रहे हो?
1: अरे
0: तो चाय
1: नहीं,
0: थोड़ा सा
1: बस।
0: अरे
2: हाँ तो सल्लू, देखा तूने?
3: हाँ काका,
2: बदरुद्दीन सिद्धांत के पक्के और आत्मसम्मानी शख्स थे।
3: ये तो दिखा काका।
2: बहुत गंभीर सौम्य बदरुद्दीन साहब को किसी किस्म की कोई लत नहीं थी, सिगरेट शराब से कोसों दूर।
3: अच्छा।
2: सारे काम नियम पूर्वक करते और समय के पावन थे। आत्मसम्मान तो जैसे कूट कूट कर भरा था उनमें। वाह।

0: ये मिस्टर पार्सन क्या समझते हैं अपने आप को?
1: क्या हो गया मिस्टर पार्सन को और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
0: अरे नया आया है बंबई में जज बनकर, इसलिए सोचा कर्सी विजिट दे आऊं।
1: ठीक किया आपने।
0: पर मिस्टर पार्सन ने कहाँ ठीक किया?
1: आखिर किया क्या उसने?
0: कहने लगा इस वक्त बिजी हूँ।
1: अरे ये तो सरासर बदतमीजी है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: पता नहीं ऐसे लोगों को क्या देखकर जज बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
0: अरे रंग देखकर, गोरा होने से बड़ी और कोई काबिलियत नहीं होती उनकी नजर में।
1: ओह इसीलिए आप इतनी जल्दी चले आए?
0: मैंने भी कह दिया बहुत काम रहते हैं मेरे पास, बहुत बिजी हूँ, चल दिया वहाँ से मैं।
1: ठीक किया आपने।
0: उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था शायद, इसीलिए मेरे पीछे पीछे बग्गी तक चला आया और लगा घोड़ों की तारीफ करने, पर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं दिया, चला आया वहाँ से मैं।
2: वाह काका, बड़े स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन साहब।
3: हाँ सल्लू, ऐसे स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। बकाला धीरे धीरे जमने लगी थी, अब उन्होंने सार्वजनिक कामों में भी खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1872 में एक नया कानून पास हुआ जिसके तहत 1873 में बंबई कॉरपोरेशन के कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ।
4: अरे बदरुद्दीन साहब, आदाब अर्ज़ है, आइए।
5: आदाब है।
4: बदरुद्दीन साहब, सुना है आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं?
0: ठीक सुना है आपने।
4: हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
0: अरे हम तो सिर्फ खड़े हो रहे हैं मियाँ, सारे काम तो आप लोगों को ही संभालने हैं।
2: अरे इत्मीनान रखिए, माशाल्लाह फतह हमारी होगी।
0: आमीन आमीन।
4: बदर साहब तो इजाजत दीजिए, आज ही से काम में लगना होगा।
3: हाँ तो सल्लू, बंबई कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने शानदार तरीके से जीता, फिर 1882 बंबई व्यवस्थापिका परिषद में नामजद हुए।
2: अरे वाह।
3: पर खराब सेहत होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, पर जब तक रहे तब तक भारतीयों के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत करते रहे।
2: वाह वाह।
0: बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदर होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है।
1: सदर हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी होंगी ही।
0: ठीक फरमाती हैं आप, पर इस बार एक अलग किस्म की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन के कंधे पर आ पड़ी है।
1: ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भला जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है?
0: परेशान नहीं है हम, परंतु जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है ना, जिसे अच्छे से निभाना होता है। एसोसिएशन के झंडे तले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी होगा और चुनाव भी।
1: फिर तो आपकी मसरूफियत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी।
0: ठीक फरमाती हैं आप।
1: हमारा तो कहना है कि जो भी करना है जरूर करिए, पर पहले खुद की सेहत का ख्याल रखिए।
0: अच्छा अच्छा, आज आपने वो आपकी हमेशा वाली कहावत नहीं दोहराई, क्या है वो, एक से
1: हाँ,
0: क्या
1: एक से सेहत हजार नियामक। हाँ हाँ, उड़ा लीजिए मजाक।
3: इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए खूब धूमधाम से तैयारियां की गईं, पर आखिरी वक्त बदरुद्दीन साहब को किसी काम से कैम्बे जाना पड़ा और वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग न ले पाए। दूसरे अधिवेशन में भी वे उपस्थित न रह पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी।
1: आ गए आपके दोस्त।
0: आइए आइए, पूरे 3.5 मिनट लेट हैं आप, सुनाइए क्या हाल है?
4: 3 मिनट और 41 सेकंड। खैर हमारे हाल चाल तो ठीक है, पर सुना है अंग्रेजों को ठीक नहीं है।
0: जो सबके हाल खराब किए रहते हैं उनके हाल खराब है क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया?
4: ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है, कांग्रेस का गठन हुआ है
0: तो
4: अरे अंग्रेज सरकार फिक्रमंद हो गई है, उन्हें शक होने लगा है कि कांग्रेस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए।
0: अरे इन गोरों को तो हम हिंदुस्तानियों की हर बात पर शक होता है,
4: और इस शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता है।
0: अरे इलाज करना किसे है, कांग्रेस के अपने मकसद हैं और वो उन मकसदों के लिए काम करेगी।
4: अरे सुनने में तो और बहुत कुछ आया है।
0: और क्या सुना है आपने?
4: ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी पुरानी फूट डालो राज करो वाली नीति चला रही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ।
0: 100% सच, 100%।
4: क्या कह रहे हो?
0: लॉर्ड डफरिन बंबई आकर मुझसे मिलकर गए हैं, दोनों कौमों को बांटने वाली भड़काऊ बातें, बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है और हम लोग कैसे झांसे में आ गए। देखिए
4: आपने क्या जवाब दिया?
0: हमने साफ साफ कह दिया कि मियां डफरीन साहब आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, और बेहतर तो यही होगा कि इस मकसद से आप कहीं और बात करने न जाएं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो।
4: आपकी बात समझ में आई या यूं ही सर के ऊपर से निकल गई?
0: देखो मियां, कुछ तुम्हें 12 साल बाद भी नलकी से बाहर निकालो तो टेढ़ी ही निकलती हैं। और कुछ मर्दूत तो नलकी को भी टेढ़ा कर देती हैं।
4: भैया दुम वाली मिसाल तो खूब दी आपने।
0: कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सेहत खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, पर पता चला कि उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था।
4: हाँ भाई, हमें भी इस बात का पता चला था और सुनकर बहुत अफसोस हुआ था इस बार।
3: कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने बड़ा प्रभावशाली, ओजस्वी और मर्मस्पर्शी भाषण दिया। जाति के आधार पर आपस में भेदभाव ना करने की सलाह दी और बंटवारे के खतरों से आगाह किया।
5: कौन है भाई, कौन है?
2: अरे साहब, आपकी चिट्ठी आई है पोस्टमैन ने।
5: ओ, आता हूँ, ठहरो एक मिनट, मैं जाता हूँ, तुम बैठो।
3: ले लीजिए सर।
5: कैसे हो?
0: डियर मिस्टर बदरुद्दीन तैयब, प्लीज मेक ऑफ द ऑफ जज।
4: बेगम, बेगम मुबारकबाद। अरे भाई, अदालत में एक जगह खाली है जज की, सरकार ने हमें जज बनने का ऑफर दिया है।
1: क्या? अरे सच में?
4: खत का मजमून तो यही कह रहा है भाई।
1: फिर क्या सोचा है आपने?
4: अब सोचना क्या है, कबूल करेंगे और क्या।
1: क्या अंग्रेज सरकार की मुलाजिमत करेंगे?
4: बेगम, इसका दूसरा पहलू देखिए। इन गोरे जजों के हाथों तो हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलने से रहा। कम से कम एक काला हिंदुस्तानी दूसरे काले हिंदुस्तानियों को इंसाफ तो दिला पाएगा।
1: बात तो एकदम सच है, पर क्या ये मुमकिन होगा?
4: देखिए बेगम, आदमी उसूलों का पक्का बना रहे बस, फिर कुछ नामुमकिन नहीं रहता। किसी ताकत या खतरे से टकरा जाने की ताकत आ जाती है उसमें। कल ही अपना जवाब भिजवा दूंगा।
1: कल क्यों, आज क्यों नहीं? भूल गए पुरानी सीख, काल करे सो आज कर।
2: अरे वाह, तो काका बदरुद्दीन तैयब जी जज बन गए।
3: और थोड़े ही समय में बदरुद्दीन तैयब जी साहब जज के रूप में खासे मशहूर हो गए।
2: वो तो होना ही था काका। क्या बात है?
3: काबिलियत और स्वतंत्र विचारों के दम पर उन्होंने अच्छे अच्छों को कायल कर दिया। उनकी निष्पक्षता और न्याय प्रियता की चर्चा

0: से नहीं मिलता, क्योंकि उनमें केवल दफाएं और उन दफाओं में दी जाने वाली सजाएं होती हैं बस।
1: तो इंसाफ कहां रहता है?
0: आपके साफ दिलो दिमाग में रहता है। दिल की गहराई से आवाज उठे और उसकी ताईद आपका दिमाग भी करे तो समझिए कि आप इंसाफ की राह पर हैं।
2: वकालत और फिर जज का काम करने के अलावा बदरुद्दीन साहब ने राजनीति, शिक्षा और समाज सुधार के कामों को भी बखूबी किया।
0: अच्छा।
2: जज रहते हुए भी उनकी इजलास में एक बार लोकमान्य तिलक की जमानत का मामला भी आया।
0: अरे वाह। अच्छा।
2: लोकमान्य तिलक। हाँ सुनो तो, किस्सा कुछ यूं था कि जून 1897 में रैंड नाम के एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई।
1: आदावर से बदर साहब, और क्या हाल चाल है?
0: आदावर से, आजकल तो ये रैंड मर्डर का मामला बहुत गर्म है
1: भाई। पता चला है कि अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं। हुकूमत के खिलाफ इसे साजिश समझ रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने, ये अशांति और उत्तेजना फैलाने के इल्जाम में सरकार ने तिलक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
1: लेकिन ये रैंड मर्डर से तिलक जी का क्या संबंध?
0: बात आपको समझ में आ गई है पर सरकार को नहीं मिला।
1: मामला क्या है?
0: अरे देखिए, तिलक एक अखबार निकालते हैं, केसरी, पता है ना आपको?
1: जी जी जी।
0: तिलक ने शिवाजी मेले में शिवाजी द्वारा की हत्या को उचित ठहराने वाले भाषण दिए।
1: हाँ।
0: और यही भाषण केसरी में छाप दिए। माना मिल गया सरकार को।
1: सरकार तो नाइंसाफियों की हदें पार कर रही है।
0: तिलक की जमानत की दरखास्त दो बार खारिज की जा चुकी है। तीसरी बार मेरे सामने मेरी अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई है, मालूम है आपको?
1: तीसरी बार? अरे साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ना?
0: बिल्कुल नहीं, कल जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाना है।
2: और अगले रोज फैसला सुनाया बदरुद्दीन तैयबी साहब ने।
0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तिलक एक सज्जन और विद्वान पुरुष हैं, लिहाजा सुनवाई के वक्त वे अदालत नहीं पहुंचेंगे, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जमानत मंजूर न होने की दशा में इंसाफ का गला घुट जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि एक महीने बाद वे बेगुनाह साबित हो जाएं। इसीलिए जमानत मंजूर करना ही न्याय संगत होगा।
2: निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में बदरुद्दीन की ऐसी धाक थी सल्लू कि इस फैसले के खिलाफ बोलने का साहस किसी को ना हुआ, अंग्रेजों को भी नहीं हुआ। इस महान देशभक्त और समाज सुधारक ने 11 साल जज के रूप में गुजारे और 19 अगस्त 1906 को इंग्लैंड में हार्ट फेल से वे गुजर गए। सारा देश शोक में डूब गया। हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको भेजना है एक प्रेरक स्लोगन। अब हमें आज्ञा दीजिए, इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर। कार्यक्रम हिंदुस्तान।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम यशस्वी भारत में। आज है हमारे साथ उर्मिला श्रीवास्तव जी। आप एक काजरी फोक सिंगर हैं और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपको 2024 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है फोक सिंगिंग के लिए। तो चलिए बातचीत करते हैं कि मिर्जापुर से आते हुए ये कजरी फोक सिंगर जो उर्मिला श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने फोक सिंगिंग की फील्ड में किस तरीके से अपना योगदान किया है। नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो फोक सिंगिंग की यात्रा है वो कब और कैसे शुरू हुई, और आपकी ये जो कहानी है हम आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं।
1: सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया और यहाँ मैं आई हूँ। तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह की है, मेरा बचपन, मेरे माँ बाप तो तीन, मेरे भाई मतलब हम चार भाई बहन थे और अब तो सब बड़े हो गए हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे तीनों भाई और हम मतलब चारों लोग बिल्कुल अनाथ ही हो गए थे। फिर बाबा दादी थे, चाचा चाची थे, उन्होंने पाला पोसा और जो संभव हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। मैंने भी अपने जीवन में मेहनत किया, ट्यूशन किया और जब परिस्थितियां खराब हो गई तो अपने भाइयों के लिए जो भी हो सका मदद किया और हम चारों भाई बहन पढ़ते रहे। हमें बचपन से गाने का बहुत शौक था, किसी का भी गाना सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं मिर्जापुर की हूँ, मैं वहाँ की बेटी हूँ और बाय द वे मेरी शादी भी मिर्जापुर में हुई। तो मिर्जापुर में लोकगीतों की एक विधा कजरी है, वहाँ के कजरी गायन बहुत प्रसिद्ध है। ये कह सकते हैं कि कजरी का उद्गम, कजरी की शुरुआत मेरे मिर्जापुर में ही हुई है। वैसे तो आसपास के जगह में लोग गाते हैं, बनारस में, जौनपुर, गाजीपुर, आसपास भी लोग गाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रज के लोकगीत होली जो है ब्रज में है, तो उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कजरी जो हमारी एक विधा है, लोकगीत की एक विधा है। लोकगीतों के अनेक विधाएं हैं, देवी गीत है, पूर्वी है, चैती है, होली है, कजरी है, खेमटा है, इस तरह से संस्कार गीत है, खेती बाड़ी के गीत, सारे गीत आते हैं लोकगीतों में। लेकिन उसमें जो मिर्जापुर की कजरी है, हमारे चूंकि मिर्जापुर की है तो वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और आप यूं कहिए कि हमारे बचपन में जगह जगह हर चौराहे पे, हर गलियों में, हर घरों में गाई जाती थी। और मुख्यतः जो नागपंचमी का त्योहार होता था उस दिन से शुरू होता था, या ऐसे कहिए तो सावन और भादों के महीने में, जब कजरारे बादल घूमड़ घूमड़ के चारों तरफ वर्षा होती है और पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उस बारिश के दिनों में मदमस्त हो जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं खुश होगा। तो इंसान खुश होगा तो कुछ न कुछ अंदर से उसके उमंग उठेगी, तो उस उमंग को कैसे व्यक्त करें। तो हमारे जो मिर्जापुर में जो गीत गाई गई, गीत को पहचाना गया, लोगों ने गाया और चिरकाल तक चलता रहा, शुरू से और आज तक चलता रहा और आदि अंत तक चलता रहेगा, तो वो है हमारी बहुत प्यारी सी कजरी, जिस गीत का नाम कजरी है। एक बात और है कि कजरी आप ऐसे कह सकते हैं कि कजरारे बादल से भी लिया गया है, लेकिन एक और इसके सबसे बड़ी विशेषता है, वहाँ विंध्याचल माँ है मेरी, विंध्यवासिनी माँ, उनका नाम कजला देवी है।
0: अच्छा,
1: तो हम ये कह सकते हैं, वैसे किंवदंतियां तो बहुत सारी होती हैं, कहानियां बहुत होती हैं, लेकिन जो हम लोग अपने दिल से मानते हैं वो ये कि मेरी माँ विंध्याचल माँ का एक नाम कजला देवी है, उनके नाम से ये गीत की। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो मेरे सामने स्वरूप है वो मेरी माँ का है, विंध्याचल माँ का है, तो उनके नाम से गाए जाने वाले गीत को हम कह सकते हैं कजरी। कजला देवी उनका नाम, तो उसे कजरी। आप अगर प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति चारों तरफ जब काले बादल घूमड़ घूमड़ के वर्षा करते हैं और सभी पशु पक्षी सभी मदमस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और खेत लहलहाने लगता है और सबको आशा होती है कि इस बार हमारी खेती बहुत ही अच्छी होगी। अब एक पक्ष और भी है कि नागपंचमी के दिन जितनी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो पोखरा समझती हैं जहाँ तालाब जिसको कहते हैं, तो वहां से मिट्टी लाती थी क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत उपजाऊ मानते हैं। मिट्टी लाके उसको गोला सा, जैसे शंकर जी की पिंडी बनती है, से गोला सा बना के उसमें जौ बोते हैं। तो उसका सेंस ये है कि हमारा घर, हमारा देश, हमारे सब खुशहाल हैं। जब खेती होगी, अन्न उपजेगा, तो हम लोग खुशहाल होंगे, हमारा पेट भरेगा, हम औरों का पेट भरेंगे। तो वो जो जौ बोए जाते थे, जब बोए जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे साफ सुथरे जगह, जैसे पूजा की चीज हम लोग रखते हैं उसी तरह वहीं पे रखते हैं, और ये यूं कहिए कि पूजा स्थल पे ही हम रखते हैं। रोजाना उसमें पानी भी डालते हैं और रात भर कजरी गाते हैं, रात भर गाई जाती है। सारी औरतें हमारे घर के काम काज करके बाहर निकलती थी अपने चौराहे पे, गलियों में, मोहल्लों में, और वहां पे कजरी गाती थी। तो अपने ये गाने की विधा तो है ही, अब अगर अलग से देखिए तो वो हम प्रार्थना करते कि हमारे खेत खलिहान भी उपजे। तो खेत खलिहान रोज तो हम देख नहीं सकते हैं, तो जो हमने बोया हुआ है जौ, तो उसको हम देखते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुर फूटता है, फिर जरई, जरई मतलब उसका घास की तरह निकलेगा तो उसको जरई बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो करीब नाग पंचमी से हमारे यहाँ जागरण का एक दिन होता है, तो उस दिन तक गाया जाता है, और जागरण के दिन उस जरई को मतलब उसको उनको सुला दिया जाता है, उनको जैसे कुछ पुष्प अक्षत और कुछ खाने की चीज दे होके कि मतलब आज का उनका आखिरी दिन रहता है, और सुबह सुबह औरतें जो है जाके उसको नदी में या तालाब में जिसके पास जो भी आसपास रहता है उसमें वो उनमें से सारी जो मिट्टी है वो निकाल देते हैं, और जो जरई है मतलब जो बालियां ऐसे लंबे लंबे रहते हैं उनको इकट्ठा करती हैं। सबसे पहले वो मंदिर में जाती हैं, मंदिर में चढ़ाती हैं, और मंदिर के बाद अपने से बड़ों को, चाहे वो बाबा हो, चाचा हो, ताऊ हो, जो भी भाई हो, या अगल बगल हमारे मोहल्ले आस पड़ोस के लोग हैं, उनके कानों पे रखते, मतलब कान पे रखने मतलब उनको हम चढ़ा रहे हैं, उनकी हम इज्जत कर रहे हैं, उनको एक तरह से उस आराध्य की तरह मान रहे हैं, क्योंकि भगवान को हमने चढ़ाया और अपने बड़ों को भी हमने वो किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक कजरी का शुरुआत होता है, और जागरण के दिन माँ के वहाँ भी मेला लगता है, वहाँ पे पूरे रात पूरे देश विदेश के कलाकार वहाँ पे आते हैं और अपने को गाकर अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और मेरे यहाँ मिर्ज़ापुर शहर में भी जगह जगह हम लोग स्टेज बनाते हैं, औरतें तो गाती हैं अपने अपने गांव मोहल्ले जगह जगह जितना मोड़ होता है लगभग। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि पहले से बहुत बदलाव हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन ये समय का बहाव है, हर चीज में फर्क आता है, और हमारे इस कजरी में भी बहुत अंतर आया है। जो गाने हम हर मोहल्ले में चौराहे पर सारे जगह होता था वो थोड़े अब बहुत कम हो गए हैं। गांव में अभी है, और थोड़े जो पुराने लोग हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हम अभी 75 के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे तक तो अभी है, और लेकिन हमारे से नीचे वालों में हम जब अपनी नजर दौड़ाते हैं तो काफी कम हो गया है। लेकिन ये है, जो भी हमारी परंपराएं होती हैं, जो हमारी मिट्टी की सुगंध होती है, वो कभी जाने वाली नहीं होती, थोड़े कम हो जाएगी, कुछ दिन तक ऐसा रहेगा, लेकिन फिर वो अपने कुछ दूसरे फॉर्म में, कुछ दूसरे तरीके से वो गाया बजाया जाने लगेगा।
0: जी मैम, अक्सर करके हम देखते हैं कि जब भी ये फोक सिंगिंग की बात आती है या लोक कला की बात आती है, जैसे आपने कहा कि लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज और वहाँ के जो पहनावा, ये सभी चीज़ें बहुत ही दर्शाते हैं। तो जब आपने बचपन से ही इस चीज़ को अपने अपना एक कला या अपना जीवन बना दिया है, तो इस कला के माध्यम से जन जागरण के लिए भी आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं?
1: बहुत कुछ किया है
0: जी, उसके बारे में आप थोड़ा सा।
1: बहुत कुछ किया है और अभी मैं सोचते हैं जब तक जिंदगी है मेरी तब तक करते रहेंगे। अभी तो ये कहे कि हमारे भारत सरकार में बहुत सारी कल्चरल विंग है, कल्चर ऑफिस है या संस्थाएं हैं जो इसको काफी प्रमोट कर रही हैं। जैसे हमारा संगीत नाटक अकादमी है, सांस्कृतिक विभाग लखनऊ है, तो ऐसे ये तो हमारे प्रांत की बात है, फिर दिल्ली में भी है, इस तरह से हर शहर हर प्रांत में तो सांस्कृतिक विभाग है, जनजाति विभाग है और ललित कला अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी के अलावा संगीत के और भी बहुत सारे विभाग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो वो नए नए कलाकारों की खोज कर रहे हैं इसलिए कि हमारी जो परंपरा है वो टूटने न पाए। तो वो लोग तो कर ही रहे हैं और जगह जगह मंच बना रहे हैं, जैसे कि जुलाई अगस्त सावन भादो के महीने में मिर्जापुर में ये जगह जगह कजरी होती है, बनारस में होती है और जगह होते हैं, अब ये सिलसिला चल ही रहा है एक दो महीना। तो वो तो कर ही रहे हैं तो उसमें हम सब की भागीदारी होती है और जिसमें हम तो सोचते हैं हमारा बहुत ही नैतिक दायित्व है कि हमें इसी चीज में अवार्ड मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी खोज खोज के कहाँ कहाँ से टैलेंट ला रहे हैं
0: और
1: नहीं तो हमें तो लोगों का कहना है, हमें नहीं लोगों का कहना है, हमको 10-20 साल पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। जब ही आँख खुले सवेरा है तो आज हम करीब 74 साल के थे लास्ट ईयर हमें मिला है, तो हम देख रहे हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए कि आदमी में और उत्साह बढ़े और हमें देख के, हमारे में तो जो उत्साह है हमको देख के कितने कलाकार ऐसे हैं जिनको कितना उत्साह मिल रहा होगा कि अरे उर्मिला जी को मिला है, अब हम भी ऐसे मेहनत करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो मेहनत केवल अपने ऊपर हमने नहीं किया, हम कॉलेज में रहे 40 साल तक हम रहे कॉलेज में, आर कन्या इंटर कॉलेज में म्यूजिक टीचर रहे। तो म्यूजिक में तो आप जानते हैं कि क्लासिकल सिखाया जाता है, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ हम फोक भी सिखाते थे, कुछ न कुछ देते थे, बताते थे बच्चों को। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 2 अक्टूबर है, तो आज इस चीज का कंपटीशन है, तो उसमें हम लोग फोक ही करवाते थे, क्लासिकल कम ही करवाते थे। तो मैं शुरू से ही फोक में जुड़ी रही, मेरे बचपन का जो शौक था वो धीरे धीरे बढ़ के रेडियो तक आए। जब मैं इंटर में थी उस समय रेडियो में 68 में थी और तो रेडियो में दिया, तो रेडियो से हम करने लगे, फिर टीवी में आए, फिर बहुत सारे कैसेट है, रिकॉर्ड है, ये सब बने। अच्छा क्या होता है कि अभी अच्छा गाता है तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है, दूसरे शहर में गए, फिर दूसरे शहर में गए, दूसरे प्रांत में गए, फिर उसके बाद विदेशों में भी गए। तो ये तो मेरा पक्ष रहा कि हमें मौका मिलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे, कभी जो जैसे पानी का बहाव होता है कभी रुकता नहीं है, तो ईश्वर की दया थी और माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा थी कि मैं आगे बढ़ते ही कभी मुड़ के हमने पीछे नहीं देखा। पर हमने अपने लिए किया, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी लेके चले, जैसे हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेके चले। इसके बाद हमने बहुत सारी कार्यशालाएं की और करते हैं और करते रहेंगे। तो कार्यशाला में कभी 50 बच्चे, कभी 60 बच्चे, कभी 100 बच्चे, कभी 200 भी। तो इस तरह से क्या है, उन कार्यशालाओं को करके जो हमारी थोड़ी सी परंपराएं हैं, थोड़ी सी गाने की कम हुआ है, उसको हम लोग जागृत कर रहे हैं कि जो हमारे नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनमें ये शौक आए और हमारी जो परंपरा है वो बनी रहे
0: जी।
1: तो हम कार्यशालाओं के माध्यम से और कार्यक्रम करके या करवा के इस तरह के माध्यम से और जगह जगह छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन करके उनको मिले कि हम फर्स्ट सेकेंड आएंगे, तो ये एक चाव रहता है, उसी बहाने बच्चों को सीखने को मिलता है। तो इस तरह
0: से जब आप कॉलेज में पढ़ा रहे थे फोक संगीत, ज़्यादातर बच्चों को ये रहता है कि क्लासिकल संगीत सीखने का और स्टेज परफॉर्मेंसेस करने का, एक पॉपुलर सिंगर बनने का। तो बॉलीवुड में भी फोक सिंगर, प्लेबैक सिंगर बहुत कम बनते हैं। तो म्यूजिशियंस जो बनना चाहते हैं युवा पीढ़ी, तो उस तरफ ज़्यादा रुझान रहता है क्योंकि उसमें कमर्शियल वैल्यू भी है। तो जब आप एक फोक सिंगर के रूप में उनको आप ये चीज़ें सिखा रहे थे, तो कितना आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट देख रहे थे और वो जन जागरण के लिए उनको फोक सिंगिंग को लेकर के कैसे आप उनको प्रमोट कर पाते थे?
1: उनको जब हम सिखाएंगे, उनको पहले तो उसका देखे उसका अर्थ बताएंगे। बच्चों के क्या, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। अभी आपको हम एक गाना ऐसे सुना दें तो आपके समझ में आ भी सकता है, थोड़ा नहीं भी आ सकता है।
0: जी जी जी।
1: हम आपको सुनाएंगे,
0: जरूर गुनगुनाइए। हाँ, कुछ
1: तो आपको उसका अर्थ भी बताएंगे,
0: है ना,
1: कि इसका क्या अर्थ है। जहाँ तक गुनगुनाने की बात है, कोई बात नहीं है। तो हम आपको दो लाइन देवी की सुना रहे हैं
0: जी।
1: और देखा और आपको ये बताना चाहेंगे कि उसमें देखिए शब्द जो है कितने माने रखते हैं और शब्द का जो अर्थ है और फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है जो मेरे हृदय से निकलता है। तो एक देवी गीत है, माँ की वंदना है।

0: सीधे सीधे शब्द है, लेकिन आप देखिए इसके एक एक शब्द को समझा। मैया झूले, माँ झूल रही है किस पे, चंदन के पालने पे।
1: अच्छा।
0: मैया झूले चनन झूलनवा, और पवनवा, पवन यानी
1: हवा,
0: हवा पवनवा चावर डोलावेना। तो ऐसा लगता है कि माँ तो चंदन के पालने में झूल रही है और जो हवा है वो पंखा झल रहे हैं, माँ को हाँक रहे हैं। तो कितना कितना सुंदर भाव है। आगे की लाइन है, अमृत से पग धोवे बदरिया। ये पानी नहीं है, ये जो जल बरसता है ये अमृत है, एक एक बूंद में अमृत है। कहते हैं कि पानी बचा के रखो। अमृत से पग, तो माँ का जो पैर है वो किससे धोया जा रहा है, अमृत रूपी जल से। जो जल है वो अमृत है। अमृत से पग धोवे बदरिया, बादल जो है अमृत से माँ का पैर पखा रही है, धो रही है। रही रही आरती उतारे बिजुरिया। देखिए क्या एक भी चीज आपका लग नहीं रहा है, सब प्रकृति कर रही है। जो बिजली है वो क्या कह रही, रही कि आरती उतारे हैं। रही रही आरती उतारे बिजुरिया, और अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया। जो हमारे बगीचे हैं तो ऐसा लगता लाल हरा नीला पीला हर तरह के, तो ऐसा लगता है कि फूल

0: नहीं चढ़ा, अक्षत चढ़ाया जाता है। तो आप देखिए सुंदर, कितना सुंदर कल्पना है
1: जी।
0: अक्षत रोरी चढ़ाए फुलवरिया और गंध यानी सुगंध।

मनवा। जो अक्षतरोरी फूल हम चढ़ा रहे हैं तो आप देखिए फूलों में कितनी खुशबू है, गुलाब का अलग खुशबू है, चमेली का अलग है, तो ऐसे से सारे फूलों।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैम, आपने जब ये इतना सुंदर गीत सीखा है, तो वो सबसे पहली प्रेरणा या सबसे पहला इंस्पिरेशन क्या था? कौन सा आपने पहला गीत सीखा था?
1: बहुत सही सवाल। हमसे बहुत लोग, कितने ही लोग पूछते हैं, आपके कौन गुरु हैं? बिना गुरु के तो ज्ञान मिलता नहीं है। लेकिन ताजुब, मेरे गुरु कौन है? मेरी मिर्जापुर की धरती माँ।
0: ओह, वंडरफुल।
1: क्यों? कि हर जगह कजरी गाई जाती थी। तो एक गुरु थोड़े थे, अनेकों गुरु, मतलब एक झुंड में थे। मतलब वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था, वहाँ जाते थे अलग सुनाई पड़ता था। तो मेरे लिए तो कितने गुरु रहे, तो ये हम बड़े फख्र के साथ कहेंगे कि हम सबको गुरु मानते हैं। बिना गुरु के तो कोई बन नहीं सकता है। लेकिन मेरे मिर्जापुर की धरती माँ, मेरी विंध्यवासिनी नगरी की धरती माँ ही मेरे गुरु हैं। फोक में जो फोक है, उसका हम पूरे अपने मिर्जापुर की धरती को, अपने माँ विंध्यवासिनी को ही गुरु कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है जो क्लासिकल है, जब तक सिखाया नहीं जाएगा
0: जी,
1: है देखिए, डलिया है, बिनते बिनते देखते देखते बिन लेगा, खाना देखते देखते बना लेगा। लेकिन क्लासिकल का एक होता है, जिसे दो और दो दुनी चार होता है, तो जब तक कोई नहीं बताएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से क्लासिकल में कोई सारे गामा पाध निशा स्वर है, तो उसको कैसे गाया जाता है, कैसे संजोया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो ये तो क्लासिकल का जो हमारा गुरु है वही बता सकता है। तो क्लासिकल का तो मेरी कई गुरु रही, नलिनी कालेकर बहन जी थी, फिर उसके बाद अमिता दत्त बहन जी थी, और कमला, प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी थी, और गुप्ता जी वकील रहे पेशे से, लेकिन बहुत अच्छे संगीतकार थे उन्होंने। तो हमारे अनेकों गुरु थे, और जिससे हमें जो भी मिला, बल्कि आप भी कुछ कह देंगे तो हम आपको भी एक छाड़ के लिए मेरे गुरु हैं। कोई बच्चा भी कोई अच्छी बात बता देता है, वो भी गुरु होता है। तो आप जिससे भी कुछ भी सीखते हैं,
0: सीखना चाहते हैं, वो आपके गुरु तो बन जाते। कितनी बड़ी बात है कि कदम कदम पर, हर जगह पे, हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हर किसी से। लेकिन जिस दिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन का मैं एक विद्यार्थी हूँ, उस दिन हमारा सीख खत्म हो जाता है। तो यही, इसी के लिए शायद आपको इतने बड़े पुरस्कार मिले हैं, जो आप उम्र के इस पड़ाव में भी आप ये सोचते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। सो मैम, जैसे आपने कजरी की बात कही, और आपकी जीवन की संगीत की जो शुरुआत है वो फोक सिंगिंग से हुई है, विंध्याचल की माँ धरती के मिर्जापुर से, उसके बाद आपने क्लासिकल में क्या क्या सीखा है?
1: क्लासिकल में हमने, उसमें एक निश्चित चीजें होती हैं, जैसे अगर हाई स्कूल में है तो 10 राग था, जैसे यमन है तो भैरवी है, भैरव है, और भूपाली है, तो इस तरह से बहुत से राग होते हैं। तो इंटर में आए तो थोड़ा उसका जो दायरा है बढ़ गया, उन रागों को छोड़ के 12 और राग, उसमें थोड़ा सा और थोड़ी भारी चीजें, जैसे कि हाई स्कूल में सिंपल हम लोग सीखते थे, तो उसमें जैसे विलंबित ख्याल होता है, द्रुत ख्याल होता है, तो वो सीखा। ताने हैं, बोल ताल है, आलाप है, तराना है, ध्रुपद है, धमार है। तो जैसे जैसे आपकी शिक्षा आगे बढ़ती जाती है, आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी। इसमें तो सारी चीजें हमने सीखी, और एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं कि क्लासिकल जो सीखता है वो फोक नहीं गा सकता है, या फोक का गायक है तो वो कभी क्लासिकल का मौका मिले तो वो नहीं गा सकता है। एक दूसरे का पूरक रहता है, जो क्लासिकल सीखा रहता है उसको और सहारा मिलता है, कि मेड़ खटका मुर्के सब गले से निकलता है, तो वो सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं और हमारे गाने में और निखार आता है। हालांकि जो फोक है वो फोक के ही ढंग से गाना चाहिए, उसमें क्लासिकल मिक्स नहीं करना चाहिए। कहीं पे एक आग चीजें छोटी सी लेके हम छोड़ दें, क्योंकि फिर उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। इसके लिए बना हुआ है सेमी क्लासिकल, जो आप देखिए बनारस के लोग गाते हैं, मेरी कजरी गाएंगे, मिर्जापुर की कजरी गाएंगे, लेकिन वो ठुमरी अंग से गाएंगे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो हम लोग सीधे सीधे गाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में

0: कहने का मतलब है ठहराव के साथ, उसमें कुछ आलाप, कुछ बोल आलाप, कुछ उसमें चीजें क्लासिकल की डाल के जब हम गाते हैं तो वो ठहराव के साथ, ठहर ठहर के, सुंदर समझा के, उसमें क्लासिकल अंग पुट डाल के जो गाते हैं वो ठुमरी अंग से हो जाता है। तो दोनों में केवल यही फर्क है, हम गाएंगे सीधे सीधे, जैसे कि हमारे गांव देहात की औरतें हमेशा गाती हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, जो शुरू से गाया जा रहा है पारंपरिक ढंग से बस उसी तरह गाती हैं। तो ठुमरी अंग से गाते हैं, जो अभी आपने देखा होगा, अभी अभी हमारे छन्नू महाराज जी की डेथ हुई है, तो वो बहुत अच्छे क्लासिकल की, हमारी गिरजा देवी महान विदुषी कलाकार थी, वो इस सब अंग से, और बहुत सारे जितने भी क्लासिकल के कलाकार हैं वो इसी अंग से गाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं उसी को ठुमरी अंग से कहिए या बनारसी कजरी कहिए। तो इस तरह से हम लोग सीधे सीधे गाएंगे, जो पारंपरिक तौर तरीका है, पारंपरिक सीधे साधे। और बनारस के लोग जो क्लासिकल के लोग हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेहनत को डाल के उसको सुंदर से सुंदर बनाते हैं।
1: जी मैम, जैसे आपने इतने लंबे सफ़र है बचपन से लेकर के आज 74 इयर्स तक आप गा रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने गीत गाए होंगे, या कुछ ऐसा आंकड़ा है, कहीं पे आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी किए होंगे दूरदर्शन में?
0: 2-4 हज़ार तो गाए ही होंगे।
1: ओह माय गॉड।
0: किसी जगह किसी स्टेज पे कभी कभी 2 ही गाना, कभी 1 ही गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी,
0: कभी 5-10 गाना गाने का मौका मिलता है
1: जी।
0: कभी कभी हम जो प्राइवेट जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो केवल सुनने के ही उद्देश्य से, केवल मुझे ही सुनना है, तो 40-50 गाने से कम नहीं गाते।
1: ओह माय गॉड, वंडरफुल। मतलब आप 2-3 घंटा नॉनस्टॉप गा लेते हैं?
0: 5-6 घंटा गा सकते हैं, आज भी गा सकते
1: हैं। वेरी नाइस।
0: जरूर उम्र हो गई है
1: जी,
0: 75+ चल रहे हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि लोगों मेहनत करना छोड़ दिया है ना। हम ये नहीं कहते कि बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं, पर हम लोग जो है, अपने को नहीं कह रहे, हम लोग, कुछ लोग जो बहुत पुराने हैं वो बहुत मेहनत करते थे, और तब हम लोग 5-10 साल तक कोई हम लोग को जाना ही नहीं कि ये उर्मिला श्रीवास्तव कौन है, मतलब हम लोग गाते रहे, कुछ लोग जाने नहीं जाने। आज के कलाकार, आज के लोग हैं, 4-6 गाना अगर सीख लिए तो तुरंत अपने को कलाकार समझते हैं, लेकिन हम लोग 10-20 साल तक अपने को कलाकार नहीं समझे, आज भी नहीं समझते, कलाकार नहीं है, हम तो उनकी पूजा करते हैं भाई, हमारा जो हमारा कला की पूजा करते हैं, लोग कहते हैं कलाकार है तो भाई चलिए ठीक है। तो पहले और अब में केवल इस बात का जरूर है कि आज हम सबको नहीं कहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, तो आप सोचिए अभी भी हम करीब 8-10 हज़ार गानों का कलेक्शन मेरे पास है।
1: My God.
0: हाँ, मतलब आपके भी गाने, उनके गाने, उनके गाने, मतलब शौक था हमें
1: उनका, कभी इन हाँ, सभी चीजों का संकलन करके कोई किताब या ऐसा कुछ करने की, हाँ, लाइब्रेरी बनाने की कोशिश
0: नहीं सोचा, और काफी लोगों ने भी कहा, सोचा भी, और लेकिन काफी समय निकल गया, कुछ हमारे कार्यक्रम इतना बिजी हो गया, इतना थक जाते थे, कॉलेज था, अभी तो 2012 में रिटायर हुए, कॉलेज है, घर है, फिर उसके प्रोग्राम है, और अपने देश में, विदेश में, सारे जगह जाना, और एक एक महीने के लिए 15-15 दिन के लिए जाना, तो ये थोड़ा बहुत हैट्रिक रहा, बहुत थका देने वाला, तो हम उसे सोच के नहीं कर पाए, लेकिन हमको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि कब जीवन लीला समाप्त हो जाए पता नहीं है, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी, हमें थियोरेटिकल काम जो है, और सोच रहे हैं, लेकिन आप बताएं, जब जब सोचते हैं कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है, कभी बाहर का कार्यक्रम आ गया, कहीं हमें कार्यशाला लेनी है, तो थोड़ा सा बीच में वो हो जाता है, पर करना है हमको, जाने के पहले हमें चीजें सुरक्षित जो मेरे पास है वो लोगों को दे के बांट के जाना है, और कुछ तो संस्थाओं को हमारे सांस्कृतिक विभाग है, कई बार हमारे डायरेक्टर हैं अतुल द्विवेदी जी हैं, कई बार कहते हैं कि उर्मिला जी हमको कम से कम 100-100 गाने का ही दे दीजिए, मैं आपका किताब छपा दूं। बस इतना मौका नहीं मिला, लेकिन ये बात नहीं है, मौका मिले ना मिले मौका निकालना पड़ता है हर काम के लिए, और मैं निकालूंगी। और जो भी मेरे पास कलेक्शन है, नहीं 10,000 तो 1,000-2,000 उसमें से छाट के जो बहुत अच्छे हैं लोगों के कलेक्शन है, वो उसको मैं अपने द्वारा जो है निकालूंगी।
1: बहुत सुंदर मैम, हम भी इंतजार करेंगे आपके उस कलेक्शन को देखने का, क्योंकि यही है कि भारत की विरासत और परंपरा जो आप आने वाली पीढ़ियों को देने वाले हैं। किसी भी कला या संस्कृति अगर जीवित है, वो पारंपरिक रीति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब जाती है वो जीवित रहती है, और उसमें भी नवीनताएं आती हैं और वो आगे बढ़ती रहती हैं, और एक पेरिनियल रिवर की तरह वो बहती रहती हैं। तो आपने अभी तक कितनी पीढ़ियों को सिखाए होंगे?
0: चौथी पीढ़ी तो जरूर चल रही है। एक बार बॉम्बे में कार्यक्रम देने गए थे
1: जी,
0: तो नाम बता दे, हीरालाल भैया बहुत अच्छा लोक गीत गाते थे, तो उनका हालांकि बिरहा, उनका कई टाइप होते हैं ना, तो बिरहा था, तो उनके साथ तो हमने गाया, उनके लड़के के साथ गाया, और उनका उनके लड़के का लड़का यानी पोता, तो जब मैं एक बार कार्यक्रम कर रही थी वहाँ पे बॉम्बे में, तो एक लड़का मेरे साथ गाया, मतलब मेरे मंच पे साझा किया कि हमने गाया, फिर उसका भी कार्यक्रम रहा और आके पैर छुआ कि बुआ प्रणाम, तो हमने कहा कि खुश रहो भाई भाई, बुआ दीदी जो भी कहता है, तो बोले आपने हमको पहचाना नहीं, हम जो हीरा लाल जी के हैं उनके बेटे के बेटे यानी पोते हैं, और अपने बेटे को खड़ा किया जो 10 साल का था, और नेक्स्ट टाइम आप आएंगी अगले साल या एक दो साल बाद, तो मैं इसको आपके साथ गवाऊंगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी 3 पीढ़ी तो सामने रही, और चौथी
1: पीढ़ी भी आपके साथ गाने वाली
0: आ सकती है। तो
1: बहुत सुंदर,
0: हमें हमारे बहुत गर्व फील होता है कि हमने 1, 2, 3 और चौथी पीढ़ी भी आ रही है, और जैसे छोटे बच्चे गा रहे हैं तो मेरे साथ गा ही रहे हैं, तो कहने का मतलब कि बच्चों के साथ बच्चे बनके, बड़े के साथ बड़े बनके, जैसे भी होता है उनको भी लेते हैं, उनको ये महसूस नहीं होता है कि हम क्लास भी लेते हैं, तो ये हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनको मिल के उनको समझा के, जैसे अभी हमने आपको बताया, जब हम बताते हैं बहुत
1: एक सरलता के साथ,
0: बच्चे भागते हैं
1: जी,
0: अरे क्या लोकगीत है, एक दिन के बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी झलकती है
1: जी,
0: कि हमारा इंतजार करते हैं, तो इंतजार मेरा नहीं करते हैं, वो जो कला हमारी है, जो जिस विधा को हम लेके चले हैं उसका इंतजार करते हैं, मैम आएंगी तो हमें सिखाएंगी, और पहले दिन तो उनका लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने बोझ डाल दिया है। तो आप जितना सरल ढंग से, जितने सरस ढंग से आप किसी को बताएंगे, आप सीधे मत लाद दीजिए, आप थोड़ा सा करिए, बच्चों के अंदर से निकलवाइए, हम तो बच्चों के अंदर से भी निकलवाते हैं, भाई अगले दिन तुम्हारा एक लोकगीत हम सुनेंगे, तो कहाँ से, अब उनके पास तो लोकगीत तो है नहीं, वो क्या करेंगे, हमने कहा तुम अपने दादी से, नानी से, माँ से, जो तुम्हारे काम करती है, बर्तन मांजती है, उनको अम्मा कहो, दादी कहो, जो भी कहो, आप एक लोकगीत लिख के लाएंगे, अब आप सोचिए कि कितने लोकगीत हमारे सामने आ जाते हैं, अगर 50 बच्चे मेरे क्लास है तो 50 लोकगीत, और वो जाके घर में बहुत खुशी खुशी अपनी माँ को, अपने जो भी है उनको बताते हैं कि अरे हमारी मैम ने ऐसे सिखाया, हमारे ये देखिए सिखाया, और उन्होंने ये मांगा है, हमें एक लोकगीत चाहिए, तो कहीं न कहीं से किसी रूप में हमें उनके अंदर जगाना है। जब वो जग जाएगा ना, आप देख रहे हैं कि गाना बज रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं
1: जी,
0: थोड़ा सा उनको अगर उसका अर्थ मालूम होगा तो गाना ध्यान से सुनेंगे।
1: सही बात है।
0: और फोक में कितनी ताकत है, बॉलीवुड की बात कर रही थी आप ना, बॉलीवुड में जो भी फोक लिया गया है वो
1: सुपर हिट
0: हुआ है।
1: वो एकदम लोगों की दिल को छू जाती है और उनको उमंग उत्साह को बढ़ा देती है। सही बात कहा आपने।
0: मेरी कचरी का उन्होंने लिया है।

0: ये लिया है, बहुत सारे हैं। आपने वो देखा होगा एक बन्नी बन्ना, माई हमारे में तो ये भी है, बन्नी बन्ना, पूर्वी, चैती, होली, सारे रंग हैं। तो बन्नो तेरी अखियां सुरमे दाने, बन्नो तेरी अखियां, तो कहाँ से लिया गया है? मेरे फोक से लिया गया है
1: जी।
0: तो जो भी गाना उन्होंने लिया है, नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, नजर लागे राजा, कहाँ से लिया है? फोक से लिया गया है। जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, और बरस रहती राजा तोरे बंगले पे, कहाँ से लिया गया? फोक से लिया गया। तो आपको कौन सा, कितने गाने बताए, सैकड़ों गाने, अब तो इस समय
1: समय की सीमा है। और
0: तो जो भी लिया है तो समझ लीजिए लोक गीतों का कोई जवाब नहीं है। हमारी मिट्टी की सुगंध है, मेरी माटी की खुशबू है, मेरी जो दादा परदादा, दादी पर नानी, सबने जो दिया है वो थाती है, हमारी अनमोल धरोहर है, मेरी अनमोल रतन है कह लीजिए। तो फोक के लिए तो भाई मेरे दिल में क्या क्या होता है, क्या बताएं
1: जी। मैम अब ये बताइए कि वो वक्त जब आपको फोन आया कि आपको पद्मश्री दिया जाएगा और आप प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं और आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, उस पल के बारे में बताइए कि कैसा ये चयन हुआ और वो जर्नी कैसी रही आपकी, वो प्राउड मोमेंट के बारे में।
0: बहुत ही रोमांचकारी, देखिए मेरे आपसे बात करें मेरा मन भर गया है, पता नहीं हम आगे बोल पाए कि नहीं बोल पाए। आप सोचिए कि दो चार दिन पहले तो हमारे मंत्रालय से फोन आया था कि आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ कि उसको चुरा के रखे, चुरा के मतलब कि हमने किसी को बताया ही नहीं। तो खबर तो थोड़ा थोड़ा थी कि जब ये 22 अप्रैल का दिन था, 22 अप्रैल 2024 को हम लोग को बुलाया गया, जितने भी अवार्डी थे, दो बार में हुआ है, आधे लोग एक बार में, आधे लोग का बाद में हुआ है। तो जिस समय सुना हमें जाना है, और इसके पहले जिस दिन अनाउंस हुआ है, आपको हम क्या कहें कि वो पल मेरे आंखों के सामने जैसे कि चलचित्र की तरह घूम गया है, कि इतनी खुशी, इतनी खुशी। रात को करीब 11:30 बजे अनाउंस हुआ है, और मेरे सारे परिवार वालों का फोन, सबकी बधाइयाँ ये, और रात को ही पत्रकारों का फोन आने लगा, और उनका पूरी रात हम जगे, शायद एक आग झपकी हमने लिया होगा तो लिया होगा। और सुबह सबसे पहले हम माँ विंध्याचल माँ के दरबार में गए, उनके चरणों को छुआ, माँ आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, बहुत बड़ी चीज दी है, भारत का 4 सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कारों में से हमें एक दिया है, इससे बड़ा हमें क्या मिल सकता है, और मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया। और उस दिन मेरे घर, जब मैं घर आई तो कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़, और 30-40 पत्रकार, मीडिया वाले सब, टीवी वाले सारे लोग आए थे। एक सुबह थे, शाम 8-10 बजे रात तक समझिए देती रही। तो ये तो पल था, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे वो समय आई, तो हफ्तों ये सिलसिला चलता रहा। मेरे यहाँ जो भी हमारे यहाँ के मंत्री थे, विधायक थे, वो लोग मेरे घर आए, सबने सम्मान किया, शॉल से, बुके से, माला से, जिसको जो भी बन पड़ता था, सबने बहुत बहुत सम्मान किया मेरा। और आखिर वो दिन आया जो हम राष्ट्रपति के यहाँ चलने के लिए तैयार हुए, कि हमारे देश की कितना, मेरे एक एक रोया समझ लीजिए कि वो रहा, द्रवित हो गया खुश से। तो मैं दिल्ली पहुंची, बनारस से मेरी फ्लाइट थी, बनारस जाके वहाँ दिल्ली पहुंची, और द अशोका में हम लोग वहाँ पे उतरे, और उनके यहाँ एक दिन पहले आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज एक दिन पहले लिया गया, जिस दिन अवार्ड देना था उनके एक दिन पहले काफी लोगों ने कवरेज किया वहाँ भी। और 22 अप्रैल का वो सुनहरा, मेरे लिए सुनहरा दिन था जबकि उनके यहाँ जाना था और हम लोग समय पे गए वहाँ जाना। राष्ट्रपति भवन में तो बाद में गए, जब राष्ट्रपति भवन की सीढ़ी पे चढ़ने लगे तो वहीं से ऐसा लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के राजा महाराजा जैसे पहले होते थे, तो वो तो हमारे लिए राजा ही तो हैं। तो वो क्षण का वर्णन नहीं कर सकते हैं कि इतना सुंदर लगा, इतना मन में उमंग उत्साह खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे दो बेटे, दो लोग को अलाउ किया गया था, तो बड़ा बेटा विवेक और छोटा बेटा विशाल, ये दोनों मेरे साथ थे और हम लोग साथ में गए। अपना एक निश्चित सीट था जहाँ हम लोग पहले से पता था, वहाँ हम लोग बैठे और वो राष्ट्रपति जी आई तो ऐसा जैसे बिगुल बजता है, जैसे पहले के राजा महाराजा आते थे तो वैसे ही हमारी रानी, कहिए राजा कहिए, उस तरह से उनका पदार्पण हुआ। और एक एक शरीर का रोया रोया जैसे कि रोमांचित हो गया, तो बिना मिले हमें इतनी खुशी हुई, उनको देख के इतनी खुशी हुई कि आज देखिए हमारी राष्ट्रपति महोदया कहाँ थी और क्या उनके अंदर कितनी बड़ी टैलेंट थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से
1: एक रतन को चुन करके निकाल के सिंहासन पे बिठाए हैं
0: और इतने बड़े पद पे, इतने बड़े सिंहासन पे बैठी। तो पहले तो हम प्रणाम करते हैं उस देवी को कि उनकी तो

0: नहीं, आप लोग को मालूम है हम क्या बताएं कि कितनी कठिनाइयों से गुजरते हुए उनकी
1: जी
0: जिंदगी बीती। और वो पल था जबकि बारी बारी से बुलाया गया और जब मेरा नंबर आया तो हम भी अपने जगह से जब गए तो आपको पता ही है सब आगे सारे मिनिस्टर्स लोग बैठे थे, हमारे मोदी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जयशंकर जी जो विदेश मंत्री वो, और सारे मंत्री लोग बैठे थे, बहुत को तो हम पहचानते भी नहीं हैं, सभी लोग बैठे थे। और हाँ, उस समय का एक हम आपको वाकया बताते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर।
0: हमने अभी उनके जन्मदिन पर ये बात शेयर की थी, हमने फेसबुक पे साझा किया था कि जब हमने ऐसे नमस्ते, भाई सबको सबने नमस्ते किया, हमने नमस्ते किया और हाथ भी नमस्ते करने के बाद हाथ तो जनरली नीचे चला आता था ना, मेरा हाथ नीचे आया, मेरा क्या और सारे मंत्रियों का आ गया नीचे। और आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताएं, मेरे मोदी जी का हाथ, वो हाथ जुड़ा का जुड़ा रहा, इस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ा था, जो उन्होंने नमस्ते के लिए जो जुड़ा हुआ था हाथ, वो इतने आदर भाव से उनका हाथ जुड़ा ही रहा। मैं उनके पास से पूरे पास से ऐसे गुजरती चली गई, सबके हाथ नीचे, मेरे भी हाथ नीचे चले आए, लेकिन मोदी जी का हाथ नीचे नहीं आया। मैं आपको भी तस्वीर दिखाऊंगी। और उसके बाद से उनके तरफ से पीठ होते हुए तब हम राष्ट्रपति के तरफ बढ़े हैं तो उनका हाथ नीचे आया होगा, हमने नहीं देखा, तो वो क्षण हम तो भूल नहीं सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास पहुंचने के पहले जो हमें ये बहुत सुंदर सा एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, मेरा मन बिल्कुल रोमांच से भर गया। फिर मैं आगे बढ़ी और अपने महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के पास मैं खड़ी रही, में तो एक पल तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं सही में खड़ी हूँ लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ा कि मेरे सामने वो थी, मैंने नमस्कार किया, उन्होंने किया, बधाई दिया, कुछ और भी शब्द बोले लेकिन वो शब्द मेरे कान में सुनाई नहीं पड़ा, खुशी के मारे, खुशी और रोमांच के मारे उन्होंने कुछ और कहा जरूर लेकिन हमने सुना नहीं। फिर उन्होंने सबसे पहले एक, आपने देखा हुआ, पद्म का एक बहुत बड़ा सा जो है
1: मेडल,
0: मेडल उन्होंने पहनाया और उसके बाद
1: जो प्रशस्ति पत्र,
0: हाँ, प्रशस्ति पत्र, वो जो बहुत लोग पूछते हैं कि उस गोले में गोले क्या में है, तो हम आपको बता दें, और लोग भी सुन रहे हैं, आपको तो मालूम है लेकिन बहुत लोग को जिज्ञासा होती है कि ये जो गोला है उसमें क्या, तो उसमें वो जो प्रशस्ति पत्र रहता है, उसको जैसे बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस तरह से एक प्रमाण पत्र पद्मश्री का उसमें रोल करके उसी में रखा रहता है। ये प्रश्न बहुत लोगों ने हमसे पूछा था तो हमने सोचा कि आज आपसे भी साझा करें, तो वो उसमें रखा जाता है
1: जी।
0: और आपको एक और छोटी सी बात साझा करूं, राष्ट्रपति जी को मैं ऐसे देखती रही, निहारती रही, उनका चेहरा ऐसे ऊपर हमने देखा, तो वो कहती है धीरे से, सामने देखो, सामने फोटो खींच रही है। अरे बापरे, क्या क्या सादगी थी, इतना महान व्यक्तित्व, और वो कह रहा है सामने देखिए फोटो, मतलब कि उनको लग रहा है ऐसा ना कि इसकी फोटो मिस हो जाए तो जिंदगी भर इस पर। तो ये बात एक लाइन है लेकिन आप इसमें भाव सोचिए कि उनका कितना बड़ा वो था कि मैं उनको देख रही थी, उन्होंने अपने को कहा कि वही सामने देखो, तो ये जो महान व्यक्ति है ऐसे महान नहीं बनता है
1: जी।
0: वो गुणों की खान, अपने कर्मों से, अपने गुणों की खान से होता है। तो ये है तो बड़ी छोटी सी बात लेकिन कितनी बड़ी बात है, मेरे पूरे जीवन में अगर मैं उधर ना देखती तो मेरी फोटो जो लोग देख रहे हैं शायद ना आती। तो आप को ये बताएं कि जितने महान लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो कौन सी छोटी सी बात आपको जो है परोस देते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत पल था। हम बहुत बहुत धन्यवाद इस आपके रेडियो के माध्यम से जो मधुबन रेडियो है, अब तो 57 साल से रेडियो में गा रहे हैं, और लेकिन गाने का हमारा रेडियो है। इस तरह से हम स्टूडियो में आके शायद मेरा पहला ही इंटरव्यू होगा। ऐसे तो इंटरव्यू बहुत होते हैं, लेकिन आपके मधुबन रेडियो में आके हमने ये हमारा जो आपके साथ
1: जीवन की यात्रा को साझा किया है
0: ये मेरे लिए बहुत यादगार पल है। और धन्यवाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, धन्यवाद हमारे महामहिम राष्ट्रपति को, और भी सारे लोग। हाँ, ये तो हमने बताया नहीं कि वहाँ से निकल के हम रात का जो रात्रि भोज था वो हमारे अमित शाह जी किया था, हमारे गृह मंत्री, और उन्होंने एक एक लोगों को, मतलब जब हम लोग यहाँ से अवार्ड पाने के बाद, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे जितने परिवार वाले थे, मतलब अवार्डीज के परिवार वाले थे, सबसे सब लोग मिले ऐसे लाइन से। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही उनके पास थे, सबसे मिले। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग सीधे अमित शाह जी के घर गए, उनके यहाँ हम लोग का रात्रि भोज था, और एक एक व्यक्ति को उन्होंने अंदर हाथ जोड़ के बधाई दिया और अंदर जाने दिया। फिर हम लोग अंदर गए, तो ये पल जो है हमारे साथ, जो राष्ट्रपति भवन में से गृह मंत्री से लेके सारी चीजें रही, वो मेरे दिल दिमाग आत्मा अमिट छाप छोड़ दिया। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मिर्जापुर जनपद, मेरे और भी साथी लोग, सब लोग इससे बहुत ही गर्वान्वित हैं। और एक बार पुनः हम सबको धन्यवाद देते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन को, जो हमें जो है यहाँ पे,
1: धन्यवाद तो हम आगे करेंगे। लास्ट में हमारे बहुत ही क्विक सवाल है, एक रैपिड राउंड हम खेलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि कजरी क्या है, एक लाइन या एक शब्द में आप इसका जवाब दें।
0: एक शब्द में कजरी का अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे, सावन भादो के महीने में बारिश का मौसम जो होता है, कजरारे बादल छाए रहते हैं, उसमें जो उमंग उठती है प्रकृति में और इंसान में सब में, तो उस उमंग को हमें अपने दिल से निकालना है, तो वो किस रूप में निकलता है, वो हमारी कजरी के रूप में निकलता है। कजरी जो गीत है, कजरी जो बोल है, इसको ढुनमुनिया कजरी भी बोलते हैं, तो इस रूप में निकलता है। हम अगर कहा जाए तो यही है
1: जी। भारत क्या है आपके लिए?
0: भारत तो लोग कहते हैं भारत देश महान, ना तो महान, तो महानता में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये जैसे एक ये छोटा सा वो है, ऐसे आपका खेल है, कृषि है, और सारे जगह के फोक डांस है, फोक गाने हैं, सबके अपने आंचलिक भाषाएं हैं, आंचलिक लोक गीत है, तो सबको मिला के कोई एक से हमारा भारत नहीं। बच्चा से लेके बूढ़ा तक का पूरा जो उसकी जर्नी है, युवा वर्ग, प्रौढ़ता, फिर ये हम क्या बताएं, कितने चीजों में ये सारी, चाहे इंडस्ट्री है, हमारे उद्योग है, हमारे और भी छोटे छोटे हाथकरघे वाले हैं, मिट्टी का काम है, तो कुछ भी, मतलब क्या बताएं, इतना बृहत है सारे चीज को मिला के
1: भारत।
0: मेरा भारत, मेरा भारत महान, बहुत बहुत हमें गर्व है कि हम भारत देश जैसे देश में, इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है।
1: सुंदर मंत्र। आखिरी में उर्मिला श्रीवास्तव जी कौन है?
0: उर्मिला श्रीवास्तव जी को कौन है ये तो आप ही बताएंगे। बस मैं एक बहुत छोटी सी कलाकार हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, अध्यापिका हूँ, और सबके समय पड़े तो सबके सेवा करने के लिए जो हमसे हो सकता है, मतलब तन मन और धन जो

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: चल रहा।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बना

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ख्याल के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज हम ध्रुपद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि ये भी ख्याल जैसे ही गीत का एक प्रकार है। इस शैली का जो गीत होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता होती है। ईश्वर के प्रति आस्था की प्रस्तुति में हम आसानी से भगवान को रिझा सकते हैं, मना सकते हैं।
1: हाँ जी।
0: ऐसा ही है ना श्यामली जी?
1: हाँ जी।
0: पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं संगीत की दुनिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। सब लिसनर को, जितने सारे है, सबको नमस्कार करती हूँ।
0: जी जी श्यामली जी, हमने जो बताया कि ये जो ध्रुपद, ये भगवान के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसको हम प्रस्तुत करने में ये हमको बहुत सहजता से मदद करती है। ऐसे
1: ये एक तरह की तरह जैसे हम आम दुनिया में क्या करते हैं, एक उपन्यास होते हैं और एक ऐसे होते हैं, स्टोरी होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे।
0: हाँ जी।
1: तो स्टोरी, हाँ, स्टोरी जो होता है ये है ख्याल, जो ऐसे होता है निबंध जो होता है वही है ध्रुपद।
0: ओके।
1: थोड़ा गंभीरता है लेकिन इसमें जब ईश्वर के ऊपर जो स्तुति होते हैं तो उसमें कैसे करते हैं उसको हम शुरू करते हैं आलाप से, नोम तोम तेरी एरी ऐसे करते हैं।
0: अच्छा, आलाप ऐसे
1: पहले आलाप होता है। okay. उसके बाद जो स्थाई अंतरा होता है इसको तुक भी कहते हैं। हाँ, ये जो पहले स्थाई है, चार तुक की भी ध्रुपद होता है, दो तुक की भी होता है, इसको तुक कहते हैं। उसके बाद वो जो संगीत होता है, बंदिश होता है, बंदिश के ऊपर बाट होते हैं, क्योंकि उसका पहले डबल छंद होता है, तीसरा छंद होता है, चौथा छंद, ऐसे ऐसे छंद होता है।
0: okay.
1: जब करते हैं उसके बाद वो संगीत समाप्त हो जाते हैं। ये ख्याल में जो जब हम तान करते हैं उसके बाद ख्याल समाप्त होते हैं, लेकिन इसमें बाट होते हैं, तो वो अलग भावना है, अलग सी शैली है, हम बाद में सिखाएंगे।
0: अच्छा।
1: आज आपने ध्रुपद के ऊपर बोल रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा जानकारी
0: सब बता दिया। जी जी जी।
1: तो फिर अभी आज हम क्या करेंगे, अंतरा करेंगे। अंतरा के साथ अगर समय होता है बंदिश भी दे देंगे।
0: ओके।
1: ठीक है
0: जी जी।
1: तो शुरू करते हैं।

0: वही मुकरा हम चार मात्रा से लेंगे, जैसे कि चार मात्रा से शुरू होता है, अंतरा भी चार मात्रा से शुरू होता है। जब बंदिश करेंगे तब लिसनर को समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
1: अच्छा,
0: पहले स्वर लिपि देती हूँ, उसके बाद हम धुन में बैठाएंगे अंतरा। अगर लिख लेते हैं लिसनर, गा मा पा धा सा आ सा आ, ये जो सा है ऊपर की सार है। तो पहले हमने बताया चार मात्रा मुकरा है, ये गा मा पा धा जो है चार मात्रा की मुकरा है। गा मा पा धा सा आ सा आ, नी ई धा पा करिमा आ गा आ मा आ गा री नी, ये जो नी है नीचे नी है मंद्र सर की, नी ई रे ए गा आ करिमा गा पा आ मा गा री ए सा आ करिमा आ पा आ करिमा आ पा नी धा पा मा गा, फिर गा मा पा धा गया। अगर इसमें धुन में बैठाएंगे तो और भी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अभी धुन में करती हूँ।
1: ओके।

0: ये जो हमने स्थाई और अंतरा दे दिया है, स्वरलिपि दे दिया, अभी अगर लिसनर कितना आसानी से कर पाएंगे, कैसे कि अगर इसमें आ करेंगे, आकार सहयोग से करेंगे ना, वो पहले वो कंठस्थ हो जाएंगे। जब हम बंदिश दे देंगे, क्योंकि इसमें जो एक ही लाइन इतना लंबा है 48 मात्रा की, जैसे हमने पहले द्रुत सिखाया था, मध्य लय के सिखाया था, वो तो 16 मात्रा की था। 16 मात्रा चार आवर्तन, तीन आवर्तन कभी भी होता है, दो आवर्तन है तो, लेकिन इसमें 48 मात्रा है। लिसनर को फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें आता है तो ये तो एक लाइन 48 मात्रा ही है। अगर इसमें पहले आकार करेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगे,
1: माने आकार के साथ करेंगे तो बहुत, भले 48 मात्रा है फिर भी आप आसानी से
0: कंठस्थ हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तब जब बंदिश उसको बैठाएंगे आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, बंदिश जो है बंदिश दे देती है, हम बाद में करेंगे। मेरा मन बाधली लोड़ी, मेरा मन बाधली लोड़ी, हारे इन जगिया के साथ। यह छोटा है लेकिन विलंबित है ना, इसमें लगते बहुत बड़ा है, लंबा है, लेकिन इसका जो बोल बंदिश है बहुत छोटे होते हैं।
1: अच्छा।
0: मेरा मन बाधली लोड़ी, हारे इन जगिया के साथ, अंतरा है सदा रंग कर्म करो क्यों ना इन प्राण नाथ के हाथ। सदा रंगे कर्म करो क्यों ना इन प्राण नाथ के हाथ। ये जो अभी जो बंदिश में सदा रंग जो ये जो शब्द आए गए, शायद बाद में सामने जनता के सामने ये जो सदा रंग जो है, ये जो बहुत विख्यात एकदम बहुत फेमस शास्त्रीय संगीतकार है, इन्होंने सबके सामने लाए हैं। अच्छा। इसलिए इन्होंने जो
1: फाउंडर फादर,
0: हाँ, रचनाकार जो है इसमें, इसलिए हर रचना में सदा रंग ये
1: वो आएंगे शब्दों का प्रयोग,
0: शब्द प्रयोग होता है। ठीक है
1: जी श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आनंद लेंगे हम सभी यमन राग से संबंधित एक सुंदर सा मीठा सा गीत का। पुनः हम लौटेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने बहुत एक सुंदर से गीत का आनंद लिया होगा और ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से सुना यमन राग के बारे में, स्वरलिपि दे दी और उसमें आकार के साथ अगर करने से बहुत सहजता होगी। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ, श्यामली जी? हाँ, जी
1: कठिन नहीं लगेगा। जितना कंठस्थ हो जाएंगे अंदर चले जाएंगे तो वो अपने आप से कर सकते।
0: भले ये 48 मात्रा है फिर भी
1: थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो
0: हो जाएगा। जो संगीत सीखना सचमुच में चाहते हैं उनके लिए तो कोई
1: करना ही चाहिए,
0: इम्पॉसिबल ऐसे तो नहीं होगा।
1: तो अभी हम क्या करेंगे, हमने पहले ब्रेक के पहले जो बंदिश दिया था
0: जी,
1: मेरा मन बाध ली लोड़े हारे इन जोगिया के साथ, ये पहला जो स्थाई का है बोल है। और अंतरा की जो बोल है, सदा रंग कड़ुम करो क्यों ना इन्हें प्राण नाथ के हाथ। ठीक है, तो हम देखिए कैसे हम बैठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा स्वरलिपि है इसको कैसे बैठाते हैं।
0: जी जी,
1: तो लिसनर को तो याद होगा ना कि चार मात्रा मुखड़ा है
0: जी।
1: ठीक है, तो हम करते हैं नी पा नी धा नी रे सा, ये जो मुखड़ा है हम क्या करेंगे, मेरा आमन बा।
0: अच्छा, उसके साथ साथ आप बिठाई देंगे,
1: बैठाते हैं क्योंकि लिसनर को सीखना है ना,
0: समझ में आ जाएगा। हाँ, आसानी से
1: अगर बा के ऊपर सोम आ गया उसके बाद चार चार मात्रा चलेंगे। अगर लिसनर ध्यान से सुनते हैं एकदम, अगर लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे।
0: जी जी,

0: तो आपने देखा कि हम कैसे आसानी से स्थाई अंतरक जो बोल है इसमें बैठा दिया
1: जी।
0: अभी क्या ये जो मेरा मन वा मेरा मन हम आपको दिखाना चाहती हूँ थोड़ा से एक मिनट के अंदर कि इसको ख्याल कैसे किया है। जैसे हमने किया है

0: हमको चार मात्रा में मुकरा करना है।
1: अच्छा।
0: हम ख्याल से अपना इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जब हम रिपीट करेंगे एक आवर्तन हो जाएंगे, फिर हम रिपीट करेंगे, बाद में हम सिखाएंगे सरगम या तान वगैरह सिखाएंगे। हम मेरा मन जो है, मेरा मन फिर से हम नेक्स्ट आवर्तन में कर सकते हैं, मेरा मन खाली वही स्वर लेना है, ऐसे नहीं है,
2: मतलब चेंज भी कर सकते,
0: चेंज भी कर सकते हैं। हमने जो ये जो हमने किया है ये स्वल्पी के साथ किया है, हम चेंज भी कर सकते हैं।
1: ओके, हाँ।

0: हम जैसे अपने इच्छा अनुसार करेंगे लेकिन ताल के सहित।
1: जी जी,
0: हम तो थोड़ा ताल भीन किया है, इसके ताल में हमने स्वरलिपि दे दिया क्योंकि लिसनर जो है पहले सीखते हैं। ये जो ख्याल इसको कहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं
1: उसको ख्याल कहते हैं।

0: हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको कहते हमने जो अभी किया इसको बिस्तर कह सकते हैं। बिस्तर में हम बाद में हम सिखाएंगे थोड़ा कैसे बिस्तर करना है, अभी इतना तक ही ठीक रहेगा कि
1: थोड़ा सा धीरे धीरे सिखाएंगे तो वो लोग, क्योंकि रेडियो से सुनकर सीख रहे हैं ना, ऐसे प्रत्यक्ष में कोई गुरुजी से शिक्षा लेना और रेडियो से डायरेक्ट लेना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। श्यामली जी, आज आप जाते जाते हमको क्या सुनाना चाहेंगे?
0: आप हर दिन पूछते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है गीत गाने
1: की। जी हमको तो इसका इंतजार रहता है।
0: एक बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत पुराना भी नहीं, ऐसी आंधी फिल्म का गीत है।
1: आंधी फिल्म, जी जी,
0: आंधी फिल्म में लता जी का एक गीत है, लता जी और उसमें किशोर कुमार जी भी है। इस मोर से जाते हैं, ये भी इमान रखी ऊपर आधारित है। हम कोशिश कर सकते हैं।
1: जी
0: है?
1: जी okay.

0: वाह, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई संगीत सीखे ना सीखे, आपसे हमको बहुत अच्छे अच्छे ओल्ड फिल्म के सॉन्ग सुनने को मिलते हैं। सच में सामली जी, बहुत भले आप कोशिश शब्द का प्रयोग करते हैं, और होना भी चाहिए, नहीं होना भी चाहिए, मगर
1: जिन्होंने गाए वो मेरे गुरु माँ है
0: जी,
1: तो हमने कोशिश किया है। मेरे साथ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है ना
0: जी जी,
1: इसमें शायद कुछ इधर उधर होता है,
0: क्योंकि पुरानी फिल्म के गाने हमने सुने जरूर है, मगर इतने डीपली शब्दों के साथ में हमको आज याद नहीं है।
1: हाँ।
0: और आज वो पुरानी यादें ताजा कर देते हैं।
1: हाँ।
0: इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, जाते जाते आपने हमारा दिल खुश कर दिया, हमारे श्रोता मित्रों ने भी इस गीत का आनंद लिया होगा। समय देता है हमको यहाँ पे ही इजाजत, फिर मिलेंगे संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन जाते जाते आपको एक बात जरूर कहूंगी कि आप अगर संगीत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, आपके कोई अलग से संगीत के संबंधित प्रश्न होंगे, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। मिलते हैं अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। रेडियो मधुमन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम हिंसा को नो स्मार्ट संस्थान के सहयोग से। वैसे तो ये कार्यक्रम पहले भी आप सभी ने सुना था, लेकिन इस बार कुछ नए विषय और बदलाव की बातों को लेकर आए हैं हम आपके बीच। दोस्तों, अक्सर हम घर परिवार में लड़का लड़की को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। लड़का ये करे, लड़की वो करे, लड़की हो तो ये पहनेगी, लड़का है तो ये खेलेगा। हमारी सोच और नजरिए के अनुसार हम अपने बच्चे और समाज को भी ढलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी उनकी आवाज सुनने की कोशिश की? चलिए दोस्तों, आज उन आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं। उन आवाजों में हमारी अपनी आवाज भी कहीं छुपी हुई तो नहीं है?

0: हूँ।
1: ए मीना, जा भाई ने बुला, यो तगारो तो कन छत पे रखन आवे।
2: माँ, भाई की कटे जरूरत है, ला मैं राखे ना हूँ छत पे।
1: अरे तू रेवा दे बेटा, तू छोरी है, अत्रो वजन थारा सु कोनी तो की।
2: अरे माँ, ये छोरा और छोरी काई होवे, देख मैं उठा ली दियो वजन।
1: ध्यान सु बेटा।
3: मजबूत बने बचपन सबका, शक्ति है स्वरूप बेटियों का।
4: दो सखियां आपस में बात कर रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, आइए इसी कड़ी में आगे सुनते हैं।

0: ते जागी।
1: सीमा, अरे काई हो जो थाने आखी रात जागनो पड़ियो और चिंता वालो गीत भी गा रही, उदास भी लाग रही है। बोल सीमा, बोल काई भी हो सीमा।
0: ए मीना, मैं तने कई बताऊं, मारा घर वाला मन आगे पढ़वाई न दे रहा। अब मैं कई करूं, मन तो ठा को नहीं पड़ रही। तू इस बता मीना, अब मैं कई करूं।
1: सीमा, ये बात तो वास्तव में चिंताजनक है, पर देख सरकार की योजना के अनुसार अपन साइकिल मिली, जो माने भी दादाजी दादी जी घर वाला सब मना कर दी दो कि या तो छोरिए इन्हें साइकिल चलावा कोनी देनी, पर मैं मारे वास्ते आवाज उठाई और जिद करी साइकिल चलावा की, तो देख ले मारे लिए कतरो आसान वे गयो साइकिल लेन, स्कूल जानो आनो, घर रा दूसरा काम करना। आज मारा दादा दादी जी मने साइकिल चलाता देख कतरा खुश होवे। सीमा, आपने लिए तो आपने ही बोलनो पड़ी, आगे तू समझदार है।
0: थैंक यू मीना, अब मारा समझ में आ गई कि मारा काई करनो है।
2: जीवन के हर मोड़ पर नारी देती है परीक्षा, कोई रोके ना उसे लेने से अच्छी शिक्षा।
3: अक्सर हम खेल के बारे में सोचते हैं, लड़का ये खेलेगा लड़की ये खेलेगी, तो कहीं यहाँ पर भी इस तरह की बातें तो नहीं हो रही है? सुनते हैं।
1: मम्मी मम्मी, मारे टूर्नामेंट है, मैं क्रिकेट में भाग ले रही हूँ।
4: मीना, तू और क्रिकेट? अरे कोई छोरी वालो गेम पसंद कर, यो तो गेम छोरा को है। एड़ा उछल कूद करवा वाला गेम आपने को नहीं खेलनो, समाज में बाता हो जाए।
5: अरे मीना की माँ, क्रिकेट में काई बुराई है? अरे भाई, आपने मिताली राज ने देख लो, राजस्थान की पहली महिला क्रिकेटर रह चुकी है। आपने मीना भी किकाऊ कम कोनी है। जा बेटा जा, खेल तू पूरी छूट है।
1: थैंक यू पापा।
2: लड़का हो या लड़की, दोनों को है खेलने का समान अधिकार।
3: बेटा और बेटी के प्रति कैसी सोच होती है हमारी, तो आइए हम देखते हैं माँ बेटी बेटे के बीच किस तरह की बातें हो रही है।
4: अरे राहुल बेटा, आज मारी तबियत ठीक कोनी, थोड़ो सो सूप बना दे तो।
6: माँ तू मीना न बोला पे, मारे तो एरो कोम नहीं वे, वो सो रहो।
4: बेटा मीना अबानू जा आराम करवा गई है, और यो छोरा छोरी कहीं लगा रखियो, जा फटाफट सूप बना, मारे दवा लेनी है।
6: ठीक है माँ।
4: मने मीना का साथ साथ में राहुल ने भी घर को हर काम सिखानो पड़ी, ताकि काल का दिन मारी बहू का जीवन में कहीं भी समस्या नहीं आवे।
2: भूख सभी को लगती है, यह जग जाहिर है, फिर भी महिला ही खाना बनाएगी, ये कैसी लाचारी है।
7: तो बच्चों, अब इस तरह से आप लोगों ने जान लिया होगा कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। एक प्रश्न का मुझे जवाब दो कि आदमी और औरत में क्या अंतर होता है।
8: मैडम, आदमी कमान लावे, लुगाया तो घर को काम करे।
9: मैडम, आदमी पंचायत में बैठे और औरत बच्चा ने संभाले।
1: मैडम, औरत बच्चा ने जन्म देवे और पिता पालन करवा में मदद करे।
7: शाबाश बच्चों, आप सभी ने उत्तर देने की अच्छी कोशिश की है। आज के समय में तो औरतें भी पंचायत में बैठती हैं, सरपंच भी बनती हैं, औरत नौकरी भी कर रही है तो घर परिवार भी संभाल रही है, पुरुष खाना भी बनाते हैं तो बच्चों को भी संभालते हैं, तो ये सारे काम महिला और पुरुष बराबरी से करते हैं, इसलिए हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो कार्य करते हैं उसे जेंडर कहते हैं, और महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर है उसे सेक्स कहते हैं।
2: नर हो या नारी, दोनों को है जीवन जीने का अधिकार, दोनों के ही शरीर की बनावट में होता है अंतर।
3: दोस्तों, आपने मुलाकात की हमारी बहादुर मीना से। इस नाटक से स्पष्ट होता है कि महिला और पुरुष की शारीरिक बनावट में अंतर होता है, ना कि उनके कार्य में। आइए जेंडर और सेक्स को बेहतर तरीके से समझते हैं आज की हमारी जेंडर एक्सपर्ट वीथिका जी से। दोस्तों, वीथिका जी यादव एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जिन्होंने मानव तस्करी, गुलामी, लैंगिक अधिकारों और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम किया है। वह लव मैटर्स इंडिया की कंट्री हेड है, जो सभी लिंग और कामुकता के लिए प्यार, सेक्स और रिश्ता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। चलिए सुनते हैं वीथिका जी से कि वह क्या कहती है जेंडर और सेक्स के बारे में।
10: तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम अधिकतर जो है जो हमारी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारा शरीर है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ वो उस चीज के आपके शरीर के जो अंग हैं, जो आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको रेफर करता है। और इसमें आपके जो आपके शरीर पे जो बाल हैं, जो आपके स्तन हैं, जो भी आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका यूट्रस है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सब कुछ आते हैं। और वही जब हम सेक्स की बात करते हैं तो वो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जनरली उनको यूज करा जाता है, उनका इस्तेमाल करा जाता है पुरुष और स्त्री के शरीर को अलग अलग तरीके से समझने में। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को जन्म के दौरान ही एक सेक्स असाइन करा जाता है, और वो सेक्स असाइन करा जाता है इस बेसिस पे कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और जो उनके शरीर के जो अंग जो महिलाओं के होते हैं, अगर वो उनके साथ पैदा होते हैं तो उनको लड़की बोला जाता है, और जिनके अंग लड़कों वाले होते हैं उनको लड़का बोला जाता है। लेकिन जरूरी ये समझना है कि जो हम उनको सेक्स असाइन कर रहे हैं जब उनका जन्म हुआ है, जो लिंग हम उनको दे रहे हैं, वो उससे विपरीत उनको महसूस कर सकते हैं जब वो बड़े हों, जिसको हम बोलते हैं कि एक बाइनरी से हटके जो जहाँ पे हम इंटरसेक्स की बात करते हैं, मानने की जो व्यक्ति जन्म में जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पुरुष के थे, हो सकता है कि वो बड़े होके महिलाओं जैसा महसूस करे, और उसी तरह से महिला जो है पुरुष जैसा महसूस करे। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें हमारा समाज, हमारी साइकोलॉजिकल, हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चरल जो रोल्स हैं, जो हमारी बिहेवियर है, जो हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, चाहे मेल को लेके, फीमेल को लेके, या किसी और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, उसको हम जेंडर में डालते हैं। क्योंकि जेंडर, जहाँ पे सेक्स जो है वो आपके फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके देखा जा रहा है, वहां पे जेंडर जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज ये एक तरह से एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ये जो समाज ने एक जो ढांचा बनाया हुआ है जेंडर को, उसके मुताबिक देखा जाता है। क्योंकि अधिकतर जब हम समाज की जब बात करते हैं तो ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि एक पुरुष और एक महिला की एक बहुत ही बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है जेंडर को लेकर। लेकिन जेंडर जो है वो सेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको, उसका अनुभव भी लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, उनका जेंडर आइडेंटिटी जो है वो उससे विपरीत है जो उनको सेक्स जन्म के टाइम उन्हें दिया गया। बहुत सारे जब आजकल जिन टर्मिनोलॉजी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें हम जेंडर फ्लूइड होने की बात करते हैं या फिर जेंडर क्वेयर होने की बात करते हैं, ये वो वाली आइडेंटिटीज हैं जो अपने आप को केवल पुरुष और महिला वाले सेक्शंस में नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ अलग अपने आप, अपना जेंडर जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सेक्स, जहाँ पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपका, आपका शरीर की जो बनावट है, जो आपके शरीर के अंग हैं, उनको लेकर ज्यादा रेफर करा जाता है, वहीं जेंडर जो है वहां पे समाज का, कल्चर का, हमारी सोच का, हमारे बिहेवियर का रोल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी डाइवर्सिटी को, विपरीतता को हम समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे जो लेबल्स हैं वो सेल्फ आइडेंटिफाइड लेबल्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, और उसके लिए हमारे समाज में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। तो जेंडर सिर्फ पुरुष और महिला वाला जेंडर नहीं होता, जेंडर उसके बियॉन्ड भी होता है।
3: दोस्तों, अभी हमने सुना विथिका जी को। उम्मीद करते हैं कि आप भी जेंडर और सेक्स के बीच के अंतर को बेहतर समझ सके होंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम अभी भी बाकी है। आरजे उषा आए और गीत ना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए 107.8 FM पर सुनते रहिए रेडियो मधुबन को, और कहिए
2: सुनो समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। वक्त हो गया कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना। ये कार्यक्रम सतत विकास के ऊपर आधारित है और सतत विकास के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनमें से एक एक्सपर्ट हमारे मध्य आज रहेंगे शराव जादव जी, और वन चिकित्सा वन्य जीव पर्यटन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो शराव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज रेडियो मधुबन बुलाने के लिए।
0: जी, तो आपके काम

0: के बारे में जानेंगे। यूं तो आप मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी आपने किया है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के बाद फिर आप वाइल्ड लाइफ के बारे में आपने स्टडी किया, यानी रिसर्च कर रहे हैं आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में, फॉरेस्ट थेरेपी, आप एक नेचुरलिस्ट भी हैं, तो इस फील्ड में आप कैसे आए?
1: तो जैसे कि आपने बताया, मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया था। मैंने साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़ाई की और मेरे माता पिता डॉक्टर भी है
0: जी,
1: तो उसी हिसाब से मुझे रिसर्च में जाना था। लेकिन बचपन से वाइल्ड लाइफ के बारे में सफारीज या नेचर वॉक मैं करते आ रही थी, और मास्टर्स खत्म होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। पता नहीं था कि क्या करना है या ऐसा कुछ फिक्स मुझे पता नहीं था कि वाइल्ड लाइफ में आखिर एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कुछ इंटर्नशिप्स या वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मैंने ज्वाइन किया, और फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे जो मिला था वो मैसूर यूनिवर्सिटी का था। अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स है वहाँ पे ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो मनुष्य और प्राणियों में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और वो कैसे एक साथ रह सकते हैं, इसके बारे में स्टडी थी। तो 6 महीने के लिए मैं वहाँ पे रही, जो निकोबार बेटों में से सबसे लास्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड करके है, जो इंडोनेशिया के बहुत पास में है। और वहाँ पे हम लोग बंदरों पे पढ़ाई कर रहे थे कि उनके इंटरेक्शन ह्यूमन के साथ कैसे है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो उस प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए रिसर्च में ही, तो मैंने रिसर्च से स्टार्ट किया। और कोविड के बीच में ही मुझे समय मिला, तो मैंने सोचा कि जब मुझे पता चला नेचुरलिस्ट फील्ड के बारे में इन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी कुछ काम है, तो मैंने वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और अभी 2-2.5 साल हो गए मैं
0: जी, नेचुरलिस्ट काम कर रही हूँ। जी बिल्कुल। तो आपने जो बिहेवियर्स के बारे में स्टडी किया, तो जब आप जवाई में कार्य कर रहे थे, जब आप यहाँ राजस्थान में कार्य कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर जो जानवरों की बिहेवियर और वहाँ पर जो आपने देखा था, कुछ अंतर, कुछ यूनिकनेस देखा?
1: तो जवाई में मैं जब काम कर रही थी एज ए नेचुरलिस्ट, वहाँ पे वो एरिया जो है तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है
0: जी,
1: वहाँ पे ओपन लैंडस्केप है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जैसे कि बाकी के नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टिव एरियाज है, वैसे वहाँ पे नहीं ही है। और वहाँ पे जो कम्युनिटीज है जिनको रबारी बोलते हैं
0: जी,
1: उनके साथ वहाँ पे जो तेंदुए है और जो भी कुछ गांव है आसपास में, उस एरिया के आसपास, उनमें एक समझदारी है कि अपने आप में हम दोनों इंसान और एनिमल कैसे साथ रह सकते हैं, सेम एरिया दोनों के लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। और जो मैंने निकोबार में प्रोजेक्ट किया था वो बंदरों के ऊपर था, तो उसमें बंदर हमेशा ही एक ग्रुप में रहते हैं जिनको ट्रूप बोला जाता है
0: जी,
1: तो उनका एक बहुत अलग तरीके का बिहेवियर होता है या उनके जो पैटर्न होते हैं, उनके जैसे रिलेशन एक दूसरे के साथ होते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब जैसे बोल नहीं सकते हमारे जैसे, लेकिन उनके एक्शंस थ्रू या उनके एक्सप्रेशन थ्रू वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं
0: जी। जी बिल्कुल।
1: जवाई में जैसे ग्रेनाइट के हिल है, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ के नेचुरल हैबिटेट में इन हिल्स के ऊपर जो केव है वहाँ, और इन इस हैबिटेट का उपयोग करके लेपर्ड वहाँ पे जैसे रहते हैं, तो वो एक अलग ही इकोसिस्टम है। तो जैसे इकोसिस्टम है वैसे ही एनिमल्स अडाप्ट होते जाते हैं और सर्वाइव करते हैं।
0: जी बिल्कुल। और जैसे माउंट आबू में देखते हैं, ये एक टूरिस्ट एरिया है, टूरिज्म यहाँ पर ज़्यादा है, तो बंदरों को हम देखते हैं कि वो रोड पर आ जाते हैं ग्रुप सहित ही, तो हम कुछ उनको खिला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम पुण्य कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में?
1: ये मतलब हम इंसान हमें हमेशा से ही दूसरों को खाना खिलाना या उनके लिए कुछ अच्छा करना अच्छा लगता है, तो उस माइंडसेट से या उस हिसाब से हम लोग करने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी जो हम खाना खाते हैं या हम कुछ ऑयली पदार्थ खाते हैं जैसे कि चिप्स वगैरह, वो हम बहुत सारे मंदिरों में, मार्केट एरिया में, गांव में हम लोग बंदरों को देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टडीज के बाद ये पता चलने लगा है कि उनको भी कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। तो हम बोलेंगे उनको हम फ्रूट्स देते हैं जो कि वो भी खाते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स जो हम दे रहे हैं वो भी हमने बनाए, हमने ग्रो किए हैं। तो जो हम खाते हैं वो अगर हम इन प्राणियों को दे, उन्हें तकलीफ होती है और वो उनका बिहेवियर अग्रेसिव भी बन जाता है, वो हमारे ही एरिया, मार्केट एरिया, टेम्पल के आसपास ही रहने लग जाते हैं, तो फिर उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी और बढ़ता है। जो हमारे साथ इंटरेक्शन होता है तो उन हमारा और उनका एक निगेटिव इंटरेक्शन होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, निगेटिव इंटरेक्शन।
1: तो मानना है कि हमें कुछ भी प्रकार से वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड कोई भी एनिमल है, उन्हें फीडिंग या खाना नहीं देना चाहिए।
0: जी खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अपने खाना ढूंढ लेते हैं जंगलों में।
1: जी बिल्कुल।
0: आपसे ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कि यूनिक चीज़ों के बारे में बताया, वन चिकित्सा यानी कि फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, वन्यजीव पर्यटन, तो ये क्या है वास्तविक में, आप इस पे कैसे कार्य करते हैं?
1: मैं जब महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में काम कर रही थी एज ए नेचुरलिस्ट, तभी मैंने फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में सीखा था। फॉरेस्ट थेरेपी मतलब अभी के टाइम लाइन में हम लोग बात करेंगे तो जो हमारी लाइफस्टाइल बन गई है, हम लोग भाग रहे हैं या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, उस वजह से जो पुराने जमाने के लोगों का लाइफस्टाइल हुआ करता था या जो ट्राइबल्स जंगलों में रहते थे, वो फॉरेस्ट के साथ, जंगलों के साथ एक तरीके से कनेक्टेड थे। उनका इंटरडिपेंडेंस था, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो उस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल था, वो अपने इंद्रियों से कनेक्टेड रहते थे। और अभी के लाइफस्टाइल के वजह से वो जो फॉरेस्ट थेरेपी का नाम उससे आ गया है
0: जी,
1: तो एक जापनीज टेक्निक है जिसे फॉरेस्ट बेदिंग कहते हैं
0: जी,
1: और जापनीज लैंग्वेज में उसे शिंगिन योकू बोला जाता है। तो इन सभी कारणों के वजह से उनको ध्यान में रखते हुए अभी मनुष्यों का जीवन सरल बनाने के लिए या उनका टेंशन कम होने के लिए या कुछ हेल्थ इश्यूज है वो कम करने के लिए लोगों को फॉरेस्ट में वॉक के लिए लेके जाते हैं। जैसे हम लोग वॉक करना सभी को ही पसंद है नेचर में, लेकिन इसमें जो है वो हम हमारे पांच इंद्रियों को नेचर के फाइव जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, जैसे कि धरती, हवा, पानी, आग
0: जी,
1: तो उनके साथ कनेक्ट करने से और छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, शांति में रह के नेचर में या फॉरेस्ट में जितने कलर्स है वो कैसे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, कैसे पेड़ या एनिमल्स एक दूसरे के साथ चल रहे, आवाज सुनना, तो ये सब चीजें ना कि सिर्फ मतलब एनिमल्स को देखना है लेकिन महसूस करना है
0: जी, जी
1: तो वो एक हीलिंग प्रोसेस है जो फॉरेस्ट थेरेपी में आता है
0: जी।
1: और वहीं से मैंने स्टार्ट किया कि लोगों को अगर मैं फॉरेस्ट थेरेपी का सेशन कंडक्ट कर रही हूँ तो मैं उनको गाइड करूंगी अलग अलग सेशंस के थ्रू, ताकि वो कनेक्ट हो पाए जंगलों से या पेड़ों से या नेचर से
0: जी। तो कैसे करते हैं ये सेशंस आप और कहाँ कहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे भारत में?
1: तो जहाँ मैं काम करती थी वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे जो हमारे यहाँ गेस्ट आते थे तो उनको मैं लेके जाती थी और वो वॉक पूरी तरह से एक घंटे का, जो गेस्ट आएंगे उनको शांति से सिर्फ वॉक करना है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितना धीमी गति से आप जंगल में चल सके उतना चलना है। कुछ फोकसिंग एक्टिविटीज होंगे जिसमें आप एक पेड़ हो या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके अपने आप को शांत करें, अपने आप के ब्रीदिंग पैटर्न्स को महसूस करें, ऑब्जर्व करें,
0: जी
1: कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिसके जिसके लिए आप पानी में बैठेंगे, जो जंगल के साउंड है, पानी का साउंड है, पत्तियों के हिलने का साउंड है, बर्ड बीच बीच में फ्लाई करेंगे उनके साउंड है, तो उन सबको सुनना है और पूरे शांति से ऐसे समझना है कि मैं अकेली यहाँ पे हूँ और मुझे कोई एक इंसान गाइड कर रहा है इस प्रोसेस थ्रू नेचर के और करीब जाने के लिए। और जैसे जापान में ये जो सेशन होते हैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए भी किए जाते हैं,
0: जी
1: और हमारे इंडिया में अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग हैं वो इंडिविजुअली ये सेशन कंडक्ट करते हैं, हिमालयाज में भी कंडक्ट करते हैं।
0: जी तो इस प्रकार से सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस थेरेपी से क्या हीलिंग होती है हमारे मन में, शांति के साथ साथ आपको क्या लगता है कि हम डिप्रेशन से भी दूर हो सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये सभी चीजें पॉसिबल है और इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है। तो
0: जी
1: ब्लड प्रेशर या जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस होना हमारे बॉडी में
0: जी
1: सबसे जरूरी।
0: जी बिल्कुल
1: तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो मेडिकली भी टेस्ट किए हैं, जिनका फायदा फॉरेस्ट थेरेपी के बाद चेक किया गया है और
0: जी
1: उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आए हैं। तो साइंटिफिकली और जैसे हमारे जनरेशन जीते आए हैं, तो इन दोनों से फॉरेस्ट हीलिंग की प्रोसेस मुझे लगता है बहुत अच्छा टेक्निक है, और अगर मुझे मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों को उसका एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार।
0: जी बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस आप ज़रूर करें। और कहते हैं कि प्रकृति के पास जाने से हम अपने आप हील हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, शांति महसूस करते हैं। और आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, अपनी बुश वॉक्स के बारे में भी लिखा है, तो ये क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है।
1: जी तो बुश वॉक मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली ये वर्ड ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन जैसे हम लोग नेचर वॉक करते हैं
0: जी
1: वही अभी फॉरेस्ट थेरेपी है, वो भी एक बुश वॉक का पार्ट हम लोग कह सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन बेसिकली इसमें ये होता है कि हम किसी कोई लोगों को वॉक के लिए लेके जा रहे हैं नेचर में, तो उस एरिया में वहां की परिसंस्था, वहाँ का इकोसिस्टम कुछ यूनिक होता है हर जगह का। तो
0: जी
1: उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएं। मुझे लगता है कि हम लोग जब नेचर में चलते हैं या जंगलों में चलते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
0: जी
1: और ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि कुछ पेड़ों के पत्ते हैं या मिट्टी है, किसी पंछी का नेस्ट है, तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें वॉक करते करते दिख सकती है। किसी एनिमल का स्कैट मिलेगा या कुछ हमें बोन्स मिल सकते हैं, तो उससे हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन कौन सा जानवर था, कौन सा कब यहाँ से पास हुआ था, या पग मार्क्स मिलते हैं बहुत बार हमें, फुटप्रिंट्स मिलते हैं जब जंगलों के आसपास वॉक करते हैं, तो उससे एक क्यूरियोसिटी लोगों में बढ़ जाती है छोटी छोटी चीजें सीखने में। बेसिक अगर आप एग्जांपल लोगे तो कैसे पत्तों के कलर जब वो पत्ता हरे रंग से ब्राउन बनने तक का जो प्रोसेस होता है, उसका जो लाइफ साइकिल होता है, वो कैसे चेंज होता है, उसमें कौन से केमिकल्स चेंज होते हैं उस वजह से
0: जी
1: कलर चेंज होता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए मिलती है। तो
0: जी
1: वही इम्पोर्टेंस है इन वॉक्स की।
0: जी जी बहुत खूब। तो नेचर को एकदम करीब से हम स्टडी कर पाते हैं और इससे फायदा हमको भी है, और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसे पास से स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने ट्रेकिंग और बाकी चीज़ों के बारे में भी स्टडी किया है, रिसर्च करते हैं, तो मुझे सवाल पूछना है कि ट्रेकिंग से फायदा क्या होता है?
1: ट्रैकिंग पे मेनली तो हम लोग हाइक कर रहे हैं, किसी माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, तो एक तो आपका फिटनेस आपको पता चलता है कितने फिट हो, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊपर चढ़ते हैं किसी माउंटेन पे या हिल पे, तो जो हवा का एक्सपीरियंस मिलता है वो हर जगह का अलग होता है, जो व्यू मिलता है वो हर जगह का अलग होता है। अभी बहुत सारे लोगों को ट्रैकिंग पसंद है, लेकिन हर एक का इंटरेस्ट अलग हो सकता है। किसी को एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को जानना है, कुछ लोग फिटनेस के लिए करते हैं कि मैं कितने टाइम में एक पहाड़ चढ़ सकता हूँ या चढ़ सकती हूँ, या कुछ लोगों को वहाँ के मिनरल्स के बारे में जानना है, पत्थरों के बारे में जानना है। बहुत सारे लोग हिमालयाज में ट्रैकिंग करते हैं, तो वहाँ का हिमालयाज में भी हवा का दाब कम होने लगता है जैसे जैसे ऊपर चढ़े, और वहाँ हर एक एरिया में रहने वाले, ऊपर पहाड़ों पे रहने वाले कम्युनिटीज के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रैकिंग में हम लोग बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे जान सकते हैं और नेचर का आनंद ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने भारत के कह सकते हैं बहुत सारे जोन्स में विजिट किया है, नेचर को स्टडी किया है, तो अगर भारत को आप डिस्क्राइब करेंगे प्रकृति के आंखों से तो कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे?
1: मैं कहूंगी कि
0: जी
1: भारत की, मतलब हमने ये शब्द बहुत बार सुना है, विविधता में एकता, और अभी मेरे दिमाग में भी वही आया। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ स्टाइल को लेके, काम को लेके, और बहुत अलग अलग एरिया में, छोटे छोटे एरियाज में हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लेकिन और इकोसिस्टम इतने अलग है
0: जी,
1: हर एक एरिया में, जैसे हिमालयाज है, डेजर्ट्स है, वेस्टर्न घाट्स है, समुन्दर है, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड है, तो बस डाइवर्सिटी, मतलब एक चीटी से लेके बड़े बड़े पहाड़ों तक सब इकोसिस्टम अलग होके भी एक साथ जो काम करते हैं, बस वही भारत का रूप है।
0: जी जी, बहुत खूब, वही भारत का रूप है, अलग अलग इकोसिस्टम एक साथ काम करते हैं। बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने कहा यहाँ पर। और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे हम कि आप बच्चों के लिए भी वर्कशॉप कराते हैं, जूनियर रेंजर्स प्रोग्राम आप करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, तो ये क्या है और बच्चे कैसे जुड़ सकते?
1: जी बिल्कुल, तो बच्चों में हमारे नेचर के बारे में या एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम पूरे भारत भर में या वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। इसमें बेसिक ये होता है कि कुछ फन एक्टिविटीज होते हैं, लर्निंग सेशंस होते हैं, और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए नेचर के लिए, उसको कंजर्व कैसे करना है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, या कुछ गेम्स होते हैं जिसमें पिक्चर्स दिखाते हैं, कुछ एक्टिविटीज होते हैं जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में एक्ट करने के लिए बोलते हैं बच्चों को, और फिर बाकी मतलब बच्चों को गेस करना है, जैसे कि दम शरार गेम है
0: जी।
1: और उनके लिए भी जैसे हमने डिस्कस किया, बुश वॉक्स, नेचर वॉक्स ले सकते हैं उनके लिए, जंगल सफारीज करा सकते हैं। तो उनके मन में हमारे जो यंग जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उनको एक एक्सपीरियंस देना या उनको हमारे प्रकृति के बारे में बहुत सिंपल शब्दों में या स्टोरी सुनाना, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल, तो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और प्रकृति की सुरक्षा के लिए उन्हें बचपन से जानना भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे, शरायु जी से बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें 9414151415 पर मैसेज करके या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM, ये है कार्यक्रम नई दुनिया और मैं हूँ आरजे शुभा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं राजयोगिनी दादी जानकी जी के अमृत वचन।
1: शुद्ध बनने के लिए अंदर से लगन चाहिए, मुझे शुद्ध बनना है भाई, अच्छा पानी चाहिए ना, शुद्ध पानी होना, मनुष्य के जीवन का आधार पानी है ना। आगे तो गंगा का पानी पीते थे, अभी तो बाटल का पानी पीना पड़ता है, पानी पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। वैसे भारत के गंगा का पानी लेकर विदेश में जाते थे, आज जमाना ऐसा है, अभी आपको क्या करने का है, शुद्ध शांत सच्चा श्रेष्ठ। और डीप जाएंगे तो कोई छिपा हुआ कोई भी हमारे में कमी कमजोरी न हो।
0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज हमारे मध्य हैं शरायु जाधव जी, जो एक नेचुरलिस्ट हैं। और आज हम बात करें फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में, और साथ ही साथ जैसे उन्होंने रिसर्च किया है जानवरों के बिहेवियर्स के बारे में, अनेक प्रकार के कार्य उन्होंने किया है, रिसर्च भी कर रहे हैं, और प्लांट्स के बारे में भी उन्होंने रिसर्च किया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनके ज्ञान को शेयर करते हैं रेडियो मधुबन पर, और उनसे जानते हैं उनके किए हुए रिसर्च के बारे में बातें। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है शरायु जी।
1: धन्यवाद।
0: तो अभी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे हमने बुश वॉक्स के बारे में जाना, फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में जाना, बच्चे कैसे प्रकृति को बेहतर समझ पाएंगे उसके बारे में जाना, आपने भारत की इकोसिस्टम और प्रकृति को कैसे आप देखते हैं उसके बारे में आपने बातें शेयर की। तो अभी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अब ब्रेक से पहले इंसान और जानवरों के तालमेल के बारे में बात कर रहे थे शुरुआत में, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ क्विक टिप्स और पॉइंट्स बताइए कि हमें क्या ऐसे ध्यान रखना चाहिए जानवर और हमारे बीच में वो तालमेल बना रहे, ताकि हम प्रकृति को साथ दे सकें।
1: जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे ये लगता है कि इंसान ने सभी जानवरों के बारे में एक मन में ऐसे रखना चाहिए कि मतलब वो जंगली जानवर है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं तो उनके साथ कनेक्शन है, भले ही हमें वो दिखता नहीं पता नहीं या डायरेक्टली हम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम एक साथ जुड़े हुए हैं।
0: जी।
1: उसके बाद अभी इम्पॉर्टेंट चीजें ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो एनवायरनमेंट के ऊपर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टडी करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च पे फोकस कर रही है इंडिया में अभी, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके, या जो मनुष्य है या जो फॉरेस्ट एरियाज के आसपास के कम्युनिटीज है उनको ज्यादा कम से कम तकलीफ हो और उनका कोएग्जिस्टेंस बना रहे।
0: जी। तो
1: उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, जो हमारे पॉलिसीज और लॉज है एनवायरनमेंट के बारे में, वो और ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए ताकि उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो सके। और डेवलप्ड नेशन हमें बनना है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है, क्योंकि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट साथ साथ चलेंगे तो ही हम लोगों को एग्जिस्टेंस बना के रख सकेंगे।
0: जी, आपको क्या लगता है खास क्या पॉलिसीज में चेंजेस आनी चाहिए?
1: मेजरली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि प्रोटेक्टेड एरियाज है, जो नेशनल पार्क है या सैंक्चुरीज है या और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है, वो स्थापित रखने का काम हमारे लॉ मेकर्स ने करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ एरियाज है जो जिनको डी नोटिफाई किया जा सकता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे हो सकता है, या कुछ कुछ एरियाज में हो भी रहा है।
0: जी बिल्कुल। जैसे आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कुछ प्रदूषण हम ऐसे फैला रहे हैं जिसके वजह से ओजोन छिद्र का सामना हमें करना पड़ रहा है, और तो उससे भी हमें हार्म हो रही है हमारी स्किन्स को, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
1: मुझे लगता है उस बारे में जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसमें कैसे इन्वॉल्व है, और छोटा सा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं एटलीस्ट उसको जान के। तो उसमें मेजरली है जो कुछ ऐसे केमिकल्स है, आई थिंक 100 के आसपास केमिकल्स है जो हमारे ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, तो उनमें ग्लोबली कैसे नियंत्रण रखा जाए।
0: जी,
1: ये उसमें से एक मेन उद्देश्य है।
0: जी बिल्कुल।
1: क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हुए कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसलिए ये दिन आज हम ग्लोबली मना रहे हैं।
0: जी, तो उसके लिए हम प्रकृति के और करीब हमें जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ जीते हुए भी प्रकृति के करीब कैसे जा सकते हैं डेली?
1: अभी बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पे बीच क्लीनिंग होता है, या अगर हम नेचर वॉक भी कर सकते हैं. ये चीजें करने से पहले तो इम्पोर्टेंट है कि उस नेचर के साथ कनेक्ट होना, फिर उसके बाद हम उसके कंजर्वेशन के बारे में सोच सकते हैं. अगर हम घर बैठे बस मतलब डिस्कशन कर रहे हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं होगा. लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने अभी बताया, उन चीजों में पार्ट लेने से बहुत सारी एनजीओ जैसे कि WWF है, वो लोकल लेवल पे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उनमें कंट्रीब्यूट हर कोई कर सकता है. सिटीज में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे नहीं है कि सिटीज में कुछ नेचर के लिए क्या हो सकता है या उसके लिए जंगल में ही जाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है
0: जी.
1: तो बस हमारी तरफ से, और मेजरली जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि हम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, पेस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, उसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना. मैं मानती हूँ उनके प्राइजेस अभी ज्यादा है कम्पेयर टू हम लोग जो कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग हमारा रूटीन चेंज करें तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा.
0: जी बिल्कुल. तो सतत विकास की ओर हम चले और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उसे हम यूज़ करें, जिससे हमें घरेलू नुस्खे भी कह सकते हैं जो हमारे दादा दादी हमें और नाना नानी हमें बताते थे, तो उन नुस्खों का भी हम प्रयास कर सकते हैं एक अलग स्मार्ट तरीके से, क्योंकि आजकल के जनरेशन जो है अपने आप को स्मार्ट कहलाता है, तो स्मार्ट तरीके से इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं. आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे फॉरेस्ट थेरेपी के बाद वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बाद हम करते हैं, जब लोग जाते हैं फॉरेस्ट के नज़दीक और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है जैसे आपने जवाई में भी देखा होगा, तो कौन से ऐसे चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: सबसे पहले तो जंगल में हम जब भी जा रहे हैं तो हमारी तरफ से जंगल को डिस्टर्ब ना हो
0: जी,
1: इसका इसके बारे में सोचना है. तो उसके लिए जब हम सफारी पे जा रहे हैं या जंगल के आसपास कोई एक्टिविटी कर रहे हैं
0: जी,
1: तो ज्यादा से ज्यादा शांति बनाए रखनी है. एनिमल्स या जो भी हमारे आसपास आ सकते हैं सफारीज में, तो उनको एक डिस्टेंस रखते हुए ऑब्जर्व करना है. जैसे हम लोग जब सफारी कंडक्ट करते हैं, वॉक्स कंडक्ट करते हैं, हम हमारे मेहमानों को पहले ही ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक्साइटेड होके चिल्लाना नहीं है या शांति बनाए रखना है, हम लोग इस डिस्टेंस पे ही एनिमल को देखेंगे
0: जी.
1: प्लास्टिक डालना नहीं है, कुछ रैपर या कुछ भी हमारी चीजें. इवन कई बार हम लोग कुछ फूड कैरी करते हैं तो केले का छिलका या फ्रूट का पील, वो भी चीजें हमें जंगल में डालनी नहीं है. वो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्राई करें कि हम लोग ट्रैवल करें, तो सस्टेनेबल ट्रैवल करना हमारे डेस्टिनेशन से उन जंगलों के डेस्टिनेशन तक, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए.
0: जो हम चेंज कर सके एटलीस्ट हम करें, ताकि हम इस प्रकृति के बेहतरी के लिए योगदान दे सके जी. अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या यूनिकनेस आप देखते हैं प्रकृति में?
1: अभी प्रकृति का यूनिकनेस हर, जैसे हमने डिस्कस किया, हर एक इकोसिस्टम का अलग है
0: जी.
1: लेकिन मैं बताना चाहूंगी एक एग्जांपल देके, जैसे मैं निकोबार में 6 महीने थी
0: जी,
1: तो वहाँ की जो परिसंस्था थी, वहाँ पे आइलैंड है जहाँ पर एक जमीन का मास जो पूरे सब तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो इंडियन ओशन है वहाँ पे, इंडियन महासागर. और वहाँ पे जैसे ही समुन्द्र से अंदर जैसे ही लैंड स्टार्ट होता है, तो अंदर जाने के बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ है. वहाँ पे कुछ यूनिक पौधे हैं जो और किसी भी जगह पे नहीं मिलते हैं. जिन एनिमल्स के बारे में मैं स्टडी कर रही थी उनको निकोबार लॉन्ग टेल मकैक्स बोलते हैं, बंदर की एक प्रजाति है, तो वो भी सिर्फ निकोबार के 3 आइलैंड्स पे ही मिलते हैं. ऐसे कुछ छोटे मोटे जानवर है, बर्ड्स है, स्नेक्स है, जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं. तो शायद मुझे लगता है वही यूनिकनेस है हर एक एरिया या इन आइसोलेटेड आइलैंड्स की, जो मेजर हमारा मास लैंड है जैसे कि इंडिया का मेन लैंड है उससे बहुत दूर है, और उसने अपने आप में एक खूबी है और अपने आप को ऐसे ग्रो किया है जो एक यूनिक इकोसिस्टम बना के रखा है। तो वहां पे जाके उस लैंडस्केप में पढ़ाई करने में मेरा एक खुद का यूनिक एक्सपीरियंस था
0: जी जी,
1: तो वो मैंने शेयर किया।
0: बहुत खूब। तो अगर कोई इन चीज़ों को अपना करियर बनाना चाहे, कोई स्टूडेंट्स, क्योंकि करियर के लिए और पैसे भी चाहिए लोगों को अपने जीवन के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम?
1: जी बिल्कुल, तो इस एरिया में करियर बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हमारे भारत में ये जो फील्ड है वो अभी नया है, मतलब कली के रूप में है, जैसे फ्लावर मतलब ग्रो होगा आगे जाके
0: जी।
1: और अभी के समय में बहुत कम लोग हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो मेन इस एरिया में काम करने वाले लोगों का पैशन होता है, जिनको वाइल्ड लाइफ में काम करना है। इसमें बहुत बहुत से चैलेंजेस है, बहुत स्ट्रगल है, मतलब सभी फील्ड में स्ट्रगल होते हैं, लेकिन जब आप जंगल में काम करते हो, आप घर से दूर रहते हो, आपको वहां पे जाने के बाद बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जंगल एक्सपीरियंस करने में कुछ अलग ही मजा है, और वहाँ के एनिमल्स का बिहेवियर, पेड़ों के बारे में जानना, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा है। और अगर हम लोग कमाई के बारे में या सैलरी के बारे में इस फील्ड के लिए जाने, तो मतलब अभी और ज्यादा इस फील्ड में सैलरी उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, जो भी इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट है जिनको इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा तरीके से सोच सकते हैं कि इस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और खुद की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा खुद की रक्षा है, तो उसके लिए इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग आना बहुत जरूरी है। और अभी टेक्नोलॉजी भी हमारी स्ट्रांग हो रही है, उसका भी बहुत ज्यादा फायदा इस फील्ड में हो रहा है।
0: जी,
1: तो मेरा यही सजेशन लोगों के लिए रहेगा कि अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ में काम करने के लिए, आप बेझिझक काम करिए। और टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी आपकी जैसे जैसे ग्रोथ होगी, वैसे अलग अलग तरीकों से, जैसे कि इको टूरिज्म है या सस्टेनेबल नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे अभी कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप में सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी इनकम मिल रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो स्कोप तो बिल्कुल है।
0: जी बिल्कुल, तो स्कोप है इस फील्ड में, भविष्य है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं और इसे सिर्फ करियर नहीं, अपने आप को भी बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं, जिसे शरायु जी ने कहा। और जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, आपके पसंदीदा प्लांट, जानवर और पंछी कौन से हैं?
1: तो प्लांट बताना हो तो मुझे बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा पसंद है
0: जी,
1: और उसके साथ और एक पेड़ है जिसको महुआ का पेड़ बोलते हैं। और एनिमल है, मुझे बंदर सबसे ज्यादा पसंद है।
0: जी बंदर पसंद है, क्यों?
1: जी बिल्कुल, मतलब मैंने उनके ऊपर काम किया है कुछ ज्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत बंदरों को देखने में क्यूरियोसिटी रहती है
0: जी,
1: इस वजह से, क्योंकि वो खुद भी क्यूरियस होते हैं जब कोई इंसान उनके सामने आता है, या उनके खुद के बिहेवियर में जो उनके अलग अलग तरीके होते हैं वो ऑब्जर्व करने में मुझे बहुत पसंद है
0: जी। और पंछी,
1: और पंछी है इंडियन पैराडाइज फ्लाइकैचर करके एक पक्षी है, उसको हिंदी में दूधराज भी बोलते हैं
0: जी,
1: तो बड़ा सुंदर पक्षी होता है, उसका जो नर होता है वो वाइट कलर, प्योर वाइट कलर में होता है, उसका टेल भी उसकी बहुत रिबन जैसी लॉन्ग होती है, और उसके साथ में एक ब्राउन कलर का भी जिसको मॉस बोलते हैं
0: जी,
1: तो और उसका मराठी नाम जो है स्वर्गीय नर्तक उसे बोलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। जो वो पक्षी जैसे जिस तरीके से डांस करता है हवा में या अपनी मादी को अट्रैक्ट करने के लिए, या जैसे वो कीटकों पे कीटक उनका खाना है उनको पकड़ने के लिए, तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे।
0: जी जी बहुत खूब,
1: ये तीन चीजें है
0: जी। तो हम आपको रेडियो मधुबन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहे और ये जो आप प्रकृति के लिए, हमारे धरती माता के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है, साधुवाद है आपको रेडियो मधुबन की ओर से। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए रेडियो मधुबन पे। और हिंदी में मैंने पहली बार इतना लॉन्ग टाइम के लिए बोला है, तो मुझे बहुत मजा आया
0: जी।
1: और बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपके साथ ये टाइम शेयर किया, और जो भी श्रोतागण है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य आज प्रकृतिवादी शरायु जाधव जी ने बात की हमारे साथ, और यूं ही हम उनसे बातचीत करते रहेंगे आगे के एपिसोड्स में भी। और आपको आज के कार्यक्रम में से क्या खास लगा, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 1415 1415 इस नंबर पर। आगे के कार्यक्रम आप रेडियो मधुबन पर सुनते रहेंगे, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: कहना सीखा? रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है, और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी, इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज शनिवार है, विशेष रूप से आप खास प्रोग्राम सुनते हैं करियर ऑप्शन, और खास विद्यार्थी मित्रों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और हर हफ्ते हम एक नए करियर के बारे में बातें करते हैं।

अब जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया में विकसित हो रही है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई का एक बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ रही है जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आप करते हैं, तो इसके साथ में जुड़ी हुई जो करियर है उसके बारे में बातें करेंगे, जिसका नाम है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। जी हाँ, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। एक उभरता हुआ शानदार करियर है ये मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। आज की डिजिटल दुनिया में मशीनें सिर्फ आदेश मानने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सीखने भी लगी है और वे डाटा को पढ़ती भी है, पैटर्न समझती है और बिना मानवीय दखल के निर्णय भी लेती है। इस पूरी प्रक्रिया के जो पीछे है, जिस विशेषज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसे ही मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कहते हैं। तो ये 21वीं सदी का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ और हाई डिमांड करियर है। प्यारे भाई और बहनों, विद्यार्थी मित्रों, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, आने वाला कल इसी का है, तो आपके लिए ये करियर का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। बात करें मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कौन होता है, तो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वो टेक्निक विशेषज्ञ होता है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को डेटा से सीखने की क्षमता देता है। वो ऐसा मॉडल और अल्गोरिदम तैयार करता है जो बड़े डाटे में छिपे पैटर्न, ट्रेंड और व्यवहार को पहचान कर भविष्यवाणी प्रिडिक्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, आज के समय में जैसे हम लोग यूट्यूब नेटफ्लिक्स पर उसको सुझाव कैसे मिलते हैं, बैंक धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन कैसे पहचानते हैं, गूगल मैप्स ट्रैफिक की भविष्यवाणी कैसे करता है, इन सभी के पीछे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया मॉडल काम करता है। इसलिए आप YouTube पे किसी विषय को लेकर आप देखते हैं तो दूसरे दिन आप YouTube अगर खोलते हैं तो वही चीज़ें उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो आपको दिखा देता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, अगर गूगल में आप सर्च करते हैं तो दूसरे दिन आपको उसी तरह की चीज़ें वो दिखाता है। तो इस करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और क्यों मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसके लिए भी मैं अगर आपको बात करूं, एक सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर यह है कि तेज़ी से बढ़ता हुआ ये क्षेत्र है। AI और ML का उपयोग हेल्थ केयर सेक्टर में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, ई कॉमर्स फाइनेंस के सेक्टर में, इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी ओर आकर्षक जो है वेतन है, यहाँ पर भारत और विदेश में मशीन लर्निंग इंजीनियरों को सबसे ज़्यादा वेतन देने वाले करियर में गिना जाता है। अनुभवी प्रोफेशनल प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भविष्य प्रूफ स्किल है, यानी जैसे जैसे हमारा जीवन डिजिटल होता जा रहा है, AI और ML की डिमांड और बढ़ती जाएगी, इसलिए ये स्किल लंबे समय तक उपयोग में आने वाली है। साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे विद्यार्थी मित्रों, आप सब के लिए एक सुनहरा करियर है ये मशीन लर्निंग। तो चलिए इसके बारे में आगे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात कर रहे हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। हम लोग आज मशीन लर्निंग के बारे में बातें कर रहे हैं। अब क्यों इस करियर को करना, इसके बारे में तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्या काम करता है, आइए इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहला तो डेटा को इकट्ठा करना और साफ करना, डेटा क्लींजिंग एंड प्रिपरेशन, ये उसका मुख्य काम है। मशीन को सीखने के लिए साफ, सही और व्यवस्थित डेटा की ज़रूरत होती है। दूसरा है एल्गोरिदम और मॉडल बनाना, ये तय करना कि किस ML मॉडल का उपयोग करना है, लीनियर रिग्रेशन या न्यूरल नेटवर्क या फिर क्लस्टरिंग एक्सेट्रा। तीसरी बात आती है यहाँ पर मॉडल को ट्रेन करना और टेस्ट करना, डेटा पर मॉडल को चलाकर उसके एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल को चेक करना होता है। जैसे कोई डाटा आपने दे दिया और उसको ये बता दिया कि इसको इस तरह की ये बातें हैं और ऐसे इसका उपयोग होता है, तो जब ये सारी चीज़ें जब उनको दे देंगे मशीन को, तो मशीन को फिर टेस्टिंग करने के लिए भी उसमें एक्यूरेसी है या नहीं इसके लिए फिर चेक करना होता है। चौथी बात होती है जैसे ऑटोमेशन सिस्टम बनाना, ऐसे सिस्टम तैयार करना जो लगातार सीखते रहे और नई सिचुएशन के अनुसार खुद को अपडेट करता रहे। पांचवी बात आती है मॉडल को प्रोडक्शन में तैनात करना, वास्तविक उपयोग के लिए मॉडल को ऐप, वेब और सर्वर पर लागू करना। छः, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, समय समय पर मॉडल को सुधारना ताकि वह सटीक परिणाम देता रहे। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें जो है एक जिम्मेवारी है, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का ये काम है। इसके साथ में बात आती है मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और कौन से स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी कौशल की आपके अंदर ज़रूरत होनी चाहिए। तो सबसे पहला है मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो, स्टैटिस्टिक आपका अच्छा हो, यानी गणित और संख्या की में आप होशियार होना ज़रूरी है। लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, कैलकुलस, ये सभी मशीन लर्निंग की नींव है। दूसरा आता है प्रोग्रामिंग स्किल्स, जिसमें आता है पाइथन सबसे लोकप्रिय है, आर, SQL, जावा, C++ कभी कभी उपयोग में आता है। तीसरी बात आती है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, ट्रांसफर फ्लो, पाइटॉर्च, स्किट लर्न, केरास। फिर आता है डेटा हैंडलिंग स्किल्स, इसमें जो चीज़ें काम करती हैं वो आता है पंडास, नम्पे, हडूप, स्पार्क। और फिर आखिरी में डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क समझा जाता है, इमेज रिकॉग्निशन, NLP, चैटबॉट आदि के लिए बहुत ज़रूरी। फिर आखिरी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान क्षमता, डेटा से मीनिंगफुल सॉल्यूशन निकालना मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की कला है। तो आइए इसके साथ ही पांचवी बात आती है जहां पर हम लोग अगर बात करें पढ़ाई भी क्या करना है, ये आपको बता दिया, और बहुत ज़रूरी क्या क्या चीज़ें वो मैंने बता दिया। अब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आपको करनी है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं 8वीं 10वीं में हो, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, जिसमें हम बात कर रहे हैं डाटा लर्निंग मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में। एक बहुत ही सुंदर करियर है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होगी। तो सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आज के जीवन कौशल कार्यक्रम में। और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। अब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, दसवीं तक पहुंच गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कैसे बन सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा मैं। अब सीधा बारहवीं में सही विषय चुने, जैसे कि विज्ञान, PCM या PCMB लेते हैं तो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र से ही या साइंस लेकर आपको आगे बढ़ना है बारहवीं में। दूसरा, आपको किसी भी विषय को लेकर ग्रेजुएशन जरूर करना है, BTEC इन कंप्यूटर साइंस, BSc, MSc या फिर AI ML, BCA या फिर MCA भी कर सकते हैं, डाटा साइंस, IT भी, इसमें भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें हो गए, एक आपका जो है विज्ञान का विषय चुनकर आप आगे ग्रेजुएशन पूरा करें। फिर ऑनलाइन कुछ कोर्सेज होते हैं, आज कई सस्ते और अच्छे कोर्सेज उपलब्ध हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इन चीज़ों के लिए। कोर्सेरिया, यूडासिटी, EDX, गूगल ML, क्रैश कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग, ये ऑनलाइन कोर्सेस है। अलग अलग कंपनियां जो नाम मैंने आपको बता दिए, उसमें से आप किसी भी कंपनी के ज़रिए इन चीज़ों को कर सकते हैं। गूगल भी, माइक्रोसॉफ्ट भी, EDX भी, यूडासिटी और कोर्सिया भी सिखाता है। फिर चौथी बात आती है प्रोजेक्ट बनाए। अब कोई चीज़ आप सीख लेते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल, चैटबॉट, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट उतनी ज़्यादा सीख आप सीख सकते हैं। फिर इसके बाद आप किसी अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप करें, अप्रेंटिस पर आप काम करें, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए, ML करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ML इंजीनियरिंग डाटा साइंटिस्ट की नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। GitHub प्रोफाइल बनाना, Kaggle कंपटीशंस में हिस्सा लेना, रिज्यूम स्ट्रॉन्ग रखना, ये सारी चीज़ें आपको शुरू कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की मांग कहाँ कहाँ है, उसके बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो IT सेक्टर में आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है और अच्छी जॉब मिल सकती है। फिर आता है हेल्थ केयर, E-commerce, जैसे कि Flipkart, Amazon कंपनियां हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग वाला है, इसमें अच्छा आप कमा सकते हैं, इसमें अच्छा आपकी ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, स्टार्टअप में आप काम कर सकते हैं, रोबोटिक्स में आप काम कर सकते हैं, टेलीकॉम में आप काम कर सकते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में, सेल्फ ड्राइविंग रिसर्च में काम कर सकते हैं। और आपका रोल इसमें होता है जैसे ML इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, AI रिसर्चर, NLP इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, डाटा एनालिटिक और रोबोटिक इंजीनियर, इन सारी चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम आपको करने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी कामों का वेतन कितना मिलेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ मैं उसी पर कितना वेतन मिलेगा ये भी बता देते हैं। अब शुरू में फ्रेशर को 6 लाख से 12 लाख रुपए मिल सकता है और ये वार्षिक है। इसके बाद अगर आप 2-3 साल अनुभवी हो जाते हैं तो पूरे साल में आपको 12 से 25 लाख रुपये मिल सकते हैं। और फिर अगर आगे और बढ़ते हैं तो 25 से 45 लाख तक। और आप अगर किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करते हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ सालाना आपका आय हो सकता है। तो है ना कमाल की बात? तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को ठीक से समझे और ठीक से करें। यहाँ पर भविष्य जो है बहुत सुरक्षित है। यह और मशीन लर्निंग आने वाले समय में सबसे बड़ी तकनीक मानी जा रही है। और ChatGPT आप सभी यूज़ कर रहे हैं, स्वचंचलित गाड़ियाँ जो है चल रही हैं, सेल्फ मूविंग कार्स होते हैं, मेडिकल AI सिस्टम, स्मार्ट सिटी, रोबोट, सब में ML का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ML इंजीनियरिंग डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में मदद करेगी, किसानों को मौसम और पैदावार की भविष्यवाणी देंगे, शिक्षा को व्यक्तिगत पर्सनलाइज लर्निंग बनाएंगे, सुरक्षा और साइबर प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपको एक सुंदर कहानी मैं कोशिश करूँगा सुना पाऊँ ताकि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए साथियों, कुछ सक्सेस स्टोरीज की मैं बात करूंगा। एमएल एआई की दुनिया में, मशीन लर्निंग और एआई की दुनिया में सफलता की कुछ कहानियां अभी तक कुछ लोगों ने प्राप्त की हैं, जैसे विराट मेहता की। डेटा से सपनों का सफ़र उन्होंने तय किया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे फालोदी में रहने वाला एक साधारण सा लड़का विराट मेहता, उसके पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे और माँ गृहस्थी थी। घर में आर्थिक संसाधन कम थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। विराट को बचपन से ही कंप्यूटर से गहरी दिलचस्पी थी। वह हर समय समस्या को डेटा की तरह देखने की कोशिश करता, कितने ग्राहक आए, कितने समय भीड़ ज़्यादा रहती है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है। उसे लगता था कि अगर इन सब का कोई मतलब निकाल सकूं, तो दुकान भी ज़्यादा चल सकती है। यही जिज्ञासा बाद में उसके करियर की बुनियाद बनी। जैसे ही वो स्कूल की पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष लगा विराट को, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर लैब में वो ज़्यादा टाइम बिता था, लेकिन पुराने सिस्टम और धुंधला इंटरनेट था। बार बार सिस्टम हैंग होने के बाद भी विराट उस लैब में सबसे ज़्यादा समय बिताता था। दसवीं में उसे एक प्रोजेक्ट बनाना था। वो चाहता था कि एक ऐसा छोटा सा कोड बनाए जो सब्जियों की पिछले एक महीने की कीमत देखकर अगले हफ्ते की कीमत की भविष्यवाणी करे। शिक्षक ने हंसकर कहा, ये कॉलेज का विषय है बेटा, अभी तुमसे नहीं होगा। लेकिन विराट ने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया। इंटरनेट से सीखते हुए धीरे धीरे पाइथन समझना शुरू किया। पहली बार उसने एक साधारण सा प्रिडिक्शन मॉडल बनाया। एक्यूरेसी कम थी, लेकिन आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था। और फिर धीरे धीरे राजस्थान विश्वविद्यालय में बीटेक में एडमिशन मिलने पर विराट की मुलाकात मशीन लर्निंग नाम से हुई। इस नाम का विषय सुनकर उन्हें बड़ा दिलचस्पी लगा और शुरुआत में यह कठोर लगा। गणित, संख्या की एल्गोरिथम पर जैसे ही उसने मॉडल ट्रेन किया गया और मशीन को सीखते देखा, उस जगह जैसे उसने अपना भविष्य खोज लिया। वो रात रात भर कागल पर डेटा स्टेटस से खेलता, कभी डेटाबेस प्रिडिक्शन करता, कभी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, कभी इमेज क्लासिफिकेशन। धीरे धीरे वो कॉलेज में एआई वाला लड़का कहलाने लगा। अब पहला प्रोजेक्ट लोगों के काम आने वाला एआई विराट एक दिन उसको मिला। विराट एक दिन अपने पिता की दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा था, पापा को अक्सर माल ज़्यादा करके लाना पड़ता है, ये कभी कम पड़ जाते हैं, क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। इस पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। उसने एक छोटा सा ये एमएल मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल बनाया। पिछले दो साल की बिक्री का डेटा, मौसम का डेटा, त्योहारों के दिन, सप्लायर की डिलीवरी टाइमिंग, ये सब मिलाकर मॉडल को दे दिया और बता देता था कि किस दिन कौन सी चीज़ कितनी बिक सकती है। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तूने तो दुकान में भी कंप्यूटर की बुद्धि उतार दी। यहीं से उसकी प्रेरणा और मजबूत हुई। पिताजी के खुश चेहरे को देखकर वो आगे बढ़ने लगा और कॉलेज के फाइनल ईयर में विराट ने एक बड़ा काम किया। उसने एक एआई स्टार्टअप आइडिया बनाया, स्मार्ट कॉर्प सेंस, एक ऐसा एआई सिस्टम जो किसानों को फसल की बीमारी, पानी की ज़रूरत और अगले 10 दिन का मौसम पैटर्न बताता था। कई कॉलेज दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, भारत में किसान मोबाइल से एआई का उपयोग करेगा छोड़ दे, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उसने ये प्रोजेक्ट प्रोप्राइटर टाइप किया, बनाया और पास के गाँव में किसानों के साथ ट्रायल भी किया। परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले थे। एआई की मदद से पानी की 20 से 30% बचत हुई, बीमारी की जल्दी पहचान हुई, सही खाद और दवाई का अनुमान मिलने लगा, किसान खुश होने लगे और उसकी बात फैलने लगी। पहली नौकरी और बड़ी चुनौती थी। कॉलेज खत्म होते ही विराट को बेंगलुरु में एआई कंपनी में मशीन लर्निंग इंजीनियर की नौकरी मिली। नया शहर, नई भाषा, नए लोग, लेकिन विराट की नज़र एक ही चीज़ पर थी, एआई को आम लोगों की ज़िंदगी में आसान बनाना। कंपनी ने उसे फ्रॉड डिटेक्शन प्रोजेक्ट पर लगाया। दिक्कत यह थी कि मॉडल बार बार फॉल्स अलर्ट देता था। विराट ने महीनों तक डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग और न्यूरल नेटवर्क ट्यूनिंग किया। आखिरकार उसने मॉडल बनाया जिसकी एक्यूरेसी 93% थी। कंपनी में ये एक रिकॉर्ड बन गया और कंपनी के सीईओ ने कहा, विराट यू हैव चेंज्ड द गेम। तो इस तरह से विराट चमक गए और एआई स्टार्टअप की शुरुआत हुई और उनको राष्ट्रीय पहचान मिली। कुछ वर्षों के बाद अनुभव के बाद विराट ने हिम्मत करते हुए अपना स्टार्टअप स्मार्ट कॉर्प सेंस फिर से शुरू किया। इस बार वो ज़्यादा परिपक्व था, तकनीकी रूप से मजबूत था और उसने अपने मशीन की स्पष्टता थी, मशीन लर्निंग की पूरी अनुभव उनके पास था। भारत सरकार के एग्रीटेक इनोवेशन प्रोग्राम में उसका प्रोजेक्ट चुन लिया गया और उसे फंडिंग मिली, टीम बनी और एक साल में उसका एआई सिस्टम 30,000 प्लस किसानों तक पहुंच गया। राष्ट्रीय स्तर पर उसे यंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो साथियों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। विराट हमेशा कहता है, डेटा से मत डरो, उससे दोस्ती करो। एआई का असली मकसद इंसानों को बदलना नहीं बल्कि उनकी मदद करना है। सीखना बंद मत करो, एआई रोज अपडेट होता है। तो ये विराट का जो एक मैसेज था वो मैंने आपको बताया। तो चलिए साथियों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, तब तक आप बने रहिए। और मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है ज़रूर अभी से शुरू कीजिए आप। और बहुत बड़ा जो है ड्रीम है, ये एक बहुत बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा अवसर है जहाँ पर अच्छी खासी कमाई आप करके लोगों को मदद करके दुआएँ कमा सकते हैं। इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और आज के शो का आरजे शरद, और मेरे साथ है एक और बेहतरीन शख्सियत और हमारे देश के कुछ जुनूनियों के साथ जुड़े हुए मिस्टर अजीत। अजीत जी जो हैं वो मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं, परंतु आज कल हमारे देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा के भुवनेश्वर में एज अ एनएसएस ऑफिसर मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। और अजीत जी की भी एक जर्नी है और उनका भी एक जुनून है, आइए उनसे जानते हैं वो क्या जुनून है। परंतु आप जो श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं वो हमसे जुड़े रह सकते हैं, हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे ऐप रेडियो मधुबन किस पर भी आप हमें सुन सकते हैं, इसके साथ में माउंट आबू की वादियों में आप 107.8 FM पर हमें सुन सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। अजीत जी आपका वेलकम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
0: अजीत जी आपकी एक लंबी यात्रा रही है और आप हमारे राष्ट्रीय यूथ अवार्डी भी रहे हैं हमारे मंत्रालय के साथ में। उस अवार्ड तक की पहुंचने का जो आपका जुनून रहा है, वो जुनून आपके अंदर है या आपको जुनूनी क्यों कहते हैं वो बताइए, कैसे वो शुरुआत हुई?
1: जी बिल्कुल, देखिए हर एक युवा की एक जर्नी है, एक यात्रा है, और जो स्पेशली मेरी यात्रा है वो कहीं ना कहीं एक कॉलेज से स्टार्ट हुई, क्योंकि हम सब मैक्सिमम अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, बहुत सारे जो युवा हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और अक्सर हम इन सब संशय में रहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमारी शिक्षा अच्छी नहीं है, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम उन लोगों से थोड़ा अलग हैं। लेकिन हमने ये जो सीखा कि जब हम हायर एजुकेशन के लिए एक छोटे से गांव से निकल के शहर की तरफ जाते हैं तो हमें एक कॉलेज की लाइफ मिली। कॉलेज की लाइफ में हमने एनएसएस को ज्वाइन किया, और स्पेशली उस एनएसएस को ज्वाइन करने का जो मेन मकसद था कि वहां पर हमें ये समझ में आया कि जो एनएसएस सिखा रहा था व्यक्तित्व के माध्यम से हमारे कैसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, हमें किस तरह से जो सामाजिक कुरीतियां हैं समाज में हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, यानी कि एनएसएस ने हमें वो सारी चीजें वहां पर सिखाई और बताई कि एक यूथ का

0: पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ किसी यूथ का लीडरशिप कैसे बिल्डअप हो। जब आप में लीडरशिप बिल्डअप होगी तो फिर आपका रोल आता है कि आपका इस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति। ये बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे जिसका जवाब मुझे उस कॉलेज लाइफ में एनएसएस ने दिया। एनएसएस में क्या है कि हम सबसे पहले एक टीम में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम की भावना है, टीम बिल्डिंग, तो जब टीम में रहते हैं तो किसी भी टारगेट को अचीव करना आसान होता है। और उसके साथ साथ जो हमें एक व्यक्तिगत तौर पे मैं जो मेरे लिए बेहतर रहा, जो मैं अपने आप में फील किया कि एक गांव से आया हुआ छोटा सा एक सामान्य सा युवा जिसने एनएसएस के माध्यम से सीखना शुरू किया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर हमने अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस किया, अपनी वो सारी चीजें जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हमारे अंदर लीडरशिप बिल्डअप हो, वो सारी चीजें हमें एनएसएस के माध्यम से सीखने को मिली। हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उनको एक निखारने का मौका मिला। कोई अच्छी डिबेट करता है, कोई अच्छी एस्से राइटिंग करता है, यानी कि कोई किसी के अंदर राइटिंग स्किल है, वो सारे स्किल्स को इनहेंस करने का एक प्लेटफॉर्म मुझे कॉलेज में मिला, जिसके माध्यम से जो एक होता है कि एक जो शर्मिला स्वभाव है, हम हर चीज में संकोच करते हैं और हम किसी से दूसरों की अपनी बातों को नहीं कह पाते, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस और जो लीडरशिप आया उसके माध्यम से एनएसएस ने ये हमें एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात को रख पाए, सीख पाए। और होता ना कि एक यूथ को, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सिर्फ हमारा एकेडमिक नॉलेज तक ही अगर सीमित रहेगा तो शायद हम आगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एकेडमिक नॉलेज तक अपने आप को सीमित ना करके इस देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। दूसरा, हम एक एक्टिव सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो जो एक्टिव सिटीजनशिप है तो कहीं ना कहीं एनएसएस और माई भारत, जो कि हमारा पहले नेहरू युवा केंद्र संगठन था, इन दोनों ने बहुत सारे असंख्य युवा उनके माध्यम से निकले जिन्होंने अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया, लीडरशिप को बिल्डअप किया, उनकी एक समाज में एक अच्छे युवा के तौर पे उभर के आ गया है। तो ये बहुत सारी चीजें थी, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो लोकतंत्र में वोटर अवेयरनेस की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे महिला हिंसा के विरुद्ध जागरूकता की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर एक युवाओं को बात रखने का मौका मिला, एक जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ कि नहीं, हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज को करते हुए आगे बढ़े और उसी का नतीजा रहा, क्योंकि जब किसी काम को आप लगन से, जिम्मेदारी से, अच्छे से करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको मिलते हैं। तो वही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एनएसएस होता क्या है कॉलेज टाइम में। जस्ट एक किसी सुझाव पे मैंने उसको ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ जो इसका विजन था, ये किस लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर और महात्मा गांधी जी का जो विजन था कि हमारा युवा सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, हमारा जो युवा है उसकी एक सामाजिक समझ हो, वो समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझे, राष्ट्र में अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्योंकि आज हम बोल रहे हैं कि हम विश्व के सबसे युवा देश हैं, लेकिन विश्व के सबसे युवा देश होने से पहले हमारा वो युवा कर क्या रहा है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, हमने उसकी परवरिश कैसी की है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है या नहीं। तो हमें भी एनएसएस की उस पार्ट का, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला, तो शायद मेरे लिए वही लॉन्च पैड था, मेरे लिए वो शुरुआती दौर था जहां से हमने बहुत सारे कार्यों को करते हुए अपने आप को डेवलप किया। और एनएसएस का भी पर्पज है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ थ्रू कम्युनिटी सर्विस, यानी हमारे यूथ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमारा जो माध्यम है वो सामुदायिक सेवा है, राष्ट्र सेवा है, समाज की जिम्मेदारियों के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो ये जो जिम्मेदारियां हमें मिली वहीं से हम निकल के आगे बढ़े और बहुत सारी जर्नी है, बहुत सारे काम है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, लोकतंत्र, क्योंकि वोटर अवेयरनेस मुझे याद है 2012 और 2014 के जब इलेक्शन थे तो वोटर अवेयरनेस में पहली बार एनएसएस को इन्वॉल्व किया गया था और बहुत सारे युवाओं ने इस जिम्मेदारी को संभाला। तो ये सारी चीजें, पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारे डिबेट्स होते थे, युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए युवाओं की बात युवा करेगा तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर युवाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने कि युवा विकास के लिए क्या होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या क्या चीजें और अच्छी हो सकती हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके करियर काउंसलिंग के लिए, तो ये बहुत सारी चीजों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के लिए, यानी कि अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए भी कुछ काम करें, बहुत सारे काम हैं जिनको हम लोगों ने कई माध्यम से करने का मौका मिला और काफी सफल कार्यक्रम भी रहे हैं।
1: जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपने अपनी बातचीत में हमें बताया कि एनएसएस की क्यारी में आपका जो जुनून का पौधा है वो लग गया। अब वो जुनून क्या था और आप क्या कर रहे थे इस यात्रा के बीच में, वो हम जानना चाहेंगे।
0: जी,
1: क्या मिशन आपने अपने हाथ में लिया?
0: जी बिल्कुल। देखिए, कॉलेज टाइम में बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, तो हमारे था कि कॉलेज में जब मैं सबसे पहले, मेरा एक ही मकसद विशेष रूप से रहा कि हम स्पेशली ग्रामीण युवा जो हैं उनकी अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके अंदर लीडरशिप और वो अपनी बात को कैसे रख पाए, ये दो चार अहम मुद्दे रहे। तो जिसके लिए हम लोगों ने युवा संवाद का सीरीज चलाया था। वो युवा संवाद की सीरीज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी हुआ, सभी विश्वविद्यालयों में भी हुआ, क्योंकि ये सीरीज हम लोग 2014 से चला रहे थे। उसका पर्पज सिर्फ ये था कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं या जिले में जो, क्योंकि हर बच्चा प्रदेश की राजधानी में नहीं आ सकता, हर बच्चा अपनी बात को सोशल मीडिया पे नहीं रख सकता, तो ऐसे बहुत सारे युवाओं को प्लेटफॉर्म देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको पहचानना और पहचानने के बाद उनको एक दूसरे से लिंकेज करना, यानी एक ब्रिज का काम करना। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, करियर काउंसलिंग की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के एक दिन का युवा संवाद प्रोग्राम करते थे। उस युवा संवाद कार्यक्रम में पूरे जनपद के सारे युवा इकट्ठे होते थे, वो अपनी समस्याओं पे बात करते थे कि हमारे प्रदेश में क्या समस्या है, चाहे वो खेल को लेके, शिक्षा को लेके या हमारे करियर को लेके, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको वो युवा अपने सामने रखते थे। और वहां पर हम लोग कुछ जिम्मेदार ऑफिसर्स को, कुछ हमारे जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाते थे, उनके माध्यम से उनको निराकरण करने का प्रयास किया जाता था। इससे ये होता था कि जो युवा है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी भी युवा को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए और उसको ये बता दिया जाए, वो अपनी समस्या का निराकरण स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, कई जगह स्पोर्ट्स में बच्चे जाना चाहते हैं, उनको पर्याप्त संसाधन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, लेकिन शायद सरकार भी इसके लिए अच्छा काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, बच्चे भी इच्छुक हैं, बस उनके बीच लिंकेज नहीं था, उनके बीच ये कनेक्टिविटी नहीं थी। हम लोगों ने युवा संवाद को इसके बीच ब्रिज बनाया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य रहा कि मैं वोटर अवेयरनेस को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उस दौर में बहुत सारे जो हमारे नगर थे, जो क्षेत्र थे, ऐसे जो शहरी इलाके थे, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन था, बहुत कम परसेंटेज था लोगों का, ये था कि वोट करने जाएंगे तो अच्छा है, नहीं जाएंगे तो अच्छा है, मेरे करने से क्या होगा। तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन चला के पूरे युवाओं के साथ लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना, ये लोग के साथ कोऑर्डिनेट करके, यानी कि डेमोक्रेसी में हमारे जितने भी लोग हैं उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में जब लोग नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व होगा और उससे हमारी पूरी डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसको लेकर के आपको मैं लखनऊ का उदाहरण दूँ, तो जो 2012 में 39% वोटिंग हुई थी, जो कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 55% वोटिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का पार्ट था, डोर टू डोर कैंपेन का पार्ट था, उन युवाओं की तरफ से जो गुजारिश की गई थी, जो निवेदन किया गया था लोगों से, उसका परिणाम था। लोगों ने उसको महसूस किया कि क्यों ये युवा सड़क पर उतर के डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। निवेदन बस इतना था कि आप डेमोक्रेसी में अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपना रोल निभाएं और इस लोकतंत्र को स्वस्थ और अच्छा बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें रही के माध्यम से लोगों ने रहा। दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा था, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो हम लोग इन्वायरमेंट पे काम कर रहे थे, लखनऊ में गोमती रिवर है उस पे काम कर रहे थे, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे टारगेट एरियाज में जा जा करके प्लांटेशन करना, वहाँ पर लोगों को एडॉप्ट कराना प्लांट, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर आज हम देखेंगे तो 8 साल 10 साल के बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। तो ये एक युवाओं को कनेक्ट करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम रहा, हम लोग उनको कुछ सिखा पाए, कुछ बता पाए, और आज बहुत सारे युवा, असंख्य युवा हैं जो आज, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, उस दौर में जो उन्होंने काम किया था, उनके अंदर का वो वॉलंटियरिज्म, उनके अंदर की वो सामाजिक कार्य, उनके अंदर का वो राष्ट्र भावना, जो राष्ट्र भावना उनके अंदर जागृत हुई थी, वो आज भी उनके अंदर जीवित है। और खुशी की बात यह है कि हमने कॉलेज के टाइम से जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, अभी हमने 2 साल पहले एक अलमनी ग्रुप भी बनाया कि जो लोग भी उस टाइम एक्टिव थे एटलीस्ट वो उनके अंदर का जो वॉलंटियरिज्म की जैसे हमने बात की तो उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर जो जुनून जिंदा है उसको और अच्छा बनाने के लिए उनके कार्यों को अभी भी हम लोग एक वॉलंटियरिज्म को कैसे किया जाए उसका एक बेहतर कार्यक्रम अगर आप देखेंगे हमारा जो ग्रुप था। अब ये देखिए जो कॉलेज टाइम में काम कर रहे थे उनकी जर्नी 2014-15 से लेके हमारा जो कोविड टाइम था, कोविड में बहुत अच्छे से पूरा ऑल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया था। उस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का पर्पज ही यही था कि जहां पर भी समस्याएं हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेके, वहां पर ये ग्रुप मदद करेगा। और उस ग्रुप में हमारे सारे एक्सपीरियंस लोग थे, जो युवा थे जिनकी प्रशासन के साथ अच्छी जान पहचान थी, जिनको मेडिकल के साथ था, जो मीडिया के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन था, जिनको सोशल एक्टिविस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन था, यानी ये वो लोग थे जिनका सभी के साथ एक अच्छा नेटवर्क था, जो इमीडिएट लोगों को मेडिसिन, लोगों को दवाइयाँ, खाने का सामान, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा ये बहुत आसानी से पहुंचा पा रहे थे। तो इसका ये फायदा हुआ कि जब हमारा पहले से कोई लिंकेज होता है उस ग्रुप को हम जीवित रखेंगे, उसको एलमनी में तब्दील कर देंगे, तो उसका जो प्रभाव होगा वो किसी न किसी तरह से वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप किसी नए बंदे को टीम में जोड़ेंगे उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो पुराने ट्रेंड लोग हैं, ये हमारी एक वर्क फोर्स ऐसी थी जो ट्रेंड वर्क फोर्स थी, जो जुनूनी लोग थे जिनके अंदर वॉलंटियरिज्म था, इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और वो ग्रुप आज भी वैसे ही एक्टिव है। किसी भी दैवीय आपदा आए, कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी ऐसे युवाओं की मुद्दों की बात हो, वो ग्रुप हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ आगे आता है और अपनी जिम्मेदारी को निभाता है।
1: जी बेहतरीन आपने बात रखी, और आपने वोटर अवेयरनेस में भी काफ़ी भूमिका रही, और आपने शुरुआती दिनों में बताया कि युवा संवाद को लेकर भी आपने पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये जो युवा संवाद कार्यक्रम था, ये राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित था या आपने इसको तैयार किया और राज्य सरकार ने इस पर सहमति दी, और कैसा पार्टिसिपेशन रहा और क्या विशेष बातें इस युवा संवाद कार्यक्रम से निकल कर आई?
0: ये जो उपज थी ये कहीं ना कहीं अवार्डीज की उपज थी, जो युवा संवाद का पर्पज था उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट अवार्डी थे, उत्तर प्रदेश के सभी नेशनल यूथ अवार्डी थे और एनएसएस के नेशनल अवार्डी थे। इन अवार्डीज के माध्यम से, क्योंकि जो भी अवार्डी है तो मुझे लगता है कि समाज का ये वो हिस्सा है जिसको सरकार ने अवार्ड दिया है, अवार्ड देने के साथ उसकी समाज में और जिम्मेदारी बढ़ा दी है, उस पर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको अवार्ड के बाद अब आप जिम्मेदार हो गए हैं, आपकी और भूमिका बढ़ गई है। तो हमने उसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए, मैं बताया कि आपको युवा संवाद, राज्य सरकार ने हमें वित्तीय सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें टेक्निकल सपोर्ट, वो सारी हमें सरकारी विभागों से भी मिला। अलग अलग क्षेत्र के हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे राज्य के जो युवा कल्याण विभाग है उसमें एनएसएस भी इन्वॉल्व था, उसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन भी इन्वॉल्व था। तो ये बहुत सारे लोग थे, क्योंकि देखिए जब आप किसी काम को आगे करने के लिए बढ़ते हैं तो होता है कि आप किसी मिशन को आगे लेके बढ़िए, सपोर्ट करने वाले, जब आपकी मनसा अच्छी है, आप अच्छे मिशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपके साथ कई हाथ आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो उसका पर्पज यही था। तो हमें सरकार से भी कई सपोर्ट मिले क्योंकि ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलता था। हमारा ये पर्पज था कि जो उन युवाओं की जो आवाज है, यानी कि युवाओं की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं एक जैसी तो नहीं हो सकती हैं, उनकी समस्याएं डिफरेंट डिफरेंट थी, उनको स्पोर्ट्स का, यूथ का, स्किल से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, करियर से लेकर के, है ना, ऐसे बहुत सारे दिव्यांग साथी थे जिनको उनकी स्कीम से रिलेटेड, उनके स्किल से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी। तो हम लोगों ने युवा संवाद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर कोई भी युवा, बस हमने कंडीशन ये रखी थी कि वो युवा होना चाहिए, जो हमारी युवा की डेफिनेशन है 15 से 29 साल, हमने ये डेफिनेशन में कवर किया कि वो युवा अपनी आकर के इस प्लेटफॉर्म पर बात रख सकता है। और स्पेशली हम लोगों ने उसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, एक नशा उन्मूलन को लेकर के हम लोगों ने बात रखी थी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि युवा जो है नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के एक मैसेज था। दूसरा, विजन 2047 को लेकर भी बातें रखी गई कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, हमारे अपने भारत का 2047 का विजन है, हमारे प्रदेश का भी एक विजन होना चाहिए, हमारे जनपद का भी एक विजन होना चाहिए, और उस जनपद से पहले हमारे उस युवा का भी एक विजन होना चाहिए कि वो अपने आप को 2047 में कहां देखना चाहता है। तो ये इस विजन के साथ हम लोग बहुत सारे युवाओं को रोजगार के साथ, उनको बहुत सारे लोगों को रोजगार से जुड़ना था, कुछ लोगों को स्टार्टअप से जुड़ना था, हम लोगों ने उनको स्कीम्स के थ्रू भी कनेक्ट किया, क्योंकि जो हमारे कई अवार्डी साथी हैं जो स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत अवार्डी हैं जो पॉलिटिकल में हैं, जो कई लोग हैं जो सरकारी सेवा में हैं, कई लोग हैं जो स्पोर्ट्स में हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप था जो हर माध्यम से लोगों को मदद कर सकता था, और हमने जनपद वाइज ऐसे एक ग्रुप को भी कनेक्ट किया, यानी कि जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे, हमारे यूथ के ऑफिसर्स हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, हमारे स्किल के हो गए, हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो गए, ऐसे लोगों को हम कनेक्ट करते थे ताकि हम उस जिले की समस्याओं को उस जिले में ही सॉल्व कर सके। क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, अगर आप उस जनपद की छोटी सी समस्या को उस जनपद में सॉल्व करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो वो प्रॉब्लम स्टेट तक आएगी, वो प्रॉब्लम नेशन प्रॉब्लम बनेगी। तो हम लोगों ने इस युवा संवाद के माध्यम से जो सपोर्ट किया, जो चीज़ें हुई उसमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी यूथ के बीच काम कर रहे थे। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते थे जहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कॉस्ट नहीं आती थी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हमें वहाँ पर अरेंजमेंट करते थे, लाइक युवा आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको कुछ फूड अरेंजमेंट चाहिए, पीने का पानी चाहिए। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, लेकिन इसको जो लीड करने वाली टीम थी वो अवार्डीज की टीम थी, एक अवार्डीज का पूरा फोरम था जिसने इसको लीड किया। और आफ्टर दैट आप खुद उसके साक्षी हैं कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने भी NSS और NYK के माध्यम से रिसेंट अभी 2-3 साल पहले कई तरह के युवा संवाद प्रोग्राम वो लोग लेके आए। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिकमेंड किया था कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम है इनको, टाइम हमारे तत्कालीन मंत्री थे श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, उनको भी हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट के साथ सौंपा था कि अगर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं युवा को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, और ये युवा की आवाज़ वो आवाज़ है जो शायद हमारे देश के जेन्युइन मुद्दे हैं जिस पर सामाजिक रूप से, मतलब वो युवा चाहता है कि इस पर काम हो। तो हमने एक कनेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला, सरकार का भी सहयोग मिला, और उसके माध्यम से हम बहुत सक्सेस तो नहीं हुए लेकिन हम ये कह सकते हैं काफ़ी सारे युवाओं को मदद मिली, एक नई राह मिली, और वो नई राह आज कहीं ना कहीं वो बहुत सारे युवा अपनी कहानियों को आगे लिख रहे हैं, अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो अपनी चीज़ें हैं उसको आगे बहुत अच्छे से चला रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया अजीत जी, इस पूरी यात्रा के दौरान आप पिछले दिनों गंगा प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे हैं और एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर आप उसको भी देख रहे थे, तो उसमें क्या अनुभव रहे और क्या विशेष बातें रहीं और आपको क्या सीखने को मिला, आपकी क्या समझ बनी?
0: जी देखिए, बहुत अच्छा मौका मिला मुझे, क्योंकि इस जो परियोजना है, क्योंकि वो परियोजना जहाँ से गंगा निकलती है उस क्षेत्र के लिए थी, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है जो गंगा कवर करती है, जहाँ पर 24 जिले थे, उन 24 जिलों में इस परियोजना का नाम ही था नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता, यानी कि ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो कैसे सक्सेस हो और उसमें युवाओं का क्या इन्वॉल्वमेंट हो। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, शुरुआत में हर गांव में गंगा दूत बनाए जा रहे थे, गंगा के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव थे उनमें 2-2 युवाओं को गंगा दूत बनाया जा रहा था, उन गंगा दूत के माध्यम से गतिविधियां आगे की जा रही थी। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि क्योंकि मैं राज्य स्तर पर था, हमारे सभी जनपद में जिला परियोजना अधिकारी उस कार्य को देख रहे थे, और अच्छी बात ये थी कि ये परियोजना नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ संचालित थी, क्योंकि युवा तो जहाँ पर हमारा, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र संगठन ऑलरेडी युवाओं के लिए काम कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में ये प्रोजेक्ट शायद सरकार ने इसीलिए ही NYKS को दिया था क्योंकि युवा कनेक्ट है और इस परियोजना में युवा को इन्वॉल्व करना था। तो देखिए, युवा के लिए जो सबसे अच्छा मेरा अनुभव रहा कि युवा सीधे गंगा स्वच्छता के लिए, किसी रिवर स्वच्छता के लिए या पर्यावरण के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने वाला। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, लेकिन जो चीज़ें सक्सेस हुई, युवा ये चाहता है, क्योंकि आज का जो युवा है वो बड़ा होशियार है, उसको ये लगता है, वो फर्स्ट ये सोचता है मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे लिए कैसे लाभकारी होगा। और सवाल भी अच्छा है, क्योंकि हम अगर किसी कार्य में जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये सवाल घूमना भी चाहिए कि इस कार्य से मुझे क्या मिलेगा। वो देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा वो सेकेंडरी है, लेकिन प्रायोरिटी जो सवाल आता है कि मेरे लिए क्या। तो हम लोगों ने इस परियोजना के माध्यम से जो युवाओं को सेलेक्ट किया था, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 के आसपास युवा थे जो गंगा दूध के लिए सिलेक्ट किए गए थे। तो इनको स्पेशली ये था कि पहले इनको इनके बिहेवियर को चेंज किया जाए, इनके स्किल्स को पहचाना जाए, इनके बीच संवाद किया जाए, इनके बीच कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएं,

0: और उसके माध्यम से इनके विचारों को सुना जाए कि इनके गांव में गंगा को लेके क्या बेहतर हो सकता है, चाहे वो पॉलिथीन फ्री करने की बात हो, चाहे गंगा घाट पे सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे वहाँ वृक्षारोपण की बात हो। आज बहुत अच्छे से गंगा के बीच जो ये नेचुरल फार्मिंग, पेस्टिसाइड यूज नहीं होंगे, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होंगे, तो उस काम के लिए भी मुझे याद है कि सबसे पहले युवा ही आ गया है। युवाओं ने ही अपने पेरेंट्स को समझाया, अपने माता पिता को समझाया कि नहीं, हम गंगा के किनारे जो खेती कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे। तो जो हम लोगों ने इनके बीच ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे, 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उन युवाओं को वहाँ बुलाते थे, उन्हें उनकी समस्याओं को सुना जाता था। दूसरा, बहुत सारे कंपटीशन के माध्यम से उनको कनेक्ट करते थे, उनके बीच डिबेट कराकर, उनके बीच एस्से राइटिंग कराकर, उनको कुछ एक्सपीरियंस के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट में कुछ टूर, कुछ कैंपिंग। कहने का मतलब ये है कि हम युवा को पहले कनेक्ट किया। कनेक्ट करने का मतलब उनको ये एहसास कराया कि ये आपके गांव से जो गंगा निकल रही है ये आपकी है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली उस गंगा से नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन ने सबसे पहले एक काम किया कि उनको बुलाया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको कंपटीशन कराया, उनको एक कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद वो स्ट्रीट प्ले, गंगा के किनारे आरती करना, वहां पर सॉन्ग है, नृत्य प्रतियोगिताएं हैं। इवन सबसे सक्सेसफुल जो प्रोग्राम रहा आपको बताएं, क्योंकि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे ही पानी घटता है दशहरे के बाद, बड़ा अच्छा मैदानी भाग खुल जाता है गंगा में, पूरा बालू का बालू बड़ा लंबा चौड़ा मैदान तैयार हो जाता है। उन मैदानी क्षेत्रों में हम लोगों ने नमामि गंगे के माध्यम से स्पोर्ट्स के कार्यक्रम कराए। अब स्पोर्ट्स में क्या है, युवाओं का अलग क्रेज है, वहाँ स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं हुई, उनको प्राइज मिले, प्राइज के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफी जीते। तो उससे क्या है कि उन गंगा के क्षेत्रों में हमें एक अच्छा नेचुरल मैदान भी मिल गया, उस गाँव के लोगों के बीच प्रतियोगिताएं कराने का मौका मिल गया। तो ये जो युवा था ये डायरेक्टली गंगा से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये स्पोर्ट्स के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, ये जो है बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंस, डिबेट, नुक्कड़ नाटक, इन सब माध्यमों से वो वहाँ कनेक्ट हुए। उनको प्रशिक्षण दिया गया, नेचुरल फार्मिंग जैसी बातें की गई, उसके माध्यम से कनेक्ट होने के बाद वहाँ पर काम शुरू हुआ। उस दौर का जो काम था वो आज भी आप देखेंगे कई घाट को युवाओं ने अडॉप्ट किया हुआ है, चाहे वो बुलंदशहर है, बिजनौर है, प्रयागराज है, कानपुर है, कई जगह युवा अडॉप्ट करके रेगुलर, चाहे वो हफ्ते में 2 दिन किसी रविवार को, हफ्ते में 1 दिन किसी रविवार को समय निकालकर वो जाते हैं उस घाट पे, स्वच्छता कार्यक्रम करते हैं, वहाँ वॉल पेंटिंग करते हैं, वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम करते हैं। तो ये युवाओं को जो कनेक्ट होने का जो एक जज्बा आया, जो जुनून आया, तो वो कहीं ना कहीं माध्यम हमारे कई थे, लेकिन वो माध्यम उनको कनेक्ट करने के थे कि इन सब माध्यमों से इनको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करके वो इसको जिम्मेदारी को समझे। और आज ये दौर है कि आप बहुत जगह जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उन युवाओं के नाम से। इवन जो प्लांट हैं वो भी उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, हर घाट पे बरगद, पीपल और पाकड़, ये 3 पेड़ एक साथ बहुत जगह रोपित किए गए, जिसको हम हरी शंकरी के नाम से जानते हैं, उनको युवाओं ने अडॉप्ट किया है। तो ये बहुत सक्सेस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर्यावरण और गंगा के प्रति बहुत सारे युवा जागरूक हुए। मैं आपको जो अभी उदाहरण दिया कि जो नेचुरल फार्मिंग जो हो रही है गंगा के बहुत सारे क्षेत्रों में, अभी तो सरकार उसको प्रशिक्षण भी दे रही है, सरकार उसमें कुछ सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन वो जो सक्सेस हुआ उसका जो विचार है वो युवा के दिमाग में ही आया। नहीं तो आप ये समझें कि जो 60 साल का 50 साल का जो किसान है वो कभी नहीं समझने वाला था कि हम पेस्टिसाइड या फिर हम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझाना कठिन काम है। लेकिन ये जो युवा है ये उन सारी समस्याओं को समझ करके अपने पेरेंट्स को समझाया और मना किया कि हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, हम प्राकृतिक कृषि की ओर जाएंगे। और हम आज बड़ा बेहतर उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आपको ये एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सफल कार्यक्रम रहा है
1: जी, और जन आंदोलन के माध्यम से कम्युनिटी का जो सपोर्ट है, क्योंकि इंजीनियर्स तो अपना काम कर ही रहे होंगे गंगा के बेसिन को लेकर, सफाई को लेकर, और बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, गंगा नदी का एक पूरा मंत्रालय है वो अपना काम कर रहा होगा, लेकिन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो कार्य है वो आपके नेतृत्व में या उस पर्टिकुलर जिले में जहां आप काम कर रहे थे वो चल रहा था। तो लेकिन नदी के दोनों तरफ 2 बैंक्स हैं, 2 तीर हैं उसके, तो उन दोनों बैंक्स को मिला के कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना कितना मुश्किल रहा होगा?
0: चैलेंजेस रहा, क्योंकि शुरुआत में तो लोग बात करने को तैयार नहीं थे। जो फील्ड का एक्सपीरियंस था, आपको सच बताऊं तो जब हम लोग मीटिंग करते थे, NMIC मुख्यालय से मीटिंग होती थी नमामि गंगे से, हमें 2 गंगा दूत नहीं मिलते थे एक गांव में। हम जो गांव में जाते थे, जो लोगों से बात करते थे, एक गांव से गंगा दूत मिलना मुश्किल थे, क्योंकि वो युवाओं को ही बनाना था, जिनकी एज 15 से 29 साल हो वो गंगा दूत बन सकते थे, और वो एक वॉलंटियर सेवा थी। हम उनको कोई ऑनेरियम नहीं दे रहे थे, हम उनको कुछ नहीं, बस उनको एक नाम दे रहे थे, गंगा दूत। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हमने उनको कैसे कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वो चैलेंजेस था। लेकिन ये है, युवा ही युवा के मन की बात को समझता है। तो उन लोगों ने जो आप बोल रहे हैं कि दोनों किनारों को कैसे एक किया जाए, तो ये बड़े चैलेंज रहे हैं। लेकिन जो कनेक्ट करने की जो गतिविधि रही है, देखिए युवा को क्या है कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, युवा को युवा के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं बोला कि वो डायरेक्टली गंगा में कूदने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, स्वच्छता करने नहीं आएगा। लेकिन हम जब उनको अलग अलग माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं, उनको लगा कि नहीं, ये मेरे लिए डिबेट करा रहे हैं, मेरे लिए कल्चरल परफॉर्मेंस करा रहे हैं, मेरे लिए स्पोर्ट्स करा रहे हैं, यानी कि उनको ये फील हुआ कि ये मेरे लिए आए हैं, तब वो शायद बाद में मेरे लिए काम करना, यानी गंगा के लिए काम करना शुरू किया। तो ये चैलेंजिंग था, लेकिन कोई भी काम जितना चैलेंजिंग होता है उसका कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक सस्टेन करता है। जितना मुश्किल उस दौर में था, प्रोजेक्ट शायद खत्म हो गया, लेकिन जो ग्रुप बन गए थे, जो गंगा वाटिकाएं बनाई थी लोगों ने, मुझे याद है कई जिलों में गंगा वाटिकाएं बनी थी, जिसको युवा आज भी अजो के रखे हैं, उसको प्रॉपर नाम दिया है। गंगा ज्ञान केंद्र बनाए गए थे, वो भी आज युवा संचालित कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें रही जिनको युवाओं ने प्रॉपर समझा, और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, उनके अंदर भी व्यक्तित्व विकास हुआ, उनके अंदर भी वो समझ विकसित हुई। और ये समझ आज बहुत सारे युवाओं के अंदर ऐसी मान्यता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, मेरे पर्यावरण का क्या हो रहा है, हमारे समाज का क्या हो रहा है, समाज दूषित हो जाए उनसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो ये इस जितने भी लोग थे उन्होंने इस दर्द को समझा कि नहीं नहीं ये गंगा की स्वच्छता, इस पर्यावरण की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिकता है कि हम अपने गाँव के आसपास, हम अपने क्षेत्र की गंगा को समझें, जागरूक करें। और बहुत जगह गंगा ज्ञान चबूतरा बना है, बच्चे वहां जाके बैठ रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं, गंगा के पास स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और गंगा आरती जैसे कार्यक्रम भी कई जगह शुरू हुए, क्योंकि जो कनेक्ट हो गए वो कनेक्ट होते ही रेगुलर अपनी चीजों को कर पा रहे हैं। तो ये अभी कंटिन्यू है, बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है।
1: हाँ, गंगा अपने आप में एक एक पूरा एक जीवंत व्यवस्था है, और उसके दोनों तरफ गंगा का जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अपनी एक वर्च्यूज हैं, उसके गुण हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर आपने युवाओं को जागरूक किया, तो एक बहुत बेहतरीन काम रहा। तो आप जिस जिले में काम कर रहे थे, आपने एक जिले में काम किया या और भी क्षेत्रों में जाके आपको?
0: नहीं, मैं एक्चुअली स्टेट लेवल पे था, तो मैं पूरे 24 जिलों में अपना भ्रमण रहता था, कई जगह बहुत क्लोजली, मतलब जाने का, ट्रेनिंग में जाने का, युवाओं के कुछ कार्यक्रम होते थे उसमें जाने का। तो चूंकि युवाओं के बीच से ही निकल के आए थे, तो इसलिए बड़ी इच्छा रहती थी कि नहीं, एक मौका मिला तो एक हमारे लिए भी बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला इस माध्यम से।
1: जी, कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जो इन 24 जिलों में से निकल कर आई हो और आपको लगता है कि नहीं, वो देश को बताना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए आपने एक वर्ड यूज किया कि गंगा अपने आप में एक बड़ी जीवंत कहानी है। तो गंगा ऐसी है, मुझे याद है कई सारे युवा, जब डॉल्फिन को लेके बड़ा भ्रांति थी लोगों में कि गंगा में डॉल्फिन है या नहीं है, लोग उसको कुछ ऐसा मानते थे कि ये कुछ अजूबा है, बट डॉल्फिन को सरवाइव करने के लिए उसको लेकर के मुझे याद है कि कई जिले, शाहजहांपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, फतेहपुर हो गया, इन जिलों में गंगा ज्ञान केंद्र स्थापित किए गए। गंगा ज्ञान केंद्र स्थापित करने का मतलब ये था कि उन गाँव के युवाओं को, यानी जो मछुआरे हैं, जो निषाद समाज है, जो नाविक हैं, उनको वो नॉलेज प्रदान किया जाए कि गंगा में क्या क्या होता है, गंगा में डॉल्फिन है, गंगा में मछलियां हैं, गंगा का स्ट्रक्चर कैसा है, गंगा में कब बाढ़ आएगी, कब यहाँ से पानी घटेगा, यानी वो सारा टेक्निकल नॉलेज प्रदान करने के लिए उन गांव के, सोचिए कि जो आदमी अनपढ़ है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो हमेशा रहता गंगा में ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाविक हैं, जो मछुआरे हैं, तो उनको एक टेक्निकल नॉलेज, एक बेसिक ज्ञान प्रदान करने के लिए गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना। और इसके लिए कोई सरकार से बजट नहीं था, इसके लिए कोई अलग से हमें गाइडलाइन नहीं थे कि आपको ऐसा करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में लोगों की ऐसी मांग, ऐसी समझ, ऐसा उनका जुनून देख करके ऐसे केंद्र स्थापित हुए, जहां पर कुछ लिटरेचर रखा गया, ऑडियो विजुअल्स दिखाए गए, कुछ पोस्टर्स लगाए गए कि डॉल्फिन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दूसरी फिश है तो वो कैसी दिखेगी, किस गंगा के किस एरिया में कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे चीजें हुई। दूसरा जो हम लोग गंगा के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की भी बात कर रहे थे कि युवाओं को आर्थिक रूप से कैसे सक्षम किया जाए। तो उसी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। देखिए, जब भी आप जाएंगे तो बड़ा नेचुरल चीज है, जैसे प्रयागराज में आप देखेंगे गंगा के किनारे बहुत ऐसी घास है जिसको हम मूझ घास के नाम से जानते हैं, कानपुर फतेहपुर। उस मूझ घास के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने बहुत सारे ऐसे सामान बनाने शुरू किए जो कि बहुत सिर्फ एक टेक्निकल उनका जो बनाने की प्रक्रिया थी उसके माध्यम से उन स्थानीय प्रोडक्ट को बनाया। उससे डलिया बनाते थे, उससे टोकरी बना करके, उससे कुछ हैंगिंग वाला बना करके ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जो 100% नेचुरल थे, 100% मतलब एक तरह से स्थानीय उत्पाद थे। उनको भी बड़े लेवल पर पहचान मिली और आज भी वो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के नाम से जो उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट है उसमें उनको गिना जा रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से पहचान में आए, लोगों की नजर में आए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे।
1: बेहतरीन, तो मतलब वोकल फॉर लोकल भी को भी सपोर्ट किया हमारे प्रोग्राम ने। बेहतरीन बेहतरीन। मैं भी आपको बताऊं कि जब भी हम लोग इस ग्रुप प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जो हम लोग हमारे कार्यक्रमों में जो गेस्ट को जो हम मोमेंटोस देते हैं या जो गिफ्ट्स हम या उनको कुछ याददाश्त देते हैं चलते समय, तो मैं कोशिश करता हूं कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए कुछ ऐसे ही आइटम्स को हम उसमें प्रमोट करें। वो बात अलग है, जरूरी नहीं है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ हो सकता है किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हम उसको मंगाएं, लेकिन वो होना कुछ ऐसा ही चाहिए जिससे किसी हाथ को काम मिले। तो यही हमारे पूरे यूथ प्रोग्राम से हम जैसे जुनूनी कार्यकर्ताओं और फिर बाद में टर्न अफसरों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून 107.8 माउंट आबू की वादियों से, और आप उसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। अजीत जी, आपने कहा कि युवा को लगता है कि मुझे सीधे रूप से क्या मिलेगा, सीधे तौर पर क्या मिलेगा, मेरा डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, जबकि इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। आप ही एक के उदाहरण है, तुरंत उदाहरण है, जो एक साधारण से गांव से, एक साधारण परिवार से एक युवा एनएसएस से जुड़ता है या कहीं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ता है और के मन में भी सवाल आया होगा कि मुझे सीधा बेनिफिट क्या है। लेकिन बेनिफिट, सीधा बेनिफिट तो क्या रहा मालूम नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट ये रहा कि वो आज हमारे साथ में एनएसएस ऑफिसर भुवनेश्वर है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण को कहें कि अदृश्य रूप से या कहें कि इनविजिबल हैंड्स ने कुछ उनके जीवन को शेप दिया और वो माटी का पुतला अजीत कुशवाहा आज एक दूसरे माटी के पुतलों को तैयार कर रहा है। और हमारे साथ अजीत जी जुड़े हुए हैं। तो अजीत जी, वो सीधा बेनिफिट तो क्या है मुझे मालूम नहीं उसका क्या मूल्य है, लेकिन जो दृश्य रूप से इनडायरेक्ट बेनिफिट इतना होता है कि आज आप जैसा व्यक्तित्व तैयार होता है, ये एक पूरा युवा कार्यक्रमों की फिलॉसफी है। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम ऐसे युवाओं की कहानियां जो हमारे प्रोग्राम में अभी नहीं है लेकिन भविष्य में शायद होंगे और आपका कुछ अभी एनकाउंटर हुआ हो उनके साथ में, उन चुनौतियों की बात हम आपके साथ करना चाहेंगे। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बात कही कि सीधे तौर पर, क्योंकि आज का युवा है जो बहुत संयम नहीं है, हम बहुत कम समय में ज़्यादा टर्नओवर चाहते हैं, तो ये एक्चुअली हमारी एक गलती भी है और शायद इसी के लिए युवाओं को समझाना भी है, जगाना भी है कि कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आपकी जो सफलता का है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने जुनून में लगे हुए हैं, तो आपको परिणाम तो मिलेगा। देरी हो सकती है लेकिन समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे वंचित रह जाएं। तो कहीं ना कहीं आपका संयम, आपका जुनून, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्य निष्ठा, वही आपको आगे लेके जाती है। और शायद मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है, एक छोटी सी जगह से निकल के कॉलेज में एनएसएस ज्वाइन करना, देन एनएसएस का राष्ट्रपति अवार्ड मिलना, उसके 2 साल बाद नेशनल यूथ अवार्ड मिलना, फिर मैंने कुछ दिन चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जो हेल्पलाइन है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करना, आफ्टर दैट फिर मुझे स्टेट यूथ अवार्ड भी उत्तर प्रदेश सरकार से मिला, और उसके बाद मैं चूंकि सक्रिय था, सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा था और मुझे भी नहीं पता था कि हमारी यात्रा एक एनएसएस के यूथ ऑफिसर के रूप में यहाँ तक आएगी। तो ये जो जर्नी है ये एक लंबी जर्नी है, एक लंबी यात्रा है। तो इस यात्रा में हमने बहुत सारे युवाओं से मिलना हुआ, बहुत सारी जिंदगियों को हमने बदलते भी देखा, क्योंकि बहुत लाइफ में चेंज आते हैं लोगों के। तो मेरे साथ साथ बहुत सारे युवाओं की भी लाइफ चेंज हुई है, लाइफ में बदलाव आया है, लोग आगे बढ़े हैं, लोगों ने नई कहानियाँ लिखी। तो बहुत उदाहरण हैं, मैं जिक्र कर रहा था कई सारे नेशनल यूथ अवार्डीज का, तो जब भी अवार्डी सब यूज होता है तो क्योंकि मैं आज के युवाओं को जो देखता हूँ थोड़ी बात अजीब है कि अभी नेशनल यूथ अवार्ड ओपन है इस टाइम पब्लिक फोरम में, 31 अगस्त लास्ट डेट है नेशनल यूथ अवार्ड के लिए एप्लीकेशंस नॉमिनेशंस मंत्रालय ने मांगे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कभी कभी जो बहुत सारे युवा मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या किया जाए कि मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिल जाए, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है कि कुछ करके अवार्ड लेना, या आपको अवार्ड में हमेशा अवार्ड को ये बोलता हूँ कि अवार्ड आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके लिए एक बूस्टर डोज हो सकता है, आपको और ज्यादा बूस्ट करता है कि आप समाज में और तीव्र गति से और ऊर्जा के साथ काम करें। अवार्ड इसलिए है, अवार्ड का पर्पज यही है कि आपने काम किया, आपकी पीठ सफाई गई और आप अच्छा काम करते हुए और आगे जा रहे हैं, आगे जाके आपको और पीठ थपथपाई गई, आप और आगे निकल गए। तो आज के जो दौर के युवा हैं उनके लिए मेरे तरफ से निवेदन भी है कि आप अच्छा काम करें, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे संगठन हो, चाहे ऑफिसर्स हो, आपके चीजों को जब आप मेहनत करेंगे तो परिणाम मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे आपने कहा कि कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग जो जुनूनी लोग हैं जिनका जिक्र किया जाए, तो मेरे साथ के, क्योंकि कोई भी टीम, कोई भी काम आप अकेले नहीं करते हैं, आप एक टीम के साथ काम करते हैं, आपकी टीम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं जैसे युवा संवाद का जिक्र किया, तो युवा संवाद कोई अकेले का जज्बा नहीं था, अकेले का कोई मिशन नहीं था, उसमें हमारे साथ कई नेशनल यूथ अवार्डी थे। मेरे एक मित्र हैं नेशनल यूथ अवार्डी हैं जो कि समाज में लोगों को स्किल के माध्यम से जोड़ते हैं, उनको कैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, लोगों को स्टार्टअप से कैसे कनेक्ट किया जाए। लखनऊ में उन्होंने खुद अपना स्टार्टअप, वो अगरबत्ती इंडस्ट्री में है, मिस्टर रोहित कश्यप, तो वो अगरबत्ती इंडस्ट्री में है, लोगों को जागरूक करते हैं, बहुत सारे महिलाओं को उन्होंने अगरबत्ती के रोजगार से जोड़ा, उनको सेटअप लगाना, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना, देन प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में जाएगा, ये सारा गाइड करते हैं। तो इस माध्यम से उन्होंने असंख्य महिलाओं को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। ऐसे एक साथी हैं जो स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, खेल के क्षेत्र में, उन्होंने कैसे खेल को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। नहीं तो हमारे अंदर जो विचार आता है कि हमारा जो खेल है वो शहर के स्टेडियम में ही रहता है, जो हमारा खेल है वो बड़े स्तर का खेल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है, जिनको हम कहते हैं हमारे माटी के खेल हैं, हमारी मिट्टी के खेल हैं, यानी कि जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसको उन्होंने, एक रविकांत मिश्रा जी हैं जिनको खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का लक्ष्मण पुरस्कार मिला है। लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, उससे उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने खो खो को लेकर के अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि ये गेम हमारे गाँव की माटी से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम के मैट तक खेला जाएगा, यानी कि जहां मैट भी होगी और हमारे गांव की मिट्टी भी होगी, उस गेम को उन्होंने उस स्तर तक पहुंचाने का काम किया है और उससे बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर खेल के आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को कनेक्ट करना, उनको सिखाना, उनको बताना, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए गाइड करना, क्योंकि मैं वही बोला कि आज जो जरूरत है वो ब्रिज की जरूरत है। सरकार के पास संसाधन है, हमारे युवाओं को जरूरत है, उस जरूरतमंद को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार को उन जरूरतमंद पहुंचाना है, तो इस ब्रिज का काम करना भी आज के युग में बड़ा काम है, कनेक्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत सारे युवा इस तरह के काम कर रहे हैं। दूसरा, हम बात करें कि एक युवा विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए, क्योंकि आज है कि हम सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति, सही राह बताने वाला व्यक्ति, तो ऐसे ही एक साथी हैं जो बहुत सारे युवा हैं जो जेल में किसी अपराध में, किसी कारणवश जेल में हैं, किसी कारणवश मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करना, क्योंकि आज का ये वो दौर है जब शायद लोगों में इमोशंस नहीं है, लोग अब बात नहीं करना चाहते आपस में, एक दूसरे को गाइड नहीं करना चाहते। तो मेरे एक साथी ने बेसहारा और ऐसे मानसिक विक्षिप्तों का साथी अपने आप को घोषित कर दिया है। वो गोरखपुर में काम करते हैं, उनका नाम आज़ाद पांडे है, वो भी स्टेट यूथ अवार्डी हैं। उनका मकसद ये है कि कोई भी युवा अगर जेल में है, उन्होंने 5 जेल जो बड़ी जेल है उनमें जितने भी युवा बंद हैं, वो किसी भी माध्यम से, किसी का छोटा अपराध हो सकता है, किसी का बड़ा अपराध हो सकता है, कई बार गलत तरह से फंस जाते हैं लोग, उनको कानूनी अड़चन से बाहर निकालना, उनकी काउंसलिंग करना और उनके अंदर ये बोध कराना कि आपके अंदर वो युवा जीवित है, जो इस देश में आकर के अपनी हर एक काम कर सकता है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लोग जेल से निकलने के बाद आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो सोचिए वो भी युवा है जिसकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, वो एक उभरता हुआ इस देश का नागरिक है। हो सकता है किसी गलतीवश किसी कारण से वो बहुत अनसुलझे कारण है, हम लोगों ने भी कई काउंसलिंग में हिस्सा लिया, तो ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला तो लगा कि किस सिस्टम में वो बेचारा फंस गया और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। तो ऐसे लोगों को काउंसलिंग करके बाहर लाना, उनको सामाजिक यानी कि जो हम बात करते हैं कि उनको समाज में सम्मिलित करना, तो ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं, अगर समय होगा तो हम और उनको कंटिन्यू कर लेंगे।
1: नहीं नहीं जी, अगर श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, हमारे साथ हैं श्री अजीत कुशवाहा जो कि एनएसएस ऑफिसर हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में, और हमारे साथ आज जुड़े हैं एक अफसर के रूप में, और पिछले एपिसोड में हम उनकी जो युवा यात्रा है, उनके जुनून की यात्रा है, उस पर बात कर चुके हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अजीत जी, चूंकि हम जुनून कार्यक्रम में उन जुनूनियों से बात करते हैं, लेकिन जुनूनियों को सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत है, और हम लोग आज जो हम इस एपिसोड में जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि बहुत सारे जुनूनी हमारे देश भर में बिखरे हुए हैं, वे अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, कोई उन्हें एक्नॉलेज ना ही करे तो ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जीवन में जो उन्होंने एक मिशन ले लिया है, वो जो जुनून उन्होंने पाल लिया है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम उनको तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है, और वो इकोसिस्टम में शुरुआती दिनों में हमारा मंत्रालय है जो शायद कुछ नए जुनूनी भी तैयार करता है और जो जुनूनी पहले से काम कर रहे हैं उनको मंच देता है। तो इस इकोसिस्टम को लेकर आपका क्या कहना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या बदलाव की जरूरत है, और ऐसी कुछ कहानियां जो आपको और लगती हैं जो आपने पूर्वी आपके भारत की अभी आपकी पोस्टिंग के दौरान आप देख रहे हैं, या आपका कुछ और भी एनकाउंटर यूपी के बाहर कुछ अन्य राज्यों में भी आपका रहा होगा, तो वहां से भी कुछ बातें आप साझा करें। जी
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर लगभग अभी 2 वर्ष हो रहे हैं इधर में आईएस यूथ ऑफिसर काम करते हुए, तो चूंकि पूरे प्रदेश के युवाओं से मिलना, बात करना, समझना, क्योंकि ओडिशा आप देखेंगे कि ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है। देखिए, किसी भी युवा के अंदर प्रतिभा की कमी तो नहीं है, वो किसी तरह से हो सकता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उसको अवसर नहीं मिला, और जिसको अवसर मिला है उसने जरूर कर दिखाया है, उसने अपनी बेस्ट परफॉर्म की है। कुछ उदाहरण है, अभी आप भी वाकिफ हैं, हमारे मंत्रालय 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ इस विशिष्ट तिथियों को बुलाता है युवाओं को विशिष्ट तिथि के तौर पर, तो मैं 2-3 बार से मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है दिल्ली में। मैं इस बार भी 15 अगस्त पे गया था, पिछली बार भी गया था, 26 जनवरी को भी गया था, तो मैं बहुत सारे युवाओं से मिला। तो जो युवा, बहुत सारे युवा जो बहुत छोटी सी जगह से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर जब आप बात करेंगे वो संकोची स्वभाव के रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम वो 4 दिन 3 दिन व्यतीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, साझा करते हैं, सीखते हैं, 3 दिन में ही इतना फर्क होता है कि उनके कॉन्फिडेंस, आप बात करेंगे तो वो ऐसा कर पाएंगे, वो यस में बोलते हैं, हाँ कर पाऊंगा, यस हो जाएगा सर। कहने का मतलब ये है कि मंत्रालय स्तर पर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के युवा हो, चाहे वो आदिवासी युवा हो, चाहे किसी प्रदेश के युवा हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी युवा हो, मौका अगर उसको मिला है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उसको गाइडेंस मिल गया है, तो युवाओं में कमी नहीं है। और आज हम जो बात कर रहे हैं विकसित भारत की, 2047 के विकसित भारत, तो ये जो पूरी एक जर्नी होगी, जो पूरी यात्रा होगी, ये शायद अकेले की यात्रा नहीं है, एक व्यक्ति इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे युवा आप यहाँ पर जब देखेंगे, जो युवा जिम्मेदारी निभा रहा है, जो एक अपनी समझ विकसित कर रहा है, किसी को भी टाइम दे दीजिए, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी को भी गाइडेंस मिल जाए, तो कोई भी युवा कुछ भी करने को तैयार है। तो हमें ये समझना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लिंक करना है, एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम उनको लिंकेज कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज पहुंचा रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। एक होता है कि अपनी हम ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपने भी जिक्र किया, क्योंकि हम सब अब लोक सेवा में आ गए तो लगता है कि हमारा एक ऑफिस काम पूरा हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपने जो एक वर्ड यूज किया था वॉलंटियरिज्म, हमारे अंदर का वॉलंटियरिज्म जिंदा रहे, तो मुझे भी कई बार ये लगता है कि संडे है, सैटरडे है या ऑफिस के बाद के जो आवर्स हैं, कैसे युवा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि ठीक है मुझे अवसर मिला, मैं यहाँ तक

0: आ गया हूँ, लेकिन बहुत सारे युवा हैं जिनको मौका नहीं मिला, जो नहीं आ पाए। तो हर एक युवा को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक युवा को अवसर प्रदान करने के लिए, देखिए अवसर बहुत सारे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है, हम और आप इतनी दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं डिजिटल और तकनीकी के माध्यम से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आज तकनीकी के दौर में जरूरी नहीं है कि हम कहीं स्थानीय क्षेत्र में है तभी अच्छा काम कर पाएंगे, हम दूर दराज में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ के भी अच्छा काम कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे युवा जिनको ये लगता था कि नहीं, ये सब सामाजिक चीजें जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारी पढ़ाई हमारे लिए पर्याप्त है। मैं बहुत सारे अभी आपको लाइव एग्जाम्पल बताऊं, मैं कल ही एक प्रोग्राम में था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप था, मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया, बच्चों का जो उदाहरण था बच्चों ने खुद ही एक्सेप्ट किया। मैंने ये बोला कि अगर आप सामाजिक चीजों में एक्टिव हैं, यानी कि आप आपके अंदर लीडरशिप आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन रहे हैं और आपके 99% मार्क्स आ रहे हैं आपकी मार्कशीट में, और आपके अंदर सामाजिक समझ नहीं है, आपके अंदर वो सामाजिक चेतना नहीं है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर लाइफ स्किल्स नहीं है, तो आपके लिए वो 99 जो मार्क्स हैं वो डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। शायद सारे युवाओं का हाथ था कि सर 99% हमारे लिए किसी काम के नहीं है जब तक हमारे अंदर लीडरशिप, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, लाइफ स्किल्स, इतनी सारी ये जो भी चीजें हैं जो हमारे अंदर नहीं होगी तो शायद वो हमारा मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह के रह जाएगा। यानी कि हमारे 99% मार्क्स को भी जस्टिफाई करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। ये सारे गुण जितने भी हमारे, चाहे माई भारत प्लेटफॉर्म हो, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना का प्लेटफॉर्म हो, स्काउट गाइड हो, NCC हो, या बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे युवा साथी जो नेशनल अवार्डी रहे या जो एक एक्टिव यूथ रहे हैं अपने टाइम में, तो वो किसी न किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं और वो युवाओं को प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, वो कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, युवाओं को बुलाते हैं, उनमें लीडरशिप बिल्डअप करते हैं। कहने का मतलब ये है कि युवा सिर्फ किताब तक, सिर्फ एक छोटी जगह तक, जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हिंदी में कूप मंडूक, हम कूप मंडूक वाली स्थिति में ना रहे। हमारी सोच एक कुएं के बाहर, एक बड़ा, एक खुला आसमान वाली हो, हम दूर तक चीजों को देख पाए, वो समझ पाए। और आज का जो हमारा कंपटीशन है वो हमारा हमारे पड़ोसी के घर से कंपटीशन नहीं है, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से, पड़ोसी के प्रदेश से नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज हम वैश्विक स्तर पर हैं, तो हमारा जो कंपटीशन है वो दूसरे देशों से है, चाहे वो तकनीकी माध्यम हो। तकनीकी चीज़ एक अलग हो गई, हमारी जो आंतरिक चीज़ें हैं, यानी कि हम इंटरनल, हमारा आज पर्यावरण से जूझ रहे हैं, वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आज हम अपने अपराध इतने हो रहे हैं, आज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एक बड़ा इशू है, उसमें भी युवाओं को आगे आके जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको युवा ही समझ सकता है, युवा ही सॉल्व कर सकता है, एक जो ओल्ड जनरेशन है उसको जागरूक करने के लिए भी युवा आगे आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिस पर बहुत सारे युवा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ इस कॉलेज की एकेडमिक तक सीमित ना रह के मुझे कुछ अलग करना है, कुछ थोड़ा जिम्मेदारी निभाना है। तो ये जो जिम्मेदारी का बोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मंत्रालयों का भी हाथ है, सरकारों का भी बड़ा सपोर्ट है, सामाजिक संगठनों का भी सपोर्ट है, और आज का जो सोशल मीडिया है, डिजिटल युग है, इन सबकी भी कहीं ना कहीं भूमिका है। तो इसके माध्यम से युवा आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, सीखते हुए, क्योंकि जब हम खुद अपने आप में कैपेबल होंगे तभी कुछ दूसरे को बताएंगे, यानी कि दान वही देगा जिसके पास कुछ देने के लिए होगा। तो पहले तो हमें युवा को कैपेबल बनना है, अपने को इतना सक्षम बनाना है कि हम किसी को कुछ दे पाएं। ज्ञान होगा तो नॉलेज दे पाएंगे, पैसा होगा तो कुछ दे पाएंगे। तो जो भी चीज़ हमारे पास है हम अपने आप में कैपेबल बने, दूसरों को बांटें और सिखाएं और बताएं, और यही शायद एक साथ, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब हमारे देश का उत्थान तभी होगा जब हम लगभग 140 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है, जब हम सभी लोग एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे साथ मिलकर, तभी इस देश का भी कल्याण होगा, तभी इस समाज का भी कल्याण होगा, और तभी हम एक जो विकसित राष्ट्र की कल्पना है, जो विकसित राष्ट्र की जो परिभाषा है, उसको सार्थक कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और दुनिया की तस्वीर बदलने के लिए या देश की तस्वीर बदलने के लिए वॉलंटियर्स की आवश्यकता है और वॉलंटियर्स की दुनिया की तस्वीर बदलते हैं। मैं कहूँ कि ना ना तो किसी अन्य का उसकी भूमिका उतनी नहीं है जितनी वॉलंटियर्स की है ना। तो वॉलंटियरिज्म ही दुनिया का सबसे बड़ा औजार है, जिस अगर उसको सही तरीके से उपयोग किया जाए या सही दिशा दिखाई जाए तो हम बदलाव कर सकते हैं। खैर, आज के इस जो बातचीत हम कर रहे हैं, जो वॉलंटियरिज्म को लेकर या जुनूनियों को लेकर या जुनून को लेकर जो क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो इस पूरे इकोसिस्टम पर भी आपने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से मंत्रालय की भूमिका है और किस प्रकार से एक कदम वो सभी का साथ बढ़ाने की जरूरत है। जैसे आपने जेल इनमेट्स के साथ जो काम हो रहा है, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की एक पूरी दुनिया है और हमारा देश कहीं ना कहीं करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो एक अलग कहानी आपने हमारे साथ रखी। शायद वो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट मेरे लिए तो अभी शो में था जहाँ से आपने बात रखी। और युवा कहीं ना कहीं बहुत सारे मामलों में अभी जेल इनमेट्स के रूप में है और वो जेल एक उसकी पूरी तस्वीर को वापस बदलने के बाद सेकेंड इनिंग खेलने का उसको मौका दे, ना कि ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट इनिंग में ही अपने अपराधों में सेंचुरी मार दे, ऐसा ना हो बल्कि वो सेकंड इनिंग में वापस एक नई शुरुआत करे, ऐसा जेल का वातावरण होना चाहिए, उस पर आपने पूरी बात रखी है।
0: क्योंकि हमें लगता है हर एक काम हमारे देश के लिए है, हर राष्ट्र के लिए है। जब हमारा हर एक युवा कैपेबल होगा तो ये राष्ट्र और सक्षम होगा और मजबूत होगा। इसी के साथ आपका हमारा जो आज का मधुबन रेडियो, जिन्होंने बड़ी मुखरता के साथ आज के आरजे के तौर पे जो आपने एक जिम्मेदारी निभाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और हम इसी तरह से हम सबके अंदर ये जुनून हमारा जिंदा रहे, क्योंकि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।
1: रास्ते भी इंतजार करते हैं, आपने अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात रखी, मजा आ गया आज की बातचीत। श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री अजीत कुशवाहा को। अजीत जी NSS अफसर हैं उड़ीसा में और एक राष्ट्रीय युवा अवार्डी भी रहे हैं, और उन्होंने पूरे जुनून की कहानी आज विस्तार से हमारे उनके साथ बातचीत में रखी है। और कुछ कहानियों को सुन के तो निश्चित रूप से ऐसा मन हुआ कि क्यों ना उन जगहों पर जाकर उनसे मिला जाए, सुना जाए। तो आप सुनते रहे अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और आप सुन रहे थे आपका एक बेहतरीन कार्यक्रम जुनून, जो हम आप तक लाए थे 107.8 के माध्यम से। आज की पूरी तकनीकी टीम को हमारी तरफ से आभार और धन्यवाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, माताएं बहनें हमारा आई लोग बाप लोग सबसे मिला और छोटे छोटे बच्चों को भी मिलते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र कुई में पहुँचे, बहुत दूरस्थ जगह है। जब भी आते हैं जो हमारा अनुसया मैम कार्यकर्ता आशा और साथिनी सहयोग ANM का सहयोग से कार्यक्रम सुंदर रूप में हो रहा है। तो आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए हम ANM मैडम को भी स्वागत करेंगे, क्योंकि ANM मैडम का बिना हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बच्चों का कुपोषण हो, मेडिकल लाइन में रेडी हार्डी है तो जानते हैं उनका बारे में। तो पहले उनको स्वागत करते हैं। मैम आपका स्वागत, आप अपना परिचय दीजिए।
1: मैं फर्स्ट 23/11/96 की मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने कोविड में भी अवार्ड लिए SDM साहब से और जिला प्रमुख से भी। फील्ड में मैं 26 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे को 1 साल ही हुआ है। सबसे अच्छा सेम और मेम का यहाँ कुई में अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अति कुपोषित और कुपोष में खूब फर्क पड़ा है और वजन भी बढ़ रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है। सब बहना आ रही है, भीड़ रहती है यहाँ पे, खाना भी साफ सफाई से बन रहा है, कार्यकर्ता भी अच्छा जोर दे रही है, सुपरवाइजर है ये सब। अब ये तो 15 दिन के बाद भी आपको ये डाइट ही बच्चों को खिलानी है। घर पे दलिया है, दूध है, कैंप के बाद भी अपन को रूटीन में रखना सही है। तो बच्चे अपना अति कुपोषित होंगे ही नहीं, और अति कुपोषित होंगे तो भी देश में क्या काम करेंगे ये। इसलिए अति कुपोषित बच्चों को रखना ही नहीं, स्वस्थ रखना बच्चों को, खाना पिलाना अच्छा होना चाहिए, सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, खाना भी साफ सफाई से होना चाहिए।
0: बहुत सुंदर प्रस्तुत दिया और मैम सहित अनुभव आधार से अपना बात बताए मैडम।
1: रूटीन में भी रखना है कैंप के बाद भी काम घर पे, बच्चे को माँ का दूध ही देना 6 महीने तक, ऊपर का नहीं देना तो बच्चा बीमार होएगा ही नहीं कभी।
0: सभी धात्री महिलाएं आज आए हैं, तो खासकर आप धात्री महिलाओं को क्या टिप्स देंगे?
1: धात्री महिलाओं के लिए तो ये आयरन फोलिक एसिड आती है, हमारा आंगनबाड़ी में आती है, सब सेंटर पर आती है। उसके अलावा भी थोड़ा क्या फूड पे ध्यान देना, हरी सब्जी अब जो खूब हो रही है गाँव के अंदर, हरी सब्जी भी खानी इनको, हरी सब्जी से भी दूध बढ़ेगा जितना, फिर बच्चे का दूध भी अच्छा आएगा, माँ अच्छा पीएगी। तो दूध नहीं मिलता तो हरी सब्जी तो हर जगह होती है सर, 5 रुपये 10 रुपये में खूब हरी सब्जी आ रही है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, इससे भी खून की अपने पूर्ति हो जाएगी सर। तो इससे भी क्या इनको खून की कमी नहीं होगी धात्री को। जरूरी नहीं दूध मिला आपको, हरी सब्जी भी आप खा सकते हो जो खेत में होता वो, उससे भी शरीर अपना अच्छा रहता है। दूध पिलाने वाली महिलाओं को हर जगह दूध नहीं बोलना सर हमको, हरी पत्तेदार सब्जी भी बतानी इनको।

0: हाँ, ऐसे भी खूब डाइट अच्छी पड़ती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी और जानकारियाँ दी। हमारा माताएं जो आज सुन रहे आई लोग अपना अपना बच्चों को लेकर आए, क्योंकि बच्चे जो है ना चिराग भविष्य, तो आज आपने सुंदर रूप में सजा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप इस ANM फील्ड में आने में कौन प्रेरणा दिया आपको?
0: हमारे जो नानी जी थी वो भी नर्स ही थी।
1: कौन सा गांव?
0: यूपी के। नानी जी नर्स थी, एक बहन वो भी नर्स है सर, ANM में मेरी पावा के अंदर।
1: ओके,
0: तो दोनों बहन हम मेडिकल लाइन में आए सेवा देने के, ये मेडिकल लाइन हर किसी को नहीं मिलती, एक सेवा एक तरह की सर। नौकरी बांध के करेंगे तो नौकरी नहीं होगी, सेवा मान के करनी है नौकरी अपन को।
1: ताली बजा मैम के लिए।
0: सेवा ये एक तरह की अपनी, जितना अच्छा करेंगे इतना ये आगे इनको मतलब ज्ञान देना।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्ञान मैंने समझ, जब समझदार बन जाएंगे तो इस तरह से हम काम कर पाएंगे। जब ज्ञान नहीं रहता है, समझ नहीं रहता है, जब अनपढ़ रहते हैं, कितना बोलने के बाद हम करते नहीं, जिसका चलते हैं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत सारा स्टाफ है, तो उनको भी एक चांस मिलेगा, क्योंकि एक गुलदस्ता आज बनेगा रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। सबका आवाज़, सबका पहचान होगा और गीत भी गाएंगे सामूहिक रूप में। बहुत खुशी लगेगा, आज रेडियो मधुबन एक मंच दे रहा है, जिस मंच को पाने के लिए लोग तरसते हैं। आज सहूलियत से रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी में आपका आवाज जाएगा, ये कम बात नहीं है। तो एक बार पुनः मैम के लिए ताली बजाओ जोर से माताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं अगला प्रस्तुति ब्रेक का बाद।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहले हम मैडम को सुन रहे थे और स्वास्थ्य कर्मी थे और हमारा जो ANM मैडम से भी सुने, लेकिन कुछ धात्री महिलाएं आज आंगनबाड़ी केंद्र कोई में पहुंचे, पोषाहार का साथ साथ जो कार्यकर्ता वो भी इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सबको एकत्रित किए, माताएं तो एक इशारा से आ गए। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पहले हमारा मैडम जो कि कार्यकर्ता जो मुखिया जो हमारा कर्णधार है, मैम आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दीजिए। और इतना माताओं को आप बुला दिए एक इशारा से, ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। हमारा कार्यक्रम आज तो चार चांद लग जाएगा। तो चलिए हम सुनते हैं कार्यकर्ता महोदया श्रीमती अनुषा जी। अनुषा जी, आप किस तरह माताओं को एकत्रित कर आप बच्चों को ध्यान देते हैं, पोषाहार भी देते हैं, सब चीज देते हैं, तो क्या क्या देते हैं, किस तरह एक्टिविटीज करते हैं, आप बताइए अपना परिचय का साथ।
3: मैं अंशिया शर्मा, ग्राम पंचायत खरार आंगनबाड़ी कुई से मैं बात कर रही हूँ। और मैं हमारे आंगनबाड़ी के अंदर जो जो हमारे धात्री गर्भवती और किशोरी बालिकाओं को और इनको सूचना मिलती है, जो भी हमको लाभार्थियों को जो दिया जाता है वो हम यहाँ पे देते हैं। जैसे मतलब गर्भवती माताओं को 3 महीने इसके अंदर आयरन फॉलिक एसिड देना करना, और गर्भवती माताओं को मतलब यहाँ पे टीकाकरण नियमित रूप से आना और टीकाकरण कराना, और रहने मतलब 100 डेज की सारी सुविधाएं हम उनको बताते हैं। और जैसे डिलीवरी के टाइम में सिविल के अंदर जाके उनको डिलीवरी करवाना काजना, और फिर धात्री माताएं हैं तो उनको भी हम बताते हैं कि जैसे 6 मास के बच्चे को मतलब ऊपरी आहार नहीं देना है, माता का ही दूध पिलाना करना है, और इस तरह हम सब बताते हैं। और इनको पोषाहार वगैरह जो भी आता है हम इनको देते हैं। पहले गेहूँ चावल दाल आते थे वो देते थे, अब ये पैकेट वाला आता है। इन सब गर्भवती धात्री माता किशोरियों को सबको सुविधा देते हैं। और जैसे उड़ान वगैरह का आता है तो वो उड़ान के नैपकिन वगैरह वो भी हम इनको किशोरियों को इनको सबको यहाँ पे लाभार्थियों को सुविधा देते हैं। इस प्रकार हमारे आंगनबाड़ी पे जैसे बच्चे आते हैं 3 से 6 वाले आते हैं, उनको मतलब पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो बच्चे यहाँ एक्टिविटी करते हैं, सारा कार्यक्रम होता है, बच्चे साफ़ सफाई से आते हैं। सब माताओं को हम यही कहते हैं कि खुद भी साफ़ सफाई से रहो और बच्चों को भी साफ़ सफाई से रखो, जिससे अपने गांव में बीमारियां नहीं होगी और बच्चे भी कुपोषित नहीं रहेंगे। कुपोषित नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश के लिए अच्छे रहेंगे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और बहुत सारा धात्री महिलाएं उपस्थित है तो उनका बिना हमारा जो कार्यक्रम मजा नहीं आएगा। तो और हमारा साथ नाम बता थे
4: सोमे
2: थे
4: समली
2: और गाँव रो। हाँ ठीक है, तो कोई से आपका गांव कितना दूर है, 1 किलोमीटर ना 2 किलोमीटर पास है। हाँ आप
4: मनु।
2: अरे वाह, मनु के लिए ताली बजा भाई, जिसका मन सुंदर है और पहले से रेडी है बताने के लिए, क्योंकि पढ़ी लिखी है और सबको एक प्रेरणा का स्रोत बने। कहाँ तक पढ़ाई की मनु?
4: 8वीं तक।
2: कौन सा स्कूल में, विद्यालय का नाम बता जो पढ़े थे?
4: गौरियावासी स्कूल में, कालंद्री में पढ़ी थी।
2: अरे वाह, आपका कोई बच्चा आते हैं?
4: हाँ, मेरे 2 बच्चे आते हैं।
2: नागनमल
4: क्या है? महेश और दिनेश।
2: महेश और दिनेश कैसे नाम रखा है? आप तो मनु है तो मनोरंजन करते हैं और कुछ नाम देते हैं, महेश कौन नाम कैसे देने को इच्छा हुआ?
4: ऐसे ही दिया।
2: देना भी चाहिए, हमारे श्रोता सुन रहे, नामकरण में कुछ सार्थक है, क्योंकि जिसका नाम अनुसया मनु ये सब नाम जो है माता पिता सोच समझ कर देते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो उसका नाम सार्थक करते। बहुत बहुत धन्यवाद। चले और एक धात्री महिला। हेलो, तुम्हारा नाम?
5: सुनीता।
2: सुनीता, मैडम सुनीता के बारे में थोड़ा बताइए कि सुनीता क्या करती है।
3: सुनीता अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है और ये हमारे आंगनबाड़ी पे सहयोग भी करती है। जैसे कभी भी कोई भी काम होता है, हम जैसे लेडीज को बुलाने के लिए बोलते करते हैं और समाज के जैसे यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है, जो भी होती है उसके अंदर सारी हमारे सुनीता ही नहीं सारी महिलाएं हमारे यहाँ पे आती हैं। एक बार के कहने से सब महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं और जो भी अपने आंगनबाड़ी पे मतलब कार्यक्रम होता है उसमें सहयोग देती हैं हर चीज के अंदर।
2: सुनीता के लिए ताली बजा भाई, इतना सुंदर है, पढ़ी लिखी जो होती ना कभी पीछे नहीं हटते, वो अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते सभी प्रोग्राम में, आंगनबाड़ी में हो चाहे आज रेडियो कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सुनीता और सुरेश भरमार है, जहाँ भी जाते हैं तो मिलेगा ही, स्कूल में जाओ सुरेश कोई बहन को पूछेंगे तो सुनीता मैडम बोले, हमारा बहुत सारा कार्यकर्ता का नाम भी सुनीता है, मोरता लगा याद आता है। तो सुनीता और हमारा मनु आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे, लेकिन एक प्रस्तुत स्कूल में जो गाते थे तो यहाँ पर जो शादी में विदाई का समय में गीत गाते हैं ना, तो एक विदाई का गीत ना कोई भी गीत मनु हो जाए। हाँ रेडी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद मिलेंगे, गीत के लिए इंतजार करिए हमारा श्रोता मित्र। और खासकर आज तो कोई का आवाज ही होगा, वो भी माताओं का, बहनों का।
5: सूरज में सांझ पी

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन,
2: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गांव और अंचल में जाएं और गांव का मिठास, गांव का शुद्धता गीत का माध्यम से नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। चले सुनीता एंड मनु और उनका साथी सभी धात्री महिला हैं, शुरू करते हैं।

0: पड़े।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता के लिए। जोर से ताली बजाओ, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। खाना खाया कि नहीं? आज तो पोसार मिला है, मैं तो देख रहा था सब पोसार खा रहे थे, बच्चे का साथ माँ भी खा लेते। बच्चे का तो खाली नाम का मात्र है, लेकिन माताएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रस्तुति, वंस मोर। और एक गीत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता इतना कार्य में पूरा नाम जैसे कार्य कराते हैं। आज माताओं से और एक गीत प्रस्तुत करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वंस मोर। रेडी? चलिए सभी एक बार ताली बजाओ जोर से भाई। और क्या नाम है फेमर हूँ नाम?
2: लिपि भाई।
1: बस आज तो लिपा दीपी भाई हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। दीप से दीपी,
3: ये सहायिका है आंगनवाड़ी।
1: अच्छा, ये राज अभी पता चला भाई, सहायिका है तो सहायता तो देगा ही, आज सबको सहयोग देते हैं। तो सहायिका आप क्या क्या काम करते हैं आंगनवाड़ी में? सबको सहयोग देते हैं बच्चों को? हो, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता इतना खुशी रहता है तो सभी खुशी में रहते। तो सहायिका जी आप शुरू करिए, गीत शुरू।

0: ताली बजा भाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपी, हमारा जो कार्यक्रम को सुंदर रूप में और भगवान तक पहुंचा देता है इस तरह गीत गाकर, और अपना जो गीत में इतना मिठास, शुद्धता और भोलापन देखने को मिलता है। गांव और अंचल में रहते, पहाड़ी का नीचे बसा हुआ कोई गांव है, फिर भी गीत कैसे सीख जाते हैं? दीप्ति बहन कैसे सीखे गीत? कौन सिखा? अपने अपने सीखो रे। खुद ऐसे सीख जाती है? कहाँ पर सीखती है? घर में है ना, मेला मेला लगे।
2: हाँ हाँ,
1: हाँ तो पीछे से बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे सीख जाते, सीखना भी चाहिए, बहुत अच्छा लगा। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ और एक मेडिकल स्टाफ है, तो उनको भी स्वागत करेंगे। तो पूरा गांव वालों को ध्यान देते हैं, खासकर धात्री महिलाएं, किशोरियों को, और पंजीरी हो चाहे बच्चों का नामांकन हो, स्वास्थ्य जांच। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मैडम उपस्थित है। मैडम आपको स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आज तो गुलदस्ता बनेगा सबका आवाज़, चाहे सहायिका, चाहे एएनएम, चाहे कार्यकर्ता, चाहे हमारा स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छकर्मी, आशा सहयोगिनी। अरे वाह, तो आशा सबका आशा पूर्ण करेंगे, क्योंकि आशा का काम क्या है? घर घर में जाकर, फील्ड में जाकर सबका जांच करते हैं। उनको पहले पता हो जाता है कोई बहू जरी यहाँ पर शादी करने का, पहले उनको पता चल जाता है इस गांव में शादी है, तो गांव का जो पूरा देखभाल शुरू से ही, शादी से ही पूरा बच्चों तक आने तक पूरा ध्यान देते। तो आपका नाम बताइए आशा जी।
3: मेरा नाम राजू शर्मा है
1: जी। जी
3: मैं आशा सहयोगी दी।
1: कहाँ पर?
3: कोई गांव में।
1: कोई गांव में
3: जी।
1: कोई गांव के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: कोई गांव बहुत अच्छा है।
1: अच्छा?
3: कोई के लोग बहुत अच्छे हैं।
1: हाँ।
3: सहयोग करते हैं, सब बातों में साथ देते हैं।
1: हाँ। किस किस जाति का लोग रहते हैं कोई में?
3: यहाँ पे आदिवासी है, भील है, मुस्लिम है।
1: अच्छा।
3: बिहारी है।
1: ओके।
3: हाँ।
1: और खासकर यहाँ का जो स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि आशा का काम जो डिलीवरी से लेकर सब काम करते हैं और लाभान्वित भी कराते हैं बच्चों का डिलीवरी का समय में, जो 5,000-10,000 कुछ कुछ पैसा भी मिलता है, तो क्या क्या सुविधाएं मिलता है आप बताइए।
3: हाँ, डिलीवरी जब डिलीवरी होती है तो पहले 4,000 मिलता है।
1: ओके।
3: लड़की होती है तो कुल 8,000 मिलता है।
1: अरे
3: तो पहली किस्त 4,000 मिलती है, फिर एक साल बाद 2,500 मिलते हैं, फिर 5 साल की लड़की होती है तब लास्ट किस्त मिलती है, और अगर लड़की को ये लोग पढ़ाते हैं तो 50,000 और मिलता है।
1: अरे वाह।
3: हाँ?
1: आपका अभी उम्र कितना है? कितना साल काम किए?
3: मैं अभी 57।
1: 57 फिर भी इतना बुलंद आवाज है और बात में भी दम है ना, ऐसे किसको लाभ दिलाए आज तक?
3: हाँ जी, मैं तो गांव में मतलब सबको, लगभग सभी महिलाओं को लाभ दिलाया है।
1: अरे बता ले बचा भाई, आज कोई लाभान्वित महिला आए आपका जो यहाँ पर, कोई लाभ मिला किसी को?
3: हाँ, वो बैठी ना सामने, ये है,
1: आ जाओ, किसका नाम?
3: ये है।
1: क्या मिला भाई आज बताओ हमारा रेडियो कार्यक्रम?
3: डिलीवरी का पैसा
1: किसको मिला है कार्यकर्ता?
4: सबको मिला।
1: आप आओ, आपका नाम बताओ और क्या क्या मिला बताओ।
5: मेरा नाम मनु है और मैं आंगनबाड़ी से जो लाभ मिला उसके बारे में बताऊंगी।
1: जरूर।
5: और डिलीवरी के बाद बच्चा हुआ मेरा बेटा है, 1,400 रुपए मिले थे मुझे।
1: 1,400 रुपए कहाँ? खाता से ना पैसा ऐसे हाथ में मिला?
5: खाता में
1: आया। फिर आपको खाता से उठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई?
5: ना,
1: पैसा पूरा आ गया था।
5: पूरा आ गया।
1: इसका धन्यवाद, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं?
5: राजू मैडम।
1: हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे? हमारा रेडियो में जो माताएं सुन रहे, वो भी लाभ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए?
5: लेना चाहेंगे,
1: लेकिन जागरूकता होगा तब ना, आपका जैसे पढ़ी लिखी होगी तो ले पाएगी। चले बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और क्या कहना चाहेंगे?
3: बस
1: बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।
6: साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमें बहुत खुशी है, सभी माताएं, बहनें और कार्यकर्ताएं, आशा सहयोगिनी साथिनी सहायिका का सहयोग से रेडियो मधुबन में प्रस्तुतिकरण हो रहा है, वो भी त्यौहार का ऊपर में गीत भजन सुना रहे हैं, अपना व्यक्तित्व को अपना भाव को प्रकट करते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा कोशिश करता है, एक मंच प्रदान करता है जिस मंच का माध्यम से गांव का जो आवाज़ माताओं का बहनों का जो भावना सब तक पहुंचे, ये हमारा सुभावना है, क्योंकि एक सीमित अंचल में क्यों रहे, दूरस्थ जगह जहाँ रेडियो का कार्यक्रम पहुँचता है, चाहे नेट का माध्यम से हो, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से हो, चाहे लिंक का माध्यम से हो, चाहे एफएम का माध्यम से, सभी ग्रामवासी अंचलवासी सुन रहे, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे कोई भी वर्ग हो, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबको मंच प्रदान करता है। तो आज जब आंगनबाड़ी केंद्र तो सभी का सहयोग देखने को मिल रहा है, और आज कुछ अपना हित के लिए प्राप्त भी करेंगे और कराएंगे। तो चलिए और एक प्रस्तुति सुनते हैं सभी माताओं से, तो शुरू कर दीजिए।

0: वाह क्या सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। इस तरह कार्यक्रम में आदिवासी जो गीत है, लोकगीत है, भजन है, त्यौहार में जो चलाते हैं तो खुशी लगता है, क्योंकि खुशी का माहौल है जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करने के लिए, जीवन को सुंदर सरस कर्ममय करने के लिए बीच बीच में इस तरह प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो आज रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं अपना आवाज को, अपना भावना को, अपना आस्था को, विश्वास को।
1: चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन। ये था सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

नमस्ते। ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं। आज तो माताएं अपना अपना भावना को, दिल का बात को, आस्था को, विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना देखने को मिल रहा है। और वंस मोर और एक गीत, और एक संगीत, और एक भजन हो जाए, इसलिए कोई बोल रहा और एक गीत हम लोग गाएंगे। बोले कोई बात नहीं, सुनाइए और एक गीत, क्योंकि जो त्यौहार में इस तरह भजन जब प्रस्तुत करते हैं तो सभी को मन मुग्ध कर देते हैं। अपना दिल का तार, आस्था और विश्वास ऊपर वाला तक पहुंचता है और गांव में एक सुंदर परिवेश भी बन जाता है, वातावरण को शांत कर देते हैं। जो भी आते हैं अपने को महसूस करते हैं, खुशी, आनंद, शांति, प्रेम उजागर होता है। तो देर किस बात की, सुनाइए और एक भजन। सबका आग्रह पर प्रस्तुति कीजिए और एक लोकगीत, लोक भजन, वो भी आस्था, विश्वास, आध्यात्मिकता को लेकर। शुरू।

ಬೇಳೆ

0: क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। किस तरह सीखते हैं, और कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, लेकिन झुंड में जब सामूहिक रूप में गाते हैं तो खुशी लगता है, क्योंकि सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक के लिए सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और गांव और अंचल में ढाणी में जब इस तरह पुनीत का सामूहिक रूप में होता है तो गाँव के लिए तो नाम रोशन करते हैं और खुद का भी नाम रोशन करते हैं। सबका भागीदारी देखने को मिल रहा है और सबका सहयोग से सुखमय संसार और हमारा दिल का भावना दिलाराम तक पहुंचता है। क्यों नहीं, रेडियो मधुबन हमेशा इस तरह प्रोग्राम कराते रहता है। तो आज जब आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे तो माताओं का जो भावना है, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो भक्ति है, सही में देखने को मिल रहा है। तो सभी को धन्यवाद नाम का साथ, जिन्होंने इस तरह प्रोग्राम को सजाया है, सजाने के लिए कोशिश किए, प्रेरणा दिए और इस तरह सुंदर प्रस्तुतियाँ, सबको नाम का साथ धन्यवाद, आभार। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारियाँ आपको मिलेगा, लेकिन अल्प विराम का बाद।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज सबको धन्यवाद देते हैं, आशा और साथिनी को, सहायिका को और कार्यकर्ता। कार्यकर्ता का बिना हमारा कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा, तो नाम जैसे कार्यक्रम भी ऐसे ही। तो कार्यकर्ता जी आपको स्वागत करते हैं अंतिम प्रस्तुति के लिए। आज जितना माताएं आए हैं, धात्री महिलाएं, किस उद्देश्य से आए हैं और कौन कौन आए हैं और क्या लाभ लेकर जा रहे हैं, आप बताइए।
3: नमस्ते, हमारे अभी काफ़ी महिलाएँ आई हुई है, धात्री माता भी आई हैं, उनको हम पोषाहार वितरण करते हैं और उनको आयरन, फॉलिक एसिड वगैरह ये दवाइयाँ भी देते हैं, कैल्शियम वगैरह की भी इनको, गर्भवती को और इनको देते हैं, किशोरियों को भी देते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे कुपोषित का शिविर लगा हुआ है सैम और मैम का, तो वो माताएं भी आई हुई है, सैम बच्चे और मैम बच्चे भी आए हुए हैं, जिनको हम यहाँ पे सुबह है ना दूध और ममरे देते हैं, फिर खिचड़ी वगैरह देते हैं, और फिर जो साथ में माताएँ आई हैं उनको भी रोटी और सब्जी का यहाँ पर भोजन मिलता है। तो ऐसे करके फिर हम लास्ट में उनका वजन करके उनको घर पे भेजते हैं। तो अभी हमारे शिविर लगा हुआ है तो ये भी हो रहा है। और हम फर्स्ट डिलीवरी वालों को इंदिरा गांधी मातृ वंदना योजना का फॉर्म भरते हैं, जिसके अंदर पहली जांच के ऊपर हम इनको 1000 रुपये मिलते हैं, फिर सेकंड थर्ड जांच के ऊपर इनको 2000 रुपये मिलते हैं, और फिर जब बच्चा 3.5 महीने का होता है उसके सारे टीके लग जाते हैं तो फिर 2000 मिलते हैं। इस तरह हम इनको 5000 की सुमला लाभ दिलवाते फर्स्ट डिलीवरी वालों को। और अब सेकेंड डिलीवरी पर भी लड़की होती है तो उनको 8000 और लड़का होता है तो उनको 6000 रुपये मिलते हैं। ऐसे करके हम इनको सुविधाएं देते हैं।
2: मैडम के लिए ताली बजा जोर से, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन आ जाए भाई, वो छूट जाए उनका नाम भी ना कह ले। अन्नु
3: आज हमारी आंगनबाड़ी पे
2: हाथ उठा है, जिसका नाम ले रहे
3: सोमी,
2: सोमी हाथ उठा,
3: सोमी आई है, मैगी आई है, और मन्नू आए हैं, सुनीता,
2: सुनीता,
3: सीता,
2: सीता, हाँ सीता इधर है,
3: कांता,
2: कांता, ओके वेरी गुड, टाटा कर रहे हैं,
3: जिनकी
2: हाथ हिलाओ, अरे वाह खुशी चेहरा,
3: लाडूरी,
2: लाडूरी कौन है, लाडूरी, अरे वाह,
3: दीपी
2: और
3: शामिली,
2: ओके हाथ उठा शामिली जोर से, लंबा हाथ, लंबा हाथ,
3: धूली,
2: धूली कौन है, धूली दो हाथ, दो हाथ,
3: मन्ना, रंगली,
2: रंगली कौन, रंगली, रंगली खड़े हो जाओ, देखो हमारा श्रोता मित्र भी ध्यान से सुन रहे, हाँ खड़े हो गए, और शारदा,
3: और शारदा हमारी किशोरी भी आई है, और धात्री और गर्भवती,
2: आज रेडियो में आपका नाम जा रहा है, आपका घर वाले तो सुने गा रहे हैं, हमारा आज कार्यक्रम में हमारा नाम आया बोलेंगे ना, खुशी लगेगा उनको भी। हमारा कार्यकर्ता CDPO और जो सुपरवाइजर भी सुन रहे हैं, सुपरवाइजर कौन मैडम यहाँ के,
3: संगीता,
2: और बस भी संगीता
3: सिटी का और इधर का दोनों का संभाल
2: दी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज का कार्यक्रम को सभी ने सुंदर रूप में सजाए। लास्ट में सभी खुद के लिए ताली बजा जोर से, बहुत अच्छे हम सब, बहुत अच्छे, हमारा बिना काम हो नहीं सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए। और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलेंटियरिज्म की।
1: ओके। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल।

0: आपसे ये पूछा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, ये मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: बिल्कुल, मैं मुझे खुशी होगी आपको बताने में। मुझे बाई बॉर्न आई में प्रॉब्लम है और मैं जन्म से दृष्टि बाधित हूँ और मुझे जन्म से मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था और
0: जी
1: मेरी ट्रीटमेंट हुई है मध्य प्रदेश इंदौर में डॉक्टर हाड़िया के पास।
0: जी
1: और स्टैंडर्ड 5 तक थोड़ा थोड़ा राइट आई में मुझे विजन था। स्टैंडर्ड 8 में आते आते मुझे मेरी संपूर्ण रोशनी चली गई। अभी फिलहाल मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मुझे आई प्रेशर का प्रॉब्लम्स है।
0: श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और हमारे साथ हैं जय पटेल जी, नर्मदा जिले के राजपिपला शहर से। जी जय पटेल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको दृष्टि बाधित, आपको जो ब्लाइंडनेस है वो कब हुई और किस प्रकार से आपने शुरुआती दिन अपने बचपन को मैं अपने आप की पढ़ाई पूरी की।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए। इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं, या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर।
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है। सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है, और आपकी
1: यस
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी। हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं, और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल्ड
1: हाँ
0: पर्सन। तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा की कार्य से खुशी मिल रही है तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है, और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी।
1: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो अब जब हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो। और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है, क्योंकि देखो सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे
0: भी,
1: हैं।
0: जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि ये अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल वही
0: करते
1: वही वही काम इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे और डिसेबल को हम आगे ले जाने में। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ,
0: जी
1: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी सोचाओ जो
1: और
0: हमसे
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं। और
0: आपके काम, जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर
1: हाँ बस
0: कोई बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल। देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे
0: जी
1: पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मैंने पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
0: जी
1: और उनके
0: निश्चित,
1: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम
1: यस
0: प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें?
1: बिल्कुल। और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन, क्योंकि
0: जी
1: हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले, वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
0: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
0: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है? डेली आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
0: है? अच्छा,
1: और मेरी मदर।
0: जी जी तो
1: हाँ
0: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना, टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
0: जी
1: सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
0: जी
1: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
0: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
0: जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
1: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
0: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलंटरी सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर्ड को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे। हाँ
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी ही होगी ना, लेकिन
1: बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
0: कम्युनिटी हाउसिंग,
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करें, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग, क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 72-80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: ये आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग,
0: जी
1: राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब।
0: जी जी तो
1: हाँ
0: नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों?
1: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
0: जी,
1: सेवेंटी फाइव यस।
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ, और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार्य के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
1: बिल्कुल,
0: और लोगों से जुड़ने की
1: लोगों
0: आवश्यकता है।
1: के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें, हम
1: बिल्कुल
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं, और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे। तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ।
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है। जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं। और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ। फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
0: जी, तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: मां रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही मां के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मां की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मां आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़ मैं और मेरा लोटा ही भला, तुम अपना काम करो। अरे तुम्हें पुराने लोटे से क्या लेना, बस समझ ले मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मां ने कहा। नहीं मां आज तो तुझे बताना ही होगा कि इस लोटे के पीछे क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी देता है, सुमित ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा इतनी जिद कर रहा है तो सुन, बहू ने जरूर इस लोटे को घर में रखने लायक नहीं समझा, लेकिन पता है मेरी शादी में देने के लिए मेरे मां पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना वह यही लोटा था, तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा परदादी दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं, और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी मां की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कह के मां फिर लोटे को निहारने लगी। मां की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहां चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अपितु पूर्वजों की यादों संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हां कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे मां पापा दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर पुरानी चीजों से ही संस्कृति संस्कार यादें प्रेम निष्ठा ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को, बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो सभी तक पहुंचाएं ताकि ये पुल बना रहे, समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।
1: हेलो मेरा नाम दीपक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज की लघु कथा है डस्टबिन, अनीता ललित जी की लिखी हुई, लखनऊ से। आइए शुरू करते हैं। 6-7 वर्षीय पिंकी अपने गुड्डे गुडियों को लेकर कमरे में अपने सुंदर से डॉल हाउस के पास बैठकर मगन होकर खेल रही थी। छोटे छोटे बर्तन, मेज, कुर्सी और भी कई सारी चीजें उसके आसपास बिखरी हुई थी। कुल मिलाकर मानो छोटी सी गृहस्थी जमी हुई थी। नन्ही पिंकी वहीं बैठे बैठे अपनी माँ की चुन्नी लपेटे गुड्डे गुड़िया से वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बातें की जा रही थी। इतने में सुमन वहां से गुजरी। सुमन पिंकी की माँ। पिंकी को इतने प्यारे ढंग से खेलते बतियाते देखकर वो वहीं ठिटक गई और छुपकर उसे खेलते हुए देखने लगी। अपने जैसे बातें करते देख सुमन को अपनी बिटिया पर बहुत लाड आ रहा था। पिंकी छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने का खेल खेल रही थी और बातचीत किए जा रही थी। रवि आइए आइए, आपका पराठा बन गया, ये लीजिए। सुमन की हंसी ही फूट पड़ी। रवि उसके पति यानी पिंकी के पापा का नाम था। अरे ये तो ठंडा हो गया सुमन, इतना ठंडा नहीं खा सकता मैं। कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसे, मैं खा लूंगी और आपके लिए ला रही हूं ये गर्मा गर्म, ये लीजिए। कहते हुए पिंकी ने अपने गुड्डे के सामने से एक प्लेट हटाकर दूसरी प्लेट रख दी। फिर पलट कर अपनी गुड़िया से बोली, चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, नाश्ता रेडी है, ये लो पहले ये फ्रूट खाओ। क्या मन नहीं है? नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो आप बड़े कैसे होगे, हेल्दी कैसे होगे। चलो चलो चलो चलो जल्दी से खा लो, गुड गर्ल। फिर कांटे से झूठ मूठ के फल गुड़िया को खिलाने लगी। फिर उसने छोटी सी कटोरी से उसे कुछ खिलाया, उसके बाद प्लेट से। फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओफो मैं तो थक गई। अरे ये क्या बेटा, आपने इतना सब छोड़ दिया, फिनिश ही नहीं किया। वेरी बैड, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है ना। अच्छा लाओ मैं ही खा लेती हूँ। कहते हुए पिंकी ने अपनी सभी प्लेटों कटोरियों से कुछ समेटने का भी नहीं किया और झूठ मूठ की समेटी हुई सामग्री अपने मुंह में डाल ली। और ये सब देखते हुए सुमन के चेहरे पर हंसी की जगह अब सोच की लकीरें उभर आई थी। दोस्तों आप सुन रहे थे अनीता ललित जी की लिखी लघु कथा डस्टबिन। कई बार जब ये लघु कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा होता हूं तो इनके भीतर जो इतना सशक्त विचार होता है वो मुझे भी ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देता है। क्या क्या बना करके रखा हुआ है हमने घर की उस धुरी को, और जिससे जीवन का सौंदर्य है उसे मैं मानता हूं, शायद उसे तकलीफ ना भी होती हो, शायद वो अपने इस त्याग को कभी संकल्प में भी न लाती हो और इसी त्याग को अपना भाग्य समझती हो। तजे हुए खाने को खा करके ही वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हो। पर हाँ, अगर खाना छोड़ना, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए। और अगर गर्म खाना खाना आपको पसंद है तो हर जीव को पसंद है, चाहे भले ही उसका पार्ट आपकी सेवा का क्यों ना हो। वो घर की मालकिन भी हो सकती है जो सेवाधारी बनकर के बिना कोई मेहनताना लिए सेवा कर लेती है, और वो घर का सेवक भी हो सकता है। हो सकता है इस जन्म में उसका पार्ट सेवक का हो, लेकिन आज सेवा ले रहे हैं तो कल सेवा देनी भी पड़ेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखने की है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अनीता ललित जी के लिए जो भी आप कमेंट करना चाहें आप जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

चाहे गांव में रह रहे हो चाहे करसा, सभी के मुंह पे सिर्फ एक चर्चा अभी इन दिनों चल रही है, क्या है? पहले क्या होता था, आषाढ़ महीने से बरसात शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं भगवान क्यों रूठ गए। एक ऐसी कल्पना है, मैं निवेदन करूं, शब्द बहुत सुंदर।

आती हुई तो सीधी बरसात है, लेकिन आप सभी लोगों के तार उनसे जुड़ने जरूरी है। हम बैठे हैं, हमारा शरीर यहाँ पर है, हमारा मन यहाँ पर नहीं है, तो फिर काम नहीं बनने वाला। शरीर, तन और मन दोनों एक साथ में जुड़ेंगे।

गे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

अपने घर की याद कितनी बार आती है आप सभी को, चाहे आप घर के पास रहते हो या घर से बहुत दूर, चाहे आपकी ऑफिस घर से बहुत दूर हो या पास, घर कितनी बार आपको याद आती है। घर कहते ही कौन सा घर आपको याद आता है ना, बहुत सारे सवाल एक घर के आसपास, इतने सारे सवाल घूमते रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये सवाल हमसे क्यों करते हैं? सवाल भी हमसे सवाल करने लगते हैं जब बात घर की आती है। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर मैं हूँ स्वर्णलता, आप सभी के साथ सुरों के घर में, सुरों के प्लेटफॉर्म पर, जिसे हम कहते हैं प्यार से रेडियो मधुबन 107.8 FM। रेडियो मधुबन में हम सुनाते हैं प्यार की धुन और कार्यक्रम है गुलदस्ता, सात सुरों की धुन आप सुनते हैं इस कार्यक्रम में, सुनते हुए मुस्कुराते हुए।

सांझ भई घर आ जा, घर आ जाओ, घर कब आओगे। सूरज अस्त होते ही घर घर में यही सवाल उठते हैं। जब घर के सदस्य बाहर हों तो घर में इंतजार करने वालों के मन में यही आस रहती है, सभी घर वापस टाइम पर आ जाएं, सभी तसल्ली से बैठकर डिनर करें, और जो घर से बहुत बहुत दूर रहते हैं उनके प्रति भी यही सोचा जाता है कि वह भी समय पर जरूर आएंगे, समय मिलने पर छुट्टी में जरूर आएंगे। तो आज के प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं घर शब्द पर बहुत ही हट के गीत। घर ऐसी जगह, ऐसा वो स्थान जहाँ पर किसी न किसी के लिए इंतजार हो रहा होता है, जहाँ पर किसी न किसी के प्रति कोई विचार चल रहे होते हैं, सुखद विचार, जहाँ पर एक दूसरे के लिए सद्भावना, सम्मान, एक दूसरे के प्रति विश्वास, सब कुछ बना रहता है। तो आज के प्रोग्राम में, कार्यक्रम गुलदस्ता में, हम सुन रहे हैं हट के गीत घर शब्द पर, और घर से जुड़ी कुछ यादें, और घर में रहने वाले सदस्य क्या करते हैं, सब कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, वही वन एंड ओनली स्वर्णलता रेडियो मधुबन पर।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आदर्शों और संस्कारों का एक विधान होता है घर। विश्वास की धरनी में जीने की आस जागे, विश्वास की धरनी में जीने की आस जागे, कदम कदम पर जीने की राह खुलता जाए। घर सिर्फ चार दीवारी पर बना ईंटों का मकान नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने का भी एक महल है, जहां हमारी सारी थकान दूर हो जाती है पल भर में अपने अपनों से मुलाकात करने पर। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर से आप सभी को हम कहते हैं सुस्वागतम सुस्वागतम, क्योंकि यह है सुरों का घर, गीतों का घर, अच्छे अच्छे शब्दों का घर, जहां पर आपको भी कुछ ना कुछ प्राप्त होता है और हमें भी प्राप्ति होती रहती है। जहां पर प्राप्ति होती है पॉजिटिविटी की और आगे चलने की, वह भी एक घर ही है। घर वह जगह जहां किसी को बनावटी न होना पड़े, घर ज्यादा सोचने की गुंजाइश न हो, घर जहां कोई अपना इंतजार करे। तो हम सब एक दूसरे का इंतजार करते हैं ना, 7 दिन होते ही हमारा जो एक दूसरे के प्रति ख्यालात है वह शुरू हो जाते हैं, ख्याल चलने लगते हैं कि कब हम मिलेंगे और बजाएंगे आपके लिए एक से बढ़कर एक बहुत ही हटके गीत। बने रहिए और देखिए आज के गीत आपके लिए क्या कह रहे हैं।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

घर को सिर्फ घर ही नहीं बल्कि प्यार का मंदिर कहा जाता है, जहां खुशियों के दीप जलते हैं, प्रज्वलित होते हैं और सपनों के फूल खिलते हैं, जहां एक दूसरे की कदर होती है। अगर कोई मनमुटाव होता भी है तो तुरंत उसको ठीक करने की भी अंदर से आवाज आती है, वही घर है। घर की दीवारें और छत विश्वास व आस्था की बुनियाद पर खड़ी होती हैं और टिकती हैं, मजबूत होती हैं। आंधी व तूफान से मुखातिब होकर उनका सामना करना भी घर सिखाता है। सिर्फ घर सिखाता है क्या, घर के लोग जो वहाँ पर बरसों जीते हैं, जो जीकर चले गए, उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो मेहनतें हैं, वह आहट बनकर हमें रास्ता दिखाती हैं, है ना, बहुत ही सुंदर बातें। तो इन बातों को हम अपने जीवन में क्या करें, यूज करें और आगे बढ़ते चले हुए जाएं, दूसरों को भी राह दिखाएं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते हैं अगला गीत और सुनते हैं कि इस गीत में क्या कहा जा रहा है।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

जब बच्चे घर से बाहर कहीं चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब मैं लौट रहा हूँ, तो माँ को कितनी खुशी होती है। वैसे ही जब थोड़ी ही देर के लिए, कुछ घंटों के लिए ही बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन जब वो खबर करते हैं, समाचार देते हैं घर में कि अभी मैं लौट रहा हूँ, तो घर में कितनी खुशियाँ छा जाती हैं, थोड़े पल में ही खुशी छा जाती है। वैसे ही बहुत दूर जो रहते हैं, मान लीजिए विदेश में रहते हैं, और वो साल में एक बार ही आ पाते हैं और कहते हैं कि मैं पहुंच गया, मैं आ रहा हूँ, तो ऐसी बातों को सुनकर दिल में खुशी छा जाती है ना, और लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों से हमें यही नतीजा निकलता है, यही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आज भी घर में उतना ही प्यार है जितना बरसों पहले था। चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए हों, लेकिन आने की खबर मिलते ही घर में खुशियों की खुराक से घर जो है बिल्कुल जीवंत हो उठता है, लाइवली हो उठता है ना, और उस लाइवलीनेस की खुशबू से घर में सब नृत्य करने लगते हैं। तो ऐसी लाइवलीनेस जब घर में होती है, वहां ही सवेरा होता है। वैसे सुबह शाम, सवेरा रात, ये सब तो चक्र फिरता रहता है, लेकिन सच्चा सच्चा सवेरा कब होता है? आइए सुनते हैं अगला गीत, और हम उसका रिजल्ट सुनाएंगे आपको गीत सुनने के बाद।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

सच ही तो कहा है, दिल की इमारत बनती है दिल से। दिल की इमारत बनती है दिल से, जहाँ प्यार हो वहीं पर घर बनाना। बहुत ही सच्ची बात है। रेडियो मधुबन 107.8 FM कार्यक्रम है गुलदस्ता, जहाँ पर हम घर शब्द पर हट के गीत सुन रहे हैं। वैसे साथियों, अगर घर से बहुत दूर कोई चले गए हो किसी कार्यवश, तो उनको घर की याद आती है। अगर आपका घर बरसों से अंडर लॉक इन की पड़ा हो और आपने कहीं और घर बना लिया हो, अपने असली घर से दूर आप रह रहे हो, तो आपका जो असली घर है आपको बुला रहा होता है, क्योंकि आपको हमेशा यही याद आता है कि वहाँ वापस जाएं, उस घर की साफ सफाई करें, वहाँ पर कुछ दिन बिताएं। ऐसे होता है ना? जरूर होता है। तो बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो मधुबन पर। बहुत सारे ऐसे गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, जो बहुत ही अनमोल हैं।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: एक होता है ईंटों का घर, चार दीवारी के अंदर एक घर होता है जहां पर घर के मेंबर्स सदस्य एक साथ रहते हैं और कुछ लोग इस चार दीवारी के अंदर रहते रहते उन्हें ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, उनको कुछ नयापन चाहिए तो वो घर से निकल पड़ते हैं, कहीं मीलों दूर चले जाते हैं प्रकृति के सानिध्य में और खुले आसमान के नीचे वादियों में और प्रकृति के अलग अलग नजारों में ही वो अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। ऐसा भी होता है तो वो घर आने का नाम ही नहीं लेते और ऐसा करते हुए वो घर का पता भी भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए आप यही कह सकते हैं कि उन्हें घर से ज्यादा प्रकृति के सानिध्य में रहना, खुले आसमान के नीचे रहना, प्रकृति के साथ दोस्ती को बढ़ाते हुए रहना उनको बहुत पसंद है। तो आइए अब सुनते हैं अगला गीत। यह गीत भी बिल्कुल हटके है।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

घर वो जगह जहां वापस जाने को दिल करे, जहां की जगह आपको खींचे वही घर है। घर वह जगह है जहां पर आगे बढ़ने की जो आस है वह कभी ना बुझे, कुछ भी हो जाए लेकिन वो लगन जो है वो लगी रहे आगे बढ़ने की। घर वो जगह जब ऐसा आपको देखने में आए कि कोई उम्मीद ही नहीं है, फिर भी उम्मीद करना ना छोड़े, ना उम्मीदी की किरणों में भी उम्मीद करना ना छोड़े, वही घर है। घर वो जगह है जहां जिंदगी जीने की जो चाह है वह अंतिम क्षण तक भी रहे, घर उसी को कहा जाता है। तो अब स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह। और हाँ, जाते जाते मैं स्वर्णलता आप सभी से यही कहूंगी कि घर में जब आप वापस आते हैं तब जरूर लोगों को खबर कर दें कि हम वापस आ रहे हैं, या घर पहुंचने से पहले थोड़ा सा उनको इंटीमेशन दे दें। अगर आप सरप्राइज भी दे रहे हो तो कुछ दिन पहले थोड़ा सा उनको एक नॉलेज के लिए बता दें कि हम आ रहे हैं, मिलेंगे जरूर, ऐसे जरूर बता दें। और यस, घर जाने की जो चाह है वह बनी रहे। तो अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नए जानदार विषय के साथ। तब तक रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप मुस्कुराते हुए कायम रहें।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। वक्त हो गया कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना। ये कार्यक्रम सतत विकास के ऊपर आधारित है और सतत विकास के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनमें से एक एक्सपर्ट हमारे मध्य आज रहेंगे शराव जादव जी, और वन चिकित्सा वन्य जीव पर्यटन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, उनके बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो शराव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज रेडियो मधुबन बुलाने के लिए।
0: जी, तो आपके काम के बारे में जानेंगे। यूं तो आप मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी आपने किया है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के बाद फिर आप वाइल्ड लाइफ के बारे में आपने स्टडी किया, यानी रिसर्च कर रहे हैं आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में, फॉरेस्ट थेरेपी, आप एक नेचुरलिस्ट भी हैं, तो इस फील्ड में आप कैसे आए?
1: तो जैसे कि आपने बताया, मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया था। मैंने साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़ाई की और मेरे माता पिता डॉक्टर भी है
0: जी।
1: तो उसी हिसाब से मुझे रिसर्च में जाना था, लेकिन बचपन से वाइल्ड लाइफ के बारे में सफारीज या नेचर वॉक मैं करते आ रही थी, और मास्टर्स खत्म होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। पता नहीं था कि क्या करना है या ऐसा कुछ फिक्स मुझे पता नहीं था कि वाइल्ड लाइफ में आखिर एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैं

0: एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कुछ इंटर्नशिप्स या वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मैंने ज्वाइन किया, और फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे जो मिला था वो मैसूर यूनिवर्सिटी का था, अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स है वहाँ पे ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो मनुष्य और प्राणियों में जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और वो कैसे एक साथ रह सकते हैं, इसके बारे में स्टडी थी। तो 6 महीने के लिए मैं वहाँ पे रही, जो निकोबार बेटों में से सबसे लास्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड करके है जो इंडोनेशिया के बहुत पास में है, और वहाँ पे हम लोग बंदरों पे पढ़ाई कर रहे थे कि उनके इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ कैसे है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो उस प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए रिसर्च में ही। तो मैंने रिसर्च से स्टार्ट किया और कोविड के बीच में ही मुझे समय मिला, तो मैंने सोचा कि जब मुझे पता चला नेचुरलिस्ट फील्ड के बारे में इन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी कुछ काम है, तो मैंने वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और अभी 2-2.5 साल हो गए मैं एज ए नेचुरलिस्ट काम कर रही हूँ।
1: जी बिल्कुल। तो आपने जो बिहेवियर्स के बारे में स्टडी किया, तो जब आप जवाई में कार्य कर रहे थे, जब आप यहाँ राजस्थान में कार्य कर रहे थे, तो आपने यहाँ पर जो जानवरों की बिहेवियर और वहाँ पर जो आपने देखा था, कुछ अंतर, कुछ यूनिकनेस देखा?
0: तो जवाई में मैं जब काम कर रही थी एज ए नेचुरलिस्ट, वहाँ पे वो एरिया जो है तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है
1: जी,
0: वहाँ पे ओपन लैंडस्केप है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जैसे कि बाकी के नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टिव एरियाज है, वैसे वहाँ पे नहीं ही है। और वहाँ पे जो कम्युनिटीज है जिनको रबारी बोलते हैं
1: जी,
0: उनके साथ वहाँ पे जो तेंदुए है और जो भी कुछ गांव है आसपास में, उस एरिया के आसपास, उनमें एक समझदारी है कि अपने आप में हम दोनों इंसान और एनिमल कैसे साथ रह सकते हैं, जैसे सेम एरिया दोनों के लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। और जो मैंने निकोबार में प्रोजेक्ट किया था वो बंदरों के ऊपर था, तो उसमें बंदर हमेशा ही एक ग्रुप में रहते हैं जिनको ट्रूप बोला जाता है
1: जी,
0: तो उनका एक बहुत अलग तरीके का बिहेवियर होता है, या उनके जो पैटर्न होते हैं, उनके जैसे रिलेशन एक दूसरे के साथ होते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब जैसे बोल नहीं सकते हमारे जैसे, लेकिन उनके एक्शंस थ्रू या उनके एक्सप्रेशन थ्रू वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जवाई के ग्रेनाइट के हिल्स है, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ के नेचुरल हैबिटेट में इन हिल्स के ऊपर जो केव है वहाँ, और इन इस हैबिटेट का उपयोग करके लेपर्ड वहाँ पे जैसे रहते हैं, तो वो एक अलग ही इकोसिस्टम है। तो जैसे इकोसिस्टम है वैसे ही एनिमल्स अडाप्ट होते जाते हैं और सर्वाइव करते हैं।
1: जी बिल्कुल। और जैसे हम माउंट आबू में देखते हैं, ये एक टूरिस्ट एरिया है, टूरिज्म यहाँ पर ज़्यादा है, तो बंदरों को हम देखते हैं कि वो रोड पर आ जाते हैं ग्रुप सहित ही, तो हम कुछ उनको खिला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम पुण्य कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में?
0: ये मतलब हम इंसान हमें हमेशा से ही दूसरों को खाना खिलाना या उनके लिए कुछ अच्छा करना अच्छा लगता है, तो उस माइंडसेट से या उस हिसाब से हम लोग करने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी जो हम खाना खाते हैं या हम कुछ ऑयली पदार्थ खाते हैं जैसे कि चिप्स वगैरह, वो हम बहुत सारे मंदिरों में, मार्केट एरिया में, गांव में हम लोग बंदरों को देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टडीज के बाद ये पता चलने लगा है कि उनको भी कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। तो हम बोलेंगे उनको हम फ्रूट्स देते हैं जो कि वो भी खाते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स जो हम दे रहे हैं वो भी हमने बनाए, हमने ग्रो किए हैं, तो जो हम खाते हैं वो अगर हम इन प्राणियों को दे, उन्हें तकलीफ होती है और वो उनका बिहेवियर अग्रेसिव भी बन जाता है, वो हमारे ही एरिया, मार्केट एरिया, टेम्पल के आसपास ही रहने लग जाते हैं, तो फिर उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी और बढ़ता है। जो हमारे साथ इंटरेक्शन होता है तो उन हमारा और उनका एक निगेटिव इंटरेक्शन होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, निगेटिव इंटरेक्शन।
0: तो मानना है कि हमें कुछ भी प्रकार से वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड कोई भी एनिमल है, उन्हें फीडिंग या खाना नहीं देना चाहिए।
1: जी खाना नहीं देना चाहिए क्योंकि वो अपने खाना ढूंढ लेते हैं जंगलों में।
0: जी बिल्कुल।
1: आपसे ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कि यूनिक चीजों के बारे में बताया, वन चिकित्सा यानी कि फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन, तो ये क्या है वास्तविक में, आप इस पे कैसे कार्य करते हैं?
0: मैं जब महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में काम कर रही थी एज ए नेचुरलिस्ट, तभी मैंने फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में सीखा था। फॉरेस्ट थेरेपी मतलब अभी के टाइम लाइन में हम लोग बात करेंगे तो जो हमारी लाइफस्टाइल बन गई है, हम लोग भाग रहे हैं या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, उस वजह से जो पुराने जमाने के लोगों का लाइफस्टाइल हुआ करता था या जो ट्राइबल्स जंगलों में रहते थे, वो फॉरेस्ट के साथ, जंगलों के साथ एक तरीके से कनेक्टेड थे। उनका इंटरडिपेंडेंस था, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो उस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल था, वो अपने इंद्रियों से कनेक्टेड रहते थे। और अभी के लाइफस्टाइल के वजह से वो जो फॉरेस्ट थेरेपी का नाम उससे आ गया है
1: जी,
0: तो एक जापनीज टेक्निक है जिसे फॉरेस्ट बेबिंग कहते हैं
1: जी,
0: और जापनीज लैंग्वेज में उसे शिंगिन योकू बोला जाता है। तो इन सभी कारणों के वजह से उनको ध्यान में रखते हुए अभी मनुष्यों का जीवन सरल बनाने के लिए या उनका टेंशन कम होने के लिए या कुछ हेल्थ इश्यूज है वो कम करने के लिए लोगों को फॉरेस्ट में वॉक के लिए लेके जाते हैं। जैसे हम लोग वॉक करना सभी को ही पसंद है नेचर में, लेकिन इसमें जो है वो हम हमारे पांच इंद्रियों को नेचर के फाइव जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, जैसे कि धरती, हवा, पानी, आग
1: जी,
0: तो उनके साथ कनेक्ट करने से और छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, शांति में रह के नेचर में या फॉरेस्ट में जितने कलर्स है वो कैसे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, कैसे पेड़ या एनिमल्स एक दूसरे के साथ चल रहे, आवाज सुनना, तो ये सब चीजें ना कि सिर्फ मतलब एनिमल्स को देखना है लेकिन महसूस करना है
1: जी जी,
0: तो वो एक हीलिंग प्रोसेस है जो फॉरेस्ट थेरेपी में आता है
1: जी।
0: और वहीं से मैंने स्टार्ट किया कि लोगों को अगर मैं फॉरेस्ट थेरेपी का सेशन कंडक्ट कर रही हूँ तो मैं उनको गाइड करूंगी अलग अलग सेशन के थ्रू, ताकि वो कनेक्ट हो पाए जंगलों से या पेड़ों से या नेचर से
1: जी। तो कैसे करते हैं ये सेशंस आप, और कहाँ कहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध है हमारे भारत में?
0: तो जहाँ मैं काम करती थी वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे जो हमारे यहाँ गेस्ट आते थे तो उनको मैं लेके जाती थी और वो वॉक पूरी तरह से एक घंटे का, जो गेस्ट आएंगे उनको शांति से सिर्फ वॉक करना है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितना धीमी गति से आप जंगल में चल सके उतना चलना है। कुछ फोकसिंग एक्टिविटीज होंगे जिसमें आप एक पेड़ हो या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके अपने आप को शांत करें, अपने आप के ब्रीदिंग पैटर्न्स को महसूस करें, ऑब्जर्व करें। फिर कुछ सस्पेंस ऐसे होंगे जिसके लिए आप पानी में बैठेंगे, जो जंगल के साउंड है, पानी का साउंड है, पत्तियों के हिलने का साउंड है, बर्ड बीच बीच में फ्लाई करेंगे उनके साउंड है, तो उन सबको सुनना है और पूरे शांति से ऐसे समझना है कि मैं अकेली यहाँ पे हूँ और मुझे कोई एक इंसान गाइड कर रहा है इस प्रोसेस थ्रू नेचर के और करीब जाने के लिए। और जैसे जापान में ये जो सेशन होते हैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए भी किए जाते हैं, और हमारे इंडिया में अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग है वो इंडिविजुअली ये सेशन कंडक्ट करते हैं, हिमालयाज में भी कंडक्ट करते हैं
1: जी। तो इस प्रकार से सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस थेरेपी से क्या हीलिंग होती है हमारे मन में, शांति के साथ साथ आपको क्या लगता है कि हम डिप्रेशन से भी दूर हो सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये सभी चीजें पॉसिबल है और इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है
1: जी।
0: तो ब्लड प्रेशर या जो हमारे हार्मोन होते हैं उनका बैलेंस होना हमारे बॉडी में सबसे जरूरी।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो मेडिकली भी टेस्ट किए हैं जिनका फायदा फॉरेस्ट थेरेपी के बाद चेक किया गया है और उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आए हैं। तो साइंटिफिकली और जैसे हमारे जनरेशन जीते आए हैं तो इन दोनों से फॉरेस्ट हीलिंग की प्रोसेस मुझे लगता है बहुत अच्छा टेक्निक है और अगर मुझे मतलब जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों को उसका एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार।
1: जी बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस आप जरूर करें। वो कहते हैं कि प्रकृति के पास जाने से हम अपने आप हील हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, शांति महसूस करते हैं। और आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, अपनी बुश वॉक्स के बारे में भी लिखा है तो ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है।
0: जी तो बुश वॉक मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली ये वर्ड ज्यादातर यूज किया जाता है लेकिन जैसे हम लोग नेचर वॉक करते हैं वही अभी फॉरेस्ट थेरेपी है वो भी एक बुश वॉक का पार्ट हम लोग कह सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें ये होता है कि हम किसी कोई लोगों को वॉक के लिए लेके जा रहे हैं नेचर में तो उस एरिया में वहाँ की परिसंस्था वहाँ का इकोसिस्टम कुछ यूनिक होता है हर जगह का
1: जी।
0: तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएं। मुझे लगता है कि हम लोग जब नेचर में चलते हैं या जंगलों में चलते हैं तब ज्यादा से ज्यादा हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
1: जी
0: और ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि कुछ पेड़ों के पत्ते हैं या मिट्टी है, किसी पंछी का नेस्ट है, तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें वॉक करते करते दिख सकती है। किसी एनिमल का स्कैट मिलेगा या कुछ हमें बोन्स मिल सकते हैं तो उससे हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा जानवर था, कौन सा कब यहाँ से पास हुआ था, या पगमार्क्स मिलते हैं बहुत बार हमें, फुटप्रिंट्स मिलते हैं जब जंगलों के आसपास वॉक करते हैं तो उससे एक क्यूरियोसिटी लोगों में बढ़ जाती है छोटी छोटी चीजें सीखने में। बेसिक अगर आप एग्जांपल लोगे तो कैसे पत्तों के कलर जब वो पत्ता हरे रंग से ब्राउन बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे चेंज होता है, उसमें कौन से केमिकल्स चेंज होते हैं उस वजह से कलर चेंज होता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए मिलती है तो वही इम्पोर्टेंस है इन वॉक्स की।
1: जी जी बहुत खूब, तो नेचर को एकदम करीब से हम स्टडी कर पाते हैं और इससे फ़ायदा हमको भी है और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे पास से स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आपने ट्रेकिंग और बाकी चीज़ों के बारे में भी स्टडी किया है, रिसर्च करते हैं, तो मुझे एक सवाल पूछना है कि ट्रेकिंग से फ़ायदा क्या होता है?
0: ट्रैकिंग से मेनली तो हम लोग हाइक कर रहे हैं, किसी माउंटेन पे चढ़ रहे हैं तो एक तो आपका फिटनेस आपको पता चलता है कितने फिट हो और जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊपर चढ़ते हैं किसी माउंटेन पे या हिल पे तो जो हवा का एक्सपीरियंस मिलता है वो हर जगह का अलग होता है, जो व्यू मिलता है वो हर जगह का अलग होता है। अभी बहुत सारे लोगों को ट्रैकिंग पसंद है लेकिन हर एक का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, किसी को एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को जानना है, कुछ लोग फिटनेस के लिए करते हैं कि मैं कितने टाइम में एक पहाड़ चढ़ सकता हूँ या चढ़ सकती हूँ, या कुछ लोगों को वहाँ के मिनरल्स के बारे में जानना है, पत्थरों के बारे में जानना है। बहुत सारे लोग हिमालयाज में ट्रैकिंग करते हैं तो वहाँ का हिमालयाज में भी हवा का दाब कम होने लगता है जैसे जैसे ऊपर चढ़े और वहाँ हर एक एरिया में रहने वाले ऊपर पहाड़ों पे रहने वाले कम्युनिटीज के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रैकिंग में हम लोग बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे जान सकते हैं और नेचर का आनंद ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने भारत के कह सकते हैं बहुत सारे जोन्स में विजिट किया है, नेचर को स्टडी किया है, तो अगर भारत को आप डिस्क्राइब करेंगे प्रकृति के आंखों से तो कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे?
0: मैं कहूंगी कि
1: जी
0: भारत की, मतलब हमने ये शब्द बहुत बार सुना है, विविधता में एकता, और अभी मेरे दिमाग पे भी वही आया। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ स्टाइल को लेके, काम को लेके, और बहुत अलग अलग एरिया में, छोटे छोटे एरियाज में हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लेकिन और इकोसिस्टम जितने अलग है
1: जी,
0: हर एक एरिया में, जैसे हिमालयाज है, डेजर्ट है, वेस्टर्न घाट है, समुन्दर है, अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड है, तो बस डाइवर्सिटी, मतलब एक चीटी से लेके बड़े बड़े पहाड़ों तक, सब इकोसिस्टम अलग होके भी एक साथ जो काम करते हैं, बस वही भारत का रूप है।
1: जी जी, बहुत खूब, वही भारत का रूप है, अलग अलग इकोसिस्टम एक साथ काम करते हैं। बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने कहा यहाँ पर। और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे हम कि आप बच्चों के लिए भी वर्कशॉप कराते हैं, जूनियर रेंजर्स प्रोग्राम आप करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो ये क्या है और बच्चे कैसे जुड़ सकते?
0: जी बिल्कुल, तो बच्चों में हमारे नेचर के बारे में या एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम पूरे भारत भर में या वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। इसमें बेसिक ये होता है कि कुछ फन एक्टिविटीज होते हैं, लर्निंग सेशंस होते हैं, और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए नेचर के लिए, उसको कंजर्व कैसे करना है स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, या कुछ गेम्स होते हैं जिसमें पिक्चर्स दिखाते हैं, कुछ एक्टिविटीज होते हैं जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में एक्ट करने के लिए बोलते हैं बच्चों को, और फिर बाकी मतलब बच्चों को गेस करना है, जैसे कि दम शराब गेम है
1: जी।
0: और उनके लिए भी जैसे हमने डिस्कस किया, बुश वॉक्स, नेचर वॉक्स ले सकते हैं उनके लिए, जंगल सफारीज करा सकते हैं, तो उनके मन में हमारे जो यंग जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उनको एक एक्सपीरियंस देना, या उनको हमारे प्रकृति के बारे में बहुत सिंपल शब्दों में या स्टोरी सुनाना, मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, तो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और प्रकृति की सुरक्षा के लिए उन्हें बचपन से जानना भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे, शरायु जी से बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें 9414151415 पर मैसेज करके या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM, ये है कार्यक्रम नई दुनिया और मैं हूँ आरजे शुभा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं राजयोगिनी दादी जानकी जी के अमृत वचन।
1: शुद्ध बनने के लिए अंदर से लगन चाहिए, मुझे शुद्ध बनना है भाई, अच्छा पानी चाहिए ना, शुद्ध पानी होना, मनुष्य के जीवन का आधार पानी है ना। आगे तो गंगा का पानी पीते थे, अभी तो बाटल का पानी पीना पड़ता है, पानी पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। वैसे भारत के गंगा का पानी लेकर विदेश में जाते थे, आज जमाना ऐसा है, तब ये आपको क्या करने का है, शुद्ध शांत सच्चा श्रेष्ठ। और डीप जाएंगे तो कोई छिपा हुआ कोई भी हमारे में कमी कमजोरी न हो।
0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज हमारे मध्य हैं शरायु जाधव जी, जो एक नेचुरलिस्ट है। और आज हम बात करें फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में, और साथ ही साथ जैसे उन्होंने रिसर्च किया है जानवरों के बिहेवियर्स के बारे में, अनेक प्रकार के कार्य उन्होंने किया है, रिसर्च भी कर रहे हैं, और प्लांट्स के बारे में भी उन्होंने रिसर्च किया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनके ज्ञान को शेयर करते हैं रेडियो मधुबन पर, और उनसे जानते हैं उनके किए हुए रिसर्च के बारे में बातें। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है शरायु जी।
1: धन्यवाद।
0: तो अभी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे हमने बुश वॉक्स के बारे में जाना, फॉरेस्ट थेरेपी के बारे में जाना, बच्चे कैसे इस प्रकृति को बेहतर समझ पाएंगे उसके बारे में जाना, आपने भारत की इकोसिस्टम और प्रकृति को कैसे आप देखते हैं उसके बारे में आपने बातें शेयर की। तो अभी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अब ब्रेक से पहले इंसान और जानवरों के तालमेल के बारे में बात कर रहे थे शुरुआत में, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ क्विक टिप्स और पॉइंट्स बताइए कि हमें क्या ऐसे ध्यान रखना चाहिए जानवर और हमारे बीच में वो तालमेल बना रहे, ताकि हम प्रकृति को साथ दे सकें।
1: जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे ये लगता है कि इंसान ने सभी जानवरों के बारे में एक मन में ऐसे रखना चाहिए कि मतलब वो जंगली जानवर है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं तो उनके साथ कनेक्शन है। भले ही हमें वो दिखता नहीं, पता नहीं, या डायरेक्टली हम कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम एक साथ जुड़े हुए हैं।
0: जी।
1: उसके बाद अभी इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो एनवायरनमेंट के ऊपर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टडी करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च पे फोकस कर रही है इंडिया में अभी, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके, या जो मनुष्य है या जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास के कम्युनिटीज है उनको ज्यादा कम से कम तकलीफ हो और उनका कोएग्जिस्टेंस बना रहे।
0: जी, तो
1: उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, जो हमारे पॉलिसीज और लॉज है एनवायरनमेंट के बारे में, वो और ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए ताकि उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो सके। और डेवलप नेशन हमें बनना है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है, क्योंकि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट साथ साथ चलेंगे तो ही हम लोग वो कोएग्जिस्टेंस बना के रख सकेंगे।
0: जी, आपको क्या लगता है खास क्या पॉलिसीज में चेंजेस आनी चाहिए?
1: मेजरली मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि प्रोटेक्टेड एरियाज है जो नेशनल पार्क है या सैंक्चुरीज है या और कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है, वो स्थापित रखने का काम हमारे लॉ मेकर्स ने करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ एरियाज है जो जिनको डी नोटिफाई किया जा सकता है
0: जी।
1: उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे हो सकता है, या कुछ कुछ एरियाज में हो भी रहा है।
0: जी बिल्कुल, जैसे आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रदूषण हम ऐसे फैला रहे हैं जिसके वजह से ओजोन छिद्र का सामना हमें करना पड़ रहा है, और तो उससे भी हमें हार्म हो रही है हमारी स्किन्स को, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप?
1: मुझे लगता है उस बारे में जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसमें कैसे इन्वॉल्व है, और छोटा सा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं एटलीस्ट उसको जान के। तो उसमें मेजरली है जो कुछ ऐसे केमिकल्स है, आई थिंक 100 के आसपास केमिकल्स है जो हमारे ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, तो उनमें ग्लोबली कैसे नियंत्रण रखा जाए,
0: जी
1: ये उसमें से एक मेन उद्देश्य है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हुए कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसलिए ये दिन आज हम ग्लोबली मना रहे हैं।
0: जी, तो उसके लिए हम प्रकृति के और करीब हमें जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ जीते हुए भी प्रकृति के करीब कैसे जा सकते हैं डेली?
1: अभी बहुत सारे प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं और बहुत सारी जगहों पे बीच क्लीनिंग होता है, या अगर हम नेचर वॉक भी कर सकते हैं. ये चीजें करने से पहले तो इम्पोर्टेंट है कि उस नेचर के साथ कनेक्ट होना, फिर उसके बाद हम उसके कंजर्वेशन के बारे में सोच सकते हैं. अगर हम घर बैठे बस मतलब डिस्कशन कर रहे हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं होगा. लेकिन छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने अभी बताया, उन चीजों में पार्ट लेने से बहुत सारी एनजीओ जैसे कि WWF है, वो लोकल लेवल पे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उनमें कंट्रीब्यूट हर कोई कर सकता है. सिटीज में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे नहीं है कि सिटीज में कुछ नेचर के लिए क्या हो सकता है या उसके लिए जंगल में ही जाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है.
0: जी
1: तो बस हमारी तरफ से और मेजरली जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि हम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, पेस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, उसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना. मैं मानती हूँ उनके प्राइजेस अभी ज्यादा है कम्पेयर टू हम लोग जो कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग हमारा रूटीन चेंज करें तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा.
0: जी बिल्कुल। तो सतत विकास की ओर हम चलें और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उसे हम यूज़ करें, जिससे हमें घरेलू नुस्खे भी कह सकते हैं जो हमारे दादा दादी हमें और नाना नानी हमें बताते थे। तो उन नुस्खों का भी हम प्रयास कर सकते हैं एक अलग स्मार्ट तरीके से, क्योंकि आजकल के जनरेशन जो है अपने आप को स्मार्ट कहलाता है, तो स्मार्ट तरीके से इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे फॉरेस्ट थेरेपी के बाद वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बाद हम करते हैं, जब लोग जाते हैं फॉरेस्ट के नज़दीक, और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आजकल प्रचलन बहुत बढ़ रहा है जैसे आपने जवाई में भी देखा होगा, तो कौन से ऐसे चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: सबसे पहले तो जंगल में हम जब भी जा रहे हैं तो हमारे तरफ से जंगल को डिस्टर्ब ना हो,
0: जी
1: इसका इसके बारे में सोचना है. तो उसके लिए जब हम सफारी पे जा रहे हैं या जंगल के आसपास कोई एक्टिविटी कर रहे हैं
0: जी
1: तो ज्यादा से ज्यादा शांति बनाए रखनी है. एनिमल्स या जो भी हमारे आसपास आ सकते हैं सफारीज में, तो उनको एक डिस्टेंस रखते हुए ऑब्जर्व करना है. जैसे हम लोग जब सफारी कंडक्ट करते हैं, वॉक्स कंडक्ट करते हैं, हम हमारे मेहमानों को पहले ही ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक्साइटेड होके चिल्लाना नहीं है या शांति बनाए रखना है. हम लोग इस डिस्टेंस पे से ही एनिमल को देखेंगे. प्लास्टिक
0: जी
1: डालना नहीं है, कुछ रैपर या कुछ कुछ भी हमारी चीजें. इवन कई बार हम लोग कुछ फूड कैरी करते हैं तो केले का छिलका या फ्रूट का पील, वो भी चीजें हमें जंगल में डालनी नहीं है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्राई करें कि हम लोग ट्रैवल करें, तो सस्टेनेबल ट्रैवल करना हमारे डेस्टिनेशन से उन जंगलों के डेस्टिनेशन तक, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए.
0: जो हम चेंज कर सके एटलीस्ट हम करें, ताकि हम इस प्रकृति के बेहतरी के लिए योगदान दे सकें। जी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम, तो आपसे ये पूछना चाहेंगी कि क्या यूनिकनेस आप देखते हैं प्रकृति में?
1: अभी प्रकृति का यूनिकनेस हर, जैसे हमने डिस्कस किया, हर एक इकोसिस्टम का अलग है.
0: जी
1: लेकिन मैं बताना चाहूंगी एक एग्जांपल देके. जैसे मैं निकोबार में 6 महीने थी, तो
0: जी
1: वहाँ की जो परिसंस्था थी, वहाँ पे आइलैंड है जहाँ पर एक जमीन का मास जो पूरे सब तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, तो इंडियन ओशन है वहां पे, इंडियन महासागर. और वहां पे जैसे ही समुन्द्र से अंदर जैसे ही लैंड स्टार्ट होता है, तो अंदर जाने के बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ है. वहां पे कुछ यूनिक पौधे हैं जो और किसी भी जगह पे नहीं मिलते हैं. जिन एनिमल्स के बारे में मैं स्टडी कर रही थी उनको निकोबार लॉन्ग टेल मकैक्स बोलते हैं, बंदर की एक प्रजाति है. तो वो भी सिर्फ निकोबार के 3 आइलैंड्स पे ही मिलते हैं. ऐसे कुछ छोटे मोटे जानवर है, बर्ड है, स्नेक्स है, जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं. तो शायद मुझे लगता है वही यूनिकनेस है हर एक एरिया की या इन आइसोलेटेड आइलैंड्स की. जो मेजर हमारा मास लैंड है जैसे कि इंडिया का मेन लैंड है उससे बहुत दूर है और उसने अपने आप में एक खूबी है और अपने आप को ऐसे ग्रो किया है जो एक यूनिक इकोसिस्टम बना के रखा है. तो वहाँ पे जाके उस लैंडस्केप में पढ़ाई करने में मेरा एक खुद का यूनिक एक्सपीरियंस था.
0: जी जी
1: तो वो मैंने शेयर किया.
0: बहुत खूब. तो अगर कोई इन चीज़ों को अपना करियर बनाना चाहे कोई स्टूडेंट्स, क्योंकि करियर के लिए और पैसे भी चाहिए लोगों को अपने जीवन के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम?
1: जी बिल्कुल. तो इस एरिया में करियर बिल्कुल बना सकते हैं. अभी हमारे भारत में ये जो फील्ड है वो अभी नया है, मतलब कली के रूप में है, जैसे फ्लावर मतलब ग्रो होगा आगे जाके.
0: जी.
1: और अभी के समय में बहुत कम लोग हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बढ़ रही है. तो मेन इस एरिया में काम करने वाले लोगों का पैशन होता है जिनको वाइल्ड लाइफ में काम करना है. इसमें बहुत बहुत से चैलेंजेस है, बहुत स्ट्रगल है, मतलब सभी फील्ड में स्ट्रगल होते हैं. लेकिन जब आप जंगल में काम करते हो, आप घर से दूर रहते हो, आपको वहां पे जाने के बाद बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. जंगल एक्सपीरियंस करने में कुछ अलग ही मजा है और वहाँ के एनिमल्स का बिहेवियर, पेड़ों के बारे में जानना, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है. लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा है. और अगर हम लोग कमाई के बारे में या सैलरी के बारे में इस फील्ड के लिए जाने, तो मतलब अभी और ज्यादा इस फील्ड में सैलरी उपलब्ध होनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है, जो भी इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट है जिनको इंटरेस्ट है वो और भी ज्यादा तरीके से सोच सकते हैं कि इस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं. क्योंकि हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और खुद की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा खुद की रक्षा है, तो उसके लिए इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोग आना बहुत जरूरी है. और अभी टेक्नोलॉजी भी हमारी स्ट्रांग हो रही है, उसका भी बहुत ज्यादा फायदा इस फील्ड में हो रहा है.
0: जी,
1: तो मेरा यही सजेशन लोगों के लिए रहेगा कि अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ में काम करने के लिए, आप बेझिझक काम करिए. और टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी आपकी जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे अलग अलग तरीकों से, जैसे कि इको टूरिज्म है या सस्टेनेबल नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे अभी कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप में सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी इनकम मिल रहा है. तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो स्कोप तो बिल्कुल है.
0: जी बिल्कुल. तो स्कोप है इस फील्ड में, भविष्य है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं और इसे सिर्फ करियर नहीं, अपने आप को भी बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं, जैसे शरायु जी ने कहा. और जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, आपके पसंदीदा प्लांट, जानवर और पंछी कौन से हैं?
1: ओके, तो प्लांट बताना हो तो मुझे बरगद का पेड़ बहुत ज्यादा पसंद है.
0: जी.
1: और उसके साथ और एक पेड़ है जिसको महुआ का पेड़ बोलते हैं. और एनिमल है, मुझे बंदर सबसे ज्यादा पसंद है.
0: जी, बंदर पसंद है क्यों?
1: हाँ जी बिल्कुल, मतलब मैंने उनके ऊपर काम किया है कुछ ज्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन मुझे पहले से ही बहुत बंदरों को देखने में क्यूरियोसिटी रहती है.
0: जी.
1: इस वजह से क्योंकि वो खुद भी क्यूरियस होते हैं जब कोई इंसान उनके सामने आता है, या उनके खुद के बिहेवियर में जो उनके अलग अलग तरीके होते हैं वो ऑब्जर्व करने में मुझे बहुत पसंद है.
0: जी. और पंछी?
1: और पंछी है इंडियन पैराडाइज फ्लाइकैचर करके एक पक्षी है, उसको हिंदी में दूधराज भी बोलते हैं.
0: जी.
1: तो बड़ा सुंदर पक्षी होता है, उसका जो नर होता है वो वाइट कलर, प्योर वाइट कलर में होता है, उसका टेल भी उसकी बहुत रिबन जैसी लॉन्ग होती है, और उसके साथ में एक ब्राउन कलर का भी जिसको मॉस बोलते हैं.
0: जी.
1: तो और उसका मराठी नाम जो है स्वर्गीय नर्तक उसे बोलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। जो वो पक्षी जैसे जिस तरीके से डांस करता है हवा में, या अपनी मादी को अट्रैक्ट करने के लिए, या जैसे वो कीटकों पे कीटक उनका खाना है उनको पकड़ने के लिए, तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे। तो
0: जी, बहुत खूब
1: ये
0: बहुत खूब
1: तीन चीजें हैं।
0: जी। तो हम आपको रेडियो मधुबन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहे, और ये जो आप प्रकृति के लिए, हमारे धरती माता के लिए कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है, साधुवाद है आपको रेडियो मधुबन की ओर से। एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए रेडियो मधुबन पे। और हिंदी में मैंने पहली बार इतना
0: जी
1: लॉन्ग टाइम के लिए बोला है, तो मुझे बहुत मजा आया
0: जी
1: और बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपके साथ ये टाइम शेयर किया। और जो भी श्रोता गण है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य आज प्रकृतिवादी शरायु जाधव जी ने बात की हमारे साथ, और यूं ही हम उनसे बातचीत करते रहेंगे आगे के एपिसोड्स में भी। और आपको आज के कार्यक्रम में से क्या खास लगा, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 1415 1415 इस नंबर पर। आगे के कार्यक्रम आप रेडियो मधुबन पर सुनते रहेंगे, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: क्या सीखा? रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला,
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है। और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसके क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज

करना भूल गए तो रात के 2 बजे भी उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस, लेकिन अपने आप के साथ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: मजा आया हूँ।
1: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो शिवम?
0: फिफ्थ।
1: और उसके बाद युग, युग आप बताओ।
2: मैं सूरत वराछा से आया हूँ, मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ।
1: और हर्ष?
3: मेरा नाम हर्ष है, मैं गुजरात के सूरत वराछा से आया हूँ।
1: और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
3: मैं 9 में पढ़ता हूँ।
1: ईश्वरी?
4: मेरा नाम ईश्वरी है, मैं पुणे से आई हूँ।
1: और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
5: सेकेंड।
6: मेरा नाम पायल सोलंकी है, मैं MP से आई हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम मुस्कान गुप्ता है, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
8: मेरा नाम है कशिश सोलंकी, मैं MP मध्य प्रदेश से आई हूँ, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
1: अरे वाह। तो अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग सपने देखते हो?
9: हाँ दीदी। हाँ।
1: तो रात को देखते हो कि दिन में देखते हो?
9: रात को
1: देखते हो। अच्छा तो सबसे पहले मुझे अपना कौन सा सपना कौन बताएगा जिसको याद है, जो सबसे फेवरेट वाला सपना देखा हो जो अभी तक याद है, कौन बताएगा? आपको याद है युग, आप बताओ।
2: मुझे एक सपने में संगीत का शौक आया ना, तो मैं संगीत के क्लास में जाने लगा, इसलिए मुझे बहुत शौक है संगीत का।
1: अच्छा मतलब आपने सपना देखा कि आपको संगीत सीखना, तो आप संगीत सीखने लगे?
2: हाँ दीदी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा सपना था जिसको आपने रियलिटी में बदल दिया, है ना? और किसी को अपना सपना याद है? और पायल, मुस्कान, आप लोगों को कोई सपना नहीं आया ऐसा जिसको देख के आप डर गए हो, या कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो? कोई भी नहीं, किसी को नहीं याद। अच्छा आप लोगों ने कभी कोई हॉरर मूवी देखी है? देखिए नहीं ना, तभी तो अच्छी बात है, क्योंकि डरावने सपने आते हैं ना उसको देख के। फिर
2: मैंने देखी थी एक बार।
1: देखी थी? तो कोई सपना आया आपको?
2: हाँ।
1: उसको देखने के बाद
2: जग गए?
1: नींद से ही जग गए? इतना डर गए कि नींद से जग गए। अच्छा ये तो हमारे सपने जो हम रात को देखते हैं, आपको पता है हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं? किसी को पता है? नहीं पता। वो सपने होते हैं जो हमारी ड्रीम्स होती है ना, जो हम पूरा करना चाहते हैं, हमें लगता है हम स्कूल में ये करेंगे वो करेंगे, या हम बड़े होके ये बनेंगे वो बनेंगे, ऐसा सब सोचते हैं ना। अच्छा तो फिर ये बताओ पायल, आप क्या सोचते हो आप क्या बनोगे बड़े होके?
6: मैं डॉक्टर बनूंगी।
1: डॉक्टर बनोगे? और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप?
6: दीदी मरीजों का इलाज।
1: मरीजों का इलाज करने के लिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान आप बड़े होके क्या बनोगे?
7: मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी।
1: आप भी डॉक्टर बनोगे? आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या अच्छा लगता है आपको? पता है उसके लिए ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, करोगे?
9: हाँ।
1: और कशिश आप क्या सपना देखते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
10: टीचर।
1: टीचर? और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो?
10: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए।
1: सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आपको अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा शिवम आप बताओ आप क्या सपना देखते हो बड़े होके क्या बनोगे?
11: मैं बड़ा होके सोचूंगा।
1: बड़ा होके सोचोगे कि क्या बनना है? अभी कुछ मन नहीं करता आपको बनने का किसी को देख के? कुछ भी नहीं। ठीक है चलो, शिवम बड़ा होकर डिसाइड करेगा, पर युग ने तो डिसाइड किया होगा क्या बनना है?
2: संगीत कलाकार।
1: संगीत कलाकार? अरे वाह, संगीत कलाकार क्यों बनना है आपको?
2: मुझे एक बार देखा था ना एक संगीतकार को, इसलिए मुझे ऐसा रस जग गया कि मुझे जाना ही है इसलिए।
1: अच्छा मतलब इतना मन करता है आपको उनको देख के, कि कौन सा म्यूजिक बजाओगे पहले ये बताओ, क्या बजाओगे? कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो आप?
2: आधा गिटार है, थोड़ा सा दो के लिए।
1: अच्छा चलो ठीक है, वो तो हम युग से बाद में सुनेंगे। फिर हर्ष आप बताओ क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
3: बड़ा होकर CID बनना चाहते
1: हो? CID बनना चाहते हो? CID क्या होता है मैं बताओ तो?
3: वो देश की रक्षा के लिए एक कानून होता है।
1: अच्छा तो आप क्या करोगे CID बनके?
3: हम सभी देख रहे हैं कि अभी देश में कितना जुर्म बढ़ रहा है और उसको मैं मिटाऊंगा।
1: देश में जुर्म बढ़ रहा है उसको आप मिटाना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जुर्म मिटाना चाहते हो तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर चीज में किसी ना किसी की सेवा होती है, है? और ईश्वरी आप क्या बनना चाहते हो?
4: टीचर।
1: टीचर? टीचर क्यों बनना चाहते हो?
4: दीदी बच्चों को पढ़ाने के लिए।
1: बच्चों को पढ़ाओगे आप? अच्छा और पुलिस में कोई नहीं जाना चाहता यहाँ पे? नहीं। ईश्वरी आपको तो पुलिस में जाना था ना? नहीं। अच्छा अच्छा ये बताओ आप लोग के जो मम्मी पापा है वो आप लोगों को कभी कुछ कहते हैं कि हम लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं या क्या बताते हैं, कुछ बोलते हैं आपको कभी? किसी के भी नहीं। अच्छा स्कूल जब जाते हो तो कुछ ऐसा मनता है काश मैं ये करती या मैं वो करता स्कूल?

0: में ऐसा वैसा कुछ भी सोचते हो कभी?
1: हाँ।
0: क्या सोचते हो बता?
1: मुझे कभी टीचर बोर्ड पे लिखने का कहते हैं इसलिए।
0: अच्छा, मतलब आपको बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है? हाँ भाई, सही बात है, बोर्ड पे लिखते हैं तो टीचर्स हमें बहुत तारीफ करते हैं ना। और कौन क्या सोचता है? ईश्वरी आप?
2: मुझे टीचर बताते हैं मैं स्कूल के बाहर जाऊंगी तो सब बच्चों का ध्यान रखना।
0: सब बच्चों का ध्यान रखना, और ये आपको अच्छा लगता है? अरे वाह। और पायल?
3: दीदी बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है। और मुस्कान को क्या चाहिए?
4: बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है।
0: बोर्ड पे लिखना। आप बताओ पहले कशिश? कोई से भी कर लेते हो? तो क्या मन करता है सबसे ज्यादा आपका करने?
5: डांस।
0: डांस, अरे वाह। और आपका क्या मन करता है हर्ष?
6: मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं अपनी मेहनत से उसमें
0: प्राइज प्राप्त करोगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइज नहीं मिलता है तो क्या बुरा लगता है? किसी को भी नहीं?
7: किसी को लगता है पर हम वैसे नहीं लगता।
0: आप वैसे किसी को भी नहीं लगता?
7: नहीं लगता।
0: क्यों बुरा नहीं लगता? अच्छा बताओ, बाकी लोगों को तो लगता है।
6: क्योंकि कभी कभी हमको भी प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता है।
0: इसलिए औरों को
6: जब भी औरों को प्राइज मिले तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैंने भी मेहनत की, मैं उस स्टेज पर गया, यही सबसे बड़ा प्राइज है।
0: बात तो बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्या लगता है?
8: दी हमको भी यही लगता है
0: कि उन्होंने भी मेहनत की है ना। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, बड़े हो जाओगे जब सब कुछ करोगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? अभी तो मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो जब बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा के लिए क्या करोगे बताओ?
9: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: उनका नाम रोशन करोगे। और ईश्वरी आप क्या करोगे मम्मी पापा के लिए?
10: उनका नाम रोशन करेंगे।
0: मम्मी तो अभी आपके लिए कितना सब कुछ करके ना, खाना भी बनाती है, आपको लेके घुमाने भी जाती है, तो आप नहीं घुमाओगे मम्मी को जब बड़े हो जाओगे? तो बड़े हो जाओगे तो ये सब चीजें याद रखना है ना। अच्छे से मम्मी का बर्थडे मनाना। और पता है क्या, मम्मी से आप प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलोगे ना तो मम्मी खुश हो जाएगी। और युग?
11: बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें वो आराम से रहेंगे। ऐसा
0: बड़ा सा घर बनाओगे जिसमें मम्मी आराम से रहेंगी। अरे वाह। और हर्ष?
6: हम इस समय देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े लड़के कैसे अपनी मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, उसको अपने पास रखूंगा और वो जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा और उसका नाम रोशन करूंगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है, मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहिए, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उनको बहुत सारा प्यार देंगे जो वो हमें अभी देते हैं, है ना। तो पायल आप क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे? और आप लोग मुस्कान और
4: मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी और बड़े होके उनका नाम रोशन करूंगी।
0: मम्मी पापा की सेवा करोगे? आप क्या करोगे?
12: दीदी हम
0: आप भी सेवा करोगे। और ईश्वरी क्या करेगी? घुमाने लेके जाएगी मम्मी को। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके फैमिली में कौन कौन है? आप बताओ फैमिली में कौन कौन है घर पे?
13: मम्मी पापा दादी दादाजी चाची चाची।
0: अरे वाह, आपकी फैमिली तो बहुत बड़ी है। तो इस फैमिली में आपका सबसे फेवरेट कौन?
13: दीदी मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा, मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए।
13: हाँ।
0: और हमारी जो भी वो पूरी करते हैं ना, सारी इच्छाएं भी तो वही पूरी करते हैं, है ना। और आप बताओ ये?
13: वो जो हम कहते हैं वो सब ले देते हैं,
0: इसलिए वो
13: कैसी हो मांगा था तो उसने थोड़े दिन में ही मुझे ले दिया था बड़ा सा।
0: अच्छा पापा ने? और आपकी फैमिली में कौन कौन है?
13: दादी दादा और मैं और मम्मी पापा।
0: तो दादी दादा के साथ आप खेलते हो? अच्छा, तो उनसे
13: वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं जो कुछ मांगू वो मुझे देते हैं
0: दादी दादा। अरे वाह। और आप बताओ पायल, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
14: मम्मी पापा दादा दादी।
0: और सबसे अच्छा?
14: दीदी मम्मी पापा।
0: और सबसे फेवरेट कौन है आपका? मम्मी के पापा।
14: मम्मी
0: क्यों? मम्मी क्यों अच्छी लगती है? अच्छा ईश्वरी की फैमिली में कौन कौन है?
15: दीदी अजी अज्जा एंड मम्मी पापा।
0: और सबसे अच्छा कौन लगता है आपको?
15: मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा अच्छे क्यों लगते हैं ईश्वरी को?
15: तो मुझे कल ही चप्पल मांगी थी और आज ले आई।
0: अच्छा, और मुस्कान?
4: मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची।
0: और आपका फेवरेट कौन है?
4: मम्मी और पापा दोनों।
0: दोनों मम्मी पापा हमारी विशेष पूरी करते हैं। और कोई भी स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो आपको बहुत अच्छी लगती है?
4: वो हमें बहुत प्यार करते हैं।
0: प्यार तो करते हैं, अगर डांटते हैं तभी बहुत प्यार करते हैं, नहीं है कि नहीं?
13: तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: हाँ, और आप बताओ?
14: दीदी हमको भी
13: वैसे कि हमको चित्र दौड़ना नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, तो हमको हमारी दीदी दौड़ दे।
0: मतलब जो मुश्किल लगती है वो दीदी सॉल्व कर देती है। अच्छा ये बताओ, घर में कभी लड़ाई होती है आप लोगों की? कभी गुस्सा होते हो क्या आप लोग?
6: कभी कभी होती है।
0: होते हो?
14: हाँ दीदी।
0: क्यों होते हो? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हो? जब
13: एक क्वालिटी लाए होता उसमें से दो भाग करने पड़ते हैं, इसलिए भाई बहन में किसी का ज्यादा आता है किसी का कम आता है इसलिए।
0: अच्छा, जब दो भाग करने पड़ते हैं तब लड़ाई होती है, और इक्वल इक्वल हो जाए तो नहीं होती। हाँ, और शिवम तो कभी लड़ता नहीं होगा? नहीं क्यों लड़ते हो आप? कान आपको मारती है? अच्छा क्यों मारते हो? मुस्कान क्या करते हो आप? ऐसा शरारत करते हो? बताओ, ऐसे ही मारते हो? क्या शरारत करते हो मुस्कान बताओ?
4: वो कभी भी मस्ती करता रहता है, मेरी चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पे फेंक देता है।
0: आपकी चीजें फेंक देते हो ऐसा शिवा? कोई नहीं, तो दीदी की चीजें लेने का और फिर सही जगह पे रख देना, है ना? तो फिर दीदी नहीं डांटेगी, ठीक है? हाँ युग बोला।
13: एक साइकिल होती है तो दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे चलाना है इसलिए।
0: साइकिल एक होती है तो दोनों झगड़ते हो, और फिर जीतता कौन है
13: भाई?
0: आप नहीं जीतते हो?
13: टीवी में भी सब लोग लड़ते हैं, आधा घंटा मेरा आधा घंटा तुम्हारा।
0: अच्छा, टीवी के लिए लड़ाई होती है?
13: हमारे घर पे तो है ही नहीं, और मैं एक ही हूँ।
0: अच्छा, तो फिर लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या करते हो?
13: चुप हो जाते।
0: जो देख रहा होता है उसको देखने देते? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ईश्वर, आप कभी गुस्सा होते?
15: नहीं।
0: दे? लड़ाई करते? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, मम्मी से भी नहीं? मम्मी जब कहती है सब मानते हो?
15: हाँ,
6: मेरी फैमिली में भी कभी कभी झगड़ा होता है।
0: झगड़ा होता
6: है? पर मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
0: आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? अच्छा, क्या होता है और फिर आप क्या करते हो उसमें?
6: टीवी के लिए मेरी दो बहन है वो झगड़ती है और मैं टीवी बंद कर देता हूँ।
0: टीवी के लिए झगड़ा होता है तो आप टीवी बंद कर देते हो, और फिर जब दोबारा ऑन होता है फिर
6: रिमोट लेके भाग जाता हूँ।
0: अच्छा, और आप लोग बताओ, कशिश कभी झगड़ते हो?
15: हाँ दीदी।
0: क्यों झगड़ते हो?
15: दीदी मेरी छोटी बहन है वो टीवी के लिए हमको रिमोट नहीं देती है, तो हम झगड़ते हैं, तो दीदी फिर कुछ नहीं करते है, चुपचाप फिर
0: जाते हैं। उनको टीवी देखने देते हो?
6: हाँ।
0: अरे वाह, ये तो सारे बहुत ही अच्छे बच्चे, झगड़ते नहीं है और देखने देते हैं।
13: नहीं तो कोई प्लान बनाता है कि ऐसे करने का है, फिर ऐसे करके फिर का, जब वॉशरूम जाते हैं तब कोई ले लेता है ऐसे।
0: क्या प्लान बनाते हो?
13: मैं तो नहीं बनाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या प्लान बनाते हैं बताओ सब लोग?
13: कोई बना रहा होगा, पर मैं तो कह रहा हूँ उसे।
0: अच्छा, और ईश्वरी आप तो झगड़ते नहीं हो ना?
13: और कोई टीवी देख रहा हो, पानी पीने के लिए जा रहा हो, तब भी कोई रिमोट ले लेता है। ऐसा भी बनाते हैं।

0: अच्छा, घर में तो सब लोग रिमोट के लिए लड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और किसी बात पे लड़ाई होती है?
1: खिलौने से होती है।
0: खिलौने से? तो आप लोग भी तो छोटे बच्चे हो ना। अच्छा, जब स्कूल जाते हो और फ्रेंड्स के साथ रहते हो तब किसी की लड़ाई होती है क्या?
1: हाँ, कभी कभी होती है।
0: होती है?
2: हाँ दीदी,
0: सबकी होती है।
1: फिर हम सब दोस्त बन जाते हैं।
0: मतलब लड़ाई होती है फिर हम सब अपने दोस्त भी बन जाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुस्कान?
3: दीदी, मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा बैग नीचे फेंक देती है बेंच।
0: तो मतलब वो आपको ऐसी टीज करते हैं, है ना? तो फिर आप क्या करते हो?
3: मैं भी उनका बैग नीचे फेंक देती हूँ।
0: तो बाद में फिर लड़ाई नहीं होती?
3: फिर वो टीचर से बोल देती है, टीचर उसको अलग बिठा देती।
0: और वापस फ्रेंड्स कैसे बनते हो फिर?
3: बन जाते हम
0: तुरंत तुरंत। अरे वाह, है ना? तो क्या हुआ, लड़ाई की उसके बाद तो फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, है ना? और ईश्वरी, आप लड़ते हो क्या अपने फ्रेंड्स के साथ कभी?
2: मेरे फ्रेंड्स मुझे धक्का देते हैं, फिर मैं भी धक्का देती हूं, फिर हम फ्रेंड्स बन जाते
0: हैं। अच्छा, और धक्का देते तो लगती नहीं है?
2: थोड़ी
0: थोड़ी। अच्छा, मतलब खेल खेल में ऐसा होता है। लेकिन जोर से नहीं देना, नहीं तो लग जाएगी चोट, फिर तो मम्मी से डांट पड़ेगी, है ना? और आप बताओ,
1: कभी झगड़ा हो जाता है?
0: क्यों?
1: बातचीत करते हुए।
0: बातचीत करते हुए झगड़ा हो जाता है?
1: हाँ।
0: फिर क्या करते हो?
1: मैं उसको अपना सीक्रेट बात बताता हूँ और वो किसी और को बता देता है।
0: अच्छा, और किसी के साथ भी ऐसा होता है?
2: दीदी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं किसी को, मेरी फ्रेंड को बताती हूँ तो वो दूसरे को बता देती है।
0: अच्छा, तो फिर क्या करते हो आप लोग? तो फिर क्या करते हो आप लोग?
1: कभी सीक्रेट हम किसी और को बता देते हैं।
0: अच्छा, दोनों लोग ऐसे करते हो?
1: हाँ।
0: और उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई नहीं होती?
1: लड़ाई नहीं होती, ठंडा हो जाता है।
0: तो फिर अपने फ्रेंड से हमें बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी जो बात है वो सबको नहीं बताने का। वैसे आप लोगों के सीक्रेट्स होते क्या है? क्या सीक्रेट होते हैं बताओ?
1: कहीं छुपने की जगह, जब खोपड़े खोपड़े खेलते हैं तो
0: छुपने की जगह सीक्रेट होती है, वो आपका फ्रेंड किसी और को बता देता है। हाँ, तो फिर आप उसको क्या सीक्रेट बताते हो?
1: उसकी भी जगह बता देते।
0: उसकी भी जगह बता देते हो?
1: वो तो पता कैसा चलता है कि उसकी जगह यहाँ है।
0: अच्छा, फ्रेंड ने जो जगह दिखाई होती है वो बता देते हैं। और आप क्या करते हो पायल?
2: दीदी, हमारी जो बात रहती है वो दूसरों को बताती है मेरी फ्रेंड, तो हम भी उसकी बात बता देते हैं।
0: क्या बात रहती है आपकी?
2: दीदी, ये तो भूल गए।
0: और उसकी क्या बात रहती है? अच्छा,
2: सब भूल गए।
0: सब भूल गए। कशिश?
4: दीदी, हमारे साथ
0: क्या होता है?
4: दीदी, कभी मेरी फ्रेंड कटर मांगती है तो हम नहीं देते तो लड़ने लग जाते।
0: कटर नहीं देते? अच्छा, तो शार्पनर जब आप नहीं देते हो और आपकी फ्रेंड लड़ती है, उसके बाद क्या करते हो?
4: दीदी, कुछ भी नहीं करते, फिर से बोलने लग जाते।
0: फिर से बोलने लग जाते हो? अच्छा, अरे वाह। युग,
5: हमारे स्कूल में एक लड़का बहुत ताकतवर है ना, मैं ही ताकतवर, सब उसकी टीम में ही जाते हैं। जब मेरी टीम मेरे साथ साथ ही आओ और फिर झगड़ा होता जाता है, फिर सब साथ हो जाते हैं।
0: आपकी टीम में कोई नहीं आता, सब उसकी टीम में चले जाते हैं।
5: मैं तो टीम रखते ही नहीं।
0: तो फिर आप भी उसी की टीम में चले जाया करो, है ना? अच्छा, ये बताओ मुझे, आप लोगों को अब तक सबसे ज्यादा मजा कब आया या सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है, जब आपने बहुत एंजॉय किया हो या आपको बहुत अच्छा लगा हो, बताओ?
5: मैं मेरे मामा के साथ जब छुपा छुप गया था ना, वहाँ बहुत मजा आया था।
0: मामा के साथ क्या किया था?
5: वहाँ बहुत बड़ी राइड्स होती है ना, वो पानी में गिरते हैं ना
0: लहरें,
5: वहाँ बहुत मजा आता है।
0: अच्छा, मतलब आपको पानी में खेलने में मजा आता है मामा के साथ?
5: मेरे मामा भी आए थे।
0: अच्छा,
5: पहले तो मुझे बताया नहीं था, फिर मेरे मामा कह रहे थे ले जाओ ले जाओ मेरी मम्मी को, पहले तो नहीं कह रहे थे, फिर मेरे फिर क्या चल चल ले चलते हैं, फिर मुझे पता चल गया ना, तो मैंने कहा मम्मी को, देखा मुझे पता चल गया ना, मेरे मामा से भी नहीं बोलते ले जाते ही।
0: मामा आपको लेके गए खेलने के लिए पानी में लहरों पे, तो आपको बहुत मजा आया।
5: हाँ।
0: अरे वाह। और आप बताओ शिवा, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
6: जब मेरे पापा उज्जैन में सीएस में मेरे को डुबकी लगवाते हैं तब।
0: डुबकी लगवाता उज्जैन में? अच्छा, क्या करते हो वहाँ पे? और
6: मेरा वहाँ पे साथ साथ तैरते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं।
0: अच्छा, डुबकी लगाने में बहुत मजा आता है, यानी सबको पानी में खेलने में मजा आता है?
6: हाँ दीदी।
2: हाँ
0: नहीं
2: दीदी।
0: हाँ, तो फिर बताओ हर्ष, आपको बताओ।
1: मेरा एडवेंचर्स बहुत ही फेमस है।
0: एडवेंचर में आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: हाँ।
0: क्या करते हो?
1: पीछे मैं एडवेंचर्स सीखूंगा तो बड़ा होके भी बड़े बड़े एडवेंचर्स करूंगा।
0: अभी क्या किया है आपने?
1: तेज स्केट चलाना और पानी में स्विमिंग करना।
0: तो आप स्केटिंग करते हो और पानी में स्विमिंग करते हो? स्विमिंग तो स्केटिंग कैसे आप सीखते हो? स्केटिंग तो उसको चलाने में मजा आता है आपको?
1: हाँ।
0: कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने?
1: हाँ।
0: क्या लिया है बताओ?
1: कंपटीशन में एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा सेकंड नंबर आया था।
0: अरे वाह, तो चलो सब लोग भैया के लिए ताली बजाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ईश्वरी, आपको कब मजा आता है सबसे ज्यादा?
2: डांस में।
0: डांस में? कौन से गाने पे डांस करते हो आप?
2: राधा के।
0: राधा के? अच्छा, तो स्कूल में डांस करते हो? और कौन सिखाता है आपको?
2: मैं, टीचर।
0: टीचर? और आपके बर्थडे पे मजा नहीं आता आपको? क्या करते हो बर्थडे पे?
2: सब लोग केक खिलाते हैं।
0: सब लोग आपको केक खिलाते हैं, इसलिए मजा आता है। और आप सबको केक नहीं खिलाते?
2: खिलाते।
0: खिलाते हो? अच्छा, पायल आप?
7: मुझे भी डांस में बहुत मजा आता है।
0: डांस में बहुत मजा आता है। आप किस गाने पे डांस करते हो?
7: दीदी सारे गाने पे करते हो? सारे गाने?
0: सारे? बहुत सारे? मतलब स्कूल में जब भी डांस कंपटीशन होता है आप पार्ट लेते हो?
7: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और मुस्कान?
3: दीदी मुझे भी डांस में।
0: आपको भी डांस में मजा आता है?
5: दीदी मुझे।
0: अच्छा, डांस करना तो हमारी हॉबी, हमें पसंद है। कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद है जिस दिन आपने बहुत एंजॉय किया हो? कुछ याद है आप लोगों को? कभी घर पे, स्कूल में कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हुआ हो तो आपको बहुत मजा आया हो, या कहीं गए हो घूमने? नहीं।
1: हाँ
0: बताओ।
1: बार एक योगा में कॉम्पिटिशिपेट किया था और उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। वो दिन मेरे को बहुत
0: मजा आया था। वेरी गुड। तो कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, हमें प्राइज मिलता है तो मजा आता ही है।
1: और नहीं मिलता तब भी आता है।
0: नहीं मिलता तब भी आता है? नहीं मिलता तब क्यों आता है?
1: क्योंकि हमें जब प्राइज मिलता है तो औरों को भी बुरा लगता होगा ना। हम ऐसा सोचे कि वही हमको अगले साल मिलेगा, इसलिए हम दुगनी मेहनत से फर्स्ट प्राइज में मिलेंगे हमको।
0: ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने, दुगनी मेहनत करेंगे। और वैसे भी जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मजा आता है ना, वो हॉबीज में, गाने में, सिंगिंग में, डांस में, तो उसको एंजॉय करके हमें मजा करना चाहिए, है ना? अच्छा, अब ये बताओ, आप लोगों को मजा आता है, कभी बुरा लगता है किसी चीज का? घर पे या स्कूल में टीचर ने कुछ कहा या फ्रेंड्स के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी चीज का बुरा लगता है कभी आप लोगों को?
2: नहीं।
0: नहीं?
2: नहीं,
0: किसी चीज का बुरा नहीं लगता कभी भी?
2: नहीं,
0: कभी नहीं लगा। युग?
5: कभी खाने में अच्छा नहीं होता इसलिए करेला का साग होता है ना।
0: क्या होता है?
5: कभी खाने में करेला का साग होता है ना इसलिए।
0: करेला? अच्छा, तो करेला होता है इसलिए बुरा लगता है आपको। और फिर क्या करते हो, खाते हो कि नहीं?
5: फिर खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा खा लेते
5: हैं। रात में दूध पी के सो जाते हैं।
0: रात में दूध पी के सो जाते हैं। अच्छा, और आपको पायल?
2: दीदी किसी से नहीं किया।
0: कभी बुरा नहीं लगता? कभी कोई डांटता है या टीचर ने कुछ बोला तभी भी नहीं?
3: नहीं लगता।
0: और आपको?
1: नहीं लगता।
0: ईश्वरी?
2: नहीं,
0: ईश्वरी को तो कुछ बुरा लगता ही नहीं कभी, है ना? बहुत समझदार है। तो हम बात कर रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों से, उनकी दुनिया के बारे में, उनकी बातों के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी आशाओं और उनके प्यार और उनके झगड़ों के बारे में। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, बात करेंगे और नई और बच्चों के साथ। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों।
8: बाय।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे काका मजा आ गया, क्या बात है। लोकल ट्रेन, अरे काका कितनी ऊंची बिल्डिंग है मुंबई में, बाप रे बाप।
1: हाँ बेटा, मैं इस मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 साल पुरानी मुंबई की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसी बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन इस मुंबई में एक रईस मुसलमान परिवार रहा करता था। अच्छा? और उसमें एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
0: अरे काका बदरुद्दीन तैयब जी तो नाम सुना है मैंने।
1: हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि पढ़ाई लिखाई करके वो 16 साल का हुआ और सन 1860 में वो बैरिस्ट्री पास करने इंग्लैंड गया।
0: अच्छा, मुंबई से इंग्लैंड।
1: 150 साल पुराना इंग्लैंड।
2: डियर बदरुद्दीन, लगता है हम इंग्लैंड में नहीं यार, हिमालय की वादियों में आ गए। हिमालय की वादियों में।
3: बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने।
2: इसलिए यार, कहाँ हमारे बंबई का प्यारा मौसम और कहाँ ये इंग्लैंड की जानलेवा ठंड यार।
3: अरे जनाब, आईने में जाकर अपनी नाक देखिए, ठंड के मारे कैसी टमाटर जैसी लाल हो रही है।
2: अरे हाँ, नाक का जिक्र किया तुमने तो मुझे याद आया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन डियर।
3: अरे किस बात के लिए भला?
2: अरे मुल्क की और अपने वालदेन की नाक ऊंची करने के लिए।
3: अच्छा अच्छा, समझा। छोड़ो भी अब उस किस्से को।
2: अरे वाह, छोड़ो कैसे, लेक्चर कंपटीशन में अव्वल आए हो अव्वल।
4: अरे वो तो बस यूं ही।
2: जिनकी मादरी जबान अंग्रेजी, उन अंग्रेजों को अंग्रेजी जबान में ही पटकनी दे दी और कहते हैं बस यूं ही। क्या अदा है मियां।
3: अरे भाई, इंग्लैंड में रहते हमें 150 साल भी तो हो गया है।
2: तुम कुछ भी कहो बदर, लेकिन कमाल तुमने किया है, केवल 150 साल। अरे सिर्फ 150 साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, बाप रे बाप, तीन तीन जबानों पर कमाल की पकड़ की है तुमने।
3: भाई वल्लाह। नहीं, कमाल कुछ नहीं यार, बस मन किया सीखने का, मेहनत की और सीख ली।
2: हम तो ना सीख पाए।
0: डेढ़ साल में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, तीनों भाषाओं पे कमांड।
1: अरे सल्लू, हमने पहले ही कहा था कि मियां बदरुद्दीन कमाल के होनार थे। अब दिमाग तो अल्लाह के फजल से तेज पाया ही था और दिमाग तेज बना भी रहा, पर नजरें कमजोर हो गई उनकी। सो मियां बदरुद्दीन को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मादरे वतन यानी हिंदुस्तान लौटना पड़ा।
3: अच्छा।
1: लेकिन सेहत ठीक होने पर बदरुद्दीन पढ़ाई जारी रखने के खातिर फिर लौट गए इंग्लैंड।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात।

0: कहिए जनाब, सेहत कैसी है?
1: थैंक्स,
2: सेहत तो बिल्कुल उम्दा है।
1: तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है यहाँ का?
0: यहाँ भी सब उम्दा ही है। कल ही फिरोज शाह मेहता जी से एक मीटिंग में हिंदुस्तान की मौजूदा हालात पर तकरीर सुनी है।
1: उमेश चंद्र बैनर्जी और वाडिया भी रहे होंगे मीटिंग में, क्यों ठीक है ना?
0: अरे भाई बदरुद्दीन, कल पहली बार मैंने दादा भाई नौरोजी को देखा।
1: हाँ।
0: भाई देखकर मैं तो हैरान ही रह गया।
1: मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक यही हुआ था।
0: अच्छा?
1: अरे कहने को तो उम्र में 20 साल बड़े हैं मुझसे।
0: अच्छा?
1: पर मिलते हैं तो हम उम्र दोस्त हो जैसे।
0: अरे अच्छा ये और सुना, मुल्क के हालचाल सुनाओ। तुम तो
1: एक गुलाम मुल्क के जैसे होते हैं वैसे है। 1858 के महारानी विक्टोरिया के ऐलान के बाद हिंदुस्तान पर हुकूमत गोरों की हो गई।
0: ठीक कहा भाई, उस दिन फिरोज शाह मेहता जी ने भी अपनी तकरीर में यही कहा था कि महारानी विक्टोरिया अब हिंदुस्तान की भी महारानी हो गई है।
1: कितनी शर्मनाक बात है ये हम सब के लिए।
0: पर यार हम लोग कर भी क्या सकते हैं यहाँ?
1: जो कुछ होना है और जो कुछ करना है वो हमें ही करना होगा। रियासतें और रियासतदार तो महारानी के इस ऐलान से कि अब उनकी रियासतों को अंग्रेज नहीं हड़पेंगे खुश है, उनसे उम्मीदें लगाना फिजूल है।
0: अरे भाई जनता गदर के बाद पहले से ही सहमी हुई है, और फिर कौन करेगा?
1: मैंने अभी तो कहा ना तुमसे कि जो कुछ करना है हमें ही करना होगा।
0: यहाँ गोरों के मुल्क में रहते हुए
1: क्या दिक्कत है इसमें? गोरे हजारों मील दूर रहकर हमारे मुल्क में घुसकर हम पर हुकूमत करने की हिमाकत कर सकते हैं, तो हम उन्हीं के मुल्क में घुसकर इस हिमाकत पर उनको सबक सिखाने का काम क्यों नहीं कर सकते?
0: वाह भाई वाह। भाई देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में आजादी का दिया टिमटिमाने लगा है।
1: नौरोजी, बैनर्जी और मेहता जी की जलाई मशाल को दिया तो ना कहो मेरे दोस्त।
0: मुल्क के हालातों से मन में बेचैनी होने लगी है, लेकिन इसका असर हमारी तालीम पर ना हो इसका ख्याल हमें रखना चाहिए।
1: बजा फरमाते हैं जिल्ले इलाही, बाखुदा तालीम बेहतर ढंग से ही ली जाएगी, कोई बेनियाजी ना बरती जाएगी।
3: आमीन
0: सुम्मा आमीन।
3: दरबार की आज की कार्रवाई बर्खास्त। शब बखैर।
4: अरे काका फिर क्या हुआ?
5: तालीम बेहतर ढंग से हासिल की बदरुद्दीन ने, और कानून की पढ़ाई पूरी करके बम्बई लौट आए।
4: फिर से बम्बई लौट आए?
5: हाँ भाई, और फिर बकाला शुरू कर दी।
4: अच्छा अच्छा।
6: क्या मैं भीतर आ सकती हूँ?
1: कौन? बेगम लाहौल विलाकुवत, हमारे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत की दरकार होने लगी?
6: दूसरे कमरों की बात और है, दफ्तर दफ्तर होता है आखिर। किसी मुवक्किल से बात चल रही हो और हम यूं ही दफ्तर में घुसे चले आए, क्या ये ठीक होगा?
1: मुवक्किल? कह तो आप ऐसे रही हैं जैसे हालात से ना वाकिफ हो। क्या समझे हम इसे कि आप भी हमारा मजाक?
6: तौबा तौबा, हम आपका मजाक उड़ाएंगे भला? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
1: अरे आप तो नाहक ही नाराज होने लगे।
6: हमारी नाराजगी बेवजह नहीं थी। खैर छोड़िए।
1: छोड़ दिया। हाँ अब बताइए मसला क्या है जो आपने दफ्तर की ओर रुख किया?
6: कुछ खास नहीं, बस यूं ही आजकल आप काफी उलझे नजर आते हैं, खासकर तब जब आप अदालत से लौट कर आते हैं। क्या वहाँ कोई परेशानी है?
1: हाँ परेशानी है, लेकिन मेरे अकेले की नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी वकीलों की है।
6: भला ऐसी कौन सी परेशानी है?
1: हाई कोर्ट में सभी जज विलायती हैं, और वे हिंदुस्तानी वकीलों के मुकाबले विलायती वकीलों को ज्यादा तरजीह देते हैं।
6: ये तो सरासर नाइंसाफी है।
1: हालात तो यहाँ तक खराब है कि तमाम काबिलियत के बावजूद ये म्युनिसिपैलिटी, रेलवे, डाक्टर और तमाम कंपनियों के मालिक हिंदुस्तानी वकीलों को विलायती वकीलों के मुकाबले कमतर समझते हैं, क्योंकि वो सारी विलायती कंपनियां हैं ना।
6: ओहो, ये तो परेशानी की बात है।
1: परेशानी सहने की भी एक हद होती है। फिरोज शाह मेहता को ही देख लीजिए, आजकल हिम्मत हार कर घर पर बैठे हुए हैं। वाडिया तो उकता कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले ही काठियावाड़ चले गए थे।
6: क्या वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है?
2: ठीक चल रहा है कि क्या बात है, वहाँ तो वो नाम और पैसा दोनों ही कमा रहे हैं।
6: आपने क्या सोचा है?
2: छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाला आदमी नहीं है बदरुद्दीन। मैं यहीं डटा रहूंगा और हालात का मुकाबला करूंगा। आई एम सन ऑफ इंडिया, भारत पुत्र हूँ मैं।
6: आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर।
2: थैंक यू।
7: अल्लाहू अकबर।
5: हाँ तो सल्लू, ऐसा था बदरुद्दीन का जज्बा मुल्क के लिए और मुल्क वालों के लिए।
8: वाह।
5: अपनी लगन, मेहनत, विषय की पकड़, सूझबूझ और सॉलिसिटर भाई कमरुद्दीन की मदद से बदरुद्दीन ने धीरे धीरे पैर जमा लिए।
8: वाह काका।
6: तो एडवोकेट बदरुद्दीन तैयब जी साहब ने आखिरकार तमाम मुश्किलातों पर फतह पा ही ली।
2: इस फतह में आप बराबरी से शरीक हैं बेगम, मुबारकबाद कबूल करें।
6: या अल्लाह, हम किस तरह शरीक हैं भला? बिना वकालत किए आपकी बीवी होने के नाते वकीलन भी कहलाती हैं जरूर, पर वो अलग बात है।
2: अरे आप साथ रहकर हौसला अफजाई ना करती तो मुमकिन है कि हम भी हालात का सामना ना कर पाते भाई।
6: इतने मक्खन के बाद तो आपके पेश की हुई मुबारकबाद दोनों हाथों से थामना पड़ेगी, वरना चिकनाई पर खड़ी फिसल कर गिर जाएगी।
2: इस वक्त कौन आ गया दाल भात में? मूसल चंद।
9: अरे भाई बद्रू,
6: बग्घी से तो मूसल चंद नहीं, आपके मित्र गोपी चंद उतर रहे हैं।
2: नाम भले ही गोपी चंद हो, काम तो मूसल चंद का ही किया है।
10: आया भाई।
11: अस्सलाम वालेकुम मियां।
2: वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए।
11: ये मूलचंद कौन है मियां? क्या कोई नया मुवक्किल है?
2: उसे छोड़ो मियां, आप तो ये बताइए आना कैसे हुआ?
11: बस तुम्हारी याद खींच लाई यार दोस्त।
2: बैठो बैठो बैठो, रहे नसीब, हुजूर ने याद तो फरमाया।
11: अरे सोचा मुलाकात के साथ दो दो बातें भी हो जाएंगी। अरे हाँ, ये बताओ कि क्या तुम्हें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉर्ज कैंप बेल के नए फितूर के बारे में पता है कि नहीं है?
2: अब गोरों की तो आदत हो गई है, कोई ना कोई नया गुल खिलाते रहते हैं। अरे अब कौन सा नया गुल खिलाया है इस कैंप बेल ने?
11: अरे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे।
2: अच्छा सुना लीजिए अब आप। बस
11: हुजूर, कैंप बेल साहब ने प्रस्ताव रखा है कि वकालत और वकीलों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए।
2: वल्ला, क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, काबिल तारीफ सच में।
11: अरे आपका दिमाग चल गया है हुजूर मेरे ख्याल से तो। अरे वो आपके पेट में लात मारने का प्रस्ताव लेकर आया है और आप हैं तो उसके दिमाग की तारीफ कर रहे हैं, भाई हद है।
2: पहली बात तो ये है कि कोई किसी के पेट पर लात मारने की कुव्वत नहीं रखता।
11: अच्छा।
2: अरे सब अल्लाह मियां का दिया हुआ खाते हैं यार। रही दूसरी बात, तो मियां बिलाशक दिमाग तो कमाल का पाया है उसने, आप कुछ भी कह लीजिए।
11: अरे मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं समझाता हूँ। देखिए, अंग्रेजों को शुभा है कि हिंदुस्तानी वकील, खासकर इंग्लैंड में पढ़े लिखे बैरिस्टर, उनकी हुकूमत के दुश्मन साबित हो सकते हैं।
11: इससे ज्यादा अहमकाना ख्याल दूसरा हो ही नहीं सकता।
2: ना, ना, ना, ना, ना, इसे अहमकाना ख्याल समझना आपकी भूल है हुजूर। कैंपबेल बहुत तेज दिमाग शख्स है, इसीलिए आने वाले समय के खतरों को वो पहले ही पहचान चुका है।
11: मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाया हूँ यार।
2: देखिए, वकील जनता के हिमायती बनकर जनता को उनके हकों के बारे में जगा सकते हैं।
11: अच्छा,
2: ठीक है। बहस मुबाहिसे और तकरीरों में हम वकील ही तो माहिर होते हैं मियां।
11: वाकई कमाल का दिमाग पाया पट्टे ने।
2: नमूने के लिए देख लीजिए, बंगाल में जो उमेश चंद्र बनर्जी, मनमोहन घोष और लालचंद घोष कर रहे हैं, तीनों वकील,
11: और यहाँ मुंबई में फिरोज शाह मेहता, तेलंग और खुद आप जनता को जगाने का काम जो कर रहे हैं, तीनों वकील।
2: अब मेरी छोड़िए, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ।
11: अरे खास ही कर रहे हैं आप जनाब, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के हर आंदोलन के पीछे आप वकीलों का ही तो हाथ है, और किसका है?
2: लगता है मियां अंदर करवा गई तो मानोगे।
11: अच्छा चलते हैं, तो खुदा हाफिज।
2: अरे जा रहे हो?
11: अरे
2: अरे तो चाय
11: नहीं, नहीं
2: थोड़ा सा
11: बस।
2: अरे
5: हाँ तो सल्लू, देखा तूने हाँ काका, बदरुद्दीन सिद्धांत के पक्के और आत्मसम्मानी शख्स थे, ये तो दिखा काका।
7: बहुत गंभीर सौम्य बदरुद्दीन साहब को किसी किस्म की कोई लत नहीं थी, सिगरेट शराब से कोसों दूर।
5: अच्छा।
7: सारे काम नियम पूर्वक करते और समय के पावन थे, आत्मसम्मान तो जैसे कूट कूट कर भरा था उनमें।
5: वाह।

0: ये मिस्टर पार्सन क्या समझते हैं अपने आप को?
1: क्या हो गया मिस्टर पार्सन को और आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
0: अरे नया आया है बम्बई में जज बनकर, इसलिए सोचा कर्टसी विजिट दे आऊं।
1: ठीक किया आपने।
0: पर मिस्टर पार्सन ने कहा ठीक किया?
1: आखिर किया क्या उसने?
0: कहने लगा इस वक्त बिजी हूँ।
1: अरे ये तो सरासर बदतमीजी है।
0: वही तो मैं कह रहा हूँ।
1: पता नहीं ऐसे लोगों को क्या देखकर जज बना दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने।
0: अरे रंग देखकर, गोरा होने से बड़ी और कोई काबिलियत नहीं होती उनकी नजर में।
1: ओह इसीलिए आप इतनी जल्दी चले आए?
0: मैंने भी कह दिया बहुत काम रहते हैं मेरे पास, बहुत बिजी हूँ, चल दिया वहाँ से मैं।
1: ठीक किया आपने।
0: उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था शायद, इसीलिए मेरे पीछे पीछे बग्गी तक चला आया और लगा घोड़ों की तारीफ करने, पर मैंने उसकी बातों पर कान नहीं दिया, चला आया वहाँ से मैं।
2: वाह काका, बड़े स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन साहब।
3: हाँ सल्लू, ऐसे स्वाभिमानी थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। बकाला धीरे धीरे जमने लगी थी, अब उन्होंने सार्वजनिक कामों में भी खुलकर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सन 1872 में एक नया कानून पास हुआ जिसके तहत 1873 में बम्बई कॉरपोरेशन के कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ।
4: अरे बदरुद्दीन साहब आदाब अर्ज़ है, आइए।
5: आदाब अर्ज़
4: है। बदरुद्दीन साहब सुना है आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं?
5: ठीक सुना है आपने।
4: हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए।
5: अरे हम तो सिर्फ खड़े हो रहे हैं मियाँ, सारे काम तो आप लोगों को ही संभालने हैं।
2: अरे इत्मीनान रखिए, माशाल्लाह फतह हमारी होगी।
5: आमीन आमीन।
4: बदर साहब तो इजाजत दीजिए, आज ही से काम में लगना होगा।
3: हाँ तो सल्लू, बम्बई कॉरपोरेशन का चुनाव उन्होंने शानदार तरीके से जीता, फिर 1882 बम्बई व्यवस्थापिका परिषद में नामजद हुए।
2: अरे वाह।
3: पर खराब सेहत होने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, पर जब तक रहे तब तक भारतीयों के अधिकारों की जोरदार तरीके से वकालत करते रहे।
2: वाह वाह।
0: बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदर होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ पड़ी है।
1: सदर हैं तो जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी होंगी ही।
0: ठीक फरमाती हैं आप, पर इस बार एक अलग किस्म की और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन के कंधे पर आ पड़ी है।
1: ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है भला जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है?
0: परेशान नहीं है हम, परंतु जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है ना, जिसे अच्छे से निभाना होता है। एसोसिएशन के झंडे तले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन भी होगा और चुनाव भी।
1: फिर तो आपकी मसरूफियत आने वाले दिनों में बहुत बढ़ जाएगी।
0: ठीक फरमाती हैं आप।
1: हमारा तो कहना है कि जो भी करना है जरूर करिए, पर पहले खुद की सेहत का ख्याल रखिए।
0: अच्छा अच्छा, आज आपने वो आपकी हमेशा वाली कहावत नहीं दोहराई, क्या है वो? एक से
1: हाँ,
0: क्या
1: एक से सेहत हजार नियामत। हाँ हाँ, उड़ा लीजिए मजाक।
3: इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए खूब धूमधाम से तैयारियां की गईं, पर आखिरी वक्त बदरुद्दीन साहब को किसी काम से कैम्बे जाना पड़ा और वे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग न ले पाए। दूसरे अधिवेशन में भी वे उपस्थित न रह पाए क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी।
1: आ गए आपके दोस्त।
0: आइए आइए, पूरे 3.5 मिनट लेट हैं आप, सुनाइए क्या हाल है?
4: 3 मिनट और 41 सेकंड। खैर हमारे हाल चाल तो ठीक है, पर सुना है अंग्रेजों को ठीक नहीं है।
0: जो सबके हाल खराब किए रहते हैं उनके हाल खराब है क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया?
4: ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है, कांग्रेस का गठन हुआ है
0: तो
4: अरे अंग्रेज सरकार फिक्रमंद हो गई है, उन्हें शक होने लगा है कि कांग्रेस आगे चलकर उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए।
0: अरे इन गोरों को तो हम हिंदुस्तानियों की हर बात पर शक होता है,
4: और इस शक का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं होता है।
0: अरे इलाज करना किसे है, कांग्रेस के अपने मकसद हैं और वो उन मकसदों के लिए काम करेगी।
4: अरे सुनने में तो और बहुत कुछ आया है।
0: और क्या सुना है आपने?
4: ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी पुरानी फूट डालो राज करो वाली नीति चला रही है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ।
0: 100% सच, 100%।
4: क्या कह रहे हो?
0: लॉर्ड डफरिन बम्बई आकर मुझसे मिलकर गए हैं, दोनों कौमों को बांटने वाली भड़काऊ बातें, बोले कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है और हम लोग कैसे झांसे में आ गए। देखिए
4: आपने क्या जवाब दिया?
0: हमने साफ साफ कह दिया कि मियां डफरीन साहब आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, और बेहतर तो यही होगा कि इस मकसद से आप कहीं और बात करने न जाएं, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो।
4: आपकी बात समझ में आई या यूं ही सर के ऊपर से निकल गई?

0: देखो मियां, कुछ तुम्हें 12 साल बाद भी नलकी से बाहर निकालो तो टेढ़ी ही निकलती हैं। और कुछ मर्दूत तो नलकी को भी टेढ़ा कर देती हैं।
1: भैया दुम वाली मिसाल तो खूब दी आपने।
0: कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सेहत खराब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, पर पता चला कि उसमें मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था।
1: हाँ भाई, हमें भी इस बात का पता चला था और सुनकर बहुत अफसोस हुआ था इस पर।
2: कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने बड़ा प्रभावशाली, ओजस्वी और मर्मस्पर्शी भाषण दिया। जाति के आधार पर आपस में भेदभाव ना करने की सलाह दी और बंटवारे के खतरों से आगाह किया।
3: कौन है भाई, कौन है?
4: अरे साहब, आपकी चिट्ठी आई है पोस्टमैन ने।
3: ओ आता हूँ, ठहरो एक मिनट, मैं जाता हूँ, तुम बैठो।
4: ले लीजिए सर।
3: कैसे हो?
0: डियर मिस्टर बदरुद्दीन तैयब, प्लीज मेक ऑफ द ऑफ जज
3: बेगम, बेगम मुबारकबाद। अरे भाई, अदालत में एक जगह खाली है जज की, सरकार ने हमें जज बनने का ऑफर दिया है।
5: क्या? अरे सच में?
3: खत का मजमून तो यही कह रहा है भाई।
5: फिर क्या सोचा है आपने?
3: अब सोचना क्या है, कबूल करेंगे और क्या।
5: क्या अंग्रेज सरकार की मुलाजिमत करेंगे?
3: बेगम, इसका दूसरा पहलू देखिए। इन गोरे जजों के हाथों तो हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलने से रहा। कम से कम एक काला हिंदुस्तानी दूसरे काले हिंदुस्तानियों को इंसाफ तो दिला पाएगा।
5: बात तो एकदम सच है, पर क्या ये मुमकिन होगा?
3: देखिए बेगम, आदमी उसूलों का पक्का बना रहे बस, फिर कुछ नामुमकिन नहीं रहता। किसी ताकत या खतरे से टकरा जाने की ताकत आ जाती है उसमें। कल ही अपना जवाब भिजवा दूंगा।
5: कल क्यों, आज क्यों नहीं? भूल गए पुरानी सीख, काल करे सो आज कर।
4: अरे वाह, तो काका बदरुद्दीन तैयब जी जज बन गए।
2: और थोड़े ही समय में बदरुद्दीन तैयब जी साहब जज के रूप में खासे मशहूर हो गए।
4: वो तो होना ही था काका। क्या बात
2: है, काबिलियत और स्वतंत्र विचारों के दम पर उन्होंने अच्छे अच्छों को कायल कर दिया। उनकी निष्पक्षता और न्याय प्रियता की चर्चा हर कहीं हर कोई करता था।
4: वाह।
1: अरे कमाल कर दिया बदर साहब, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। काफी लोगों की निगाहें लगी थी इस मसले पर, किस पेचीदा मामले पर। देखें जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं।
0: हमें भी इस बात का भली भांति एहसास था।
1: अच्छा, ऐसे फैसले करते समय कुछ घबराहट होती है क्या?
0: यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होता।
1: अगर हम आपकी जगह होते तो हमें तो घबराहट होती, क्यों भाई?
0: हमारे ख्याल से एक बात बहुत साफ होनी चाहिए हर जज के दिमाग में।
1: और वो क्या है?
0: यही कि इंसाफ केवल कानून की किताबों में ढूंढने से नहीं मिलता, क्योंकि उनमें केवल दफाएं और उन दफाओं में दी जाने वाली सजाएं होती हैं बस।
1: तो इंसाफ कहाँ रहता है?
0: आपके साफ दिलो दिमाग में रहता है। दिल की गहराई से आवाज उठे और उसकी ताईद आपका दिमाग भी करे तो समझिए कि आप इंसाफ की राह पर हैं।
2: वकालत और फिर जज का काम करने के अलावा बदरुद्दीन साहब ने राजनीति, शिक्षा और समाज सुधार के कामों को भी बखूबी किया।
1: अच्छा।
2: जज रहते हुए भी उनकी इजलास में एक बार लोकमान्य तिलक की जमानत का मामला भी आया।
1: अरे वाह। अच्छा। लोकमान्य तिलक।
2: हाँ सुनो, तो किस्सा कुछ यूं था कि जून 1897 में रैंड नाम के एक अंग्रेज की हत्या कर दी गई।
1: आदावर से बदर साहब, और क्या हाल चाल है?
0: आदावर से, आजकल तो ये रैंड मर्डर का मामला बहुत गर्म है
1: भाई। पता चला है कि अंग्रेज बहुत बौखलाए हुए हैं, हुकूमत के खिलाफ इसे साजिश समझ रहे हैं।
0: ठीक कहा आपने, ये अशांति और उत्तेजना फैलाने के इल्जाम में सरकार ने तिलक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है।
1: लेकिन ये रैंड मर्डर से तिलक जी का क्या संबंध?
0: बात आपको समझ में आ गई है पर सरकार को नहीं मिया।
1: मामला क्या है?
0: अरे देखिए, तिलक एक अखबार निकालते हैं, केसरी, पता है ना आपको?
1: जी जी जी।
0: तिलक ने शिवाजी मेले में शिवाजी द्वारा की हत्या को उचित ठहराने वाले भाषण दिए।
3: हाँ, और यही भाषण केसरी में छाप दिए। माना मिल गया सरकार को।
0: सरकार तो नाइंसाफियों की हदें पार कर रही है।
3: तिलक की जमानत की दरखास्त दो बार खारिज की जा चुकी है। तीसरी बार मेरे सामने मेरी अदालत में जमानत के लिए दरखास्त दाखिल की गई है, मालूम है आपको?
0: तीसरी बार? अरे साहब, आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी ना?
3: बिल्कुल नहीं, कल जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाना है।
2: और अगले रोज फैसला सुनाया बदरुद्दीन तैयबी साहब ने।
6: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
3: तिलक एक सज्जन और विद्वान पुरुष हैं, लिहाजा सुनवाई के वक्त वे अदालत नहीं पहुंचेंगे, ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं बनती। जमानत मंजूर न होने की दशा में इंसाफ का गला घुट जाएगा, क्योंकि मुमकिन है कि एक महीने बाद वे बेगुनाह साबित हो जाएं। इसीलिए जमानत मंजूर करना ही न्याय संगत होगा।
2: निष्पक्ष न्यायाधीश के रूप में बदरुद्दीन की ऐसी धाक थी सल्लू कि इस फैसले के खिलाफ बोलने का साहस किसी को ना हुआ, अंग्रेजों को भी नहीं हुआ। इस महान देशभक्त और समाज सुधारक ने 11 साल जज के रूप में गुजारे और 19 अगस्त 1906 को इंग्लैंड में हार्ट फेल से वे गुजर गए। सारा देश शोक में डूब गया। हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको भेजना है एक प्रेरक स्लोगन, अब हमें आज्ञा दीजिए। इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर, कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं आपका होस्ट और आज के शो का आरजे शरद, और मेरे साथ है एक और बेहतरीन शख्सियत और हमारे देश के कुछ जुनूनियों के साथ जुड़े हुए मिस्टर अजीत। अजीत जी जो हैं वो मूलतः उत्तर प्रदेश से आते हैं, परंतु आज कल हमारे देश के पूर्वी राज्य उड़ीसा के भुवनेश्वर में एज अ एनएसएस ऑफिसर मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। और अजीत जी की भी एक जर्नी है और उनका भी एक जुनून है, आइए उनसे जानते हैं वो क्या जुनून है। परंतु आप जो श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं वो

बिल्कुल, देखिए हर एक युवा की एक जर्नी है, एक यात्रा है, और जो स्पेशली मेरी यात्रा है वो कहीं ना कहीं एक कॉलेज से स्टार्ट हुई, क्योंकि हम सब मैक्सिमम अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, बहुत सारे जो युवा हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और अक्सर हम इन सब संशय में रहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हमारी शिक्षा अच्छी नहीं है, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, हम उन लोगों से थोड़ा अलग हैं। लेकिन हमने ये जो सीखा कि जब हम हायर एजुकेशन के लिए एक छोटे से गांव से निकल के शहर की तरफ जाते हैं तो हमें एक कॉलेज की लाइफ मिली। कॉलेज की लाइफ में हमने एनएसएस को ज्वाइन किया, और स्पेशली उस एनएसएस को ज्वाइन करने का जो मेन मकसद था कि वहां पर हमें ये समझ में आया कि जो एनएसएस सिखा रहा था व्यक्तित्व माध्यम से हमारे कैसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, हमें किस तरह से जो सामाजिक कुरीतियां हैं समाज में हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, यानी कि एनएसएस ने हमें वो सारी चीजें वहां पर सिखाई और बताई कि एक यूथ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ किसी यूथ का लीडरशिप कैसे बिल्डअप हो, जब आप में लीडरशिप बिल्डअप होगी तो फिर आपका रोल आता है कि आपका इस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति। ये बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे जिसका जवाब मुझे उस कॉलेज लाइफ में एनएसएस ने दिया। एनएसएस में क्या है कि हम सबसे पहले एक टीम में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम की भावना है टीम बिल्डिंग, तो जब टीम में रहते हैं तो किसी भी टारगेट को अचीव करना आसान होता है। और उसके साथ साथ जो हमें एक व्यक्तिगत तौर पे मैं जो मेरे लिए बेहतर रहा, जो मैं अपने आप में फील किया कि एक गांव से आया हुआ छोटा सा एक सामान्य सा युवा जिसने एनएसएस के माध्यम से सीखना शुरू किया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर हमने अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस किया, अपनी वो सारी चीजें जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हमारे अंदर लीडरशिप बिल्डअप हो, वो सारी चीजें हमें एनएसएस के माध्यम से सीखने को मिली। हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उनको एक निखारने का मौका मिला। कोई अच्छी डिबेट करता है, कोई अच्छी एसे राइटिंग करता है, यानी कि कोई किसी के अंदर राइटिंग स्किल है, वो सारे स्किल्स को इनहेंस करने का एक प्लेटफॉर्म मुझे कॉलेज में मिला, जिसके माध्यम से जो एक होता है कि एक जो शर्मिला स्वभाव है, हम हर चीज में संकोच करते हैं और हम किसी से दूसरों की अपनी बातों को नहीं कह पाते, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस और जो लीडरशिप आया उसके माध्यम से एनएसएस ने ये हमें एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात को रख पाए, सीख पाए। और होता ना कि एक यूथ को, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सिर्फ हमारा एकेडमिक नॉलेज तक ही अगर सीमित रहेगा तो शायद हम आगे लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एकेडमिक नॉलेज तक अपने आप को सीमित ना करके इस देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, दूसरा हम एक एक्टिव सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो जो एक्टिव सिटीजनशिप है तो कहीं ना कहीं एनएसएस और माई भारत जो कि हमारा पहले नेहरू युवा केंद्र संगठन था, इन दोनों ने बहुत सारे असंख्य युवा उनके माध्यम से निकले जिन्होंने अपने पर्सनालिटी को डेवलप किया, लीडरशिप को बिल्डअप किया, उनकी एक समाज में एक अच्छे युवा के तौर पर उभर के आगे आए। तो ये बहुत सारी चीजें थी, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो लोकतंत्र में वोटर अवेयरनेस की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे महिला हिंसा के विरुद्ध जागरूकता की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर एक युवाओं को बात रखने का मौका मिला, एक जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ कि नहीं हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज को करते हुए आगे बढ़े, और उसी का नतीजा रहा, क्योंकि जब किसी काम को आप लगन से, जिम्मेदारी से, अच्छे से करते हैं तो उसके परिणाम भी आपको मिलते हैं। तो वही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एनएसएस होता क्या है कॉलेज टाइम में, जस्ट एक किसी सुझाव पे मैंने उसको ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ जो इसका विजन था, ये किस लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर और महात्मा गांधी जी का जो विजन था कि हमारा युवा सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने, हमारा जो युवा है उसकी एक सामाजिक समझ हो, वो समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझे, राष्ट्र में अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि आज हम बोल रहे हैं कि हम विश्व के सबसे युवा देश हैं, लेकिन विश्व के सबसे युवा देश होने से पहले हमारा वो युवा कर क्या रहा है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, हमने उसकी परवरिश कैसी की है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है या नहीं। तो हमें भी एनएसएस की उस पार्ट का, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला, तो शायद मेरे लिए वही लॉन्च पैड था, मेरे लिए वो शुरुआती दौर था जहां से हमने बहुत सारे कार्यों को करते हुए अपने आप को डेवलप किया। और एनएसएस का भी पर्पज है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ यूथ थ्रू कम्युनिटी सर्विस, यानी हमारे यूथ का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमारा जो माध्यम है वो सामुदायिक सेवा है, राष्ट्र सेवा है, समाज की जिम्मेदारियों के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो ये जो

0: जिम्मेदारियां हमें मिली, वहीं से हम निकल के आगे बढ़े। और बहुत सारी जर्नी है, बहुत सारे काम है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, लोकतंत्र, क्योंकि वोटर अवेयरनेस, मुझे याद है 2012 और 2014 के जब इलेक्शंस थे तो वोटर अवेयरनेस में पहली बार एनएसएस को इन्वॉल्व किया गया था और बहुत सारे युवाओं ने इस जिम्मेदारी को संभाला। तो ये सारी चीज़ें, पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारे डिबेट्स होते थे, युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए युवाओं की बात युवा करेगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर युवाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने कि युवा विकास के लिए क्या होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके करियर काउंसलिंग के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के लिए, यानी कि अपने इस देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए भी कुछ काम करें। तो बहुत सारे काम हैं जिनको हम लोगों ने कई माध्यम से करने का मौका मिला और काफी सफल कार्यक्रम भी रहे हैं।
1: जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो आपने अपनी बातचीत में हमें बताया कि एनएसएस की क्यारी में आपका जो जुनून का पौधा है वो लग गया। अब वो जुनून क्या था और आप क्या कर रहे थे इस यात्रा के बीच में, वो हम जानना चाहेंगे।
0: जी,
1: क्या मिशन आपने अपने हाथ में लिया?
0: जी बिल्कुल। देखिए कॉलेज टाइम में, बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, तो हमारे था कि कॉलेज में जब मैं सबसे पहले, मेरा एक ही मकसद विशेष रूप से रहा कि हम स्पेशली ग्रामीण युवा जो हैं उनकी अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके अंदर लीडरशिप और वो अपनी बात को कैसे रख पाएं, ये दो चार अहम मुद्दे रहे। तो जिसके लिए हम लोगों ने युवा संवाद का सीरीज चलाया था। वो युवा संवाद की सीरीज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी हुआ, सभी विश्वविद्यालयों में भी हुआ, क्योंकि ये सीरीज हम लोग 2014 से चला रहे थे। उसका पर्पज सिर्फ ये था कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं या जिले में, जो क्योंकि हर बच्चा प्रदेश की राजधानी में नहीं आ सकता, हर बच्चा अपनी बात को सोशल मीडिया पे नहीं रख सकता, तो ऐसे बहुत सारे युवाओं को प्लेटफॉर्म देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको पहचानना और पहचानने के बाद उनको एक दूसरे से लिंकिस करना, यानी एक ब्रिज का काम करना। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, करियर काउंसलिंग की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के एक दिन का युवा संवाद प्रोग्राम करते थे। उस युवा संवाद कार्यक्रम में पूरे जनपद के सारे युवा इकट्ठे होते थे, वो अपनी समस्याओं पे बात करते थे कि हमारे प्रदेश में क्या समस्या है, चाहे वो खेल को लेके, शिक्षा को लेके या हमारे करियर को लेके, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको वो युवा अपने सामने रखते थे। और वहां पर हम लोग कुछ जिम्मेदार ऑफिसर्स को, कुछ हमारे जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाते थे, उनके माध्यम से उनको निराकरण करने का प्रयास किया जाता था। इससे ये होता था कि जो युवा है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी भी युवा को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए और उसको ये बता दिया जाए तो वो अपनी समस्या का निराकरण स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, कई जगह स्पोर्ट्स में बच्चे जाना चाहते हैं, उनको पर्याप्त संसाधन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, लेकिन शायद सरकार भी इसके लिए अच्छा काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, बच्चे भी इच्छुक हैं, बस उनके बीच लिंकेज नहीं था, उनके बीच ये कनेक्टिविटी नहीं थी। हम लोगों ने युवा संवाद को इसके बीच ब्रिज बनाया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य रहा कि मैं वोटर अवेयरनेस को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उस दौर में बहुत सारे जो हमारे नगर थे, जो क्षेत्र थे, ऐसे जो शहरी इलाके थे, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन था, बहुत कम परसेंटेज था लोगों का, ये था कि वोट करने जाएंगे तो अच्छा है, नहीं जाएंगे तो अच्छा है, मेरे करने से क्या होगा। तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन चला के पूरे युवाओं के साथ, लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनाना, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना, ये लोग के साथ कोऑर्डिनेट करके, यानी कि डेमोक्रेसी में हमारे जितने भी लोग हैं उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में जब लोग नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व होगा और उससे हमारी पूरी डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसको लेकर के आपको मैं लखनऊ का उदाहरण दूँ, तो जो 2012 में 39% वोटिंग हुई थी, जो कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 55% वोटिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का पार्ट था, डोर टू डोर कैंपेन का पार्ट था, उन युवाओं की तरफ से जो गुजारिश की गई थी, जो निवेदन किया गया था लोगों से, उसका परिणाम था। लोगों ने उसको महसूस किया कि क्यों ये युवा सड़क पर उतर के डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। निवेदन बस इतना था कि आप डेमोक्रेसी में अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपना रोल निभाएं और इस लोकतंत्र को स्वस्थ और अच्छा बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहीं। के माध्यम से लोगों ने रहा। दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा था बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो हम लोग इन्वायरमेंट पे काम कर रहे थे, लखनऊ में गोमती रिवर है उस पर काम कर रहे थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे टारगेट एरियाज में जा करके प्लांटेशन करना, वहां पर लोगों को एडॉप्ट कराना प्लांट। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अगर आज हम देखेंगे तो 8 साल 10 साल के बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। तो ये एक युवाओं को कनेक्ट करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम रहा, हम लोग उनको कुछ सिखा पाए, कुछ बता पाए। और आज बहुत सारे युवा, असंख्य युवा हैं जो आज चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, उस दौर में जो उन्होंने काम किया था उनके अंदर का वो वॉलंटियरिज्म, उनके अंदर की वो सामाजिक कार्य, उनके अंदर का वो राष्ट्र भावना, जो राष्ट्र भावना उनके अंदर जागृत हुई थी वो आज भी उनके अंदर जीवित है। और खुशी की बात यह है कि हमने कॉलेज के टाइम से जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, अभी हमने 2 साल पहले एक अलमनी ग्रुप भी बनाया कि जो लोग भी उस टाइम एक्टिव थे एटलीस्ट वो उनके अंदर का जो वॉलंटियरिज्म की जैसे हमने बात की, जो उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर जो जुनून जिंदा है, उसको और अच्छा बनाने के लिए उनके कार्यों को अभी भी हम लोग एक वॉलंटियरिज्म को कैसे किया जाए उसका एक बेहतर कार्यक्रम अगर आप देखेंगे। हमारा जो ग्रुप था, अब ये देखिए जो कॉलेज टाइम में काम कर रहे थे उनकी जर्नी 2014-15 से लेके हमारा जो कोविड टाइम था, कोविड में बहुत अच्छे से पूरा ऑल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया था। उस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का पर्पज ही यही था कि जहां पर भी समस्याएं हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेके, वहां पर ये ग्रुप मदद करेगा। और उस ग्रुप में हमारे सारे एक्सपीरियंस लोग थे, जो युवा थे जिनकी प्रशासन के साथ अच्छी जान पहचान थी, जिनको मेडिकल के साथ था, जो मीडिया के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन था, जिनको सोशल एक्टिविस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन था, यानी ये वो लोग थे जिनका सभी के साथ एक अच्छा नेटवर्क था, जो इमीडिएट लोगों को मेडिसिन, लोगों को दवाइयाँ, खाने का सामान, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा ये बहुत आसानी से पहुंचा पा रहे थे। तो इसका ये फायदा हुआ कि जब हमारा पहले से कोई लिंकेज होता है, उस ग्रुप को हम जीवित रखेंगे, उसको एलमनी में तब्दील कर देंगे, तो उसका जो प्रभाव होगा वो किसी न किसी तरह से वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि आप किसी नए बंदे को टीम में जोड़ेंगे उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो पुराने ट्रेंड लोग हैं, ये हमारी एक वर्क फोर्स ऐसी थी जो ट्रेंड वर्क फोर्स थी, जो जुनूनी लोग थे जिनके अंदर वॉलंटियरिज्म था, इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और वो ग्रुप आज भी वैसे ही एक्टिव है। किसी भी दैवीय आपदा आए, कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी ऐसे युवाओं की मुद्दों की बात हो, वो ग्रुप हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ आगे आता है और अपनी जिम्मेदारी को निभाता है।
1: जी बेहतरीन आपने बात रखी और आपने वोटर अवेयरनेस में भी काफ़ी भूमिका रही, और आपने शुरुआती दिनों में बताया कि युवा संवाद को लेकर भी आपने पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम की शुरुआत की। तो ये जो युवा संवाद कार्यक्रम था, ये राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित था या आपने इसको तैयार किया और राज्य सरकार ने इस पर सहमति दी, और कैसा पार्टिसिपेशन रहा और क्या विशेष बातें इस युवा संवाद कार्यक्रम से निकल कर आई?
0: ये जो उपज थी ये कहीं ना कहीं अवार्डीज की उपज थी, जो युवा संवाद का पर्पज था उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट अवार्डी थे, उत्तर प्रदेश के सभी नेशनल यूथ अवार्डी थे और एनएसएस के नेशनल अवार्डी थे। इन अवार्डीज के माध्यम से, क्योंकि जो भी अवार्डी है तो मुझे लगता है कि समाज का ये वो हिस्सा है जिसको सरकार ने अवार्ड दिया है, अवार्ड देने के साथ उसकी समाज में और जिम्मेदारी बढ़ा दी है, उस पर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको अवार्ड के बाद अब आप जिम्मेदार हो गए हैं, आपकी और भूमिका बढ़ गई है। तो हमने उसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए, मैं बताया कि आपको युवा संवाद, राज्य सरकार ने हमें वित्तीय सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें टेक्निकल सपोर्ट, वो सारी हमें सरकारी विभागों से भी मिला। अलग अलग क्षेत्र के हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे राज्य के जो युवा कल्याण विभाग हैं उसमें एनएसएस भी इन्वॉल्व था, उसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन भी इन्वॉल्व था। तो ये बहुत सारे लोग थे, क्योंकि देखिए जब आप किसी काम को आगे करने के लिए बढ़ते हैं तो होता है कि आप किसी मिशन को आगे लेके बढ़िए, सपोर्ट करने वाले, जब आपकी मनसा अच्छी है, आप अच्छे मिशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपके साथ कई हाथ आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो उसका पर्पज यही था। तो हमें सरकार से भी कई सपोर्ट मिले, क्योंकि ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलता था। हमारा ये पर्पज था कि जो उन युवाओं की जो आवाज है, यानी कि युवाओं की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं एक जैसी तो नहीं हो सकती हैं, उनकी समस्याएं डिफरेंट डिफरेंट थी, उनको स्पोर्ट्स का, यूथ का, स्किल से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, करियर से लेकर के, है ना, ऐसे बहुत सारे दिव्यांग साथी थे जिनको उनकी स्किन से रिलेटेड, उनके स्किल से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी। तो हम लोगों ने युवा संवाद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर कोई भी युवा, बस हमने कंडीशन ये रखी थी कि वो युवा होना चाहिए, जो हमारी युवा की डेफिनेशन है 15 से 29 साल, हमने ये डेफिनेशन में कवर किया कि वो युवा अपनी आकर के इस प्लेटफॉर्म पर बात रख सकता है। और स्पेशली हम लोगों ने उसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, एक नशा उन्मूलन को लेकर के हम लोगों ने बात रखी थी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि युवा जो है नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के एक मैसेज था। दूसरा, विज़न 2047 को लेकर भी बातें रखी गई कि हमारा विज़न क्या होना चाहिए, हमारे अपने भारत का 2047 का विज़न है, हमारे प्रदेश का भी एक विज़न होना चाहिए, हमारे जनपद का भी एक विज़न होना चाहिए, और उस जनपद से पहले हमारे उस युवा का भी एक विज़न होना चाहिए कि वो अपने आप को 2047 में कहाँ देखना चाहता है। तो ये इस विज़न के साथ हम लोग बहुत सारे युवाओं को रोजगार के साथ, उनको बहुत सारे लोगों को रोजगार से जुड़ना था, कुछ लोगों को स्टार्टअप से जुड़ना था, हम लोगों ने उनको स्कीम्स के थ्रू भी कनेक्ट किया, क्योंकि जो हमारे कई अवार्डी साथी हैं जो स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत अवार्डी हैं जो पॉलिटिकल में हैं, जो कई लोग हैं जो सरकारी सेवा में हैं, कई लोग हैं जो स्पोर्ट्स में हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप था जो हर माध्यम से लोगों को मदद कर सकता था, और हमने जनपद वाइज ऐसे एक ग्रुप को भी कनेक्ट किया, यानी कि जो रिलेटेड ऑफिसर्स थे, हमारे यूथ के ऑफिसर्स हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, हमारे स्किल के हो गए, हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो गए, ऐसे लोगों को हम कनेक्ट करते थे ताकि हम उस जिले की समस्याओं को उस जिले में ही सॉल्व कर सके। क्योंकि मुद्दा कोई भी हो, अगर आप उस जनपद की छोटी सी समस्या को उस जनपद में सॉल्व करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो वो प्रॉब्लम स्टेट तक आएगी, वो प्रॉब्लम नेशन प्रॉब्लम बनेगी। तो हम लोगों ने इस युवा संवाद के माध्यम से जो सपोर्ट किया, जो चीज़ें हुई उसमें हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी यूथ के बीच काम कर रहे थे। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते थे जहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कॉस्ट नहीं आती थी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो हमें वहाँ पर अरेंजमेंट करते थे, लाइक युवा आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनको कुछ फूड अरेंजमेंट चाहिए, पीने का पानी चाहिए। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, लेकिन इसको जो लीड करने वाली टीम थी वो अवार्डीज की टीम थी, एक अवार्डीज का पूरा फोरम था जिसने इसको लीड किया। और आफ्टर दैट आप खुद उसके साक्षी हैं कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने भी NSS और NYK के माध्यम से रिसेंट अभी 2-3 साल पहले कई तरह के युवा संवाद प्रोग्राम वो लोग लेके आए। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिकमेंड किया था कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम है, इनको टाइम हमारे तत्कालीन मंत्री थे श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, उनको भी हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट के साथ सौंपा था कि अगर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं युवा को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, और ये युवा की आवाज़ वो आवाज़ है जो शायद हमारे देश के जेन्युइन मुद्दे हैं, जिस पर सामाजिक रूप से मतलब वो युवा चाहता है कि इस पर काम हो। तो हमने एक कनेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला, सरकार का भी सहयोग मिला, और उसके माध्यम से हम बहुत सक्सेस तो नहीं हुए, लेकिन हम ये कह सकते हैं काफ़ी सारे युवाओं को मदद मिली, एक नई राह मिली, और वो नई राह आज कहीं ना कहीं वो बहुत सारे युवा अपनी कहानियों को आगे लिख रहे हैं, अपनी जो रूटीन लाइफ है, जो अपनी चीज़ें हैं उसको आगे बहुत अच्छे से चला रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया अजीत जी, इस पूरी यात्रा के दौरान आप पिछले दिनों गंगा प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे हैं और एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर आप उसको भी देख रहे थे, तो उसमें क्या अनुभव रहे और क्या विशेष बातें रही और आपको क्या सीखने को मिला, आपकी क्या समझ बनी?
0: जी देखिए, बहुत अच्छा मौका मिला मुझे, क्योंकि इस जो परियोजना है, क्योंकि वो परियोजना जहाँ से गंगा निकलती है उस क्षेत्र के लिए थी, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है जो गंगा कवर करती है, जहाँ पर 24 जिले थे, उन 24 जिलों में इस परियोजना का नाम ही था नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता, यानी कि ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो कैसे सक्सेस हो और उसमें युवाओं का क्या इन्वॉल्वमेंट हो। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, शुरुआत में हर गांव में गंगा दूत बनाए जा रहे थे, गंगा के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव थे उनमें 2-2 युवाओं को गंगा दूत बनाया जा रहा था, उन गंगा दूत के माध्यम से गतिविधियां आगे की जा रही थी। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि क्योंकि मैं राज्य स्तर पर था, हमारे सभी जनपद में जिला परियोजना अधिकारी उस कार्य को देख रहे थे, और अच्छी बात ये थी कि ये परियोजना नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ संचालित थी, क्योंकि युवा तो जहाँ पर हमारा, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र संगठन ऑलरेडी युवाओं के लिए काम कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में ये प्रोजेक्ट शायद सरकार ने इसीलिए ही NYKS को दिया था क्योंकि युवा कनेक्ट है और इस परियोजना में युवा को इन्वॉल्व करना था। तो देखिए युवा के लिए जो सबसे अच्छा मेरा अनुभव रहा कि युवा सीधे गंगा स्वच्छता के लिए, किसी रिवर स्वच्छता के लिए या पर्यावरण के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होने वाला। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, लेकिन जो चीज़ें सक्सेस हुई, युवा ये चाहता है क्योंकि आज का जो युवा है वो बड़ा होशियार है, उसको ये लगता है, वो फर्स्ट ये सोचता है मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे लिए कैसे लाभकारी होगा। और सवाल भी अच्छा है क्योंकि हम अगर किसी कार्य में जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये सवाल घूमना भी चाहिए कि इस कार्य से मुझे क्या मिलेगा। वो देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्रायोरिटी जो सवाल आता है कि मेरे लिए क्या। तो हम लोगों ने इस परियोजना के माध्यम से जो युवाओं को सेलेक्ट किया था, आपको बताएं उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 के आसपास युवा थे जो गंगा दूध के लिए सेलेक्ट किए गए थे। तो इनको स्पेशली ये था कि पहले इनको इनके बिहेवियर को चेंज किया जाए, इनके स्किल्स को पहचाना जाए, इनके बीच संवाद किया जाए, इनके बीच कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएं और उसके माध्यम से इनके विचारों को सुना जाए कि इनके गांव में गंगा को लेके क्या बेहतर हो सकता है, चाहे वो पॉलिथीन फ्री करने की बात हो, चाहे गंगा घाट पे सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे वहाँ वृक्षारोपण की बात हो। आज बहुत अच्छे से गंगा के बीच जो ये नेचुरल फॉर्मिंग, पेस्टिसाइड यूज नहीं होंगे, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होंगे, तो उस काम के लिए भी मुझे याद है कि सबसे पहले युवा ही आ गया है। युवाओं ने ही अपने पेरेंट्स को समझाया, अपने माता पिता को समझाया कि नहीं, हम गंगा के किनारे जो खेती कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे। तो जो हम लोगों ने इनके बीच ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे, 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उन युवाओं को वहाँ बुलाते थे, उन्हें उनकी समस्याओं को सुना जाता था, दूसरा बहुत सारे कंपटीशन के माध्यम से उनको कनेक्ट करते थे, उनके बीच डिबेट कराकर, उनके बीच एस्से राइटिंग कराकर, उनको कुछ एक्सपीरियंस के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट में कुछ टूर, कुछ कैंपिंग। कहने का मतलब ये है कि हम युवा को पहले कनेक्ट किया, कनेक्ट करने का मतलब उनको ये एहसास कराया कि ये आपके गाँव से जो गंगा निकल रही है ये आपकी है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली उस गंगा से नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, तो नेहरू युवा केंद्र संगठन ने सबसे पहले एक काम किया कि उनको बुलाया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको कंपटीशन कराया, उनको एक कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद वो स्ट्रीट प्ले, गंगा के किनारे आरती करना, वहाँ पर सॉन्ग है, नृत्य प्रतियोगिताएं हैं, इवन सबसे सक्सेसफुल जो प्रोग्राम रहा आपको बताएं, क्योंकि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे ही पानी घटता है दशहरे के बाद बड़ा अच्छा मैदानी भाग खुल जाता है गंगा में, पूरा बालू का बालू बड़ा लंबा चौड़ा मैदान तैयार हो जाता है। उन मैदानी क्षेत्रों में हम लोगों ने नमामि गंगे के माध्यम से स्पोर्ट्स के कार्यक्रम कराए। अब स्पोर्ट्स में क्या है, युवाओं का अलग क्रेज है, वहाँ स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं हुई, उनको प्राइज मिले, प्राइज के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफी जीते। तो उससे क्या है कि उन गंगा के क्षेत्रों में हमें एक अच्छा नेचुरल मैदान भी मिल गया, उस गाँव के लोगों के बीच प्रतियोगिताएं कराने का मौका मिल गया। तो ये जो युवा था ये डायरेक्टली गंगा से कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये स्पोर्ट्स के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, ये जो है बहुत सारे कल्चरल परफॉर्मेंस, डिबेट, नुक्कड़ नाटक, इन सब माध्यमों से वो वहाँ कनेक्ट हुए, उनको प्रशिक्षण दिया गया, नेचुरल फार्मिंग जैसी बातें की गई, उसके माध्यम से कनेक्ट होने के बाद वहाँ पर काम शुरू हुआ। उस दौर का जो काम था वो आज भी आप देखेंगे कई घाट को युवाओं ने अडॉप्ट किया हुआ है, चाहे वो बुलंदशहर है, बिजनौर है, प्रयागराज है, कानपुर है, कई जगह युवा एडॉप्ट करके रेगुलर, चाहे वो हफ्ते में 2 दिन किसी रविवार को, हफ्ते में 1 दिन किसी रविवार को समय निकालकर वो जाते हैं उस घाट पे, स्वच्छता कार्यक्रम करते हैं, वहाँ वॉल पेंटिंग करते हैं, वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम करते हैं। तो ये युवाओं को जो कनेक्ट होने का जो एक जज्बा आया, जो जुनून आया, तो वो कहीं ना कहीं माध्यम हमारे कई थे, लेकिन वो माध्यम उनको कनेक्ट करने के थे कि इन सब माध्यमों से इनको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके वो इसको जिम्मेदारी को समझे। और आज ये दौर है कि आप बहुत जगह जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उन युवाओं के नाम से, इवन जो प्लांट हैं वो भी उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, हर घाट पे बरगद, पीपल और पाकड़, ये 3 पेड़ एक साथ बहुत जगह रोपित किए गए, जिसको हम हरिशंकरी के नाम से जानते हैं, उनको युवाओं ने अडॉप्ट किया है। तो ये बहुत सक्सेस हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पर्यावरण और गंगा के प्रति बहुत सारे युवा जागरूक हुए। मैं आपको जो अभी उदाहरण दिया कि जो नेचुरल फार्मिंग जो हो रही है गंगा के बहुत सारे क्षेत्रों में, अभी तो सरकार उसको प्रशिक्षण भी दे रही है, सरकार उसमें कुछ सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन वो जो सक्सेस हुआ उसका जो विचार है वो युवा के दिमाग में ही आया। नहीं तो आप ये समझें कि जो 60 साल का 50 साल का जो किसान है वो कभी नहीं समझने वाला था कि हम पेस्टिसाइड या फिर हम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझाना कठिन काम है, लेकिन ये जो युवा है ये उन सारी समस्याओं को समझ करके अपने पेरेंट्स को समझाया और मना किया कि हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, हम प्राकृतिक कृषि की ओर जाएंगे। और हम आज बड़ा बेहतर उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आपको ये एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सफल कार्यक्रम रहा है
1: जी। और जन आंदोलन के माध्यम से कम्युनिटी का जो सपोर्ट है, क्योंकि इंजीनियर्स तो अपना काम कर ही रहे होंगे गंगा के बेसिन को लेकर, सफाई को लेकर, और बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, गंगा नदी का एक पूरा मंत्रालय है वो अपना काम कर रहा होगा, लेकिन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो कार्य है वो आपके नेतृत्व में या उस पर्टिकुलर जिले में जहाँ आप काम कर रहे थे वो चल रहा था। तो लेकिन नदी के दोनों तरफ दो बैंक्स हैं, दो तीर हैं उसके, तो उन दोनों बैंक्स को मिला के कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना कितना मुश्किल रहा होगा?
0: चैलेंजेस रहा, क्योंकि शुरुआत में तो लोग बात करने को तैयार नहीं थे। जो फील्ड का एक्सपीरियंस था, आपको सच बताऊं तो जब हम लोग मीटिंग करते थे, NMI के मुख्यालय से मीटिंग होती थी नवांग गंगे से, हमें दो गंगा दूत नहीं मिलते थे एक गांव में। हम जो गांव में जाते थे, जो लोगों से बात करते थे, एक गांव से गंगा दूत मिलना मुश्किल थे, क्योंकि वो युवाओं को ही बनाना था, जिनकी एज 15 से 29 साल हो वो गंगा दूत बन सकते थे। और वो एक वॉलंटियर सेवा थी, हम उनको कोई ऑनरेरियम नहीं दे रहे थे, हम उनको कुछ नहीं, बस उनको एक नाम दे रहे थे, गंगा दूत। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हमने उनको कैसे कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वो चैलेंजेस था। लेकिन ये है, युवा ही युवा के मन की बात को समझता है। तो उन लोगों ने, जो आप बोल रहे हैं कि दोनों किनारों को कैसे एक किया जाए, तो ये बड़े चैलेंज रहे हैं। लेकिन जो कनेक्ट करने की जो गतिविधि रही है, देखिए युवा को क्या है कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, युवा को युवा के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं बोला कि वो डायरेक्टली गंगा में कूदने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, स्वच्छता करने नहीं आएगा, लेकिन हम जब उनको अलग अलग माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं, उनको लगा कि नहीं, ये मेरे लिए डिबेट करा रहे हैं, मेरे लिए कल्चरल परफॉर्मेंस करा रहे हैं, मेरे लिए स्पोर्ट्स करा रहे हैं, यानी कि उनको ये फील हुआ कि ये मेरे लिए आए हैं, तब वो शायद बाद में मेरे लिए काम करना, यानी गंगा के लिए काम करना शुरू किया। तो ये चैलेंजिंग था, लेकिन कोई भी काम जितना चैलेंजिंग होता है उसका कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक सस्टेन करता है। जितना मुश्किल उस दौर में था, प्रोजेक्ट शायद खत्म हो गया, लेकिन जो ग्रुप बन गए थे, जो गंगा वाटिकाएं बनाई थी लोगों ने, मुझे याद है कई जिलों में गंगा वाटिकाएं बनी थी, जिसको युवा आज भी अजो के रखे हैं, उसको प्रॉपर नाम दिया है, गंगा ज्ञान केंद्र बनाए गए थे, वो भी आज युवा संचालित कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें रही जिनको युवाओं ने प्रॉपर समझा, और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, उनके अंदर भी व्यक्तित्व विकास हुआ, उनके अंदर भी वो समझ विकसित हुई। और ये समझ आज बहुत सारे युवाओं के अंदर ऐसी मान्यता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, मेरे पर्यावरण का क्या हो रहा है, हमारे समाज का क्या हो रहा है, समाज दूषित हो जाए उनसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो ये, इस जितने भी लोग थे उन्होंने इस दर्द को समझा कि नहीं नहीं ये गंगा की स्वच्छता, इस पर्यावरण की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिकता है कि हम अपने गाँव के आसपास, हम अपने क्षेत्र की गंगा को समझें, जागरूक करें। और बहुत जगह गंगा ज्ञान चबूतरा बना है, बच्चे वहां जाके बैठ रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं, गंगा के पास स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और गंगा आरती जैसे कार्यक्रम भी कई जगह शुरू हुए, क्योंकि जो कनेक्ट हो गए वो कनेक्ट होते ही रेगुलर अपनी चीजों को कर पा रहे हैं। तो ये अभी कंटिन्यू है, बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है।
1: हाँ, गंगा अपने आप में एक एक पूरा एक जीवंत व्यवस्था है, और उसके दोनों तरफ गंगा का जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अपनी एक वर्च्यूज हैं, उसके गुण हैं, और उन सारी चीज़ों को लेकर आपने युवाओं को जागरूक किया, तो एक बहुत बेहतरीन काम रहा। तो आप जिस जिले में काम कर रहे थे, आपने एक जिले में काम किया या और भी क्षेत्रों में जाके आपको?
0: नहीं, मैं एक्चुअली स्टेट लेवल पे था, तो मैं पूरे 24 जिलों में अपना भ्रमण रहता था, कई जगह बहुत क्लोजली, मतलब जाने का, ट्रेनिंग में जाने का, युवाओं के बीच कार्यक्रम होते थे उसमें जाने का। तो चूंकि युवाओं के बीच से ही निकल के आए थे, तो इसलिए बड़ी इच्छा रहती थी कि नहीं, एक मौका मिला तो एक हमारे लिए भी बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिला इस माध्यम से।
1: जी, कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जो इन 24 जिलों में से निकल कर आई हो और आपको लगता है कि नहीं वो देश को बताना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए आपने एक वर्ड यूज किया कि गंगा अपने आप में एक बड़ी जीवंत कहानी है। तो गंगा ऐसी है, मुझे याद है कई सारे युवा, जब डॉल्फिन को लेके बड़ा भ्रांति थी लोगों में कि गंगा में डॉल्फिन है या नहीं है, लोग उसको कुछ ऐसा मानते थे कि ये कुछ अजूबा है, बट डॉल्फिन को सरवाइव करने के लिए उसको लेकर के, मुझे याद है कि कई जिले, शाहजहांपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, फतेहपुर हो गया, इन जिलों में गंगा ज्ञान केंद्र स्थापित किए गए, गंगा ज्ञान केंद्र स्थापित करने का मतलब ये था कि उन गांव के युवाओं को, यानी जो मछुआरे हैं, जो निषाद समाज है, जो नाविक हैं, उनको वो नॉलेज प्रदान किया जाए कि गंगा में क्या क्या होता है, गंगा में डॉल्फिन है, गंगा में मछलियाँ हैं, गंगा का स्ट्रक्चर कैसा है, गंगा में कब बाढ़ आएगी, कब यहाँ से पानी घटेगा, यानी वो सारा टेक्निकल नॉलेज प्रदान करने के लिए उन गांव के, सोचिए कि जो आदमी अनपढ़ है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन वो हमेशा रहता गंगा में ही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाविक हैं, जो मछुआरे हैं, तो उनको एक टेक्निकल नॉलेज, एक बेसिक ज्ञान प्रदान करने के लिए गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना। और इसके लिए कोई सरकार से बजट नहीं था, इसके लिए कोई अलग से हमें गाइडलाइन नहीं थे कि आपको ऐसा करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में लोगों की ऐसी मांग, ऐसी समझ, ऐसा उनका जुनून देख करके ऐसे केंद्र स्थापित हुए जहां पर कुछ लिटरेचर रखा गया, ऑडियो विजुअल्स दिखाए गए, कुछ पोस्टर्स लगाए गए कि डॉल्फिन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दूसरी फिश है तो वो कैसी दिखेगी, किस गंगा के किस एरिया में कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं, तो ये ऐसे बहुत सारे चीजें हुई। दूसरा, जो हम लोग गंगा के माध्यम से आर्थिक समृद्धि की भी बात कर रहे थे कि युवाओं को आर्थिक रूप से कैसे सक्षम किया जाए, तो उसी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। देखिए, जब भी आप जाएंगे तो बड़ा नेचुरल चीज है, जैसे प्रयागराज में आप देखेंगे गंगा के किनारे बहुत ऐसी घास है जिसको हम मूझ घास के नाम से जानते हैं, कानपुर फतेहपुर, उस मूझ घास के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने बहुत सारे ऐसे सामान बनाने शुरू किए जो कि बहुत सिर्फ एक टेक्निकल, उनका जो बनाने की प्रक्रिया थी उसके माध्यम से उन स्थानीय प्रोडक्ट को बनाया, उससे डलिया बनाते थे, उससे टोकरी बना करके, उससे कुछ हैंगिंग वाला बना करके, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जो 100% नेचुरल थे, 100% मतलब एक तरह से स्थानीय उत्पाद थे, उनको भी बड़े लेवल पर पहचान मिली। और आज भी वो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के नाम से जो उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट है उसमें उनको गिना जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से पहचान में आए, लोगों की नजर में आए, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे।
1: बेहतरीन, तो मतलब वोकल फॉर लोकल भी आपको भी सपोर्ट किया हमारे प्रोग्राम ने, बेहतरीन बेहतरीन। मैं भी आपको बताऊं कि जब भी हम लोग इस यूथ प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जो हम लोग हमारे कार्यक्रमों में जो गेस्ट को जो हम मोमेंटोस देते हैं या जो गिफ्ट हम या उनको कुछ याददाश्त देते हैं चलते समय, तो मैं कोशिश करता हूं कि वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए कुछ ऐसे ही आइटम्स को हम उसमें प्रमोट करें। वो बात अलग है, जरूरी नहीं है कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ हो सकता है किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हम उसको मंगाएं, लेकिन वो होना कुछ ऐसा ही चाहिए जिससे किसी हाथ को काम मिले। तो यही हमारे पूरे यूथ प्रोग्राम से हम जैसे जुनूनी कार्यकर्ताओं और फिर बाद में टर्न अफसरों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून 107.8 माउंट आबू की वादियों से, और आप उसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। अजीत जी, आपने कहा कि युवा को लगता है कि मुझे सीधे रूप से क्या मिलेगा, सीधे तौर पर क्या मिलेगा, मेरा डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, जबकि इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। आप ही एक के उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है, जो एक साधारण से गांव से, एक साधारण परिवार से एक युवा एनएसएस से जुड़ता है या कहें राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ता है, और के मन में भी सवाल आया होगा कि मुझे सीधा बेनिफिट क्या है, लेकिन बेनिफिट, सीधा बेनिफिट तो क्या रहा मालूम नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट ये रहा कि वो आज हमारे साथ में एनएसएस ऑफिसर भुवनेश्वर हैं, और उनके व्यक्तित्व के निर्माण को कहें कि अदृश्य रूप से या कहें कि इनविजिबल हैंड्स ने कुछ उनके जीवन को शेप दिया, और वो माटी का पुतला अजीत कुशवाहा आज एक दूसरे माटी के पुतलों को तैयार कर रहा है, और हमारे साथ अजीत जी जुड़े हुए हैं। तो अजीत जी, वो सीधा बेनिफिट तो क्या है मुझे मालूम नहीं उसकी, उसका क्या मूल्य है, लेकिन जो दृश्य रूप से इनडायरेक्ट बेनिफिट इतना होता है कि आज आप जैसा व्यक्तित्व तैयार होता है, ये एक पूरे युवा कार्यक्रमों की फिलॉसफी है। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम ऐसे युवाओं की कहानियां जो हमारे प्रोग्राम में अभी नहीं है लेकिन भविष्य में साथ होंगे, और आपका कुछ अभी एनकाउंटर हुआ हो उनके साथ में, उन चुनौतियों की बात हम आपके साथ करना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बात कही कि सीधे तौर पर, क्योंकि आज का युवा है जो बहुत संयम नहीं है, हम बहुत कम समय में ज़्यादा टर्नओवर चाहते हैं, तो ये एक्चुअली हमारी एक गलती भी है, और शायद इसी के लिए युवाओं को समझाना भी है, जगाना भी है कि कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आपकी जो सफलता का है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने जुनून में लगे हुए हैं, तो आपको परिणाम तो मिलेगा, देरी हो सकती है लेकिन समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे वंचित रह जाएं। तो कहीं ना कहीं आपका संयम, आपका जुनून, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्य निष्ठा, वही आपको आगे लेके जाती है। और शायद मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है, एक छोटी सी जगह से निकल के कॉलेज में एनएसएस ज्वाइन करना, देन एनएसएस का राष्ट्रपति अवार्ड मिलना, उसके 2 साल बाद नेशनल यूथ अवार्ड मिलना, फिर मैंने कुछ दिन चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जो हेल्पलाइन है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करना, आफ्टर दैट फिर मुझे स्टेट यूथ अवार्ड भी उत्तर प्रदेश सरकार से मिला, और उसके बाद मैं चूंकि सक्रिय था, सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा था, और मुझे भी नहीं पता था कि हमारी यात्रा एक एनएसएस के यूथ ऑफिसर के रूप में यहाँ तक आएगी। तो ये जो जर्नी है ये एक लंबी जर्नी है, एक लंबी यात्रा है। तो इस यात्रा में हमने बहुत सारे युवाओं से मिलना हुआ, बहुत सारी जिंदगियों को हमने बदलते भी देखा, क्योंकि बहुत लाइफ में चेंज आते हैं लोगों के। तो मेरे साथ साथ बहुत सारे युवाओं की भी लाइफ चेंज हुई है, लाइफ में बदलाव आया है, लोग आगे बढ़े हैं, लोगों ने नई कहानियाँ लिखी। तो बहुत उदाहरण है, मैं जिक्र कर रहा था कई सारे नेशनल यूथ अवार्डीज का, तो जब भी अवार्डी सब यूज होता है तो क्योंकि मैं आज के युवाओं को जो देखता हूँ थोड़ी बात अजीब है, क्योंकि अभी नेशनल यूथ अवार्ड ओपन है इस टाइम पब्लिक फोरम में, 31 अगस्त लास्ट डेट है नेशनल यूथ अवार्ड के लिए, एप्लीकेशन नॉमिनेशन मंत्रालय ने मांगे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कभी कभी जो बहुत सारे युवा मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा क्या किया जाए कि मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिल जाए, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है कि कुछ करके अवार्ड लेना, या आपको अवार्ड में हमेशा अवार्ड को ये बोलता हूँ कि अवार्ड आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके लिए एक बूस्टर डोज हो सकता है, आपको और ज्यादा बूस्ट करता है कि आप समाज में और तीव्र गति से और ऊर्जा के साथ काम करें। अवार्ड इसलिए है, अवार्ड का पर्पज यही है कि आपने काम किया, आपकी पीठ सफाई गई और आप अच्छा काम करते हुए और आगे जा रहे हैं, आगे जाके आपको और पीठ सफाई गई, आप और आगे निकल गए। तो आज के जो दौर के युवा हैं उनके लिए मेरे तरफ से निवेदन भी है कि आप अच्छा काम करें, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे संगठन हो, चाहे ऑफिसर्स हो, आपके चीजों को जब आप मेहनत करेंगे तो परिणाम मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे आपने कहा कि कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे लोग जो जुनूनी लोग हैं जिनका जिक्र किया जाए, तो मेरे साथ के, क्योंकि कोई भी टीम, कोई भी काम आप अकेले नहीं करते हैं, आप एक टीम के साथ काम करते हैं, आपकी टीम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं जैसे युवा संवाद का जिक्र किया, तो युवा संवाद कोई अकेले का जज्बा नहीं था, अकेले का कोई मिशन नहीं था, उसमें हमारे साथ कई नेशनल यूथ अवार्डी थे। मेरे एक मित्र हैं नेशनल यूथ अवार्डी हैं, जो कि समाज में लोगों को स्किल के माध्यम से जोड़ते हैं, उनको कैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, लोगों को स्टार्टअप से कैसे कनेक्ट किया जाए। लखनऊ में उन्होंने खुद अपना स्टार्टअप, वो अगरबत्ती इंडस्ट्री में है, मिस्टर रोहित कश्यप, तो वो अगरबत्ती इंडस्ट्री में है, लोगों को जागरूक करते हैं, बहुत सारे महिलाओं को उन्होंने अगरबत्ती के रोजगार से जोड़ा, उनको सेटअप लगाना, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना, देन प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में जाएगा, ये सारा गाइड करते हैं। तो इस माध्यम से उन्होंने असंख्य महिलाओं को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। ऐसे एक साथी हैं जो स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, खेल के क्षेत्र में, उन्होंने कैसे खेल को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, नहीं तो हमारे अंदर जो विचार आता है कि हमारा जो खेल है वो शहर के स्टेडियम में ही रहता है, जो हमारा खेल है वो बड़े स्तर का खेल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है, जिनको हम कहते हैं हमारे माटी के खेल हैं, हमारी मिट्टी के खेल हैं, यानी कि जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसको उन्होंने, एक रविकांत मिश्रा जी हैं जिनको खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का लक्ष्मण पुरस्कार मिला है। लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, उससे उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने खो खो को लेकर के अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका कहना है कि ये गेम हमारे गाँव की माटी से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम के मैट तक खेला जाएगा, यानी कि जहां मैट भी होगी और हमारे गांव की मिट्टी भी होगी। उस गेम को उन्होंने उस स्तर तक पहुंचाने का काम किया है और उससे बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर खेल के आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को कनेक्ट करना, उनको सिखाना, उनको बताना, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए गाइड करना, क्योंकि मैं वही बोला कि आज जो जरूरत है वो ब्रिज की जरूरत है, सरकार के पास संसाधन है, हमारे युवाओं को जरूरत है, उस जरूरतमंद को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार को उन जरूरतमंद पहुंचाना है। इस ब्रिज का काम करना भी आज के युग में बड़ा काम है, कनेक्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये बहुत सारे युवा इस तरह के काम कर रहे हैं। दूसरा हम बात करें कि एक युवा विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए, क्योंकि आज है कि हम सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति, सही राह बताने वाला व्यक्ति, तो ऐसे ही एक साथी हैं जो बहुत सारे युवा हैं जो जेल में किसी अपराध में, किसी कारणवश जेल में हैं, किसी कारणवश मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करना, क्योंकि आज का ये वो दौर है जब शायद लोगों में इमोशंस नहीं है, लोग अब बात नहीं करना चाहते आपस में, एक दूसरे को गाइड नहीं करना चाहते। तो मेरे एक साथी ने बेसहारा और ऐसे मानसिक विक्षिप्तों का साथी अपने आप को घोषित कर दिया है। वो गोरखपुर में काम करते हैं, उनका नाम आज़ाद पांडे है, वो भी स्टेट यूथ अवार्डी है,

0: सकते हैं और क्या बदलाव की जरूरत है, और ऐसी कुछ कहानियां जो आपको और लगती हैं जो आपने पूर्वी आपके भारत की अभी आपकी पोस्टिंग के दौरान आप देख रहे हैं, या आपका कुछ और भी एनकाउंटर यूपी के बाहर कुछ अन्य राज्यों में भी आपका रहा होगा, तो वहां से भी कुछ बातें आप साझा करें। जी
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर लगभग अभी 2 वर्ष हो रहे हैं इधर में आईएएस यूथ ऑफिसर काम करते हुए, तो चूंकि पूरे प्रदेश के युवाओं से मिलना, बात करना, समझना, क्योंकि ओडिशा आप देखेंगे कि ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है। देखिए, किसी भी युवा के अंदर प्रतिभा की कमी तो नहीं है, वो किसी तरह से हो सकता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, उसको अवसर नहीं मिला, और जिसको अवसर मिला है उसने जरूर कर दिखाया है, उसने अपनी बेस्ट परफॉर्म की है। कुछ उदाहरण है, अभी आप भी वाकिफ हैं, हमारे मंत्रालय 15 अगस्त 26 जनवरी को कुछ इस विशिष्ट अतिथियों को बुलाता है, युवाओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर, तो मैं 2-3 बार से मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है दिल्ली में। मैं इस बार भी 15 अगस्त पे गया था, पिछली बार भी गया था, 26 जनवरी को भी गया था, तो मैं बहुत सारे युवाओं से मिला। तो जो युवा, बहुत सारे युवा जो बहुत छोटी सी जगह से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर जब आप बात करेंगे वो संकोची स्वभाव के रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम वो 4 दिन 3 दिन व्यतीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, साझा करते हैं, सीखते हैं, 3 दिन में इतना फर्क होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, आप बात करेंगे तो वो ऐसा कर पाएंगे, वो यस में बोलते हैं, हाँ कर पाऊंगा, यस हो जाएगा सर। कहने का मतलब ये है कि मंत्रालय स्तर पर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के युवा हो, चाहे वो आदिवासी युवा हो, चाहे किसी प्रदेश के युवा हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी युवा हो, मौका अगर उसको मिला है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उसको गाइडेंस मिल गया है, तो युवाओं में कमी नहीं है। और आज हम जो बात कर रहे हैं विकसित भारत की, 2047 के विकसित भारत, तो ये जो पूरी एक जर्नी होगी, जो पूरी यात्रा होगी, ये शायद अकेले की यात्रा नहीं है, एक व्यक्ति इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे युवा आप यहाँ पर जब देखेंगे, जो युवा जिम्मेदारी निभा रहा है, जो एक अपनी समझ विकसित कर रहा है, किसी को भी टाइम दे दीजिए, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी को भी गाइडेंस मिल जाए, तो कोई भी युवा कुछ भी करने को तैयार है। तो हमें ये समझना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लिंक करना है, एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम उनको लिंकेज कर रहे हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज पहुंचा रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। एक होता है कि अपनी हम ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपने भी जिक्र किया, क्योंकि हम सब अब लोक सेवा में आ गए तो लगता है कि हमारा एक ऑफिस काम पूरा हो गया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपने जो एक वर्ड यूज किया था वॉलंटियरिज्म, हमारे अंदर का वॉलंटियरिज्म जिंदा रहे। तो मुझे भी कई बार ये लगता है कि संडे है, सैटरडे है, या ऑफिस के बाद के जो आवर्स हैं, कैसे युवा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि ठीक है मुझे अवसर मिला, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन बहुत सारे युवा हैं जिनको मौका नहीं मिला, जो नहीं आ पाए। तो हर एक युवा को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक युवा को अवसर प्रदान करने के लिए, देखिए अवसर बहुत सारे हैं, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है, हम और आप इतनी दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं डिजिटल और तकनीकी के माध्यम से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आज तकनीकी के दौर में जरूरी नहीं है कि हम कहीं स्थानीय क्षेत्र में है तभी अच्छा काम कर पाएंगे, हम दूर दराज में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ के भी अच्छा काम कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे युवा जिनको ये लगता था कि नहीं ये सब सामाजिक चीजें जरूरी नहीं है, सिर्फ हमारी पढ़ाई हमारे लिए पर्याप्त है। मैं बहुत सारे अभी आपको लाइव एग्जाम्पल बताऊं, मैं कल ही एक प्रोग्राम में था, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप था, मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया, बच्चों का जो उदाहरण था बच्चों ने खुद ही एक्सेप्ट किया। मैंने ये बोला कि अगर आप सामाजिक चीजों में एक्टिव हैं, यानी कि आप, आपके अंदर लीडरशिप आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन रहे हैं, और आपके 99% मार्क्स आ रहे हैं आपकी मार्कशीट में, और आपके अंदर सामाजिक समझ नहीं है, आपके अंदर वो सामाजिक चेतना नहीं है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर लाइफ स्किल्स नहीं है, तो आपके लिए वो 99 जो मार्क्स हैं वो डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। शायद सारे युवाओं का हाथ था कि सर 99% हमारे लिए किसी काम के नहीं है जब तक हमारे अंदर लीडरशिप, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, लाइफ स्किल्स, इतनी सारी ये जो भी चीजें हैं जो हमारे अंदर नहीं होगी तो शायद वो हमारा मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह के रह जाएगा। यानी कि हमारे 90

0: 9% मार्क्स को भी जस्टिफाई करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। ये सारे गुण जितने भी हमारे, चाहे माई भारत प्लेटफॉर्म हो, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना का प्लेटफॉर्म हो, स्काउट गाइड हो, एनसीसी हो, या बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे युवा साथी जो नेशनल अवार्डी रहे या जो एक एक्टिव यूथ रहे हैं अपने टाइम में, तो वो किसी न किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं और वो युवाओं को प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं। वो कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, युवाओं को बुलाते हैं, उनमें लीडरशिप बिल्डअप करते हैं। कहने का मतलब ये है कि युवा सिर्फ किताब तक, सिर्फ एक छोटी जगह तक, जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, कूप मंडूक, हम कूप मंडूक वाली स्थिति में ना रहें। हमारी सोच एक कुएं के बाहर, एक बड़ा, एक खुला आसमान वाली हो। हम दूर तक चीज़ों को देख पाएं, वो समझ पाएं। और आज का जो हमारा कंपटीशन है, वो हमारा हमारे पड़ोसी के घर से कंपटीशन नहीं है, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से, पड़ोसी के प्रदेश से नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आज हम वैश्विक स्तर पर हैं, तो हमारा जो कंपटीशन है वो दूसरे देशों से है, चाहे वो तकनीकी माध्यम हो। तकनीकी चीज़ एक अलग हो गई, हमारी जो आंतरिक चीज़ें हैं, यानी कि हम इंटरनल, हमारा आज पर्यावरण से जूझ रहे हैं, वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आज हम अपने अपराध इतने हो रहे हैं, आज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एक बड़ा इशू है, उसमें भी युवाओं को आगे आके जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको युवा ही समझ सकता है, युवा ही सॉल्व कर सकता है। एक जो ओल्ड जनरेशन है उसको जागरूक करने के लिए भी युवा आगे आएगा। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिस पर बहुत सारे युवा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ इस कॉलेज की एकेडमिक तक सीमित ना रह के मुझे कुछ अलग करना है, कुछ थोड़ा जिम्मेदारी निभाना है। तो ये जो जिम्मेदारी का बोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मंत्रालयों का भी हाथ है, सरकारों का भी बड़ा सपोर्ट है, सामाजिक संगठनों का भी सपोर्ट है, और आज का जो सोशल मीडिया है, डिजिटल युग है, इन सबकी भी कहीं ना कहीं भूमिका है। तो इसके माध्यम से युवा आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, सीखते हुए, क्योंकि जब हम खुद अपने आप में कैपेबल होंगे तभी कुछ दूसरे को बताएंगे, यानी कि दान वही देगा जिसके पास कुछ देने के लिए होगा। तो पहले तो हमें युवा को कैपेबल बनना है, अपने को इतना सक्षम बनाना है कि हम किसी को कुछ दे पाएं। ज्ञान होगा तो नॉलेज दे पाएंगे, पैसा होगा तो कुछ दे पाएंगे। तो जो भी चीज़ हमारे पास है, हम अपने आप में कैपेबल बने, दूसरों को बांटें और सिखाएं और बताएं, और यही शायद एक साथ, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब हमारे देश का उत्थान तभी होगा जब हम लगभग 140 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है, जब हम सभी लोग एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे साथ मिलकर, तभी इस देश का भी कल्याण होगा, तभी इस समाज का भी कल्याण होगा, और तभी हम एक जो विकसित राष्ट्र की कल्पना है, जो विकसित राष्ट्र की जो परिभाषा है, उसको सार्थक कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और दुनिया की तस्वीर बदलने के लिए या देश की तस्वीर बदलने के लिए वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, और वॉलंटियर्स की दुनिया की तस्वीर बदलते हैं। मैं कहूँ कि ना तो किसी अन्य का उसकी भूमिका उतनी नहीं है जितनी वॉलंटियर्स की है, है ना। तो वॉलंटियरिज्म ही दुनिया का सबसे बड़ा औजार है, जिस अगर उसको सही तरीके से उपयोग किया जाए या सही दिशा दिखाई जाए तो हम बदलाव कर सकते हैं। खैर, आज के इस बातचीत हम कर रहे हैं जो वॉलंटियरिज्म को लेकर या जुनूनियों को लेकर या जुनून को लेकर जो क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो इस पूरे इकोसिस्टम पर भी आपने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से मंत्रालय की एक भूमिका है और किस प्रकार से एक कदम वो सभी का साथ बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आपने जेल इनमेट्स के साथ जो काम हो रहा है, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की एक पूरी दुनिया है और हमारा देश कहीं ना कहीं करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है, तो एक अलग कहानी आपने हमारे साथ रखी। शायद वो सबसे बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट मेरे लिए तो अभी शो में था जहाँ से आपने बात रखी। और युवा कहीं ना कहीं बहुत सारे मामलों में अभी जेल इनमेट्स के रूप में है, और वो जेल एक उसकी पूरी तस्वीर को वापस बदलने के बाद सेकंड इनिंग खेलने का उसको मौका दे, ना कि ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट इनिंग में ही अपने अपराधों में सेंचुरी मार दे, ऐसा ना हो, बल्कि वो सेकंड इनिंग में वापस एक नई शुरुआत करे, ऐसा जेल का वातावरण होना चाहिए, उस पर आपने पूरी बात रखी है।
0: क्योंकि हमें लगता है हर एक काम हमारे देश के लिए है, हर राष्ट्र के लिए है। जब हमारा हर एक युवा कैपेबल होगा तो ये राष्ट्र और सक्षम होगा और मजबूत होगा। इसी के साथ आपका, हमारा जो आज का मधुबन रेडियो, जिन्होंने बड़ी मुखरता के साथ आज के आरजे के तौर पे जो आपने एक जिम्मेदारी निभाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। और हम इसी तरह से हम सबके अंदर ये जुनून हमारा जिंदा रहे, क्योंकि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।
1: रास्ते भी इंतजार करते हैं। आपने अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात रखी, मजा आ गया आज की बातचीत। श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री अजीत कुशवाहा को। अजीत जी NSS अफसर हैं उड़ीसा में और एक राष्ट्रीय युवा अवार्डी भी रहे हैं, और उन्होंने पूरे जुनून की कहानी आज विस्तार से हमारे उनके साथ बातचीत में रखी है। और कुछ कहानियों को सुन के तो निश्चित रूप से ऐसा मन हुआ कि क्यों ना उन जगहों पर जाकर उनसे मिला जाए, सुना जाए। तो आप सुनते रहे अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और आप सुन रहे थे आपका एक बेहतरीन कार्यक्रम जुनून, जो हम आप तक लाए थे 107.8 के माध्यम से। आज की पूरी तकनीकी टीम को हमारी तरफ से आभार और धन्यवाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसकी कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धानपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए। और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: ओके। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: बिल्कुल, मैं मुझे खुशी होगी आपको बताने में। मुझे बाई बॉर्न आई में प्रॉब्लम है और मैं जन्म से दृष्टि बाधित हूँ और मुझे जन्म से मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था और
0: जी
1: मेरी ट्रीटमेंट हुई है मध्य प्रदेश इंदौर में डॉक्टर हाड़िया के पास।
0: जी
1: और स्टैंडर्ड 5 तक थोड़ा थोड़ा राइट आई में मुझे विजन था। स्टैंडर्ड 8 में आते आते मुझे मेरी संपूर्ण रोशनी चली गई। अभी फिलहाल मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मुझे आई प्रेशर का प्रॉब्लम्स है।
0: श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और हमारे साथ हैं जय पटेल जी, नर्मदा जिले के राजपीपला शहर से। जी जय पटेल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको दृष्टि बाधित, आपको जो ब्लाइंडनेस है वो कब हुई और किस प्रकार से आपने शुरुआती दिन अपने बचपन को, मैं अपने आप की पढ़ाई पूरी की।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी। भाई बहन है। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और परेशानी तो बहुत आई लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए, या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए, या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए, या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए। इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं, या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर, वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है। सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है, और आपकी
1: यस
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं, और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल्ड
1: हाँ
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा किए कार्य से खुशी मिल रही है तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है, और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और
0: जी
1: इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में, जो कार्यक्रम हमारा वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं, और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना?
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख, सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषाल गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो अब जब हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे हैं।
0: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खास तौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि ये अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल, वही
0: करते
1: वही वही काम इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम,
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूं,
0: जी,
1: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी श्रोताओं जो
1: और
0: हमसे
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं, और
0: आपके काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप मुझे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल। और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर
1: हाँ
0: कोई
1: बस।
0: बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल। देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लीक नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लीक नहीं रहा है। सो मेरे
0: जी
1: पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लीक नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल। वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं,
0: जी
1: और उनके
0: निश्चित
1: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल। और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
0: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
0: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है? डेली आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मेरी मदर।
0: जी जी तो
1: हाँ
0: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना, टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
0: जी
1: सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
0: जी
1: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
0: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
0: जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
1: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
0: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए? कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े? तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे। हाँ
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
1: बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े। और उनको
0: कम्युनिटी हाउसिंग,
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करें, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं। हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी, कितने
1: बिल्कुल,
0: लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: ये आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग,
0: जी
1: राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब।
0: जी जी तो
1: हाँ
0: नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों?
1: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
0: जी,
1: सेवेंटी फाइव यस।
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार्य के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
1: बिल्कुल,
0: और लोगों से जुड़ने की
1: इसमें
0: आवश्यकता है।
1: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
1: बिल्कुल,
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी
0: जी
1: हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
0: तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: मां रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही मां के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मां की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मां आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़ मैं और मेरा लोटा ही भला, तुम अपना काम करो। अरे तुम्हें पुराने लोटे से क्या लेना, बस समझ ले मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मां ने कहा। नहीं मां आज तो तुझे बताना ही होगा कि इस लोटे के पीछे क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी देता है, सुमित ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा इतनी जिद कर रहा है तो सुन, बहू ने जरूर इस लोटे को घर में रखने लायक नहीं समझा, लेकिन पता है मेरी शादी में देने के लिए मेरे मां पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना वह यही लोटा था, तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा परदादी दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं, और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी मां की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कह के मां फिर लोटे को निहारने लगी। मां की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहां चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अभी तो पूर्वजों की यादों संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हां कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे मां पापा दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर पुरानी चीजों से ही संस्कृति संस्कार यादें प्रेम निष्ठा ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को, बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो सभी तक पहुंचाएं ताकि ये पुल बना रहे, समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।
1: हेलो मेरा नाम दीपक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
0: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज की लघु कथा है डस्टबिन, अनीता ललित जी की लिखी हुई, लखनऊ से। आइए शुरू करते हैं। 6-7 वर्षीय पिंकी अपने गुड्डे गुड़ियों को लेकर कमरे में अपने सुंदर से डॉल हाउस के पास बैठकर मगन होकर खेल रही थी। छोटे छोटे बर्तन, मेज, कुर्सी और भी कई सारी चीजें उसके आसपास बिखरी हुई थी। कुल मिलाकर मानो छोटी सी गृहस्थी जमी हुई थी। नन्ही पिंकी वहीं बैठे बैठे अपनी माँ की चुन्नी लपेटे गुड्डे गुड़िया से वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बातें की जा रही थी। इतने में सुमन वहां से गुजरी। सुमन पिंकी की माँ। पिंकी को इतने प्यारे ढंग से खेलते बतियाते देखकर वो वहीं ठिटक गई और छुपकर उसे खेलते हुए देखने लगी। अपने जैसे बातें करते देख सुमन को अपनी बिटिया पर बहुत लाड आ रहा था। पिंकी छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने का खेल खेल रही थी और बातचीत किए जा रही थी। रवि आइए आइए, आपका पराठा बन गया, ये लीजिए। सुमन की हंसी ही फूट पड़ी। रवि उसके पति यानी पिंकी के पापा का नाम था। अरे ये तो ठंडा हो गया सुमन, इतना ठंडा नहीं खा सकता मैं। कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसे, मैं खा लूंगी। और आपके लिए ला रही हूं ये गर्मा गर्म, ये लीजिए। कहते हुए पिंकी ने अपने गुड्डे के सामने से एक प्लेट हटाकर दूसरी प्लेट रख दी। फिर पलटकर अपनी गुड़िया से बोली, चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, नाश्ता रेडी है। ये लो पहले ये फ्रूट खाओ। क्या मन नहीं है? नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो आप बड़े कैसे होगे, हेल्दी कैसे होगे। चलो चलो चलो चलो जल्दी से खा लो, गुड गर्ल। फिर कांटे से झूठ मूठ के फल गुड़िया को खिलाने लगी। फिर उसने छोटी सी कटोरी से उसे कुछ खिलाया, उसके बाद प्लेट से। फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओफो मैं तो थक गई। अरे ये क्या बेटा, आपने इतना सब छोड़ दिया, फिनिश ही नहीं किया। वेरी बैड, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है ना। अच्छा लाओ मैं ही खा लेती हूँ। कहते हुए पिंकी ने अपनी सभी प्लेटों कटोरियों से कुछ समेटने का भी नहीं किया और झूठ मूठ की समेटी हुई सामग्री अपने मुंह में डाल ली। और ये सब देखते हुए सुमन के चेहरे पर हंसी की जगह अब सोच की लकीरें उभर आई थी। दोस्तों आप सुन रहे थे अनीता ललित जी की लिखी लघु कथा डस्टबिन। कई बार जब ये लघु कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा होता हूं तो इनके भीतर जो इतना सशक्त विचार होता है वो मुझे भी ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देता है। क्या क्या बना करके रखा हुआ है हमने घर की उस थोरी को, और जिससे जीवन का सौंदर्य है उसे मैं मानता हूं, शायद उसे तकलीफ ना भी होती हो, शायद वो अपने इस त्याग को कभी संकल्प में भी न लाती हो और इसी त्याग को अपना भाग्य समझती हो। ताजे हुए खाने को खा करके ही वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हो। पर हाँ, अगर खाना छोड़ना, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए। और अगर गर्म खाना खाना आपको पसंद है तो हर जीव को पसंद है, चाहे भले ही उसका पार्ट आपकी सेवा का क्यों ना हो। वो घर की मालकिन भी हो सकती है जो सेवाधारी बनकर के बिना कोई मेहनताना लिए सेवा कर लेती है, और वो घर का सेवक भी हो सकता है। हो सकता है इस जन्म में उसका पार्ट सेवक का हो, लेकिन आज सेवा ले रहे हैं तो कल सेवा देनी भी पड़ेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखने की है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अनीता ललित जी के लिए जो भी आप कमेंट करना चाहें आप जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

शांति। आज 24 मई 2026 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 फरवरी 2010 को सुनाए थे। होली का त्योहार है तो आज बाप दादा जलाने की होली, मनाने की होली कैसे मनानी है उसको स्पष्ट करते हैं। तो आज बाबा कहे होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में क्या देख रहे हैं? जो भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा कहते संगम युग के प्राप्ति के आधार से ही आप बच्चे इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य भी आप डबल पवित्र बनते हो। वर्तमान में तो इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते, जो बाबा कहे भविष्य में डबल पवित्र बनते हो, आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र। आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में दुनिया के लोग होली मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। बाबा कहते अभी होली में पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो हमने क्या किया है प्रैक्टिकल में? आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे तो मनाया। वह स्थूल आग जलाते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं। क्यों बाबा कहे वो बॉडी कॉन्शियस है? क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो और वह होली मनाते हैं। होली कैसे बनते हैं उसको बाबा और गहराई से स्पष्ट करते हैं कि आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो ड्रामा अनुसार बात बीत चुकी उसको कहते होली अर्थात बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित पर नहीं लाते हो चुकी। तो आप सबने होली अर्थात ऐसे होली मनाई। दूसरा, आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता

हर तीन मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। क्रोध का कारण क्या होता है ये तो बाबा ने बताया कि क्रोध का कारण दो है, एक तो उसका बीज है वेस्ट थॉट्स और क्यों की क्यों, और दूसरी ईर्ष्या। लेकिन बाबा कहते हैं क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है, तो आपने अनुभव कर लिया। आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो, जब भी क्रोध आए तो भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया, हर्षित चेहरा, और बाप दादा को देखो उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है लेकिन ब्रह्मा बाबा तो साकार रूपधारी, हमारे सदृश साकार में जिम्मेवारी के ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराते हुए खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर बाबा ने विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। इसलिए ब्रह्मा बाबा को सामने ले आओ जब भी अगर क्रोध आए तो, और लास्ट तक देखा कि कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। बाप दादा समझते हैं, क्या समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहां कहां ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, क्रोध आता है, जब भी ऐसी बातें सामने आती है तभी तो विजय बनने का चांस है। इतना पॉजिटिवली बाबा उस बात को लेने के लिए इशारा दे रहे हैं, बातें नहीं आएगी तो हम विजयी बने हैं कैसे पता चलेगा। इसलिए बाबा कहे बातें तो आएंगी तभी तो विजयी बनने का चांस है, बातों का काम है आना और आपका काम है बातों पर विजय पाना। लेकिन कैसे? दमन नहीं करना है लेकिन नॉलेज के आधार से, समझ से उन बातों के ऊपर विजयी बनना। क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है। बाबा कहे अपना देवता स्वरूप को आगे आओ कि आपकी महिमा क्या है, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी गाते हैं, तो आपका ये बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। फिर बाबा कहते बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, क्या आशा है, कि हर एक बच्चा सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं, खुश नसीब खुश नमा। जैसे अभी कहते हैं दुनिया के लोग भी कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती है, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती है, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। क्रोध क्यों आता है, तीसरा कारण आज बाबा बताते हैं। पहले दो कारण तो बता दिए, तीसरा कारण है तनाव होता है ना, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है, टेंशन फ्री होने की विधि नहीं आती है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना ही है और हो सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं, तो इसलिए बाबा कहे आज की होली में आप क्या जलाएंगे, क्रोध का तो कर लिया पिछले संडे शिव जयंती पर। बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान का मैं शब्द है। मैं शब्द जो है, एक तो बाबा कहे आत्मा हूं, ये भी मैं है, मैं आत्मा हूं, लेकिन देह अभिमान का मैं शब्द देह अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं ये मैं नीचे गिराता है। वे अभिमान का मैं फलाना हूं, दूसरा अपमान मुझे ऐसा कह दिया, और तीसरा दिल शिकस्त ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकूंगा। तो तीनों मैं शब्द बाबा के नीचे गिराता है। आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं इस मैं शब्द को पक्का करो। बाकी मैं अभिमान वाला इसको योग अग्नि में जला के जाओ। इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अंदर में दृढ़ संकल्प लो।

जो समझते हैं हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप, साथ है ही तो विजय भी साथ है ही। फिर बाबा कहे आप सभी नए बच्चे बहुत आए थे, तो बाबा उनसे भी ये दृढ़ संकल्प करा रहे थे, इसलिए बाबा कहे आप सभी नए बच्चे, रियल गोल बच्चे, सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना। जैसे अभी पहली बारी आए हो ऐसे फर्स्ट डिवीजन में आना है। लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अभी जो करना है वह तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक भी देते हैं कि हिम्मत आपकी, मदद बाप की, लेकिन हिम्मत हारना नहीं। इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। हिम्मत कभी नहीं हारना। बाबा के बातें तो आएगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, बात आती है और चली जाती है, और जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना, संकल्प चला के। तो चारों ओर बाबा के परिस्थितियां है, कहां कोई परिस्थिति, कहां कोई परिस्थिति, चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड एकाग्र हो सकते हो। समय से पहले बाबा तैयारी करा रहे हैं कि परिस्थितियां चारों ओर है, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ जाए, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी है तो प्रैक्टिस करो कि मन को बुद्धि को आप एक सेकंड में परमधाम में टिका सकते हो। निराकार स्थिति में अभी अपने को फरिश्ता स्वरूप में टिका सकते हो, अव्यक्त स्थिति में आकारी स्वरूप में, और अभी अपने को साकारी स्वरूप में मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूं। इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने ड्रिल भी कराई निराकारी स्वरूप में परमधाम में टिकने की, आकारी फरिश्ते स्वरूप में टिकने की, और साकारी ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में टिकने की। ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है, इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है मैं मन नहीं हूं, ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। और फिर बाबा ने लास्ट में पुनः कहा, बाबा की जो आश है वो बाबा याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे, बातें चली जाए लेकिन खुशी न जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। जो होली बात होली, बाप दादा सदा कहते ये स्लोगन सदा याद रखना, खुश रहना है, खुशी बांटना है, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, और खुश नमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी, ये सदा खाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने
होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में क्या देख रहे हैं? भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का नहीं होता। बाबा हर एक बच्चों के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा कहे ऐसा भाग्य दुनिया में किसी का भी नहीं होता। दुनिया में तो क्या सारे कल्प में नहीं होता है। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, डबल पवित्र। सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। दुनिया में यादगार उत्सव के रूप में होली है। किस बात का यादगार उत्सव है? हमारे डबल होली अर्थात पवित्र बनने का। आपकी हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो तो आपके उमंग उत्साह का यादगार या उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान को भी हम बच्चों के उमंग उत्साह पर नाज है कि हर दिन हर कदम इतना उमंग उत्साह में रहते हैं जो बाबा कहे आपके उमंग उत्साह का यादगार उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है पूछते बाबा? क्यों हम बच्चों के अंदर इतना उमंग उत्साह रहता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते फिर मनाते हैं। होली हमेशा दो दिन चलती है, पहले दिन जलाने की, दूसरे दिन मनाने की। तो बाबा कहे आप भी संगम पर अभी पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्मा संग के रंग में रंगे अर्थात मनाया। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। दुनिया में मनुष्य ने आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है, सबकी बॉडी कॉन्शियसनेस वाली वृत्ति है। आप होली बनते हो, वह होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सभी जो भी जहां से आए हो तो परमात्मा संग की होली में आए हो, परमात्मा संग की होली मनाने आए हो। आप होली के लिए कहते हो, बाबा कहते आप होली के लिए कहते हो, क्या कहते हैं कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वह होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते होली, बीती सो
बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित पर नहीं लाते हो चुका, फिर बीती बातों को चित पर क्यों लाना। ऐसी होली मनाते रहते हो ना। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है। सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। कितना ऊंची नजर से भगवान देख रहे हैं कि अभी हमने पवित्रता को पूर्ण रूप से धारण किया, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। एक लाइट का ताज, दूसरा रत्न जड़ित ताज। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे, पूछते बाबा क्या जला के जाएंगे। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, पिछले संडे शिवरात्रि की मुरली में बाबा ने हमें होमवर्क दिया था। कौन सा होमवर्क दिया था? क्रोध को छोड़ने का। तो बाबा याद दिलाते हैं कि बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहां कहां बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सब ने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी, तो जो भी आज बैठे हैं, सन्मुख बैठे हैं, उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वह हाथ उठाओ। बाबा पूछते हैं, जिन्होंने भी अटेंशन दिया और कंट्रोल किया, सफलता का अनुभव किया, वह हाथ उठाओ। सफलता तो प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। फिर बाबा टीचर्स को देखकर कहते, टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। बाबा कहते, अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, ये अनुभव किया। हर एक ने हिम्मत भी रखी क्रोध को जीतने की, और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है विजयी होने का, सफलता मूर्त बनने का, ये अनुभव भी किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाने चाहे, तो समझते हो कि संभव है। बाबा कहे, अगर लक्ष्य रखे और बार बार चेकिंग करे, तो जरूर है कि आगे बढ़ाने चाहे, तो समझते हो कि संभव है। संभव है, आगे हो सकता है, पूछते हैं बाबा। वह हाथ उठाओ कि भाई हमसे हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है। अच्छा, संभव हो सकता है, नहीं, पूछते बाबा, हो सकता है या नहीं। होना ही है, इसकी ताली बजाओ। तो सब ने हाथ उठाया कि होना ही है। तो बाबा ने यह दृढ़ संकल्प दे दिया कि क्रोध पर विजयी होना ही है, तो इसकी ताली बजाओ खुद के लिए। अच्छा, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रख क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। क्रोध का भी कितना टेंशन हो जाता होगा, जो क्रोध करते हैं फिर बाद में महसूस होता है मैंने क्रोध किया, तो एक गिल्टी फीलिंग आती है, तो उस समय टेंशन हो जाता, रे मैंने बाप के आज्ञा की अवज्ञा की। तो टेंशन को खत्म करो, बाबा कहे, इतना अटेंशन दो क्रोध के ऊपर जो उसका टेंशन खत्म कर सकते हो, कर सकते हो। वह हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है,
सबने हाथ उठाया। तो बाबा की यह खुशखबरी तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है? बाबा ने पिछली बार बताया था कि क्रोध का बीज है एक शब्द क्यों या ईर्ष्या। तो इस आज बाबा और आगे उसका कारण स्पष्ट करते हैं। तो बाबा कहते क्रोध का बीज क्या होता है, आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने ले आओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ऐसे बाबा ने बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त किया था, इसीलिए खुशनुमा चेहरा, शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है? ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा, ब्रह्मा बाबा के जीवन का अनुभव सुनते हैं कि लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। कर्मातीत वाइब्रेशन के साथ अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात, क्रोध का दान दिया था ना, तो दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहां कहां ऐसे सरकमस्टेंस बनते हैं, कहां कहां उत्साह जाए ऐसे सरकमस्टेंस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है कि तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तब ही तो विजयी बनने का चांस है ना। देखो बाबा उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव कैसे बनना है, ऐसी बातें सामने आती है तभी तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, वो तो आएगी, अंत तक आएगी, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो विजयी बनना। बातें आएगी लेकिन यही प्रयोगशाला है जहां प्रयोग करना है, नॉलेज के आधार से विजयी बनना, मन अपनी वृत्ति को दबाना नहीं है, दमन नहीं करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के साथ उस पर विजयी बनना है। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए? कितना समय की हिम्मत है? जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वो हाथ उठाओ, होना ही है। फिर बाबा कंफर्म कराते होना ही है, ये दृढ़ संकल्प करना। अच्छा, बाप दादा खुश है, क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं, आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा, देवताओं के मंदिर में सामने जाकर क्या महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं। तो आपका ये बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाबा कहे आपका ये बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है, बाप दादा के दिल की विशेष आशा है। क्या आशा है बताएं, पूछते बाबा। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है बताएं, कांध हिलाओ, बताएं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। देखो बाबा की कितनी सुंदर आश है हम बच्चों के लिए
कि हर एक बच्चे को सदा खिला